शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने के लिए देह सहित जो कुछ है उसे बाप के हवाले कर उनकी श्रीमत पर चलना है। आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने के लिए देह सहित जो कुछ है उसे बाप के हवाले कर उनकी श्रीमत पर चलना है। दूसरी पॉइंट, माता पिता के गद्दी नशीन बनने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। लायक बनने के लिए मुख्य पवित्रता की धारणा करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले डबल प्राप्ति के अधिकारी भव। संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले डबल प्राप्ति के अधिकारी भव। जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर लेते हैं उन्हें सदा शांति और खुशी की डबल प्राप्ति का नशा रहता है, क्योंकि अतीन्द्रिय सुख में ये दोनों प्राप्तियां समाई हुई है, शांति और खुशी। अभी आप बच्चों को जो बाप और वर्षे की प्राप्ति है वो सारे कल्प में नहीं हो सकती। इस समय की प्राप्ति अतीन्द्रिय सुख और नॉलेज भी फिर कभी भी नहीं मिल सकती। इस समय जो प्राप्ति है अतीन्द्रिय सुख और नॉलेज, उसकी प्राप्ति फिर कभी नहीं मिल सकती। तो इस डबल प्राप्ति के अधिकारी बनो। आज का स्लोगन है, एक दो के संस्कारों को जानते हुए उनसे मिलकर चलना यही उन्नति का साधन है। एक दो के संस्कारों को जानते हुए उनसे मिलकर चलना यही उन्नति का साधन है। फिर मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, जो टॉपिक है, सच्चे पातशाह परमात्मा से सच्चा होकर रहो। इसी समय अपने को बाप परमात्मा द्वारा ये फरमान मिला है, निरंतर मेरी याद में रहो। योग का अर्थ है ईश्वरीय याद में रहना, योग का अर्थ कोई ध्यान नहीं है। अपना यह सहज योग जो चलते फिरते काम काज करते उसकी याद में रहना, जिसको ही अटूट अखंड योग कहा जाता है। परंतु इसमें निरंतर रहने की प्रैक्टिस की दरकार है। अगर उसके फरमान पर फरमानदार हो नहीं रहेंगे, अगर उसके फरमान पर फरमानदार वो नहीं रहेंगे, कुछ कोताही करेंगे यानी अगर कुछ अवज्ञा करेंगे तो दंड जरूर भोगना पड़ेगा। उनका फरमान है, जैसा कर्म मैं करता हूं मुझे देख तुम भी फुटस्टेप्स लो, नहीं तो माया की चोट खाएंगे। सच्चे पातशाह से सच्चा होकर रहो। जो भी कुछ माया का विघ्न सतावे वो भी इनके आगे रहना चाहिए। जो भी माया का विघ्न सतावे वह भी इनके आगे रखना चाहिए, बाबा को सुना देना चाहिए, तो उनकी मदद से माया हट जाएगी, रास्ता क्लियर हो जाएगा। फिर तो जहां बिठाए, जैसे चलाए, जो खिलाए, रास्ता क्लियर हो जाएगा। ऐसा साथ देने की बहुत हिम्मत चाहिए। ऐसे महान सौभाग्यशाली बिल्कुल थोड़े निकलेंगे, वो विजयी माला में जाएंगे। ऐसे बाबा कहे, महान सौभाग्यशाली बहुत थोड़े निकलेंगे जो विजयी माला में जाएंगे, बाकी भाग्यशाली है जो थोड़ा बहुत लेकर जाकर प्रजा बनेंगे। तो थोड़ा मिलने में खुश नहीं हो जाना, अपनी इच्छा तो संपूर्ण हो, अपनी इच्छा तो संपूर्ण हो, साहस रखो, आगे बढ़ना है। माया विघ्न डालेंगी परंतु उसके ऊपर विजय पानी है।
इसमें अगर भूल की तो निश्चय की कमी है। कुछ अपनी धारणा में कमी है, यह तो अपना कसूर है। इसमें लोक लाज कुल मर्यादा को तोड़ना पड़ता है। जब यह तोड़ेंगे तभी सच्चे पारलौकिक दैवी मर्यादा को पाएंगे। यह विकारी दुनिया तो जाने वाली है। देखो मीरा ने भी लोक लाज खोई तब गिरधर को पाया। अगर उस लोक लाज को रखेंगे तो इस दैवी लोक के भांति बन नहीं सकेंगे। अब कल्याण अर्थ ईश्वरीय राय तो दी जाती है, अब यह अपनी बुद्धि का फैसला करना है क्या करना है और क्या उचित है। आज का व्यक्ति इशारा है, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते हैं जो सरल चित है वही सदा हर्षित रहते हैं। हर्षित चित है तो सबको आकर्षित करते हैं। हर्षित का अर्थ ही है अतीन्द्रिय सुख में झूमना। ज्ञान का सिमरण करते, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते, अतीन्द्रिय सुख में झूमना, इसको कहा जाता है हर्षित। इसके लिए साक्षीपन की सीट पर सेट रहे माया और प्रकृति के पपेट शो को मनोरंजन के रूप से देखो। माया और प्रकृति के पपेट शो को मनोरंजन के रूप से देखो। अच्छा ओम।

ओम शांति। बाबा हम सभी को निर्विघ्न देखना चाहते हैं, हमारा जीवन ईश्वरीय खुशियों में बीते, ईश्वरीय आनंदों में बीते, योग युक्त होकर बीते और संगम युग पर विशेष रूप से जो अतिंद्रिय सुख का गायन है, जो केवल इस समय ही प्राप्त किया जा सकता है, उसकी निरंतर अनुभूतियों में बीते। तो ऐसा ही संकल्प हम सब अपना रखते हैं। बाबा ने हमें काम दिया, एक मास तक सभी को निर्विघ्न बनकर रहना है और बाबा ने ये भी कहा कम से कम ऐसी प्रैक्टिस तो करो, ऐसा वातावरण तो बनाओ, ऐसे वाइब्रेशंस तो फैलाओ कि दूसरे लोग विघ्न न डाल सकें। यज्ञ में विघ्न बहुत लोग डाल रहे हैं, किसी का क्रोध विघ्न डाल रहा है, किसी का अहम, किसी का मैंपन, किसी का स्वार्थ, जो ऐसे विघ्न यज्ञ में डाल रहे हैं जिन्हें पता ही नहीं कि वो विघ्न डाल रहे हैं, उनकी सजा उन्हें बहुत भारी मिलनी है। लेकिन हम सभी को निर्विघ्न रहना है तो व्यर्थ संकल्पों का भी विघ्न न हो। हमें एक मास का लक्ष्य बना लें कि हमें एक मास तक पूरा निर्विघ्न रहना है। लक्ष्य बनाने से लक्षण स्वतः ही आ जाते हैं। यदि मनुष्य को दृढ़ संकल्प हो कि जो भी विघ्न मेरे मार्ग में है, मुझे उसे समाप्त करना है, क्योंकि मैं तो स्वयं विघ्न विनाशक हूँ। पतंगे या मच्छर यदि आग के पास आए तो क्या होगा, उन्हें तो जलकर नष्ट होना ही है। विघ्न यदि विघ्न विनाशक आत्मा के पास आए तो उनका क्या होगा, उन्हें तो जलकर नष्ट होना ही है। अपने इस स्वमान को और इस स्वरूप को बहुत बढ़ाएं, मैं विघ्न विनाशक हूँ, मुझे बाप से वरदान मिला है विघ्नों को नष्ट करने का, और अपना जीवन इस ढंग से जिएं जो जीवन में विघ्न हो ही ना, कम से कम हो और जो आए तो सहज समाप्त हो जाएं। इसमें कुछ धारणाओं पर हम बहुत ध्यान दें, विशेष रूप से तीन धारणाएं जो सरल चित्त हैं, जो बहुत संतुष्ट होकर रहते हैं और जो निरंकारी हैं, उनके जीवन में विघ्न आते ही नहीं, क्योंकि इनके विपरीत जो तीन चीजें हैं वही विघ्नों को जन्म देती हैं। चाहे बहुत टेंशन में रहने की आदत, चाहे असंतोष, चाहे किसी न किसी तरह का अहंकार और मैंपन, यही मनुष्य को विघ्नों में ले जाते हैं। लेकिन हम लक्ष्य रख लें, हमें स्वयं भी निर्विघ्न बनकर रहना है और अपने स्थान को, अपने यज्ञ को भी निर्विघ्न बनाना है। और निर्विघ्न स्थिति का अर्थ है कि सदा हम खुशी में भरपूर रहें, सदा चित्त शांत रहे, हमारी पवित्रता संतोषजनक हो और हम सदा योग युक्त होकर रह सकें। जो अभ्यास हम करना चाहते हैं वो हम सहज भाव से कर सकें। ऐसे नहीं हम चाहते तो कोई अभ्यास करना है लेकिन हमारे मार्ग में कोई व्यर्थ संकल्पों का विघ्न हमें करने नहीं देता। हम चाहते तो हैं बहुत अच्छा योग करें लेकिन कोई टेंशन, कोई दिनचर्या की व्यस्तता, कोई संसार में उलझन हमें वैसा योग युक्त जीवन जीने नहीं देना चाहती। हम चाहते हैं हमारा सेवा स्थान संपूर्ण रूप से निर्विघ्न घन हो, वहाँ किसी भी तरह का क्रोध, काम, अहंकार, ये व्यर्थ की चीजें न हो, लेकिन कोई न कोई आकर विघ्न पैदा कर देता है। हम ऐसे वाइब्रेशंस फैलाएंगे, ऐसी सुंदर स्थिति में रहेंगे कि एक मास तक बाबा देखे कि वाह मेरे बच्चे वाह, सभी निर्विघ्न हो गए हैं। बाबा की शिक्षा को यदि हम पूरा करेंगे तो बाबा से हमें साथ ही साथ इनाम मिल जाते हैं, अंदर वरदान और शक्तियां मिल जाती हैं, उसके हम अधिकारी बन जाएंगे। तो आइए दृढ़ संकल्प करें, एक मास न हमें कोई विघ्न डालना है दूसरों के सामने, न स्वयं विघ्न स्वरूप बनकर रहना है।
मैं विघ्न विनाशक हूँ और मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। रोज सवेरे बाबा से तिलक ले लेंगे, वरदान लेंगे और संकल्प लेंगे बाबा से, जैसे बाबा सामने खड़ा होकर कहता है, बच्चे निर्विघ्न भव, विजयी रतन भव, सफलता मूर्त भव। ये तीन संकल्प, ये तीन वरदान रोज सवेरे हम बाबा से लेंगे और बाबा से स्वयं में शक्तियां भरेंगे। सर्व शक्तिवान की किरणों के नीचे, ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे स्वयं को अनुभव करेंगे, ताकि हमारी निर्विघ्न स्थिति विघ्न विनाशक स्वरूप में परिवर्तित हो जाए। ओम शांति।

0: ओ भाई साहब इधर आओ, कहाँ जा रहे हो जरा बताओ। लाल बत्ती में दिखता नहीं आपको, सामने लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं फिर भी गाड़ी पे चले जा रहे हो हैं?
1: अरे हवलदार साहब, एक बार लाल बत्ती में निकल गया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा।
0: ओए पहाड़ भले ही ना टूटे, लेकिन बेमतलब यमराज के रजिस्टर में एक नाम जुड़ जाएगा। इसीलिए जब भी लाल बत्ती हो तो बोलो पहले आप, समझे?
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। अपने आसपास के वातावरण को बदलना ही दुनिया को बदलना है। अपने आसपास निराशा, उत्साहहीनता, आलस्य, अकर्मण्य को पनपने न दें। सदा प्रसन्न चित्त रहें। प्रत्येक कार्य उत्साह और प्रसन्नता के साथ करें। होठों पर मुस्कान और चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक बनी रहे। हम अगर गंभीरता से विचार करें तो प्रत्येक संकट, समस्या या दुख के लिए हम उसमें अपना ही दोष पाएंगे। कहीं न कहीं हमारी अपनी दुर्बलता से उसने जन्म लिया है। इस बात का निष्कर्ष आपके सामने स्वयं आएगा। हमें स्वयं सावधान रहना चाहिए। अतएव किसी भी कार्य को करते समय आगे पीछे अवश्य सोच लें। अनावश्यक हड़बड़ी या बिना सोचे विचारे कोई कार्य करने से उसका प्रायः गलत परिणाम निकल सकता है, जो हमारे लिए आगे चलकर दुखदायी हो सकता है। थोड़ा सोच विचार करके ही निर्णय करना अच्छा है। कहावत है, बिना सोचे विचारे जो करे सो पाछे पछताए। यह कहावत अपने जीवन का एक नियम बना लें। स्मरण रखें कि एक न एक दिन आपका अस्तित्व मिट जाएगा। आपको इस दुनिया से जाना है, इस कारण कुछ न कुछ करके जाइए। मृत्यु प्रतिक्षण आपका पीछा करती रहती है, इस कारण अपने जीवन के प्रत्येक क्षण

शक्ति दी है। इस प्रकार की अलौकिक शक्ति मनुष्य को छोड़कर अन्य प्राणियों के पास नहीं है। एक प्रकार से ईश्वर ने हमें यह जादू की छड़ी दी है। इसका प्रयोग कर हम सब कुछ पा सकते हैं। आवश्यकता केवल परिश्रम और लगातार लगन की है।

विश्वास के बल पर आज मनुष्य बड़े से बड़ा काम और चमत्कार कर रहा है। जिसका जैसा विश्वास है वैसा उसको फल मिलता है। अगर आपके मन में यह विश्वास भर गया है कि आप अमुक कार्य नहीं कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है वैसा नहीं बन सकते हैं, तो निश्चय ही आप नहीं बन सकते। कोई भी शक्ति आपका साथ नहीं दे सकती है, आप यथावत ही रहेंगे। सबसे बड़ी बात है विश्वास। विश्वास जगाइए, उसका मूल फल आपको परिश्रम के उपरांत मिलेगा। विश्वास बनाए रखिए और आगे बढ़िए, फिर देखिए आप कैसे नहीं बन सकते हैं। वास्तव में हमारी अपनी जो भी परिस्थिति है उसके लिए भाग्य जिम्मेदार नहीं है, हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं। हम दूसरों को इसका कारण बतलाकर अपनी कमजोरी पर पर्दा डालते हैं, अपने को नहीं देखते और न ही इस बात पर विचार करते हैं कि हमारे कर्म क्या है, हम क्या कर रहे हैं, कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस पर विचार किया है आपने? ईश्वर कब चाहता है कि आप अभावों में जिंदा रहें, आप परेशान रहें, आप दुखी रहें? ईश्वर ने आपका निर्माण किया और आपको जन्म दिया है, सारी शक्तियां आप में भर दी हैं। अगर आप उनका प्रयोग न करें तो भला इसमें ईश्वर का क्या दोष है? आप ईश्वर को या भाग्य को दोष क्यों देते हैं? क्या आपका यही काम है? अपने कर्मों पर तो विचार करें, उनका ही फल आपको मिल रहा है। मानी हुई बात है कि जैसे आपके कर्म होंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। अपने कर्मों का फल ही आपकी वर्तमान दशा का कारण है। हृदय पर हाथ रखकर देखिए, क्या यह सच बात नहीं है? अपने कर्मों को अपनी कामनाओं के अनुसार ढालिए, फिर देखिए आपकी कामनाएं

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की, उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 crore सेल्स है, जस्ट द ब्रेन, ओके, 10,000 crore सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 crore सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 crore सेल्स इन द ब्रेन इनटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं, तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 crore सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितने आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उससे मैं याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

सबसे पहला कदम है विश्वास जगाना। पहले विश्वास जागृत करें। पूरा पूरा दृढ़ विश्वास है कि आप अमुक कार्य करेंगे और आप उसमें सफलता प्राप्त करके रहेंगे। हर क्षण यही विश्वास मन में रखकर कड़ा परिश्रम कीजिए, फिर देखिए क्या फल आता है। एक पुस्तक को पढ़ने के बाद रॉबर्ट लुडलो का विश्वास जाग गया था कि वह बड़ा आदमी बनकर रहेगा, शानदार जीवन व्यतीत करेगा। यह विश्वास जगाकर वह दिन रात कठोर परिश्रम करने में लग गया, बराबर लगा रहा। वह रात को थिएटरों, क्लबों के आसपास अपनी माचिसें बेचने जाता था, दिन में और रात 1-2 बजे तक लगा रहता था। अपनी आय बराबर बढ़ाता गया, अपनी मंजिल पा ली उसने। विश्वास मन में जगाकर लग जाइए, फिर देखिए क्या करिश्मा सामने आता है। विश्वास सबसे बड़ा बल है जो मनुष्य की कामनाएं पूरी करता है। उसके आगे सभी इच्छाएं सादर नमन करती हैं। विश्वास बनाइए, जी जान से परिश्रम करिए, हर स्थिति में अपना विश्वास बनाए रखिए। याद रखिए, ईश्वर आपकी राह में कभी बाधा नहीं डालेगा, वह बराबर आपकी सहायता करने वाला है। उसका ध्यान बनाए रखिए। ईश्वर पर भरोसा आपको अतिरिक्त शक्ति देगा। निराकार या साकार ईश्वर नाम का अस्तित्व हो ना हो, यह संबल के रूप में संकटों के समय आपको साहस और धीरज देता है। ईश्वर एक संबल सहारा है। ईश्वर का संबल, सहारा और आराधना आपको अतिरिक्त शक्ति देगी। अपना शरीर कार्यरत रखने के लिए आपको खाद्य पदार्थों की आवश्यकता है। मशीनों को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार आपको निरंतर क्रियाशील रखने के लिए, अपना विश्वास बनाए रखने के लिए ईश्वर में श्रद्धा और विश्वास परम आवश्यक है। ईश्वर पर आस्था अतिरिक्त शक्ति और ऊर्जा प्रदान करती है। आप में साहस बढ़ता है। इसके बल पर आप अपनी थकान मिटा सकते हैं। संकट के समय आप धीरज पा सकते हैं कि ईश्वर आपके साथ है, वह आपका मददगार है। यह कोरी कल्पना ही ईश्वर नाम की आप मान लें, लेकिन इस सांत्वना से आपको बड़ा बल मिलेगा, आपको संतोष और धैर्य प्रदान करेगा। कुछ कल्पनाएं कल्पनाएं ही हों, पर होती बड़ी मुफीद हैं। उनसे बड़ा लाभ होता है। ईश्वर आपकी कल्पना कल्पना ही सही हो, लाभदायक है। इस नाते से ही आप ईश्वर पर भरोसा रखें। ईश्वर पर आस्था और आपका दृढ़ विश्वास आपकी कामनाएं अवश्य पूरी करता है।

आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले ज्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटना की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

विश्वास नाम की जादुई छड़ी के बल पर बहुत कुछ कर सकते हैं। अपना विश्वास मजबूत रखकर आप बराबर लगे रहें, निश्चय ही आप सफल होंगे। विश्वास के बल आगे बढ़ें, किसी से ईर्ष्या, द्वेष, बैर भाव न रखें, अपना काम स्वयं करते जाएं। मुकाबला करें तो अपने को अपने से ही प्रतियोगिता करें, अपने आप से ही संघर्ष करें। बड़ा मजा आएगा आपको। खामोशी के साथ अटूट विश्वास किए बढ़ते रहें, देखें आपकी मनोकामनाएं कैसे पूरी नहीं होती हैं। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। अपनी आलोचना आप स्वयं कीजिए। प्रतिदिन बिस्तर पर लेटने के बाद सोचिए कि आज आपने क्या क्या किया है, कितना अच्छा कितना बुरा किया है। दिन भर का लेखा जोखा बनाइए, फिर अगले दिन की रूपरेखा बनाइए। तब उस रूपरेखा पर चलने का पूरा निश्चय कर दृढ़ता के साथ उस पर अमल कीजिए। देखें आप कैसे नहीं बदल पाते हैं। विश्वास सबसे बड़ा वरदान ईश्वर द्वारा मनुष्य को दिया गया है। इसका प्रयोग कर मनुष्य क्या नहीं कर सकता है। सदा सफलता के लिए कितने पते की महत्वपूर्ण बात है। क्या आप इस पर अमल करेंगे? आपका शरीर अपंग है तो क्या हुआ? क्या आप अपंग होने के कारण अपने विचारों और अपनी कामनाओं को भी अपंग बनाएंगे? कैसी मूर्खता है यह! सावधान हो जाइए, ऐसे गलती ना करें। हीनता को ईश्वर का वरदान माने और लगे ऐसे कार्य में कि सारी दुनिया चकित रह जाए। विचार और विश्वास के बल पर क्या संभव नहीं है। अपंगों ने भी एक से एक करिश्मे किए हैं। तैमूर लंग लंगड़ा था, उसने भारत को जीत लिया। मैंने पढ़ा है कोहिनूर हीरे का मालिक रणजीत सिंह काना था। विश्व में अपना नाम रोशन करने वाली हेलन केलर अंधी थी। नेपोलियन बोनापार्ट का एक पैर छोटा था। दोस्त, अपंगता को वरदान मानकर चलो। आप अपनी किसी भी शारीरिक गड़बड़ी न्यूनता को वरदान मानो। कठोर विश्वास जमाओ मन में किसी लक्ष्य का और उसे प्राप्त करो। दुनिया आपकी जय जयकार करेगी। विश्वास नाम की जादू की छड़ी का प्रयोग करो। ईश्वर ने आपको यह छड़ी दी है, देखो फिर क्या चमत्कार होता है। तो हम विश्वास के बल पर क्या नहीं कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कल के सुप्रभात में। रेडियो मधुबन पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम और ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री। दोस्तों, स्वास्थ्य को सहज बनाए रखने के लिए मनुष्य क्या सही अर्थों में प्रयास कर रहा है? हम में से बहुत सारे लोग, 100 में से लगभग 99 लोगों की अगर बात की जाए तो हम सब अपने भागती दौड़ती जिंदगी के पीछे लगे हुए हैं। हमारी नौकरी या हमारा बिजनेस, हमारा स्कूल कॉलेज, जो भी चीजें हम कर रहे हैं, घर की महिलाएं अपने घर के काम के पीछे लगी पड़ी। क्या हम तनिक भी एक दो मिनट भी रुक कर ये सोचते हैं कि क्या मैं अपने शरीर को ठीक रखने के लिए कुछ कर रहा हूं, स्वस्थ रहने के लिए कुछ कर रहा हूं? तो उत्तर हमेशा नकारात्मक भी मिलता है। कोशिश यही है कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जब तक जागरूक नहीं बनते, उसको स्वस्थ रखने के लिए कुछ नहीं करते, तो फिर वो स्वास्थ्य भी हमसे दूर होता चला जाता है। आज एक बहुत ही ऐसी ही अनूठी बात मैंने पढ़ी। एक जगह एक ईश्वरीय महावाक्य लिखा हुआ था जिसमें यह लिखा गया था कि फल खाओ, ताजी चीजें खाओ, जो चीज जैसी मिलती है, प्रकृति ने उसे जैसे बनाया है उसी रूप में उसे खाओ, उसे तलकर भूनकर पकाकर मत खाओ। अगर प्राकृतिक रूप में उसे खाएंगे तो आपका तन दुरुस्त रहेगा, मन दुरुस्त रहेगा, कोई भी प्रकार की व्याधि नहीं आएगी, खुशी मिलेगी। अब इस महावाक्य को पढ़ने पर मुझे लगा कि ये 1983 में कही गई एक बात है और इस बात पर कभी ध्यान से चिंतन ही नहीं किया गया हो तो फिर शायद इसके फायदे भी नहीं लिए जा सकते। आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं कि हमारा आहार कैसा होना चाहिए जो हमें तंदुरुस्त बना सके, मन दुरुस्त बना सके। आज हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी। डॉक्टर राहुल मोदी जी पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं। खिलाड़ियों के साथ उन्होंने उनके स्वास्थ्य को ठीक रखने में बड़ा योगदान किया है। साथ साथ भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं, भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जहां पर वो प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर साहब, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: नमस्कार, ओम शांति।
1: सर्वप्रथम डॉक्टर साहब, ये बात समझी जाए कि आहार जो है वो एक व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। लोग तो कहते हैं, आजकल लोग अपने हेल्थ को ठीक रखने के लिए एक्सरसाइज की बात करते हैं, लोग अपने हेल्थ को ठीक रखने के लिए ये कहते हैं कि आपको पोल्यूशन वाली जगहों पर नहीं रहना चाहिए, आप पोल्यूशन फ्री स्पेसेस में रहने की कोशिश करनी चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइजेस के साथ लोग ये भी कहते हैं कि भाई आप अपने शरीर को ठीक रखने के लिए बहुत सारी थेरेपीज और बहुत सारे अलग अलग आयाम हैं, उन सारी चीजों पर भी फोकस करते हैं, तो आहार भी उनमें से एक आयाम गिना जाता है। आप आहार को किस तरीके से देखते हैं?
2: हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में तीन चीजों का सबसे बड़ा योगदान है हमारा शरीर, नंबर एक। दो, हम जो भोजन कर रहे हैं और या जो आहार हम ले रहे हैं, और तीन, उस भोजन को हम कैसे खर्च कर रहे हैं। अगर ये तीनों चीज में बैलेंस रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे।

0: लंबा अच्छे से रह पाएगा, और जो बहुत अच्छा खाएगा, बहुत ज्यादा खाएगा, हर जगह से खाएगा, हर तरह की चीज खाएगा, वो कम दूरी तक चल पाएगा और जल्दी थक जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं और कब खा रहे हैं। ये तीनों चीज अगर हम ठीक से रखें तो हम लंबे समय तक रह पाएंगे। अभी कुछ किताबों में मैंने यहां तक पढ़ा कि अगर आपका भोजन ठीक रहा तो जो आपको जेनेटिक बीमारियां हो रही हैं या जो बीमारियां आपके परिवार में चलती आ रही हैं उसको भी आप ठीक कर सकते हैं। और भोजन का सबसे बड़ा रोल क्रॉनिक डिजीजेज में है या नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज में है। और अगर इन बीमारियों से आपको बच के रहना है तो आपको अपने भोजन को संयमित रखना पड़ेगा।
1: संयमित भोजन की जब बात की जाती है तो संयमित भोजन के साथ साथ एक शब्द और जो सुनने को मिलता है, संयमित से ज्यादा जो आजकल सुनाई देता है या पढ़ने को, लिखने को, देखने को मिलता है, स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है, वो है संतुलित भोजन, यानी बैलेंस डाइट। संयम की जब बात कही जाती है तो लोग कहते हैं कि भाई अगर कोई अच्छी चीज बनी है तो संयम का टूटना तो बनता ही है। लोग कह देते हैं कि भाई जलेबी बन रही है, आप कैसे कह सकते हैं कि संयम में खाया जाए, गुलाब जामुन पे कैसे रुका जाए, ये बात पूछते हैं लोग।
0: भैया जलेबी और गुलाब जामुन दोनों राजा हैं। आप पूरा भोजन कर लेंगे तब भी वो अपनी जगह बना लेंगे और तब भी वो आपके शरीर में चले जाएंगे। पर इसके बारे में 15 दिन महीने में एक बार उस संयम को तोड़ना चाहिए। हम रोज ही अगर अपना संयम तोड़ लेंगे और रोज ही जलेबी और गुलाब जामुन के पीछे भागेंगे तो हमारा शरीर बहुत कष्ट झेलेगा और हमारे शरीर को बहुत नुकसान होगा।
1: अब हम उसके दूसरे आयाम पे आते हैं। समझ में आता है कि संयम बहुत आवश्यक है दोस्तों, यानी आहार में आपको पसंद की चीजें बहुत कुछ हो सकती हैं, मगर संयमित रूप से आहार करना कि भाई जो चीज पसंद है उसको बहुत अधिक मात्रा में खाना नहीं है। कभी कभार आपको पसंद वाली चीज आप थोड़ा ज्यादा खा लें तो समझ में आता है, मगर हर दिन के लिए जीवन में एक आहार से संबंधित संयम भी स्थापित करना आवश्यक है। आहार से संबंधित भोजन ग्रहण करने में भी एक संयम क्या है, इस चीज को समझना जरूरी है। डॉक्टर साहब, हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संतुलित आहार की बातें करते हैं, बैलेंस डाइट की बात करते हैं। लोग कहते हैं कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, प्रोटीन्स होना चाहिए, आपको दाल खाने की जरूरत है, आपको चावल भी खाना है, रोटी भी खाना है, सब्जियां भी खानी है, फिर आवश्यक मिनरल्स और विटामिन्स चाहिए, इत्यादि इत्यादि अनेक चीजें बताई जाती हैं, फैट्स भी चाहिए, ये भी बताया जाता है। तो आप इस संतुलित आहार को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, प्रकृति चिकित्सा इस चीज को कैसे देखती है?
0: गुड हेल्थ इज आवर मोस्ट वैल्यूएबल कमोडिटी। फीलिंग फिट एंड वेल बोथ फिजिकली एंड मेंटली इज अ नेचुरल एंड इंस्टिंक्टिव पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हाउएवर वी रेयरली अप्रिशिएट द ट्रू वैल्यू ऑफ गुड हेल्थ अंटिल वी बिकम इल। ये बात हमेशा भैया आप बोलते हैं कि हमको तब तक स्वास्थ्य के बारे में नहीं मालूम चलता है जब तक हम बीमार नहीं पड़ते। इन अदर वर्ड्स, मोस्ट ऑफ अस टेक आवर हेल्थ फॉर ग्रांटेड। हम अपने स्वास्थ्य को ग्रांटेड ले लिए, इसीलिए हम उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो बैलेंस डाइट, जैसे हमने आपने बताया, संयम आहार और संतुलित आहार दोनों बहुत जरूरी है। संतुलित आहार में अगर ये देखा जाए तो हम इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन, फाइबर्स, इन सब को लेकर हम अपना जो संतुलित भोजन है वो बनाते हैं। और ये सारी चीजें हमारे लिए जरूरी हैं। संतुलित भोजन जरूरी इसलिए है क्योंकि हमारा शरीर 24 घंटे रिपेयर और रिन्यूएबल में चलता रहता है कि वो हमेशा 24 घंटे रिपेयर हो रहा है। 24 घंटे जो हमारी कोशिकाएं हैं उनकी मृत्यु हो रही है, 24 घंटे नई कोशिकाएं बन रही हैं। इसको एक बड़ा सुंदर उदाहरण में समझिए। आपको हल्का सा हाथ कटता है, आप खुद देखते हैं कि वहां खून निकला, थोड़ी देर में खून बंद हो गया,

0: तीन दिन में वहां पर आपको एक मार्क दिखाई देता है और 3-4 दिन बाद वो मार्क पूरी तरह गायब हो जाता है।
1: बिल्कुल
0: आप इमेजिन करिए कि आपके शरीर में जितनी बार आपको चोट लगी है उतने सारे मार्क अगर आपके शरीर पे दिखें तो हम लोग कितने बदसूरत दिखेंगे, चेहरे पे, हाथ पे, पैर पे, पीठ पे, और हम सबको आए दिन लगते रहते हैं। तो क्यों संतुलित भोजन चाहिए? क्योंकि वो हमारे शरीर को 24 घंटा जो रिपेयर का प्रोसेस है उसके लिए, 24 घंटे जो हमें शक्ति चाहिए काम करने के लिए। आपको लगता है आप सो रहे हैं तो आपको शक्ति नहीं चाहिए? जब आप सो रहे हैं तब भी आपका हृदय काम कर रहा है, तब भी आपके फेफड़े काम कर रहे हैं, तब भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका पाचन तंत्र काम कर रहा है, तब भी आपका यूरिन सिस्टम, किडनी जो है वो खून को साफ कर रहा है। तो हम चल रहे हैं तो हमारी मांसपेशियों को ताकत चाहिए, तो 24 घंटे हमें ताकत चाहिए और वो ताकत हमें भोजन से मिलेगी। भोजन का जो तीन सबसे इंपॉर्टेंट जो या 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड है वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में पैसे की तरह, जैसे हमें रोजमर्रा में काम करने के लिए पैसा चाहिए, वैसे ही हमारे शरीर को 24 घंटे काम करने के लिए कार्बोहाइड्रेट का जो मोस्ट कॉमन कंपोनेंट है ग्लूकोज चाहिए। और जो हमारे रक्त कोशिकाओं में, हमारे मांसपेशी में और हमारे लिवर में इसको हम स्टोर करके रखते हैं। तो ये हमारा रिकरिंग खर्चा है जो 24 घंटे हमारे शरीर को चलाता रहता है। और हम कुछ भी खाएं, मतलब हम प्रोटीन खा लें, हम फैट खा लें, ये कार्बोहाइड्रेट में ही कन्वर्ट होगा या उसी में बदला जाएगा। ये वो मुद्रा है, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज ही वो मुद्रा है जिसे हमारा शरीर पहचानता है। और ये ही हमारे शरीर में जब जलता है या जब इसका कंबस्शन होता है तो हमारे शरीर में एनर्जी मिलती है और हीट मिलती है, मतलब हमें ताकत मिलती है और गर्मी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट 3 चीज से बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और इसमें ऑक्सीजन का अनुपात H2O जैसे जो पानी का अनुपात है उस हिसाब से रहता है। और जो हमारा शरीर इसको जलाता है तो हमें ताकत मिलती है, हमको गर्मी मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और यही गैस हमारे फेफड़े वातावरण में बाहर छोड़ते हैं। हमने रासायनिक कक्षाओं में या केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कुछ भी चीज जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो हम वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं, शरीर कार्बोहाइड्रेट लेता है या ग्लूकोज लेता है, उस ग्लूकोज को जलाता है, एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड हम अपने नासिका के द्वारा वातावरण में छोड़ देते हैं।
1: ये बात समझ में आती है कि कार्बोहाइड्रेट एक बहुत ही आवश्यक सी चीज है। भले हम प्रोटीन भी खा रहे हैं, फैट भी खा रहे हैं, मगर जो मुद्रा है, जो शरीर को ताकत देने वाली चीज है, वो कार्बोहाइड्रेट है। हम अलग स्वरूपों में उन चीजों को खाएंगे तो भी शरीर उसे ग्लूकोज के रूप में ही बदल कर फिर उसको इस्तेमाल में लाता है। वही चीज हमको ताकत देने वाली चीज है। अब इस कार्बोहाइड्रेट को सही तरीके से समझा जाए, क्योंकि लोग कार्बोहाइड्रेट की जब बात की जाती है तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है, क्या चीजों को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, किन चीजों से ये हमारे भोजन में आता है, जो शरीर को मिलता है, क्या खाने से मिलता है।
0: कार्बोहाइड्रेट को अगर हम लोकल टर्म में एकदम बेसिक भाषा में बोलें तो ये शुगर है, ये चीनी है। इसको केमिस्ट्री के उसमें इसको मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड में कन्वर्ट किया जाता है। और मोनोसेक्राइड सबसे बेसिक है जो हमको हमारे सीरियल्स में मिलता है हमको, और जैसे और मोनोसेक्राइड के सबसे कॉमन एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज है। ग्लूकोज शुगर, फ्रक्टोज मतलब फ्रूट शुगर और गैलेक्टोज तीसरा। डाइसेक्राइड में सुक्रोज आता है, लैक्टोज आता है और माल्टोज आता है। लैक्टोज मतलब मिल्क शुगर, माल्टोज मतलब माल्ट शुगर और सुक्रोज मतलब केन शुगर। और लास्ट में भैया पॉलीसेक्राइड आता है जिसमें सबसे कॉमन हम जिसमें हम सेलुलोज को लेते हैं। ये चीनी का ही एक भाग है मगर ये डाइजेस्ट हमारे शरीर में नहीं होता है और ये फाइबर का पार्ट है जो हमें फल से सब्जियों से मिलता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्लूकोज है। सबसे ज्यादा ग्लूकोज हमको जो है वो अनाजों में मिलता है और जिसमें गेहूं और चावल है, बहुत सारे फलों में मिलता है, केला सेब संतरा आम पपीता, और हमें सब्जियों में मिलता है जिसमें सबसे नंबर वन जो वेजिटेबल का नाम लिया जाता है वो है आलू, पटेटो, पटेटो स्वीट पटेटो, और जिसमें स्टार्च है जो सब्जी है उसमें मिलता है। हमारे शरीर के लिए ये तीनों चीज जरूरी है। बहुत से लोग बोलते हैं अरे चीनी मत खाओ, चीनी मत खाओ, अरे ग्लूकोज मत लो, ग्लूकोज वाले भोजन मत लो। हमारा शरीर सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज को समझता है और वो किसी और चीज को नहीं समझता है। आप कुछ और चीज उसमें डालेंगे तो वो अपनी ताकत, शरीर अपनी अंदरूनी ताकत लगाकर उसको ग्लूकोज में ही कन्वर्ट करेगा।
1: डॉक्टर साहब, ये बात समझ में आती है कि शरीर ग्लूकोज की भाषा ही समझता है, यानी शरीर के लिए ग्लूकोज आवश्यक है, वही शरीर को बल देने वाला, शक्ति देने वाला जो अणु है वो चीज समझ में आती है। अन्न का जो पदार्थ हम देख रहे हैं, भले हम किसी भी अनाज से ले रहे हों या जैसे आपने कहा कार्बोहाइड्रेट्स तो अनाजों में होता है, सब्जियों में आलू में होता है, ये चीनी है, ये जो शर्करा की मात्रा है, ये चीज हम समझते हैं। अभी तक तो बहुत सारे लोगों के मन में यही चीज होती है कि शर्करा कहते ही हम उसे चीनी, वास्तविक रूप से जो शुगर केन होता है, जो गन्ना है, उससे जो चीनी मिलती है उस चीज को हम समझते हैं, मगर ये बात समझ में आ रही है कि अनाजों के अंदर से ये चीनी मिल रही है, जो शरीर के लिए जो चीनी है, जो शक्ति देने वाला ये ग्लूकोज है, वो कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। अब जैसे ही चीनी की बात कही जाती है तो अक्सर लोग डायबिटीज से संबंधित एक बीमारियां जो बहुत ही भारत में बढ़ चुकी हैं, लोग कहते हैं कि भारत तो दुनिया का डायबिटीज कैपिटल बन चुका है, तो अब लगभग हर व्यक्ति ग्लूकोज के मामले में जागरूक है, हर व्यक्ति चीनी के प्रति सजग है। लोग अक्सर ये शब्द कहते हैं कि भाई इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स देखो पहले। ये शब्द प्रचलन में सुनने को मिलता है, ये ग्लाइसीमिक इंडेक्स क्या है, क्या हर चीज का ये होता है, क्या चीज हम खा रहे हैं उसमें हर एक का ग्लाइसीमिक इंडेक्स पता होना चाहिए, ये इन चीजों को समझा जाए।
0: भारत डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन गया है और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी 140 करोड़ की जनसंख्या, और हम जैसे ही बोलते हैं कि हमारा 10% जनसंख्या को डायबिटीज है तो पता चलता है कि वो नंबर 14 करोड़ हो गया। और मैं और आप जानते हैं कि यूरोप में 14 करोड़ में तो 3-4 कंट्रियों की पॉपुलेशन एक साथ आ जाएगी, तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमारे यहाँ उसका नंबर भी ज्यादा है बीमारी का। और ये हमारे देश की अच्छाई है, हमारे स्वास्थ्य कर्मियों की अच्छाई है कि वो हर केस को रिपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए हमको ये नंबर बहुत ज्यादा मिलता है। अब भैया आपने ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में बात किया, तो कॉमन भाषा में ये समझा जाए कि हम कोई भी चीज खाते हैं और हमारे शरीर में, हमारे रक्त में वो चीनी कितनी देर तक एकाएक बढ़ जाती है, उसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स मान लीजिए। इसमें साइंटिफिकली ये बोला जाता है कि ग्लूकोज रिस्पॉन्स कर्व कितना है, कि हमारे शरीर में शुगर कितनी बढ़ी और फिर कितनी देर में कम हुई 2 घंटे के अंदर, इसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स मानते हैं, या हमारे शरीर में कितनी जल्दी वो चीज एब्जॉर्ब हो गई और जितनी जल्दी जो चीज एब्जॉर्ब होगी उतनी जल्दी वो ब्लड में पहुंचेगी, तो इसको एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोला गया। ग्लाइसेमिक इंडेक्स से हम नॉर्मली अपने सारे भोजन पदार्थों को इससे डिवाइड करते हैं, जैसे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स या हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड। हम सबको वेरी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जिसमें सफेद चीनी, कॉर्नफ्लेक्स, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ब्रेड, टॉफी, ये सब वेरी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीजें हैं, तो हमको ये अवॉइड करना चाहिए। मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स में भैया चावल आता है, सुक्रोज आता है, आपके पोटैटो आता है, और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में भैया सारी फ्रूट वेजिटेबल्स, आपकी होल ग्रेन्स, बीन्स, लेंटिल्स, ये सब आते हैं। तो हमको ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे भोजन में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीजें कम हो या न हो, और हमारे भोजन में मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स या लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मतलब फल, सब्जी, चावल, दाल, ये सब चीजें ज्यादा हो। आप अगर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीजें खाएंगे तो आपके शरीर में बहुत जल्दी शुगर एब्जॉर्ब होगा, और टेक्निकली ये सारी चीजें चीनी से बनी हुई हैं, या भोजन जिसमें चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा है। कोल्ड ड्रिंक में चीनी ज्यादा क्यों डाली जाती है, या चाय में चीनी ज्यादा क्यों डाली जाती है? क्योंकि ठंडक से ब्लड का सर्कुलेशन कम होता है, तो जब एक ठंडी चीज और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है जो उसमें बबल का टेस्ट देती है, वो आप जैसे ही अपनी जिह्वा पे डालते तो वो थोड़ी सी सुन्न होने लगती है, उसका टेस्ट नहीं आता है। तो एक ठंडी चीज और ऊपर से उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई, तो उस टेस्ट को आपकी जीवा पे मीठा लगाने के लिए आपको बहुत ज्यादा चीनी डालनी पड़ती है उसमें। यही चीज आइसक्रीम के साथ है, एक तो ठंडी, दूसरा जीवा पे पड़ के वो सन कर देगी सारी नर्व्स को, तो मीठा कैसे लगेगा, तो इसीलिए उसमें चीनी ज्यादा डाल दी जाती है। बहुत गर्म भोजन में भी चीनी, जैसे आपने भैया एग्जाम्पल लिया जलेबी, वो गरम निकलती है जीवा पे पड़ती, ऐसे आवाज हम निकालते हैं, अरे, तो उतनी देर में आपकी जीवा पे उसका स्वाद कैसे आएगा जब तक वो चीज ज्यादा नहीं डाली जाएगी। तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में टेक्निकली सारी मीठी चीजें हैं, और वो चीजें हैं जो नेचुरली मीठे नहीं है, मतलब जिसको हमने मीठा बनाया। कॉर्नफ्लेक्स, आप अगर कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं तो उसके ऊपर तक शुगर की कोटिंग है। मैं सबको एक राय देता हूं कि आप जो भी भोजन करिए एक बार पलट के उसको देख लीजिए कि उसमें एडेड शुगर कितना है। अगर उसकी मात्रा ज्यादा है तो प्लीज उस भोजन को अवॉइड करिए।
1: ये बात बहुत ही आंखें खोलने वाली है, क्योंकि आज तक हम तो ये सोच कर चल रहे थे कि भाई हाँ ये तो अच्छी चीजें हैं, इसको तो खा लेना चाहिए, और ये रेडी टू ईट चीजें हैं, और ये बाजार में मिल रही हैं, बस बोतल खोला, कोका कोला पी लिया, या पेप्सी पी लिया, किसी भी प्रकार के सॉफ्ट ड्रिंक को पी लिया, ऐसे ही अनेकों चीजें जो बाजार में मिल रही हैं वो रेडी टू ईट हैं, उनको देख के लगता है कि ये इंस्टेंट एनर्जी दे रही हमको और इससे खा लेने की जरूरत है, मगर वास्तविकता में ये शरीर के लिए कितने हानिकारक हैं। और हमें जो आपने 3 ग्लाइसीमिक इंडेक्स बताए कि भाई वो चीजें जिसमें ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है, जो आपके रक्त के अंदर शर्करा को तुरंत खींच लेती हैं, उन चीजों से बचने की जरूरत है। मध्यम ग्लाइसीमिक इंडेक्स और एकदम कम ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाली चीजों का हमें उपयोग में लाना है, उन चीजों को खाने की आवश्यकता है। और भी प्रश्न है मगर समय कहता है कि यहाँ रुकना होगा। और जैसे ही आपने कॉर्नफ्लेक्स की बात की, मैं एक अपने कॉलेज की बात याद करता हूँ कि उस समय पर, क्योंकि कॉलेज जाने की जल्दी होती थी और सुबह कौन नाश्ते की तैयारी करे, और लड़के आपस में मिलके रह रहे हैं तो ये सब कुछ करना मुश्किल लगता था, तो हम कॉर्नफ्लेक्स डालते थे एक बोल में और सीधे दूध मिला देते थे, खाते और सीधे भाग जाते थे। बट आज इस बात की समझ आती है कि ये कितनी अनहेल्दी सी चीजें हैं कि हम अज्ञानवश बिना देखे, बिना लेबल पढ़े, बिना इन चीजों की जानकारी रखे, स्वस्थ समझकर इन चीजों को खा लेते हैं। और भी इन चीजों पर बातचीत करेंगे दोस्तों। मैं समझता हूँ आज आपको भी बहुत सारी चीजों के ऊपर जो हमने खुद पर्दा डाल रखा था, अपनी आंखें मूंद रखी थी, उस पर नई जानकारियां मिली हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और आज के लिए सबसे बेहतरीन चीज जो आप सभी कर सकते हैं वो यही है कि आपके भोजन की मात्रा को संतुलित और संयमित करना सीखें। कोई चीज आपको अच्छी लगती है इसे ज्यादा मात्रा में न खाएं, संतुलित आहार पर ध्यान दें। अगर चीनी सीधी मात्रा में अगर आप खा रहे हैं तो उन चीजों से बचें, फलों को खाना शुरू करें, सब्जियों को खाएं और अनाज जो घर में है, जो रोटी चावल बनता है उस पर ध्यान दें और ज्यादा मात्राओं में फलों और सब्जियों से अगर आप शुरुआत करते हैं तो ये बेहतर होगा। और भी कुछ विषयों पर चर्चा लेकर अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। आज इन सभी विषयों पर डॉक्टर राहुल मोदी जी ने जानकारी दी। आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से डॉक्टर साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज आप हमारे साथ जुड़े।
0: धन्यवाद। ओम शांति।
1: दोस्तों आज की बातचीत में बस इतना ही। कल फिर सहज स्वास्थ्य में मुलाकात होगी। अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए हम सब एक नए मुहिम पर हैं। अगर हम ये छोटी छोटी कोशिशें करेंगे तो सिर्फ हम अपने आप को स्वस्थ नहीं रखेंगे, हम अपने आने वाली पीढ़ियों और अपने भारत को और पूरे विश्व को एक स्वस्थ विश्व बना सकते हैं। आज की बातचीत में जो चीजें सीखी हैं वो सब आप आजमा कर देखेंगे, ऐसी शुभ आशाएं हैं। कल फिर मिलेंगे। रेडियो मधुबन पर कार्यक्रम जारी रहेंगे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत है। हैप्पीनेस इंडेक्स की जहां हम बात कर रहे थे बहुत सी चीज़ें सामने आई और जब स्ट्रेस को देखा तो उससे जुड़े हुए कई एस्पेक्ट्स आए थे। ऐसा ही एक एस्पेक्ट हमारे जीवन का है जिससे हम अभी तक पार नहीं पा रहे और कई बार उसे जस्टिफाई करते हैं और वो है हमें गुस्सा आना, एंगर। एंगर मैनेजमेंट पे बहुत से हमने क्लासेस अटेंड किए हैं, बहुत से सेमिनार सीखे हैं, लेकिन फिर भी इनहेरेंटली जो गुस्सा जाना चाहिए वो नहीं जा पाता और कई रूपों में फिर अगर हम वो जो बाहर एक्सप्रेस करते थे वो नहीं कर पा रहे तो कई और रूपों में वो मैनिफेस्ट होता जा रहा है। इस कौन सा ऐसा बिलीफ सिस्टम है जो एंगर से जुड़ा हुआ है जिसको हमें चेंज करना है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, जो हमें डिप्लीट करती हैं, जो सारी फीलिंग्स जो कहीं ना कहीं वो परेशानी का सबब बनते हैं, क्योंकि अब हमने समझा हैप्पीनेस या लव या पीस या कंटेंटमेंट जो है वो एक एस्पेक्ट मेरे फील करने का और उससे जुड़ा जितने भी बाकी एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो एंगर था, स्ट्रेस था, जेलसी है, फियर है, वो एक नेगेटिव। सो नेगेटिव को कन्वर्ट करना है हमें पॉजिटिव में। आज बात करते हैं एंगर की। व्हाई इज इट दैट वी आर रियली अंडरस्टैंडिंग कि एंगर इज नॉट गुड, बट अगेन वो
1: डू यू रियली फील एंगर इज नॉट गुड?
0: आई फील कंप्लीटली, आई टोटली कंप्लीट। देयर वाज अ टाइम व्हेन आई नेवर यूज्ड टू फील, आई यूज्ड टू फील इट्स जस्टिफाइड,
1: राइट।
0: लेकिन अब मेरे को हर बार ये लगता है जब भी मैं गुस्सा करती हूँ या मैं किसी और को देखती हूँ, एक्चुअली किसी और को देखना जब शुरू करते हैं ना गुस्से में, तब बहुत क्लियरली रियलाइजेशन होता है कि व्हाट इज इट, आई मीन यू नो, इट कुड हैव बीन हैंडल्ड डिफरेंटली।
1: एब्सोल्युटली। सी, दिस इज सच अ डिफरेंट नाइस वे ऑफ लुकिंग एट इट कि चाहे कितनी भी बात बड़ी हो जाए लेकिन जैसे ही हम किसी और को गुस्से में देखते हैं हमें उसका गुस्सा लॉजिकल नहीं लगता, कभी भी। हम कहते हैं ये बिना बात के इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, मतलब, एंड फिर हम उनको कहते भी आप गुस्सा क्यों कर रहे हो, ये बात ही आप तो आराम से भी। नेवर हैव वी एवर फेल्ट कि किसी का भी गुस्सा जस्टिफाइड है, वी फील कि ये नेसेसरी नहीं है, इसके बिना भी हो सकता है। एंड दैट मीन्स द सेम अप्लाइज टू मी कि किसी भी परिस्थिति में मेरा गुस्सा जस्ट, एंड गुस्सा कैन कम इन डिफरेंट फॉर्म्स, यू नो, गुस्सा जरूरी loud explosion हो ये necessary नहीं है।
0: It goes deep in, you know.
1: Yes, it is something holding back, पकड़ के रखी है बात, लेकिन अंदर ही अंदर
0: वो सिमर करते रहना, you know, that's again वो अंदर अंदर जो वो सिमर हो रहा होता है।
1: Yeah. So इसको भी अगर हम सचमुच में happiness really create करना चाहते हैं तो one thing we will have to remember कि happiness and anger ये कट्ठे कट्ठे नहीं चल सकता है। तो इसमें हमें अपनी बिलीफ को चेक करना पड़ेगा कि हैप्पीनेस नेचुरल है या एंगर नेचुरल है। तो दोनों में से हमें अब चूज करना पड़ेगा क्योंकि दोनों की आपस में नहीं बनती, वो इकट्ठे नहीं रह सकते आपके अंदर। नाउ यू चूज। अब हो क्या रहा है, वी आर चूजिंग एंगर क्योंकि हमने अपने आप को कहा कि इससे काम होता है, इससे लोग मेरे कंट्रोल में रहते हैं, इससे कोई बिगड़ता नहीं है, यू नो, लोगों के अंदर मोटिवेशन, ये सारे जो हमने अपने आप को बिलीव्स दिए, तो व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू, वी आर चूजिंग एंगर। अब दोनों के बीच में अगर हमें चूज करना पड़ा तो आज हमारे जीवन में प्रैक्टिकल दिखाई देता कि हमारी जीवन खुशी के बिना चल रही है लेकिन गुस्से के बिना
0: चल नहीं पा रही ना?
1: चल नहीं पा
0: रही। बिना गुस्सा की मैंने कितने दिन कोशिश की कि गुस्सा ना करूं, काम नहीं हुआ,
1: काम नहीं हुआ। तो हमने क्या किया कि जब दोनों की ऑप्शन हमारे सामने आई हमने किसको चूज कर लिया,
0: गुस्से
1: को। तो अगर चूज किया है तो फिर उसके साथ जीवन जीना होगा ना। आपके पास दो आए थे कि आपने किसके साथ अपना जीवन जीना है, तो आपने चूज किया गुस्सा। अब जी रहे हैं गुस्से के साथ, चूज भी गुस्सा किया, और गुस्से के साथ जीते जीते मांग किसकी कर रहे हैं,
0: खुशी,
1: मुझे खुशी चाहिए। तो फिर गो गिव योर लिव योर लाइफ विद हैप्पीनेस, बट नो, आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ विद एंगर, बट आई वॉन्ट हम रह सकते हैं लेकिन दोनों चीजें कच्चे नहीं रह सकती। जिस दिन आपने गुस्से को ये रियलाइज कर लिया कि इसके बिना मेरा जीवन चल सकता है, इसके बिना मेरा जीवन बहुत अच्छा चल सकता है, सिर्फ चल सकता है मतलब आई एम नॉट ड्रैगिंग इट, बहुत अच्छा चल सकता है, उस दिन आपको खुशी क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी। खुशी तो आपका, खुश तो हम ऑलरेडी हैं, हम अभी खुश हैं। व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली, आई डोंट हैव टू क्रिएट हैप्पीनेस बिकॉज हैप्पीनेस इज नेचुरल। राइट नाउ आई एम हैप्पी, बट राइट नाउ अगर कुछ हो जाए जिससे मैंने गुस्सा क्रिएट किया तो फिर मेरी हैप्पीनेस जो थी वो
0: चली गई।
1: क्योंकि उसकी प्लेस में रिप्लेस हो गया गुस्से से. बैठकर कभी खुशी क्रिएट नहीं करनी पड़ रही है. इवन दो वी बीन सेइंग दैट वी आर क्रिएटिंग आवर ओन हैप्पीनेस, वी आर नॉट क्रिएटिंग इट, इट्स ऑलरेडी देयर. वी आर क्रिएटिंग एंगर, वी आर क्रिएटिंग पेन, वी आर क्रिएटिंग हर्ट. एंड जैसे ये क्रिएट हो गए,
0: देन यू हैव टू क्रिएट हैप्पीनेस अगेन.
1: That is what. Otherwise, अगर हमने ये ध्यान रख लिया कि गुस्सा नहीं क्रिएट करना, तो हमें कोई बैठ के खुशी क्रिएट नहीं करनी है.
0: हाँ, एक्चुअली अगर हम सारा दिन में देखें तो हम नॉर्मल जब होते हैं
1: तो नॉर्मल
0: स्टेट में होते हैं.
1: नॉर्मल में क्या होते हैं? हैप्पी मीन्स स्टेबिलिटी. तो नॉर्मल होते हैं तो स्टेबल है, लेकिन स्पाइक आया कोई तो वो स्ट्रेट लाइन डिस्टर्ब हो गई. स्ट्रेट लाइन क्रिएट नहीं करनी है. दिस इटसेल्फ इज अ वेरी बिग लिबरेशन कि मुझे खुशी के लिए कुछ नहीं करना है. आज तक हम सब कुछ खुशी के लिए कर रहे थे. खुशी ऑलरेडी है एंड दैट्स व्हाई वी क्रिएट द थॉट एवरी मॉर्निंग, आई एम अ हैप्पी बीइंग, आई डोंट हैव टू क्रिएट हैप्पीनेस, आई डोंट वॉन्ट हैप्पीनेस, आई डोंट नीड हैप्पीनेस, इट्स ऑलरेडी देर. हैप्पीनेस, पीस, शांति, सुख, प्रेम, पवित्रता, ये हर आत्मा का नेचुरल स्वभाव है. और नेचुरल मतलब जिसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता. तो हमें अब सिर्फ सारा दिन क्या ध्यान रखना है कि हम कुछ कुछ अननेचुरल ना क्रिएट कर दें. और उसके लिए हमें ये अपने जो बिलीफ्स हमने क्रिएट किए हुए हैं बहुत पक्के जो बना दिए, कि एक तो गुस्से से काम होता है, गुस्से से हम औरों को मोटिवेट कर सकते हैं. सो दिस इज़ अ क्वेश्चन मार्क कि बच्चों को हम गुस्से से मोटिवेट करते. बच्चों को कभी भी अपने आप से पूछो, बच्चों को डांटा और फिर कहाँ पढ़ने जाओ? तो बच्चे डांट सुने, अगर किसी को भी डांटा जाएगा तो उसके बाद उसकी स्थिति कैसी होगी? अब डांट खाने के बाद बच्चा पढ़ने बैठे, हाउ वुड ही स्टडी? इफ समवन शाउट्स एट
0: मी, हमारे साथ हाँ करें अगर तो हम नहीं,
1: और फिर हम अभी वी जस्ट हैव टू पुट आवरसेल्फ इन दैट पोजीशन कि किसी ने, और किसी ने भी नहीं, वो जो सबसे मेरे लिए
0: उसमें पता है इतना कंटिन्यूस, फिर दिमाग में वही सारी चीजें चल रही होती है.
1: एग्जैक्टली. सो अब हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि वो लोग जो मेरे लिए जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट हैं, उन्होंने मुझे डांटा और वो डांट सुनने के बाद अब मैं पढ़ने बैठी हूँ.
0: I can actually imagine what happens to the child, you know.
1: But we are doing it day in, day out. वो भी कभी कभी नहीं हो रहा है. This is a ritual जैसा हो गया है जो हर घर के अंदर रोज क्रिएट हो रहा है. होमवर्क करना है, होमवर्क कराना है तो उसका तरीका कौन सा है? एंड फिर पेरेंट्स ने ये बिलीफ ही बना लिया है कि गुस्से के बिना तो कोई पढ़ता ही नहीं है. तो वो दूसरा कोई मेथड ट्राई भी नहीं करते हैं, सीधा अच्छा एक बार कहेंगे, एक बार प्यार से बोला, दो बार प्यार से बोला, मैं कितनी बार प्यार से बोलूं? अब ये सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, मेरे लिए भी बहुत डिप्लीटिंग है क्योंकि मुझे रोज पढ़ाना है. जो काम हमें रोज करना है, अगर हमने उसको ये डिप्लीटिंग एनर्जी के साथ एक फिट कर लिया अपने लाइफ में कि इसके लिए तो गुस्सा करना ही पड़ेगा, व्हाट एम आई टेलिंग मायसेल्फ कि रोज तुम्हें इस बात पे गुस्सा तो करना ही करना है. अब रोज शाम को गुस्सा करेंगे तो हालत कैसी हो जाएगी? और करते करते करते फिर वो मेरा बन गया संस्कार. इसी तरह ऑफिस में अब गुस्सा करना है, एक तो नहीं है लोग ऑफिस में, पांच हैं, दस हैं, हर एक अपनी अपनी स्थिति से काम कर रहा है, लेकिन गुस्से से ही काम होगा. आई मीन समटाइम वी हैव टू स्टॉप एंड आस्क आवरसेल्फ व्हाट आर वी ट्राइंग टू से व्हेन वी ट्राइंग टू से कि गुस्से से ही काम होगा. व्हाट आर वी ट्राइंग टू से? हम क्या मैसेज अपने आप को देने की कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाला मेरी बात तब मानेगा
0: जब मैं एबनॉर्मल होंगे, जब मैं नॉर्मल नहीं होंगी, कुछ अलग तरह से रिएक्ट कर रही हूं.
1: जब मैं आउट ऑफ कंट्रोल चली जाऊंगी तो सामने वाला मेरे कंट्रोल में आ जाएगा, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल मायसेल्फ. या सामने वाले को अपने कंट्रोल में लाने के लिए मेरा आउट ऑफ कंट्रोल जाना
0: जरूरी
1: है. हाउ इज इट लॉजिकली? आई मीन जस्ट लॉजिक डिफाइज इट, जस्ट डिफाइज एवरीथिंग. हाउ इज इट पॉसिबल? एक रिलेशनशिप के अंदर अगर हमें एक दूसरे के साथ अच्छा संबंध रखना है, सो व्हाट इज द बेसिक वैल्यू दैट्स नीडेड? ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट. अब ये ट्रस्ट और रिस्पेक्ट के बीच में एंगर कहाँ फिट होगा? कहाँ फिट हो रहा है? इट जस्ट डजंट फिट. एंड जैसे ही हमने किसी से गुस्से से किया, रिस्पेक्ट
0: अपने आप आने लगती है ना. फिर यही तो मैं कहना चाहती थी. नो बट दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से. आई जस्ट रियलाइज दैट यू नो कि रिस्पेक्ट
1: गुस्सा करने से रिस्पेक्ट आती है.
0: आई कुड एक्चुअली नो बट आई कुड विजुलाइज ऑल द पीपल, बॉसेस, पेरेंट्स, यू नो टीचर्स, एवरीवेयर उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं. जो रिस्पेक्ट वो डिमांड करते हैं, जो वो चीज़ वो डिमांड कर रहे होते हैं, जो एक्सपेक्ट कि ऐसा होगा, वो सिर्फ पूरा वो एटमॉस्फेयर वैसा बना के they see that that work starts happening.
1: Work starts happening. We are not denying that work will start happening.
0: ऊपर से जो respect है वो भी नजर आने
1: लगती है. Fear है. Is fear and respect the same thing? Hmm. Anger will always create that energy जो सिर्फ मुझे नहीं deplete करती, लेकिन साथ वाले को भी deplete करती है. And trust and respect. आप किसी भी office में देख लो, जहाँ senior बहुत उस habit में है गुस्सा करने के, तो सारे जो उनके अंडर काम करते हैं वो उनके बारे में सामने तो यस सर करेंगे, पीछे तो वो रिस्पेक्ट का क्या फ़ायदा. आई मीन इट्स जस्ट दैट प्रॉब्ली ये कहीं हमारी सेल्फ इस्टीम को हम समझते हैं कि बूस्ट करता है कि एटलीस्ट मेरे सामने इसने यू नो मेरी बात मान ली यस सर का. जैसे ही मैं बाहर गया दरवाज़ा बंद हुआ आपस में. सो इज दिस रिस्पेक्ट व्हेन वी आर जस्ट टॉकिंग अगेंस्ट द बॉस? रिस्पेक्ट वो होती कि चाहे वो हैं चाहे वो नहीं है,
0: अंदर से हमें अच्छा फील होता.
1: लेकिन वो अच्छा फील मुझे कब होगा? जब उनके साथ इंटरेक्शन में हमारी अच्छी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है. वी कैन नेवर एक्सपेक्ट कि जिनको हम दर्द वाली पेनफुल एनर्जी भेज रहे हैं हर टाइम वो हमारे लिए अच्छा सोचे. हाउ इज इट पॉसिबल? आई हैव नॉट गिवन देम दैट एनर्जी. आई विल हैव टू गिव देम द राइट एनर्जी फॉर देम टू थिंक राइट. उतने स्ट्रॉन्ग बहुत कम हैं हम जो हम डांट सुनते जाएं वो
0: और हम अच्छा फील करते हैं. एक्चुअली देन वी स्टार्ट अवॉइडिंग देम आल्सो ना.
1: नेचुरल
0: हम उनका बॉस का मूड देखकर मम्मी का मूड देखकर जाएंगे. सो अगेन ये मैनिपुलेशन हो जाता है.
1: दिस इज नॉट रिस्पेक्ट. सी अगर रिस्पेक्ट मींस कि आप मुझे एक्सेप्ट करते हैं, अगर आप मुझे एक्सेप्ट करते हैं आई विल बी ऑलवेज ओपन टू कमिंग टू यू. मतलब मेरा जब मन चाहे और मेरे अंदर जो है आई विल बी एबल टू शेयर विद यू. लेकिन दिस इज फियर कि मुझे आपसे डर लगता है, मैं आपके सामने ये बात नहीं कर सकती या ये बात मुझे आपसे छुपानी पड़ेगी. आज ऑफिस कल्चर में ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है? ट्रांसपेरेंसी हम बोल रहे हैं मैनेजमेंट वर्कशॉप में कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. कैसे मैं ट्रांसपेरेंट हूँ अपने बॉस के साथ? जहाँ मैंने जाकर उसको बता दिया कुछ, इज ही गोइंग टू एक्सेप्ट मी और शी इज गोइंग टू एक्सेप्ट मी एज आई एम? नहीं, वो तो तुरंत ऐसे हो जाएगी, डांट पड़ेगी. तो डांट सुनने के लिए आई शुड गो एंड टेल द ट्रूथ. तब तो उल्टा गलती पकड़े जाने के बाद भी मैं क्या कर रही हूँ? मैं झूठ बोल रही हूँ. क्यों हम झूठ बोलते हैं ऑफिस में? सिर्फ उस डांट से बचने के लिए. तो एक हम झूठ बोलते हैं, दूसरा हम उसका ब्लेम किसी और पे डाल देते हैं. सर मेरी गलती नहीं थी, ये तो ना उन्होंने ऐसा ऐसा किया. दिस एक्चुअली स्पॉइल्स द एंटायर वर्क फोर्स के अंदर जो टीम स्पिरिट है वो खराब होती. लेकिन अगर बॉस डांटे नहीं तो फिर इट विल जस्ट नेवर हैपन. अगर आप किसी को देखते हैं, लेट्स से हम एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर हैं, कि एक ने गलती की, दूसरे ने उसको डांट रहा है, हम एक थर्ड पर्सन जो ऑब्जर्व करते, हमें किसकी गलती बड़ी लग रही होती है?
0: जो डांट रहा है कि डोंट डू दैट, यू नो इट्स ओके.
1: हम उसके हम क्योंकि जो दूसरा है उसको तो हम एक्सेप्ट बहुत ईजिली करते हैं कि गलती तो हो ही जाती है, या यू कुड हैव बीन स्लो, यू डिडंट फिनिश, व्हाटएवर. लेकिन जो डांट रहा है वो कभी हमें सही नहीं लगता, क्योंकि इनहेरेंट नेचर हर एक की है शांति. We are all very peaceful. तो हमें गुस्सा कभी भी अच्छा नहीं लग सकता. तो जब हमें कोई और करते हुए ठीक नहीं लग रहा, तो जिसको मिल रहा होगा सारा दिन मेरे से, वो मेरे बारे में कैसा सोचता होगा? They just can't be respect. लेकिन हम क्यों गुस्सा करते हैं? Why do we get angry? क्योंकि अंदर हमारे अंदर वो flexibility नहीं है. Inwardly यहाँ पर मेरे अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि जो बाहर हो रहा है
0: उसे एक्सेप्ट कर.
1: वो मेरी एक्सपेक्टेशंस के साथ अगर नहीं मैच होता आई एम नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट. तो ये किसकी ज्यादा कमजोरी है?
0: मुझे वो चेंज करने की, फटाफट अपने आप को अपने पूरे थॉट प्रोसेस.
1: लेट्स से मैंने आकर अपने जूनियर को कहा कि ये काम एक घंटे में पूरा हो जाना चाहिए. आई गो आउट आफ्टर वन आवर आई कम बैक एंड द वर्क इज नॉट डन. तो मैंने फिक्स किया था कि ये काम होना चाहिए एक घंटे के अंदर, लेकिन सामने वाले को डेढ़ घंटा लग गया या कई बार थोड़ा सा ज्यादा भी लग गया. सो व्हाट डू आई डू? आई इमीडिएटली, बिकॉज आई फील कि अगर मैंने गुस्सा कर दिया तो अगली बार वो काम
0: टाइम पे हो जाएगा और उसे रियलाइज हो जाएगा. तो फिर लेकिन अगर उसकी सपोज लापरवाही है, ये ही स्टार्टेड इग्नोरिंग मी या ही इज लाइक नॉट डन इट डेलिबरेटली, तब फिर क्या करें?
1: तब भी गुस्से से क्या होगा? दैट इज द क्वेश्चन. सी एम्पावर करना लोगों को, मतलब अगर आप हमेशा राइट एनर्जी भेजते हो लोगों को, आप प्यार से ही, ये एक दिन में नहीं होगी बात, चार दिन में नहीं होगी, दिस विल टेक लिटिल टाइम, कि आप प्यार से ही काम कर रहे हो, उन्होंने नहीं किया ठीक से, आप फिर भी अपना स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखो, आप फिर भी ठीक से एक्सेप्ट करो कि हो सकता है नहीं हुआ, पूछ लो, एक्सपेक्ट करो और विश्वास करो कि जो वो बात कर रहे हैं वो सच है. यू नो, पर क्या, वेयर दिस विशेस साइकिल बिगिंस, आई कम एंड आस्क यू, ये काम एक घंटे में हो जाना चाहिए था ना, आपको दो घंटे क्यों लग गए? आप ऊपर से अपना रीजन देते हो कि वो ऐसा ऐसा हो गया. मैं इमिजिएटली, पता है क्या थॉट अंदर से क्रिएट करते हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसे तो केयरलेस हैं, इधर उधर बातें कर रहे हो कि ये बैठ के जब मैं नहीं हूँगा. दिस एनर्जी आई सेंड टू यू, यू रिसीव दिस एनर्जी, दैट इज वेयर इट स्टार्ट्स फॉलिंग अपार्ट. इफ आई कैन से ओके, आई अंडरस्टैंड कि कंप्यूटर खराब हो गया होगा, आई अंडरस्टैंड कुछ हो गया होगा, नो प्रॉब्लम, आप अपना काम फिनिश करो. अगर आपने झूठ बोला भी था ना, लेकिन ये जब आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, ये रिस्पेक्ट आपको अगली बार
0: झूठ नहीं बोलने देगी और काम भी टाइम पे कर देंगे.
1: ये करना पड़ेगा, एक बार, दो बार, दस बार, ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये करने से वो रिलेशनशिप एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर खड़ा होगा. देर इज नो वे, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल कि सामने वाला आपको झूठ बोलेगा. वो अगली बार अगर नहीं भी करेगा ना काम, तो आपको सच बोल देगा, पता है सर मेरा टाइम, मेरा मूड ही नहीं कर रहा था काम करने के लिए. योर टीम शुड एक्चुअली हैव द करेज टू से दिस टू यू कि हमारा मन नहीं है आज काम करने को, इसलिए हम काम नहीं कर रहे. दे शुड हैव द करेज के फोन करके वो बोलें आपको कि आज रियली ऐसी बात है कि मैं नहीं आ सकता, बजाय कि वो सर मेरी वाइफ बीमार है, मेरे बच्चे बीमार है. हमारा एटीट्यूड की वजह से अदर पीपल आर टेकिंग टू लाइज एंड एक्सक्यूजेस. ये क्या रिलेशनशिप है जहाँ हम इतनी ईजिली एक दूसरे को फोन करके झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी गलत, सिर्फ क्यों? क्योंकि वी नो के सामने से जो रिस्पॉन्स आएगा वो नहीं आएगा. अगर आप एनर्जी फ्लो को राइट पर्सपेक्टिव में समझ गए, तो पॉजिटिव एनर्जी का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही होगा. हाँ, मेरे इंटेंशन में अगर कहीं कोई डाउट है, मिसट्रस्ट है, तो उसका रिजल्ट भी, हाँ कई बार ये हो सकता है हम ऊपर से कहते हैं चलो कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड,
0: लेकिन अंदर से सोचते हैं,
1: फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला वो विश्वास पात्र बने. वो विश्वास पात्र नहीं बनेगा क्योंकि मैंने विश्वास नहीं किया, मैंने ऊपर से मीठा बोला.
0: हाँ, अभी तो आपने ये कहा कि अगर आपको पता भी है कि वो झूठ बोल रहा है, तब भी उसे आप एक्सेप्ट करो,
1: तब भी आप उसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि जब आप वो एक्सेप्टेंस की एनर्जी उसको भेजोगे, तब वो अपने उस नेगेटिव, सी व्हाट इज हैपनिंग, सपोज यहाँ नेगेटिव कुछ है, मुझे इसको काउंटर करना है ना, आई वॉन्ट टू फिनिश. पेरेंट को बच्चे के साथ क्या करना है, सीनियर को उसकी नेगेटिविटी को फिनिश करना है, तो नेगेटिव को क्या भेजना पड़ेगा?
0: Positive.
1: हम नेगेटिव को नेगेटिव भेजते हैं, फिर नेगेटिव से हमें नेगेटिव मिलता है. पहले उसने झूठ बोला, फिर मैंने डांटा, फिर उसको मेरे ऊपर बुरा लगा, फिर उसने वो भेजा, फिर उसने मुझे क्रिटिसाइज किया, फिर मैंने उसके बारे में और उसको गुस्सा किया.
0: What It's a vicious circle, you know, continuously, yes.
1: What is happening? We're getting nowhere. And this is all in the name of कि हम अपने रिलेशनशिप को ठीक कर रहे हैं, उनको सुधार रहे हैं. कोई नहीं सुधरा, कोई नहीं सुधरा. आप अपनी तरफ से एक साइड भेजो विदाउट क्वेश्चनिंग कि दूसरी साइड से क्या आ रहा है. अगर दूसरी साइड से पॉजिटिव है, आपका पॉजिटिव तो उस पर ऐड ही होने वाला है, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव पॉजिटिव. लेकिन अगर दूसरी साइड से थोड़ा नेगेटिव भी है, तो आपका पॉजिटिव उसको क्या करेगा? धीरे धीरे धीरे उसको फिनिश करेगा. लेकिन नेगेटिव को नेगेटिव भेजा, व्हाट इज द रिजल्ट? एंड दैट्स व्हाई वी आर हेडिंग नोवेयर. काम कर रहे हैं, काम हो रहा है, लेकिन एनर्जी फ्लो सारी आपस में. एंड तब आज फिर हम इस किस बिलीफ सिस्टम पर आए, लोगों पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है. किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए आजकल, लोग तो धोखा ही देते हैं. क्यों? क्योंकि दिस इज व्हाट वी हैव बीन एक्सचेंजिंग विद ईच अदर. एंड इसका ब्लेम हमने तुरंत किस पर डाला हुआ है?
0: दूसरों,
1: औरों के ऊपर. मेरी कोई जिम्मेवारी थी? नहीं. लोग सच बोल रहे थे, मैंने अंदर से उन पर विश्वास नहीं किया. विश्वास एक बहुत बड़ी ताकत है जो दूसरे को एम्पावर करती है. ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट गो हैंड इन हैंड. इफ आई ट्रस्ट यू, दैट मीन्स आई रिस्पेक्ट यू. बट इफ आई डाउट यू, देन आई डिसरिस्पेक्ट यू. फिर ये गुस्सा कहीं फिट नहीं होगा बीच में. लेकिन अगर गुस्सा है, देन ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, दिस टू.
0: आई वांट टू टॉक अबाउट ट्रस्ट इन सेंस कि जब हम कहते हैं कि हम, मैं आपको ट्रस्ट कर रही हूँ, इसका मतलब मैं आपकी नेगेटिविटीज या वीक पॉइंट्स को देख ही नहीं रही हूँ, या मैं उन्हें देखते हुए एक्सेप्ट कर रही हूँ.
1: एक्सेप्ट कर रहे हो एंड सेंडिंग यू दैट एनर्जी ऑफ ट्रस्ट जो आपको मदद करेगी
0: उन नेगेटिविटीज को ठीक करने के लिए. इट मींस आई हैव टू सी. कई बार क्या होता है कि हम आंखें ही बंद कर लेते हैं और हम कहते हैं कि हम उस पर पूरा विश्वास है मुझे, लेकिन मैं उसकी वो वीकनेस देखना ही नहीं चाहती हूँ.
1: You know, but actually, if you really look at it as a detached observer, everyone is doing their best. हर एक अपने, ये हो सकता है कि आपका best और मेरा best same नहीं होगा. You know, आपका skill, आपकी you know, जो भी है वो same मेरे जैसी नहीं होगी. लेकिन everyone, अगर आप हर एक को ऐसे छोड़ो with the right energy, everyone is trying to put in their best. लेकिन धीरे धीरे जब ये negative energy हमारे रिश्तों में आती जाती है, ये कहीं हमें हमारे best से नीचे ले आती है. इसी को अगर एनर्जी को चेंज कर दो, दिस विल टेक यू वेरी वेरी हाई. ठीक है, हमारे ऑफिस में एक पर्टिकुलरली काम करने का तरीका है, कल से स्टार्ट करो. लेट्स क्रिएट अ डिफरेंट कल्चर, एंड दैट इज़ इस ऑफिस में बिना गुस्सा किए काम होगा. काम हो तो भी ठीक, काम नहीं हो चार दिन के लिए, कम हो जाए तो भी ठीक, हमने गुस्सा नहीं करना है. कैन वी ट्राई टू डू दैट फॉर अ फ्यू डेज? ओके, नेवर माइंड. ना थोड़े दिन काम थोड़ा सा कम हो जाएगा, नेवर माइंड. पहली बात तो होगा नहीं, कम होगा नहीं. गुस्सा करने के बाद या डांट खाने के बाद किसी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई है. तो देयर इज नो वे. और करना क्या है, ये तो नहीं करना ना कि मैंने आपको बोलना नहीं है कि काम करो, या मैंने आपको
0: खाली हाथ पे हाथ धर के बैठना नहीं है, काम तो होना ही है.
1: सपोज आपको ये काम एक घंटे में करना था, आपने दो घंटे लगा दिए. आई कैन से कनुप्रिया, आई थिंक वी शुड फिनिश दिस इन वन आवर. आई थिंक वी जस्ट टेकिंग टू मच ऑफ टाइम. बट सेइंग दैट विद अ
0: ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों किया, तुम कहाँ थे, एंड देन यू नो व्हेन वी गेट एंग्री वी एक्चुअली क्या क्या बोल देते. इट मींस समवेयर आई फील कि वो हमारे अंदर चलता होगा,
1: बहुत अक्यूमुलेटेड है. तब तो वो सारा ऐसे निकल आता है. इतना सुनने के बाद किसका मन करेगा काम करने के लिए, किस थॉट्स के साथ हम काम करेंगे. हमने ये सोच लिया कि ये करने से ना सामने वाला बहुत जल्दी जल्दी बहुत अच्छा और बहुत एफिशिएंटली काम करेगा. अपने ऊपर डालो कि जब मैं डांट खाता हूँ किसी से तो कितना एफिशिएंटली काम करता हूँ उसके ऊपर. इट्स अ बिग,
0: बट बेसिकली ये हमने अपने आप को प्ली दी हुई है कि हम गुस्सा करने से काम होता है बेसिकली, क्योंकि हमने उनके लिए बहुत सारी बातें सोची हुई होती है.
1: ये हम किसी भी ग्रुप में पूछते हैं लोगों से कि अच्छा आपको काम करवाना है तो गुस्से से करवाना है, कोई बात नहीं. लोग काम नहीं करते ना आजकल प्यार से. अगर आपसे किसी को काम करवाना है
0: तो कैसे करवाए,
1: तो आपसे वो कैसे करवाए? तो कहते हैं मेरे से तो प्यार से करवाए. अच्छा आपसे क्यों प्यार से करवाए? क्योंकि मैं कर दूंगा. इफ 50 पीपल आर सिटिंग इन द रूम, एवरीवन सेज मेरे से जो मेरा बॉस करवाए ना प्यार से करवाए क्योंकि मैं कर दूंगा. डोंट यू थिंक दैट इज इनहेरेंट नेचर ऑफ एवरीबडी? देन इट इज ऑफ एवरीबडी.
0: प्यार से मांगोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगा, ऐसे लोग कहते हैं.
1: इट इज लाइक दैट. लेकिन प्रोवाइडेड आपने रियली प्यार से किया. एक है ऊपर से मीठा बोलना, दैट इज नॉट प्यार से करना.
0: मैं आपकी बॉस हूँ, मैंने बहुत सारी चीजें ना उस टाइम पर नहीं कही लेकिन मैंने अपने साथ रख दी गई, और फिर गुस्सा होते ही मुझे वो छूट मिल जाती है, मैं आपको कुछ भी कह सकती हूँ.
1: लेकिन जो आपने रखते गई ना मेरे लिए, तो वो सिर्फ जब आपने गुस्सा किया तब मेरे पास नहीं पहुंचा, वो पहले मेरे पास सारा दिन पहुंचता है. आप दैट इज वाई एनर्जी. यू सी मेरा रिश्ता आपसे ऑलरेडी टूट रहा है क्योंकि आपने मेरे बारे में रोज इतना पकड़ के रखा हुआ है आपने. तो मुझे आपके कॉन्टैक्ट में भी नहीं आना है. आप दूसरे देश में भी बैठे हो ना तो भी आपकी सारी एनर्जी मेरे पास पहुंच रही है.
0: और उसके बाद क्या, मैं एक और भी चीज करती हूँ कि मैं बाद में आपसे कहती हूँ कि मेरा ये मतलब था नहीं, लेकिन क्योंकि गुस्से में था तो इसलिए मेरा ये निकल गया.
1: एंड वी ऑलवेज टेल ईच अदर डोंट टेक मी सीरियसली.

0: Obviously, हाँ, वो मैं उस टाइम गुस्से में था.
1: सो इट मीन्स समवेयर वट एवर आई एम सेइंग इन एंगर इज एक्चुअली वट आई एम थिंकिंग.
0: एब्सोल्युटली नेवर बिलीव एनीवन व्हेन दे से कि अगर मैं वो मैं गुस्से में बोल दिया तो गलती से था. दैट इज वट दे एक्चुअली थिंक एंड फील. इट्स जस्ट दैट उनका वो कन्वर्टर काम करना बंद कर जाता है,
1: चिलमन हट गई, वो
0: सब कुछ निकल आता है. लेकिन वो क्यों बोलती, वो झूठ नहीं बोलते एक्चुअली. जब हम कहते हैं ना किसी को कि मैं ये एक्चुअली फील नहीं कर रहा था, ये मैंने गलती से बोल दिया, उनको खुद ही नहीं पता होता. हमें खुद ही नहीं पता होता
1: कि हम दूसरे के बारे में,
0: दूसरे के बारे में सारा दिन क्या क्या क्या क्या सोचते हैं. वो तो जब बाहर निकल आता है ना इस तरह से, देन वी आर सरप्राइज्ड कि ये हमने क्या बोल दिया. एंड देन वी से डोंट बिलीव व्हाट आई सेड, दिस इज नॉट व्हाट आई मीन,
1: आई डोंट बिलीव, यू नो,
0: बिकॉज़ आई डोंट बिलीव इट इज, इट कम्स एज अ शॉक टू मी कि व्हाट डिड आई से, मैं इनके बारे में ऐसा तो सोचती नहीं बिल्कुल भी. एंड देन आई से प्लीज आप भूल जाओ उस बात को, यू नो वी ऑलवेज गो प्लीज आप भूल जाओ, मेरा वो मतलब नहीं था. देखो रिश्ता वो 5 मिनट के गुस्से पे बनता और बिगड़ता नहीं है. रिश्ता तो ये जो मेरी कलेक्शन ऑफ थॉट्स है एक एक के प्रति, उस पर बनता है. मैं एक बॉस हूँ, मैं अपने कमरे में बैठा हूँ, सारा दिन चेक कर रहा हूँ, अगर मैं हर एक के प्रति ये सोचता रहूँ बैठ के, पता नहीं काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, ये लोग तो बहुत धीरे करते हैं, इनसे तो कुछ नहीं हो सकता.
1: वॉट
0: एम आई डोंट हैव टू से एनीथिंग, आई डोंट हैव टू से एनीथिंग,
1: इनफैक्ट कॉन्शियसली भी नहीं क्रिएट कर रहे होते. It's like somewhere, so it means, my God, we don't know ourselves actually.
0: Yes, that is why awareness of what I'm thinking is so important, because my own quality of life aur mere ye sare rishte and my work culture, my family culture, sab kuch meri ek ek thought par dependent hai. Hum usko words par dekhte jab wo bahar nikal aata. Relationship words pe nahi ban raha hai. Ye sara din jab hum bhej rahe hain, agar main sara din apni team ke bare mein aise thoughts rakhu, fir main kitna bhi unke sath achhi tarah se baat karu, it doesn't click. It will not happen.
1: I'll have to be very very careful ki trust या प्यार जो है वो अंदर से शुरू होने वाला है. मतलब मुझे बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि मैं सबके लिए क्या सोच रही हूँ.
0: और अगर ट्रस्ट और रिस्पेक्ट पर काम कर रहे हैं तो गुस्सा कभी आएगा ही नहीं. इट जस्ट वोंट कम, इट विल नॉट हैपन.
1: ट्रस्ट इन द सेंस कि वो ठीक ही कर रहा है. कई बार होता है कि हम अंदर से ये सोच रहे होते कि वो गलत कर रहा है और हम कहते नहीं है, क्योंकि उस वक्त हमने कहना नहीं होता कि हम माहौल खराब नहीं करना चाहते, लेकिन वो हमें सोचना ही चाहिए कि वो ठीक कर रहा है.
0: एंड अगर आप इस थॉट से जाओगे ना कि वो अपने एप्टीट्यूड से ठीक ही कर रहा है, अगर आप जाके उसको कुछ कह भी दोगे ना अभी, तो उसको बुरा नहीं लगेगा. यू नो इट नेवर फील्स बैड इफ इट इज विद द राइट एनर्जी एंड विद आई ट्रस्ट यू. बोलने की चीज नहीं है ये, आई ट्रस्ट यू. लेकिन अंदर से इफ आई ट्रस्ट यू कि आप राइट कर रहे हैं, मैं आपको कुछ भी कह दूं ना उसके बाद, कि जो आपके काम पर एक कोई कमेंट भी है, या मैं आपको ये भी कह दूं ना कि आपने जो ये काम किया ना सारा, ये तो कुछ भी ठीक नहीं, आज तो सारी आपकी गलतियां हो गई हैं, लेकिन फिर भी आई ट्रस्ट यू कि आपने उस दिन अपना बेस्ट उसमें लगाया था. दिस इज टू डिफरेंट थिंग. आई ट्रस्ट कि आपने अपना बेस्ट लगाया था, लेकिन एक्चुअली सारी गलतियां हो गई हैं आज. यू विल नॉट फील बैड, यू विल से ओ आई एम रियली सॉरी, आई विल डू इट ऑल ओवर अगेन, दैट्स ऑल. रिलेशनशिप पे उसका कहीं असर नहीं पड़ता, लेकिन हमारा फोकस सिर्फ था गलतियां कर दी. ये तो है ही ऐसे केयरलेस है, इनका ध्यान ही नहीं रहता, ये आपस में
1: कहां लगे रहते हैं, क्या कर रहे थे. अच्छा, ये सारा कुछ हमारे अपने अंदर चल रहा है. थैंक यू सो मच सिस्टर शिवानी, अमेजिंग द वे इट हैज कम आउट.
0: थैंक यू सो मच
1: शांति. अब आपको भी चेक करने की जरूरत है सचमुच में. और उसमें एक बहुत छोटा सा तरीका है कि जैसे ही गुस्सा आए किसी और को देख ले, या जब भी कोई और गुस्सा कर रहा है उसे जब जस्ट ऑब्जर्व करें और फिर अपने ऊपर लागू करें. और जो जो हम गुस्से में बात बोलें, हमें कभी भी अपने आप को धोखा ना दें कि हम ये नहीं सोचते हैं. तो इसीलिए सोच बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सोच क्या रहे हैं. कोई सवाल, कोई आपके मन में ऐसी शंका उठ रही है, आप हमारे साथ शेयर करें, हमें फ़ोन करें या फिर ईमेल कर सकते हैं. हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 999-344-555, 999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही. आने वाली कड़ियों में कुछ और बातें करेंगे. आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.

बचपन की सुरक्षा है एक खास जिम्मेदारी, इस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति के साथ उन्हें लंबे समय के पुनर्वास के लिए मदद भी करता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। बच्चे या बड़े जो उनकी सहायता करना चाहते हैं डायल कर सकते हैं 1098 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे विचार हैं। सोच को सकारात्मक और रचनात्मक बनाएं। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: श्रावण मास होता है तो श्रावण मास के सोमवार का विशेष महत्व होता है और उसे पुण्यदायक सोमवार भी कहते हैं। और सोमवार का संबंध सीधा चंद्रमा से माना जाता है। चंद्रमा मन और भावनाओं का प्रतीक है। इस दिन पूजा, ध्यान, आत्मचिंतन करने से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। सोमवार नए सप्ताह की शुरुआत का दिन होता है, इसलिए लोग नए कार्य और लक्ष्यों की योजना बनाते हैं कि हफ्ते भर में हमें क्या करना चाहिए, क्या करना है इस हफ्ते में, उसका नियोजन इसी हफ्ते से शुरू किया जाता है। जी हाँ, हेलो जी, नमस्कार, ओम शांति।
1: हेलो जी, नमस्कार भाई जी, मैं मानपुर से गुरीलाल बोल रहा हूँ।
0: बोलिए, मानपुर से गुरीलाल भाई जी बोलिए।
1: मेरा एक गाना सर।
0: जी बोलिए, जरूर।
1: देख तेरे संसार की हालत कितना बदल गया इंसान।
0: जी जी जी जी जी,
1: ये हो जाएगा तो हमारा भी दिल खुश हो जाएगा।
0: जी जी जी जी, कितना बदल।
1: यार बड़ा नमस्कार
0: जी जी जी जी जी, अभी संसार की हालत तो बिगड़ी गई है, तो जरूर हम कोशिश करेंगे कि ये प्रदीप भजन का गीत है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। तो दोस्तों, सोमवार का आज का दिन है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं शिव के एक प्यारे से गीत के साथ इस कार्यक्रम की। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारा सा शिव का गीत। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: शिव अनादि है, शिव अनंत है। तो कितना ये प्यारा सुंदर सा गीत था दोस्तों। तो सोमवार के दिन ऐसे शिव के गीत सुनने से मन बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, नई किरण इस कार्यक्रम में हम आपको सबसे शुरुआत में एक कहानी बताने जा रहे हैं कि हमारे साथ क्या आता है। हमारे साथ सिर्फ पुण्य कर्म ही आते, इसके ऊपर एक कहानी हम आपको बताना चाहते हैं। ये कहानी जीवन का एक अमूल्य सत्य सिखाती है, धन पद और प्रतिष्ठा यह यहाँ ही सब रह जाती है, लेकिन हमारे पुण्य कर्म ही हमारे साथ चलते हैं। एक नगर में सेठ माधोदास नाम का एक बहुत धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास बड़े बड़े मकान, खेत, दुकानें और अपार धन संपत्ति थी। नगर के लोग उसकी समृद्धि की चर्चा करते थे और बहुत चर्चा होती थी, दूर दूर तक उसकी चर्चा होती थी। लेकिन सेठ को अपने धन पर भी बहुत अभिमान था। वह सोचता था, मेरे पास इतना धन है, मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। समय बीतता गया और एक दिन सेठ गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। देश विदेश के सारे वैद्य चिकित्सक को बुलाए, पर उसकी बीमारी ठीक भी नहीं हो रही थी। जब उसे लगा कि जीवन का अंतिम समय निकट है, तो उसने अपने सबसे विश्वसनीय जो मुनीम है उसको बुलाया और कहा कि मेरी सारी संपत्ति की सूची बताओ, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी संपत्ति कितनी है और मेरे साथ कितनी संपत्ति जाएगी। तो मुनीम ने कहा, मालिक, संपत्ति में से आपकी हवेलियाँ है, खेत है, दुकान है, सोना है, चांदी है, सबकी उसने सूची तैयार की, जितना उसकी प्रॉपर्टी थी। सेठ ने मुस्कुराकर पूछा, क्या ये इतने सारे मेरे साथ जाएगा? तो मुनीम कुछ समय चुप रहा और बोला, मालिक क्षमा कीजिए, इनमें से आपके साथ कुछ भी नहीं जाएगा। तो यह सुनकर वो बेचैन हो उठा, मेरे साथ कुछ भी नहीं जाएगा? मैंने तो इतनी संपत्ति कमाई, मेरे पास इतनी बड़ी संपत्ति, मेरे पास कुछ भी नहीं जाएगा। तो उसी समय एक संत का भी आगमन हो गया था। वो संत सब सुन रहा था। तो संत उसके पास आया और संत ने पूछा और बताया कि पुत्र, संसार में जाते समय मनुष्य के साथ केवल उसके कर्म ही जाते हैं, धन वैभव शरीर यही रह जाता। तो सेठ ने पूछा, तो क्या ऐसी चीज़ें जो सचमुच हमारे साथ जाएगी? संत ने उत्तर दिया, हाँ, किसी भूखे को खिलाया गया भोजन, किसी दुखी को दिया गया सहारा, किसी जरूरतमंद की सहायता और ईमानदारी से किए गए अच्छे कर्म, यही तुम्हारे साथ चलेंगे, यही तुम्हारी वास्तविक संपत्ति है। संत की बात से सेठ की आंखें खुल गई। उसने अपने जीवन के बचे हुए दिनों में गरीबों की सहायता शुरू की और उन्होंने विद्यालय, धर्मशालों का निर्माण भी किया और जरूरतमंद को ही सेवा करने लगा। खूब सेवा की, विद्यालय धर्मशालाओं को डोनेशन देता रहा। कुछ समय बाद जब उसका अंतिम समय आया, तो उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। लोगों ने कहा, आज सेठ अपने धन के कारण नहीं बल्कि अपने पुण्य के कारण याद किया जाएगा, क्योंकि संपत्ति तो यहाँ ही रह जाती है, लेकिन उसने जो विश्वविद्यालय बनवाया, धर्मशालाएं बनवाई, इतने लोगों को सहायता की, तो उस कारण उसका नाम इतिहास में अजरामर रहेगा। तो श्रोताओं, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन में कमाई हुआ धन यही रह जाता है, लेकिन प्रेम, सेवा, दया और सत्कर्म हमारे साथ चलते हैं। इसलिए हर दिन ऐसा कोई कार्य अवश्य करें जिससे किसी न किसी के जीवन में खुशी आ जाए और सदा ही पुण्य के रास्ते पर चलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए फिर से हम आपको गीत सुनाना चाहेंगे। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो, मुस्कराते रहो।
1: रुक, रुक, रुक। हेलमेट कहाँ है तुम्हारा?
2: सर वो सर
1: ओए क्या सर सर करके सर सरा रहा है भाई? आए? ओए तुम्हारे सर के लिए ही बोल रहा हूँ। ओए चेहरे से तो समझदार लगते हो, पढ़े लिखे भी लगते हो। ओए इतनी धूप है, धूल है, वो कम से कम अपने चेहरे का ही ख्याल रख लो। ओए ये चमकते हीरे जैसा चेहरा कहीं जीरे जैसा नहीं हो जाए।
2: सर आगे से ध्यान रखूंगा।
1: आगे से तो नहीं, मुझे तो तुम पीछे से निकलने वाले लगते हो हैं? पर मुझसे कोई नहीं बच सकता, क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं होलदार। कड़क, पहले वो सामने की दुकान से लो हेलमेट, फिर गाड़ी।
3: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: चांद मिश्रा, आप सुन रहे रेडियो मधुबन, सुनते रहे सुनाते रहे जन जन तक प्यार बरसाते रहे।
1: तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए फिर से हम आपको लेके जा रहे हैं कि आज के दिन का क्या विशेष महत्व है। जी हाँ, आज विश्व सागर दिवस है। विश्व सागर दिवस के बारे में हम जानकारी देना चाहेंगे कि ये प्रति वर्ष 8 जून को मनाया जाता है। समुद्र की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति जागरूकता का बढ़ाने के लिए इस दिवस की शुरुआत वर्ष 1992 में की गई थी। सन 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी ग्रह नामक फोरम में प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस मनाने के फैसले के बाद और सन 2008 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस संबंध में आधिकारिक मान्यता दिए जाने के बाद ये दिवस मनाया जाने लगा। विश्व महासागर दिवस मनाने का प्रमुख कारण विश्व में महासागरों के महत्व और उनकी वजह से आने वाली चुनौतियों के बारे में विश्व में जागरूकता पैदा करना है। इसके अलावा महासागर से जुड़े पहलुओं जैसे खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता, पारिवारिक संतुलन, समुद्री संस्थानों के अंधाधुंध उपयोग, जलवायु परिवर्तन आदि पर प्रकाश डालता है। पहला विश्व महासागर दिवस 8 जून 2009 को मनाया गया था। इसके बाद प्रतिवर्ष 8 जून को विश्व भर में विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। हम तो क्या यहाँ पर रहते हैं, शहरों में रहते हैं या गांव में रहते हैं, लेकिन सागर का भी अपना अपना महत्व है। तो इसीलिए सागर का विशेष ये महत्व हमें ख्याल में रखते हुए हमें भी ये दिवस मनाना चाहिए। ये दिवस 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी ग्रह नामक फोरम में प्रति वर्ष विश्व महासागर दिवस मनाने के फैसले के बाद ही और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संबंध में आधिकारिक मान्यता दिए जाने के बाद ही मनाया जाने लगा। महासागर हमारी पृथ्वी पर न सिर्फ जीवन का प्रतीक है बल्कि पर्यावरण संतुलन में भी प्रमुख भूमिका अदा करता है। पृथ्वी पर जीवन का आरंभ महासागरों से माना जाता है। महासागरीय जल में भी पहली बार जीवन का अंकुर फूटा था। आज महासागर असीम जैव विविधता का भंडार है। हमारी पृथ्वी का लगभग 70% भाग महासागरों से घिरा हुआ है। कितना? 70। महासागरों में पृथ्वी पर उपलब्ध समस्त जल का लगभग 97% जल में समाया हुआ है। महासागरों की विशालता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है, यदि किसी के सभी महासागरों को एक विशाल महासागर बना लिया जाए तो उसकी तुलना में पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक छोटे द्वीप से प्रतीत होंगे। मुख्यतः पृथ्वी पर 5 महासागर हैं, जो हमें स्कूल में भी पढ़ाया जाता है कि कौन कौन से 5 महासागर हैं। तो उनके नाम हम बताना चाहेंगे। पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है हिंद महासागर, तीसरा है अटलांटिक महासागर, चौथा है उत्तरी ध्रुव महासागर और पांचवा है दक्षिणी ध्रुव महासागर। महासागरों का सामाजिक, सांस्कृतिक अर्थ आर्थिक रूप से महत्व मानव के लिए इन्हें अति महत्वपूर्ण बनाया जाता है। इसलिए महासागरों के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से सन 1992 से प्रति वर्ष 8 जून को विश्व महासागर के दिवस में मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए गुड़ीलाल जी की फरमाइश का गीत हम आपको सुनाना चाहेंगे कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। जी हाँ, बहुत सुनने की सभी को गीत सुनने की बहुत इच्छा होती है। कोई प्रदीप कवि प्रदीप का चाहता है, तो कोई लता मंगेशकर का, तो किशोर कुमार का। तो इसी प्रकार से जो अच्छे अच्छे गीत हैं सभी को प्यारे लगते हैं, तो हम गीत सुनाना चाहते हैं देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान।

0: देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। जी हाँ, अभी वर्तमान में देखते हैं कि भगवान ने जो संसार रचा था कितना सुंदर था। उसने मनुष्य को देवता समान बनाकर इस धरती पर भेजा था, लेकिन क्या हो गया? लेकिन मनुष्य ने सारी सृष्टि को ही बदल डाला। अभी देखते हैं कलयुग में, वर्तमान में चारों ओर युद्ध का माहौल है। ईरान का इसराइल का युद्ध चालू है, रूस का युद्ध चालू है, तो सारी सृष्टि पर युद्ध का माहौल है। सभी महंगाई से बेचैन है परमात्मा तने तो हमारे सुख के लिए और सुख की दुनिया बनाकर भेजा था, लेकिन हम इंसानों ने उस संसार को पूरा बिगड़ डाला। सारे सुख चैन चेंज हो गए, बदली हो गए। तो इस प्रकार से हम मनुष्य ही इसके लिए जिम्मेवार हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम आपको बताना चाहेंगे कि विश्व महासागर दिवस के बारे में हम जानकारी दे रहे थे। विश्व महासागर मनाने का प्रमुख कारण विश्व में महासागरों के महत्व और उनकी वजह से आने वाली चुनौतियों के बारे में विश्व में जागरूकता पैदा करना है। इसके अलावा महासागर से जुड़े पहलुओं जैसे खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता, पारिवारिक संतुलन, सामुद्रिक संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग, जलवायु परिवर्तन आदि पर प्रकाश डालना है। हर साल विश्व महासागर दिवस पर पूरे विश्व में महासागर से जुड़े विश्व में विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाते हैं, जो महासागर के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करने की मुख्य भूमिका निभाते हैं। अपने आरंभिक काल से आज तक महासागर जीवन के विविध रूपों से संजोग हुए हैं। पृथ्वी के विशाल क्षेत्र में फैले अथाह जल का भंडार होने के साथ महासागर अपने अंदर व आसपास अनेक छोटे छोटे नाजुक परितंत्री को पनाह देता है। हेलो जी, नमस्कार।
1: जी सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग ओम शांति।
0: गुड मॉर्निंग ओम शांति। बोलिए बोलिए, सुप्रभात।
1: बस हम भी बढ़िया हैं, अच्छे हैं, बातें सुन रहे हैं, आपका कार्यक्रम चल रहा है और कई सारी बातें आप महासागर के बारे में बता रहे हैं सर। तो हमारे यहाँ कम से कम 5 शायद महासागर हैं।
0: जी, 5 ही है।
1: एक तो प्रशांत महासागर है, दूसरा है अर्कटिक महासागर है, तीसरा है हिंद महासागर है, चौथा है आर्कटिक महासागर है और पांचवा है वो दक्षिण महासागर है। तो कई सारी जो हमारे यहाँ 5 महासागर का जो वर्णन किया गया है और विश्व में आज महासागर दिन मनाया जाता है।
0: जी जी जी,
1: कह रहे हैं कि पानी हमारे कई सारे पानी है और पानी है भी हमारे कई पानी तक पिया लायक होते ही नहीं है, इसको रिफाइन करके ही पीना पड़ता है। लेकिन आज लोग कितने पानी का जो बिगाड़ कर रहे हैं, पानी दूषित कर रहे हैं, पानी का लोग ध्यान नहीं रखते हैं। देखो आज पानी का बहुत दुरुपयोग हो रहा है, जहाँ तहाँ देखो पानी लोग इसका पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं।
0: जी जी,
1: तो पानी को बचाना है, पानी बचेगा तो ही तो हम बचेंगे।
0: बराबर बराबर।
1: तो बस आज विश्व महासागर दिन है, तो आज के दिन की सबका शुभकामनाएं सर। और सोमवार है, हफ्ते की शुरुआत है, भोले बाबा का दिन है। तो बस एक गाना भी है भोले बाबा का कि मैं भूल गया कभी कभी याद रहता है लेकिन बाद में शायद वो लाइन चली जाती है।
0: यस यस, कोई बात नहीं, जब याद आता ना।
1: पूजा, हाँ मैं समझाता हूँ सर
0: जी।
1: शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, तो वही गाना है, वो लाइन है, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ।
0: जी जी जी,
1: ठीक है सर। सभी हमारे साथी मित्रों को, आपको, परिवार को, हमारे मधुबन परिवार को भी आज के दिन की शुभकामनाएं। नमस्ते सर, ओम शांति।
0: जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, ओम शांति। जैसे कि कहा गया कि सागर हमें क्या देता है, सागर हमें बहुत कुछ देता है। सागर, गहरे सागर में ही मोती मिलते हैं और सागर का पानी जब सूर्य से भाप बन जाता है और वो वही बादल बन जाते हैं, वही पानी बादल का रूप ले लेते, भाप बनकर ऊपर जाता है और वही पानी हमारे खेतों में बरसता है। तो वही पानी नदियों में आता है, वही पानी हमारे शहरों में आता है, वही पानी हम पीते हैं। तो इसलिए सागर की हमारे लिए बहुत बड़ी देन है। तो सागर के ऊपर ही हमारा संसार टिका हुआ है। तो जैसे हम कह रहे थे कि विश्व सागर दिवस मनाते हैं, महासागर के पानी का तापमान और ऑक्सीजन के बारे में हम बताना चाहेंगे। तो ऑक्सीजन का घटता स्तर समुद्री जानवरों को भी भूमध्य रेखा से दूर करने में एक साथ मिलकर भूमिका निभाते हैं, जहां ऑक्सीजन की आपूर्ति उनकी भावी जरूरतों पूरी कर सकती है। ये जानकारी एक नए शोध में सामने आई कि शोधकर्ताओं के मुताबिक पानी का तापमान ऑक्सीजन के लिए जानवरों के मेटाबॉलिक जरूरत की तीव्रता को बढ़ाता है और ऐसा व्यायाम के दौरान भी होता है, लेकिन गर्म पानी में उनके शरीर को शक्ति देने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है। ऊंचाई पर भी ऐसा ही होता है। जलवायु परिवर्तन की वजह से लगभग 2/3 श्वास संबंधी तनाव गर्म तापमान की वजह से होता है, जबकि बाकी इसलिए होता है क्योंकि गर्म पानी में से गैस कम घुली हुई होती है। वाशिंगटन विश्वविद्यालय में समुद्र विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर और इस शोध के प्रमुख कार्टिस डूस के मुताबिक, यदि आपके मेटाबॉलिज्म बढ़ते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको अधिक भोजन और ऑक्सीजन की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि भविष्य में गर्म पानी की वजह से जल में रहने वाले जीवधारी ऑक्सीजन की कमी से मर जाएंगे। सभी जानते हैं कि समुद्र में ऑक्सीजन का स्तर घटता जा रहा है, यह जलवायु परिवर्तन के साथ अधिक घटेगा। यह शोध 4 अटलांटिक महासागर प्रजातियों पर भी किया गया है। अटलांटिक कांड जो गहरे समुद्र में रहता है, अटलांटिक रॉक क्रैब जो तटीय पानी में रहता है, शार्प स्नाउट सिब्रिम जो उष्णकटिबंध अटलांटिक और भूमध्य सागर में रहता है, और समुद्र जल में रहने वाली मछली एट पाइट पर किया जाता है। यह शोध साइंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए फिर से हम आपको गीत की ओर ले जा रहे हैं। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
2: मैं हूं जनरल रिटायर्ड वीके सिंह, पूर्व सेनाध्यक्ष इंडियन आर्मी, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
0: जी नमस्कार।
1: हाँ, भूरा राम बोल रहा हूँ। और से
0: बोलिए भूरा राम जी, कैसे हो?
1: सब भाइयों को, मधुबन भाइयों को, सबको मेरा राम राम है।
0: जी जी जी जी
1: तो मेले वाला सुबह सुबह तो राम राम करो।
0: जी जी जी,
1: बातें सुन रहा हूँ आपके, अच्छे बैठ के सुन रहा हूँ।
0: जी जी जी जी।
1: अच्छा, मेरा एक भजन है, एक फिल्म वक्त का है, वक्त के दिन और जो वक्त के दिन ऐसा करे, उसका लैंग्वेज है तो सुनाएंगे तो अच्छा करेंगे।
0: उसका पहली लाइन बोलिए।
1: वक्त के दिन और क्या, वक्त के दिन और ऐसे, मतलब फिल्म वक्त का है और अच्छा भजन है वो।
0: पूरा लाइन हो तो वो ढूंढने में मजा आ जाते है। वक्त के दिन और रात,
1: अच्छा
0: ऐसा है क्या? ठीक है, जरूर जरूर हम देख कोशिश करेंगे, एक गीत मिला तो ये भी आपको सुनाने की हम कोशिश करेंगे।
1: कोई बात।
0: जी जी जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हुए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: उस नंद। हेलो जी नमस्कार।
1: हेलो जी नमस्ते।
0: बोलिए कैसे हैं आप?
1: जी ठीक है। वैसे आप कैसे हो?
0: हम भी ठीक है। और बोलिए
1: आप कौन बोल रहे
0: हैं? हम सोमनाथ भाई बोल रहे हैं। जी जी
1: ऐसे एक भजन सुनना था सर।
0: बोलिए कौन सा भजन?
1: मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा।
0: मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा। जरूर जरूर हम आपको
1: आपका शोक आपकी आवाज बहुत अच्छी है सर।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जरूर हम कोशिश करेंगे कि मन मेरा मंदिर। आपका परिचय नहीं बताया?
1: जी मैं दिव्या बोल रही हूँ। अच्छा
0: अच्छा अरे वाह। जरूर जरूर दिव्या जी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: रमेश सर जी नहीं आते?
0: रमेश सर अभी बाहर गए हुए हैं तो रमेश। हाँ तो रमेश सर जी जी जी जी जी
1: विशाल जी।
0: हाँ बाकी सभी है विशाल जी भी है तो
1: आते नहीं है उनका शो नहीं आता जी।
0: जी
1: शो नहीं आता उनका विशाल जी
0: का। विशाल जी का शो अभी नहीं आता है तो शायद शाम को होता होगा। आप उस समय सुनते मौजूद नहीं होंगे शायद। जी जी
1: आपके बिल्कुल विशाल जी जैसी लगती है इसलिए
0: अच्छा चलो अच्छा है हमारा भाग्य। हम भी कहेंगे हमारे स्टाफ को कि विशाल जी का भी बीच बीच में शुरू कर दे।
1: नहीं आपकी आवाज बिल्कुल श्याम टू श्याम लगती है जी, जी, जी, जी। मैं मुझे लगता है कि आप हो शायद वो
0: जी जी जी जी जी जी
1: थैंक यू
0: जी जी
1: सुना देना
0: जी जी सुना देंगे जरूर
1: जी
0: थैंक यू। तो चलिए दोस्तों
2: सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। सुरक्षित और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के लिए

0: मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा, कितना ये प्यारा सा गीत था। जी हाँ, ये शिव भजन अनुराधा पौड़वाल जी की आवाज़ में था। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हुए फिर से आज के दिन की विशेषता हम आपको बताना चाहेंगे। आज कौन सा दिन है? जी हाँ, आज विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस भी है। जैसे सागर का दिन है, वैसे आज विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस भी है। तो क्यों मनाया जाता है, कब से शुरुआत होगी इसकी, तो ये भी हम आपको बताएंगे। तो प्रतिवर्ष 8 जून को ये मनाया जाता है। चिकित्सा विशेषज्ञों का ये मानना है कि विश्व भर में हर दिन 1 लाख में से 10 लोग ब्रेन ट्यूमर के कारण मरते हैं। ब्रेन ट्यूमर दिवस पर विश्व के अनेक देशों में कार्यक्रम ये आयोजित किए जाते हैं, जिनमें इस बीमारी के लक्षणों और इसके उपचार के बारे में आवश्यक जानकारियाँ दी जाती हैं। ब्रेन ट्यूमर सबसे घातक बीमारियों से गिना जाता है। यानी ब्रेन ट्यूमर क्या है, कैसे होता है और क्यों होता है? तो मस्तिष्क कैंसर यानी ब्रेन ट्यूमर एक खतरनाक रोग है। समय रहते इसका उचित इलाज नहीं किया गया तो यह जानलेवा साबित होता है। हेलो जी, नमस्कार। ओम शांति।
1: अजय नमस्कार, नमस्ते। जय बोलता हूँ, जटाना से दोबारा मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बात इसीलिए कर रहा हूँ कि जो हमारे भोला राम जी ने जो एक फरमाइश की थी वक्त फिल्म की, तो वो गाना इससे था कि वक्त के दिन और रात, वक्त के कल और आज, वक्त की हर है से गुलाम, वक्त का हर से रात।
0: वक्त की दिन और रात, मोहम्मद रफी का गाना है क्या?
1: दिन और रात, हाँ, मोहम्मद रफी।
0: जी जी जी जी जी, जरूर जरूर, हम ये भी गीत सुनाने की कोशिश करेंगे। जी जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद आपका। ओके ओके। तो दोस्तों, हम बता रहे थे कि आज विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस है। तो विश्व ब्रेन ट्यूमर क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि फरमाइश थी वक्त के बारे में, तो ज़रूर हम आपकी इच्छा भी पूरी करते हैं, क्योंकि अभी वक्त हो गया है न्यूज़ सुनने का। तो न्यूज़ के पहले हम आपको ये वक्त का गाना जरूर सुनाना चाहेंगे। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद ईरान ने पहली बार इसराइल पर मिसाइल हमले किए। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना लागू होने जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार होगा।
1: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज के इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने 2018 से आयुष्मान भारत परियोजना शुरू की थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इसे राज्य में लागू नहीं किया। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद राज्य के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में बाद दोपहर 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देश भर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत 2047 का सपना जनभागीदारी, नवाचार, उद्यमिता और सामूहिक संकल्प के माध्यम से ही साकार हो सकता है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
3: NTA द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। NTA ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए NTA की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने कल नई दिल्ली में बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
4: विदेश मंत्रालय ने कहा कि गहन सभ्यतागत संबंधों पर आधारित भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। दोनों नेताओं ने कल 8वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता भी की। इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, शिक्षा, काउंसलर मामले, सांस्कृतिक और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों पर बातचीत की। इससे पहले दिन में श्री सुगियोनो ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी की आगामी इंडोनेशिया यात्रा के लिए उत्सुक हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों और महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
5: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि

0: से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
1: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
0: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य के सीमावर्ती जिलों से लगभग 4800 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध आप्रवासन एक गंभीर समस्या है और उनकी सरकार इसके लिए समन्वित प्रयास कर रही है। जम्मू के पर्यटन निदेशालय ने रामबन जिला प्रशासन के सहयोग से रविवार को गोल उपमंडल के सुरम में नरसिंहा क्षेत्र में एक दिन के गोल मेले का आयोजन किया। इसमें रामबन और रियासी जिलों के 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 2 दिन का मेगा लेवेंडर महोत्सव कल सम्पन्न हुआ। डोडा जिले में चौथी बार हुए इस महोत्सव में लेवेंडर और सुगंधित पौधों की खेती करने वाले किसानों, विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों, औद्योगिक भागीदारों, खरीदारों, विक्रेताओं और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इसराइल के रक्षा बलों के अनुसार ईरान ने इसराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। एक रिपोर्ट।
3: 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद इसराइल पर यह ईरान का पहला हमला है। हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहेंगे कि वे जवाबी हमला ना करें। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वह चाहते हैं कि ईरान बातचीत के लिए सामने आए। इसराइल ने बताया है कि वायु रक्षा प्रणाली ने 2 मिसाइलों को रास्ते में ही निष्क्रिय कर दिया। यह तनाव उस समय और बढ़ गया जब इसराइल ने बेरूत स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया। उधर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। ईरान के संसद के मुख्य अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगीर गालिबाफ ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने अमरीका पर युद्ध विराम और बातचीत के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ईरान के सशस्त्र बल किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसके दबाव के कारण ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए फिर से तैयार हुआ है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
2: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। फिलीपींस में आज सुबह 7.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। इससे कुछ तटीय क्षेत्रों में सुनामी आने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गार्रोस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में

0: इटली के फ्लेविया कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने कहा है कि मॉनसून के आगे बढ़ने के साथ देश कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर आज लू की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: मुकेश, राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण ने संसदीय समिति के राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पेपर लीक किस मामले पर सवाल पूछने पर लिखा है, संसदीय समिति ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पूछा कि पेपर लीक किसे माना जाए। जनसत्ता इसी खबर पर लिखता है, संसदीय समिति ने पूछा क्या है पेपर लीक की परिभाषा। पत्र ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 29 रुपए की बढ़ोतरी होने की भी अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। पंजाब केसरी ने इंडिया गठबंधन में तनातनी शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में बैठक आज, माकपा और झामुमो ने कांग्रेस की हरकतों पर जताई आपत्ति। हिंदुस्तान के शब्द हैं, विपक्ष मतभेदों के बीच करेगा गठबंधन। दैनिक जागरण ने विपक्षी मोर्चे में खींचतान शीर्षक से संपादकीय आलेख में लिखा है, वर्तमान में इंडिया गठबंधन पहले जितना एकजुट और मजबूत नहीं दिख रहा है। वहीं लोक सत्य ने नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल की भारत यात्रा के दौरान उनका बयान प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने मौसम का मिजाज बताते हुए लिखा है, गर्मी उमस ने बढ़ाई चुभन, आज से बारिश कर सकती है तपिश।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ध्यान मन को स्थिर करता है और आत्मा की गहराई में झांकने का मार्ग दिखाता है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: समा को।
1: हेलो
2: हेलो जी, नमस्कार।
1: हाँ नमस्ते, ओम शांति।
2: ओम शांति, बोलिए बोलिए, कैसे आप?
1: बहुत अच्छे हैं।
2: अच्छा,
1: अभी तो देखो अतीक मास चल रहा है।
2: जी जी।
1: हमारे घर के सामने एक बड़ी वारी बोलते हमारे गुजराती में, शादी ब्याह होता है तो रखते हैं। वहाँ पर रोज रात को भजन होता है, महिलाएं भजन गाती है पूरा महीना। तो मैं भी गुजराती भजन सुनना चाहती हूँ।
2: जरूर जरूर जरूर। हम कोशिश कराएंगे, कोशिश करेंगे आपका भी गुजराती भजन सुनाने की। लेकिन मिलना चाहिए। तो, जी जी।
1: हाँ, भजन का वाक्य है, मारा घर माँ तीरथ धाम मारे नथी जाऊ। तीरथ धाम पहलो तीरथ पति देव चरणों माँ।
2: मारा शुरुआत क्या है?
1: मारा घर माँ तीरथ धाम मारे नथी जाऊ। तीरथ धाम
2: जी जी जी।
1: पहलो तीरथ पति देव चरणे तेमा परमेश्वर नो वास, मारे नथी जाऊ तीरथ धाम।
2: जी जी जी।
1: हाँ, ओम वाला भजन है, मिल जाए तो सुना देना।
2: जी जी जी, मिल जाएगा तो सुना देंगे। जरूर जरूर।
1: हाँ,
2: बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपका शुक्रिया।
1: ओम शांति।
2: जी जी, ओके, ओम शांति। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हम आपको बताना चाहेंगे कि आज विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस है। जी हाँ, ये हमने कुछ बातें आपको बता दी हैं कि ब्रेन ट्यूमर क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं। हेलो जी, नमस्कार।
3: हाँ जी, नमस्कार।
2: बोलिए बोलिए।
3: हेलो।
2: हाँ बोलिए, आपको सुन रहे हैं सभी?
3: सुन रहे हैं तो बात, मैं ये समझ रहा हूँ आवाज नहीं जा रही क्या बात?
2: जी जी जी जी जी।
3: आपको नवीन किरण को
2: जी
3: जी। आज सोमवार है।
2: जी बोलिए बोलिए,
3: क्या चल रहा है? जी
2: जी,
3: सोमवार है आज, दिवस तो अच्छा है।
2: जी
3: को नमस्कार करते हैं आपको और नवीन किरण को, और सुनने से सुन रहे हैं
2: जी,
3: सभी प्रोग्राम अच्छे हैं और भी फोन लगाए हैं आपको, और सभी सुनने वाले दोस्तों को नमस्कार, ओम शांति।
2: जी
3: और
2: जी,
3: जिनका भी जन्मदिन है सभी को
2: जी जी
3: हमारी तरफ से नमस्कार, ओम शांति।
2: नमस्कार
3: और,
2: नमस्कार।
3: हमारे
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपको फोन करने के लिए।
3: जी। और आपको हमारे प्रसिद्ध कुमार जी के बारे में सुनाते हैं
2: जी,
3: कि इनका जीवन बहुत अच्छा रहा है।
2: जी,
3: आप सुन रहे हैं ना?
2: हाँ सुन रहे हैं आप, बोलिए बोलिए, लगातार बोलिए।
3: मैं समझ रहा हूँ क्या बात है, मैं ही बोल
2: रहा। नहीं नहीं, सुन रहे हैं हम, सुन रहे हैं आपको, सुन रहे हैं
3: जी,
2: मौका दे रहे हैं आपको।
3: आपकी आवाज तो प्रदीप कुमार जी के बारे में कल सुना था, उनका जीवन बहुत अच्छा है
2: जी,
3: और वो संगीत कलाकार गाने गाते थे, मगर वो किसी ऑफिस में या कहीं बैठक वो अपने हिसाब से वो करते थे, और सुबह पेपर मांगते थे और पेपर आते थे उनके, एक गुजराती आता था, हिंदी आता था, और उनकी लड़की का अलग आता, उनकी पत्नी का गुजराती आता था, वो गुजराती थे, और कहीं भी नेते ऐसे आते, नेते भी आते तो उनको जो भी कहना साफ कह देते, ऐसा नहीं कि भाई ये है कि, बहुत सीधे सैंपल आदमी थे, उनके गाने बहुत अच्छे, नेहरू जी भी रो गए थे उनके गाने में। तो उनकी कहानी बहुत अच्छी है और हमको उनके अच्छा लगा है
2: जी,
3: तो
2: जी,
3: बस उनका एक गाना लगा दिए। दूसरों के दुखड़े दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेगा, जग में किए जा भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेगा,

0: करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, तेरे दुख दूर करेंगे राम।
1: जी जी जी बहुत जी जी जरूर जरूर। ओके ओम शांति, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम फिर से आपको बताना चाहेंगे कि आज ब्रेन ट्यूमर दिवस के बारे में कुछ जानकारी दी है। तो ब्रेन ट्यूमर भारत में व्यापकता भी बढ़ती जा रही है। बचपन में होने वाले कैंसर के अध्ययन के अनुसार ब्रेन ट्यूमर लड़कियों में सामान्यता पाया जा रहा है, यहाँ तक कि वयस्क स्त्री और पुरुष दोनों लिंगों में भी पाया गया है। हालांकि स्थितियों में बीच कुछ भिन्नता भी हो सकती है। भारत सरकार ने ब्रेन ट्यूमर की रोकथाम, स्क्रीनिंग, रोग जल्दी पता लगाने का निदान और अंतिम चरण में उपशामक देखभाल उपचार प्रदान करने के लिए अनेक उद्देश्यों के प्रति राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत भी की है। जी हाँ, तो भारत सरकार का भी ये उपक्रम चालू है। और ब्रेन ट्यूमर के बारे में कहेंगे कि ब्रेन ट्यूमर किसी भी उम्र में हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर होने का सही कारण स्पष्ट नहीं है। ब्रेन ट्यूमर के लक्षण उनके आकार, प्रकार और स्थान पर निर्भर करता है। हेलो जी, नमस्कार।
2: राजू सर नमस्ते। सुरेश भाई बोलता हूँ थाना से। मैं ये गीत जो हमारा सतगुरु ने जो गुजराती गाना पसंद किया है
1: जी,
2: वो गाना इस तरह है सर। मैं आपको शुरुआत का बोल बताऊं।
1: जी जी।
2: मारा घर मारे ओ धाम, मारे नती जाओ तीर्थ धाम। मारा घर मारो धाम, मारे नती जाओ तीरथ राम। पहलू तीरथ ससरा हमारा, पहलू तीरथ ससरा हमारा। देवा घोड़ा नैनो धाम, मारे शर्मा पी तारो धाम। मारे नती जाओ तीरथ धाम, एक इस तरह का गाना है सर।
1: जी जी जी, जरूर जरूर हम कोशिश करेंगे।
2: बहुत बढ़िया गाना है। ये जो महिला है ना वो इसके लिए खास है।
1: जी जी जी जी।
2: आजकल की जो महिलाओं को सास बहू है और ससुराल की जो अनबन थोड़ी रहती है, जो सास ससुर का जो कुछ करना पड़ता है, तो आज की महिला जो बहु ये नहीं करती है कि नहीं हमको टाइम नहीं है, ऐसा कैसा है, ऐसा हो रहा है। इसीलिए वो गाना इसी तरह का है।
1: इसलिए
2: बहू ऐसे ही समझे कि मेरे घर में चारों तीरथ मेरा माँ बाप है, मेरा सास ससुर।
1: वाह वाह वाह वाह,
2: ऐसा गाना है।
1: यस यस यस यस। नमस्ते
2: नमस्ते।
1: हम कोशिश करेंगे ये गीत सुनाने की कि मारा घर माँ चारो थाम। जी हाँ, तो दोस्तों हम बता रहे थे कि आज विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस के बारे में भी, तो विश्व ब्रेन ट्यूमर के बारे में हमने बहुत सारी आपको जानकारी दी है। और कुछ जानकारी भी हम देना चाहेंगे कि ब्रेन ट्यूमर किसी भी उम्र में हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर, हेलो जी नमस्कार। हेलो, शायद फोन कट गया है। तो ब्रेन ट्यूमर के बारे में कहना चाह रहे थे कि किसी भी उम्र में हो सकता है और इसका कारण स्पष्ट नहीं है। ब्रेन ट्यूमर के

0: लक्षण उनके आकार, प्रकार, स्थान पर निर्भर करता है। वयस्कों के बीच प्राथमिक ब्रेन ट्यूमर का सबसे सामान्य प्रकार एस्ट्रोसाइटोमा मस्तिष्क का वर्नाबर्ग, और इसमें अलग अलग साइंटिस्ट्स में खोज की है। हेलो जी नमस्कार। हेलो जी नमस्कार, बोलिए। ओम शांति, बोलिए बोलिए, कैसे हैं आप?
1: सब ठीक है, आपका कार्यक्रम सुनते हैं अच्छा लगता है।
0: जी जी जी जी जी, जरूर। आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं नीरज गुप्ता बोल रहा जी, गोंदिया महाराष्ट्र।
0: अरे वाह, बढ़िया, अच्छा, इतना दूर से आप बात कर रहे हैं। क्या करते हैं आप?
1: मैं सिक्योरिटी की जॉब करता जी, 8 घंटे की।
0: अरे वाह, चलो, सिक्योरिटी का काम भी करते हैं और रेडियो मधुबन को भी सुनते हैं, तो बढ़िया, अच्छा है। जी जी जी,
1: गीत सुनना था भाई जी।
0: जी
1: गीत गीत,
0: हाँ हाँ बोलिए।
1: जानकी दादी का प्रिय गाना है, हमें बाबा मिल गया है चलते चलते।
0: जी जी जी जी जी जी, जरूर जरूर, हम ये भी कोशिश करेंगे आपको ये गीत भी सुनाने की। हाँ हाँ चलेगा। तो पहले फरमाइश थी गुजराती गाना, तो हम वो गुजराती गाना की फरमाइश पूरी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको आप फोन करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, लेते एक छोटा सा ब्रेक। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कराते रहो।

0: के साथ जो मन को दे एक दर्पण, ये है नई किरण। बीता हुआ कल हो या फिर आज, हर बात नए अंदाज के साथ। जो मन को दे एक दर्पण, ये है नई किरण।
1: तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए फिर से हम आपको बताना चाहेंगे कि आज किन किन लोगों का जन्मदिन है उनके बारे में। जी हाँ, आज यम.पी. जबीर का जन्मदिन है। भारतीय एथलेटिक है वो। उन्होंने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में भारत की ओर से 400 मीटर बाधा दौड़ में प्रतिभाग लिया था। 23 जुलाई 2021 से शुरू हुए टोक्यो ओलंपिक में एमपी जबीर ने विश्व रैंकिंग के माध्यम से ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई किया था, लेकिन वह कोई पदक नहीं जीत सके। एमपी जबीर को वर्ल्ड एथलेटिक की रोड टू ओलंपिक रैंकिंग में 34वां स्थान मिला था, जहां 40 एथलीटों ने टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किया था। 29 जून 2021 को पटियाला में संपन्न हुए इंटर स्टेट एथलेटिक चैंपियन में भी एमपी जबीर ने 400 मीटर बाधा दौड़ में 49.78 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक जीता था। एमपी जबीर ने 11वीं कक्षा में ही दौड़ की रुचि लेना शुरू किया था, लेकिन उन्हें कुछ आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। हालांकि उनके पहले कोच अजय ने उनका खर्चा उठाया था। उन्होंने अपने हाई स्कूल के दिनों में अजय के निर्देशन में प्रशिक्षण लिया, लेकिन बाद में भारतीय नौसेना में शामिल हो गए और वहां अभ्यास करना शुरू कर दिया। फिर वो 2016 में पहली बार राष्ट्रीय शिविर में शामिल हुए और कुछ अनुभवी कोचों के अधीन उचित प्रशिक्षण प्राप्त भी करना शुरू किया। पूर्व रूसी ओलंपियन गेलिना बुखारिना ने पिछले कुछ वर्षों में एमपी जबीर सहित भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीटों को प्रशिक्षित किया है। उन्होंने पाया कि हर्डलर का रवैया सही था, लेकिन उनकी तकनीक सही नहीं थी और उसे ठीक करने में उन्होंने मदद की। इसके परिणाम कुछ ही समय में नजर आने शुरू हो गए कि एमपी जबीर ने 2017 एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत लिया। बुखारिया ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया था कि वह जब कांस्य पदक के साथ रात को लगभग 12 बजे मेरे कमरे में आया, कहा कोच पदक यहाँ है। तो कोच को भी पदक देने के लिए रात को 12 बजे अपने कमरे में गया और कितनी खुशी थी कि अपने जो मास्टर है उनको दिखाने के लिए उस समय जाके बता दिया। एमपी जबीर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में 400 मीटर बाधा दौड़ में भाग लेने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलेटिक रहे। ट्रैक एंड फील्ड दिग्गज पीटी उषा 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक में 400 मीटर बाधा दौड़ में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला थी। सहायक से उषा और जबीर दोनों भारत के केरल राज्य से ही आते हैं। एमपी जबीर ने भारतीय नौसेना और सर्विसेज का प्रतिनिधित्व करते हुए कई आयोजनों में भी भाग लिया था। वो भारतीय नौसेना में नौकरी करते हैं और वर्तमान में भारत के कोची में मालाबार तट पर तैनात है। टोक्यो 2020 के लिए खुद को तैयार करने के लिए नौसेना प्रशिक्षण टीम की मदद से अभ्यास किया। विशेष प्रशिक्षण सत्रों ने उन्हें ओलंपिक खेलों से पहले के महत्वपूर्ण महीनों में चोट से दूर रखा था। हालांकि एथलेटिक्स एमपी जबीर की पहली पसंद है, इसके साथ ही वह भारतीय और यूरोपीय फुटबॉल के प्रशंसक भी है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए फिर से हम आपको गाना सुनाना चाहेंगे जो प्रदीप जी का भजन, किसी ने फरमाइश की थी कि प्रदीप जी का भी एक गाना हमें सुनाओ। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख करेंगे राम। जी हाँ, आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: तेरे दुख दूर करेंगे राम, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले। जी हाँ, हमें भी दूसरों का दुखड़ा दूर जरूर करना चाहिए। और दोस्तों, आज सवेरे से व्हाट्सएप पे एक तो घूम रहा है कि आज राष्ट्रीय मित्रता दिवस है। जी हाँ, हमें भी पता नहीं था, लेकिन व्हाट्सएप पे तो घूम रहा है कि राष्ट्रीय मित्रता दिवस है। जी हाँ, तो मैत्री यानी फ्रेंडशिप डे। तो मैत्री मानव का एक अनमोल संबंध है। ये ऐसा रिश्ता है जो विश्वास, प्रेम, सहयोग और समझ पर आधारित होता है। एक सच्चा मित्र हमारे सुख दुख का साथी होता है। जब हम किसी कठिनाई में होते हैं तब मित्र ही हमारा हौसला बढ़ता है और सही मार्ग दिखाता है। जी हाँ, मित्र को हम कुछ बातें बताते हैं तो मन भी हल्का हो जाता है और मित्र ही सहायता के लिए आ जाता है, कहता है तू आगे बढ़, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तो सच्चा मित्र है, वो हमेशा साथ निभाता है। मैत्री दिवस हमें अपने मित्रों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर देता है। इस दिन लोग अपने दोस्तों को शुभकामनाएं देते हैं। अभी आज तो व्हाट्सएप का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, तो सारे व्हाट्सएप सवेरे से घूम रहे हैं। मित्रता बैंड और क्या क्या ज़माना है, बैंड लगाते हैं और सुंदर पलों को याद करते हैं। लेकिन सच्ची मित्रता केवल एक दिन मनाने तक सीमित नहीं होती है। हाँ, एक दिन नहीं तो जीवन भर का साथ होता है। सच्चा मित्र हमारा बचपन से अंत तक साथ रहने वाले ऐसे कई एग्जाम्पल हमने देखे हैं और देखते भी रहते हैं। तो ये दिवस सिर्फ आज तक नहीं मनाना है, इसको हमेशा के लिए मनाते रहना है। आज डिजिटल युग में हमें ऑनलाइन बहुत सारे मित्र भी बन जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सच्ची मित्रता ईमानदारी, विश्वास और आपसी सम्मान से मजबूत होती है। हमें आपसी सम्मान भी बढ़ाना है, विश्वास भी होना चाहिए और ईमानदारी तो बहुत आवश्यक है। हमें ऐसे मित्र बनाने का प्रयास करना चाहिए और जो एक दूसरे की सहायता करते हो, उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, हर परिस्थिति में उनका साथ देता हूँ। ऐसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं कि मित्र ही मित्र के काम आ जाता है। मैत्री केवल व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के बीच सद्भाव और शांति का संदेश भी देती है। जो भी आज हमारे मित्र है, अगर आज आपने अभी तक उन्हें मैसेज नहीं किया है राष्ट्रीय मित्रता दिवस का, तो आप भी अपने मोबाइल को उठाएं और राष्ट्रीय मित्र दिन की शुभेच्छा अपने दोस्तों को जरूर दें। तो चलिए दोस्तों, इस साथ लेते एक छोटा सा ब्रेक। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: आप रेडियो मधुबन 107.8 FM, खबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो।

तो चलिए दोस्तों, अभी वक्त हो गया है नई कृषि कार्यक्रम को पूरा करने का। तो मिलते हैं कल नई कृषि कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओम शांति।

समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा अचानक के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। लाख कोशिश कर लो मृत्यु को कभी टाल नहीं सकते। कैसे, जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, तरोई खाने से क्या फायदा मिलता है, इसके क्या क्या बेनिफिट है जरूर जानेंगे आप, और खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। तो आज मैं आपको रेसिपी में कुछ हटके सिखाने वाली हूँ, परंतु क्या वो आप आशियाना सुनिए जान जाएंगे। जी हाँ, आज का प्रश्न बड़ा ही सुंदर रहेगा, तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: पीछे पीछे पीछे चल। भाई स्टॉप लाइन के आगे कहाँ जा रहा है, लाल बत्ती दिखाई नहीं देती।
1: पर हवलदार साहब जरा जल्दी निकलने के मूड में हूँ।
0: वो तो ठीक है, पर दूसरी तरफ हरी बत्ती है और उन लोगों का रुकने का मूड नहीं है। तो जब भी लाल बत्ती हो तेरी तरफ तो बोलो पहले आप।
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: गुड मॉर्निंग आशियाना में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार है, लाख कोशिश कर लो मृत्यु को कभी टाल नहीं सकते। कैसे, तो आइए आज के विचार का विस्तार एक दृष्टांत के साथ करना चाहूँगी। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु जी और योग माया गरुड़ जी पर बैठ कर कैलाश पर्वत पर गए। गरुड़ जी को द्वार पर छोड़कर श्री हरि विष्णु जी और योग माया शिव से मिलने अंदर चले गए। तब कैलाश की प्राकृतिक शोभा को देखकर गरुड़ जी बड़े ही मंत्रमुग्ध हो रहे थे कि तभी उनकी नज़र एक छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया इतनी सुंदर थी कि गरुड़ जी के सारे विचार उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। उसी समय कैलाश पर यमदेव पधारे और अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटे से पक्षी को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। गरुड़ जी समझ गए उस चिड़िया का अंत निकट है और यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। गरुड़ जी को दया आ गई, इतनी छोटी और सुंदर चिड़िया को मरता हुआ नहीं देख सकते थे। गरुड़ जी ने उसे अपने पंजों में दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर एक जंगल में एक चट्टान के ऊपर छोड़ दिया और स्वयं वापिस कैलाश पर आ गए। कुछ समय पश्चात जब यम बाहर आए तो गरुड़ जी ने पूछ ही लिया कि आपने उस चिड़िया को इतनी आश्चर्य भरी नज़र से क्यों देखा था। यमदेव बोले, गरुड़ जी जब मैं

मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वो चिड़िया कुछ ही पल बाद यहाँ से हजारों कोस दूर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी। मैं सोच रहा था कि वो इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगी, पर अब जब वो यहाँ नहीं है तो निश्चित ही वो मर चुकी होगी। गरुड़ जी समझ गए, मृत्यु टाले नहीं टलती, चाहे कितनी भी चतुराई की जाए। इसलिए मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे पार्थ, करता तू वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूँ। कर तू वह जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहेगा। इसलिए कहा जाता है, मृत्यु को कभी भी टाले नहीं टाल सकते, चाहे लाख जतन कर लो। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार, और आइए फिर से सुन लेते हैं एक बहुत ही सुंदर गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रेडियो मधुबन सुनने वालों को सुरेश ओबेरॉय का नमस्कार। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: तरोई की साग बनावा सब मल खूब खावा, तरोई की साग बनावा।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में अब आपको घरेलू उपाय बताने वाली हूँ। तरोई हमारे स्वास्थ्य के लिए किस तरह फायदा करती है, कौन सी बीमारियां ठीक करती है वो जानेंगे। तो देखिए, मधुर, स्निग्ध, पित्त शामक, कफ वात वर्धक, मृदु रेचक, कृमि नाशक, मूत्रल, ज्वर, रक्तपित और कुष्ठादि विकारों में पथ्यकर और उपयोगी है तरोई। उष्ण प्रकृति वालों को और पित्तजन्य व्याधियों में तथा श्वास, सुजाक, अर्श, रक्त मूत्र आदि में इसका साग विशेष पथ्यकर और हितकर है। मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, तो इसकी साग बना करके जरूर खाइएगा तरोई की। देखिए, तरोई के बीज पीस करके गरम करके तिल्ली के सूजन पर लेप करिए, इससे वह कम हो जाती है। तिल्ली अगर बढ़ जाती है तो तरोई के बीज पीसिए, गरम करके तिल्ली की सूजन पर लेप करिए, इससे वह कम हो जाती है। अगर अर्श है तो तरोई के ताज़ा पत्ते पीसकर लगाइएगा। अर्श है तो तरोई के ताज़ा पत्ते पीसकर लगाने से अर्श ठीक हो जाता है। पथरी की समस्या है तो तरोई की जड़ ठंडे पानी में पीस करके छानिए, सुबह ही सुबह 3-4 दिनों तक पी लीजिए इसका पानी, तो पथरी गल करके निकल जाएगी। पथरी की समस्या है तो तरोई की जड़ ठंडे पानी में पीस करके छानिए, प्रातःकाल आप सुबह ही सुबह 3-4 दिनों तक रोज पीजिएगा, इससे पथरी गल करके निकल जाएगी। आंखों में पुंसिया है, मतलब आंखों के ऊपर, नेत्र के ऊपर फुंसिया हो जाती है, कभी कभी बच्चों के नेत्रों पर फुंसिया हो जाती है, इसमें तरोई के पत्तों के रस की 2-3 बूंदे डालिए, ये फुंसिया ठीक हो जाएगी। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, बच्चों के आंखों पर फुंसिया हो जाती है, तो इसमें तरोई के पत्तों के रस के 2-3 बूंदे डालिए, इससे ये समस्या ठीक हो जाएगी। तरोई के सेवन से पेशाब की जलन दूर होती है और पेशाब खुल करके आता है। ठीक है, तरोई का सेवन से, तरोई खाने से पेशाब में जलन, जो पेशाब की वजह से जलन होती है वो दूर हो जाती है और पेशाब खुल करके आता है। तो देखा, तरोई के सब्जी के फायदे और फिर इसका बीज, इसकी जड़, सब कुछ फायदा करती है, कौन सी बीमारियां ठीक करती है वो आपने जाना है। अब आइए आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, हमारे हाथों की जो पाँचों उंगलियाँ है उसका नाम आपको बताना है। हमारे हाथों की पांचों ही उंगलियों का नाम बताना है। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। अब यहीं पर फिर से एक अल्पविराम लेकर के पुनः रूबरू होंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में सुरेश भाई जोटाना से जुड़ चुके हैं। नमस्ते सुरेश भाई।
1: हाँ दीदी नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, कैसे हो?
0: हाँ जी वेरी गुड मॉर्निंग, हम बहुत अच्छे हैं, आप सुनाइए।
1: बस हम भी अच्छे हैं। और एक बात बताओ तो आज का दिन है तो सभी हमारे रेडियो मधुबन परिवार को, हमारे मित्रों को आपके दिन की मित्रता की शुभकामनाएं। सभी मित्र हमारे अच्छे रहे।
0: क्या है आज?
1: आज मित्रता दिन है, यानी कि मित्र दिन,
0: फ्रेंडशिप डे।
1: हाँ मित्रता का कोई नाम है, मित्रता आज मित्रता दिन है।
0: अच्छा
1: हाँ, मुझे तो नहीं पता था, लेकिन हमारे पवना भाई जी बता रहे थे, नई किरण ने।
0: अच्छा
1: हाँ, सुनना भाई बता रहे थे कि आज मित्रता दिन है तो सभी मित्र को नमस्ते। तो मित्र, ये मित्र या मित्र ऐसा कोई नाम है, कोई मित्रता पर ही आता है।
0: चलिए देखते हैं क्या है आज का विषय है। केवल द्वार पर शुभ लाभ लिखने से कुछ नहीं होगा, शुभ विचार रखिए अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, तो ही लाभ होगा। क्या कहेंगे आप? और आज का प्रश्न भी साथ ही साथ फिर से पूछ रही हूँ। आज का प्रश्न है, हमारे हाथों की पांचों उंगलियों का नाम बताना है। तो जी आप विषय को स्पष्ट कर सकते हैं।
1: हाँ जी सही बात है दीदी, हम मंदिर जाते हैं, देखो चलो मंदिर जाते हैं, मंदिर जाके भगवान से प्रार्थना करते हैं और सब कुछ बोलते हैं, मंदिर में बोलते हैं, लेकिन बाहर हम किसी को ऐसा नहीं बोलते कि भाई कैसे हो, हम अच्छी तरह से रखिए, कैसे आप, कैसे आपका हाल चाल कैसा है, सब कुछ अच्छी सोच रखनी है, अच्छा विचार रखना है, ऐसे नहीं करते। लेकिन मंदिर में बोलते, लेकिन बाहर भी हमको दीदी ऐसा विचार रखना है सबके साथ, तो ही तो हम ये एक ऐसा भी विषय था, मैं थोड़ा भूल गया जो आपने पूछा प्रश्न से।
0: जी मैं फिर से दोहरा देती हूँ कि केवल द्वार पर शुभ लाभ लिखने से कुछ नहीं होगा, शुभ विचार रखिए अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी।
1: जी जी बिल्कुल सही बात है। तो देखो दीदी, आज सब पहले तो जैसा लिखते थे वही करते थे। देखो पहले सभी करते जो मिट्टी के मकान थे, मैं गांव की बात कर रहा हूँ, छोटे से गांव की, जब हम भी गांव में रहते थे छोटे से पहले, तो वो जो दीवार पर लिखते थे पल्ले बता रहे गुजराती में, या वेलकम जो लिखते थे, लिखते थे लाभ सब लिखते थे और सभी लिखते थे, लेकिन ऐसे जो लिखते थे वैसे वैसे लोग ऐसे विचारते थे और ऐसे विचार रखते थे सबको। तो जब कोई आते थे तो आराम से ग्रंथ से बुलाते थे, पर बिठाते थे और चाय पानी पिलाते ही थे, वो चाय बोले मेहमान न होते थे, चाहे गाँव के कोई हो, चाहे अगर पड़ोस के गाँव के हो, रिश्तेदार न हो, फिर भी ऐसे ऐसे लोग इसी तरह से रहते थे। लेकिन आज ऐसे नहीं है, आज लिखते हैं, लेकिन लिखने से ऐसा लिखने से कोई होता नहीं है। आप नहीं लिखो तो चलेगा, लेकिन ऐसा मन में विचार रखो कि हमारे घर पे कोई आए, हमारे कोई साथ में हो, तो अच्छे विचार रखे, अच्छे विचारधारा बोले, इसकी अच्छी तरह से बुलाए और ऐसे ही रहे कि जैसे हम

0: लाभ सब लिखे हैं ऐसे रहे
1: जी।
0: लिखने से तो कुछ नहीं होता है, जितने तो लिख लेते हैं लेकिन ऐसे विचार रखते नहीं है।
1: तो
0: देखो कोई आता है तो मुंह बगाड़ते हैं और बोलते हैं ये जल्दी जाए तो अच्छा है
1: जी।
0: जैसे लोगों का मन ऐसा स्थिति होगा, ऐसा विचार रखते हैं लेकिन मन में विचार ऐसा नहीं रखते, खाली बोलने की खातिर बोलते हैं लिखने की खातिर लिखते हैं, लेकिन ऐसे विचार धारा नहीं है। लोगों का विचार बिल्कुल कम हो गया है, विचार लोगों का बदल गया है। पहले के जमाने में तो दीदी कोई आते थे जाते थे तो दो दो तीन दिन घर भी रुकते थे, क्योंकि इतने आदर भाव प्रेम थे, आज नहीं हो
1: जी।
0: तो बस हम तो दीदी ऐसे कहे जैसे नाम सब लिखते हैं द्वार पर, ऐसा विचार हमको रखना है, तुमको रहना है तो ही काम लिखने के बराबर है, वरना लिखना ही नहीं है
1: जी।
0: जी नमस्ते
1: जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई झोटाना से, आपने विषय को बहुत ही सुंदर स्पष्ट किया है। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अपनी बात को रखते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। आज का विषय बहुत ही सुंदर है, केवल द्वार पर शुभ लाभ लिखने से कुछ नहीं होगा, शुभ विचार रखिए अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, लाभ ही लाभ होगा। क्या कहेंगे आप? प्रैक्टिकल विषय है, आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है, हमारे हाथों के जो उंगलियां हैं पांचों उंगलियों का नाम बताना है, अंगूठे का भी और चारों उंगलियों का भी, सभी का नाम आपको बताना है, क्या नाम है। तो कोशिश करिएगा जुड़ने की, क्या बात है, अभी तो बहुत ही गर्मी है, बाहर तो कहीं गए होंगे नहीं, ठीक है, जॉब पर जाना जरूरी है, काम पर भी जाना जरूरी है, लेकिन समय निकाल करके जुड़ने की कोशिश भी ज़रूर करिएगा। ये रेडियो को भी आप अपने जीवन का एक अंग बना लीजिए, क्योंकि इससे काफ़ी नॉलेज भी बढ़ता है और हमारे भी जो बोलने की कला है वो बढ़ती है। जैसे हमारे श्रोता बंधु कहते रहते हैं ना कि कभी वो नहीं बोल पाते थे, अभी रेडियो मधुबन सुन करके अच्छी तरह बोल लेते हैं, और काफ़ी परिवर्तन देखा भी है आप सभी के अंदर। कि फर्स्ट दिन याद करिए, जब शुरुआत थी उस समय को याद करिए कि हिचकिचाते हुए बोलते थे और आज आप एकदम बिंदास होकर के बोलते हैं। तो यही तो कला है और यही तो और भी हमारी खिलती जाती है, बढ़ती जाती है जब हम बोलना शुरू करते हैं। तो आप अपनी राय व्यक्त ज़रूर करिएगा, और देखिए बहुत ही सुंदर विषय है। तो अक्सर घरों के बाहर आपने देखा होगा लाभ शुभ लिखे हुए, हर एक घर का बाहर शुभ और लाभ लिखते ही है। और मान लीजिए नॉर्मल दिनों में आपको दिखे नहीं दिखे, लेकिन नवरात्र में दीपावली के दिनों में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा शुभ लाभ। तो अच्छी बात है, लिखना भी चाहिए, ठीक है, घरों के बाहर शुभ और लाभ लिखना भी चाहिए, लेकिन क्या हम सभी के प्रति शुभ विचार रखते हैं या नहीं रखते हैं? मायने तो ये रखता है ना, भले आप घरों के बाहर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, हम ये नहीं कहते कि आपने लिख रखा है तो आप हटा दो, नहीं लिखा हो तो भी लिखिएगा, अच्छी बात है। इसके साथ ही साथ आज से ये ऐड कर लीजिए कि हमें सभी के प्रति शुभ विचार भी रखना है। घर के बाहर शुभ लाभ लिख रखा है और घर के अंदर ही हर एक इंसान रहता है, और हमारे विचारों में खोट है, हमारे विचारों में मिलावट है, बाहर शुभ लिख रखा है और हम अशुभ सोचते हैं किसी के बारे में, उसका तो ये हो जाए, उसका तो बेड़ा घर हो जाए, वो हो जाए, तो घर के बाहर जो शुभ लिख रखा है क्या वो सार्थक होगा, बताइए आप। हम तो आपके द्वारा जानना चाहते हैं कि क्या वो सार्थक होगा जो घर के दरवाजे पर हमने लिख रखा है शुभ लाभ, जबकि हमारे मन के विचार मेले है, हमारे मन के विचार गंदे है और अशुभ सोच रहे हैं किसी के प्रति, उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, उसका बिजनेस डाउन हो जाए, उसका दिवाला निकल जाए, उसका टांग टूट जाए, उसका वो, मतलब वगैरह वगैरह बहुत तरह के नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, किसी के साथ विशेष करके नहीं बनती है तब। तो फिर घर के दरवाजे के बाहर शुभ लिखा हुआ सार्थक कैसे हो सकता है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, थोड़ा तो सोचिए। सोचेंगे तो प्रश्न का जवाब अपने आप मिलेगा, खाली दिखाने के लिए तो हमने नहीं लिखा है ना कि लोग पढ़ेंगे शुभ और लाभ, हमने तो अपने लिए लिखा है ना। अच्छा ये बताइए किसने दूसरों के लिए लिखा है, फोन करके जल्दी से बताइएगा कि दरवाजे पर शुभ और लाभ दूसरों के लिए किसने लिखा है, अपने लिए लिखा है या दूसरों के लिए लिखा है, जिसके भी लिए लिखा है आप फोन करके इतना तो बता ही सकते हैं। अपने लिए लिखा है तो फिर अशुभ क्यों चलाना, किसी के प्रति अशुभ संकल्प क्यों चलाना, अशुभ विचार क्यों रखने हैं? अशुभ रखेंगे तो फिर क्या शुभ हमारा हो पाएगा? अगर हम इतना भी ध्यान लगाकर सोचे तो भी अपने आप ही प्रश्न का जवाब मिल जाएगा कि हाँ, हमने लिखा है तो वास्तव में किसके लिए लिखा है, फिर हम क्यों दूसरों के प्रति अशुभ सोचते हैं। कहते ना, हमारी सोच अच्छी होगी तो कर्म भी अच्छे होंगे, और सोच अगर खराब है, मिलावट वाली है, सोच में नकारात्मकता है तो शुभ हो ही नहीं सकता। तो पहले तो हम अपना ही अमंगल कर रहे हैं, दूसरों की तो छोड़िए, क्योंकि जैसा सोचते हैं वैसा होता है, और जैसा हम करते हैं रिटर्न होता है, हमारे पास लौट के आता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ज़रूर आएगा। पुण्य का खाता जब घटने लगेगा, कम होने लगेगा, तब इस तरह की बातें जब होगी तो हमारे पास ही लौट करके आएगी। इसलिए हमें सर्व के प्रति शुभ भावनाएं रखनी है, सर्व के प्रति शुभ विचार रखना है। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, तो सोच हमारी अच्छी होगी वैसा ही हम बनेंगे। चलिए, इस विषय पर और भी हम बात करेंगे, लेकिन आप कोई जुड़ नहीं रहे हैं तो अब हम भी क्या कर सकते हैं, आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या बात है, अपने हाथों की उंगलियों के भी नाम नहीं आता है क्या? और आता है नहीं आता है, आप जुड़ करके बताएंगे तो पता चलेगा ना। तो ज़रूर कोशिश करिएगा प्रश्न का जवाब देने की, विषय को स्पष्ट करने की। आइए यहाँ पर एक गीत सुनेंगे, उसके बाद पुनः रूबरू होंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है। कैसे हम छोटी छोटी बातों से दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं, और कैसे हम अगर इन छोटी बातों को जीवन से निकाल देते हैं तो हमारा जीवन खुशनुमा बन जाता है। जिसमें विषय रखा है खुशनुमा जीवन में, केवल द्वार पर शुभ लाभ लिखने से कुछ नहीं होगा। शुभ विचार रखिए अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, तो लाभ ही लाभ होगा। और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है। हमारे हाथों के पांचों उंगलियों का नाम आपको बताना है तो आप विषय में भी जुड़ सकते हैं और आज के प्रश्न का जवाब भी दे सकते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और देखिए जो नुस्खे दिए हैं, किसी को बहुत पसंद आए तो जवाब आया, उनका फ़ोन भी आया था ऑफर में। और कुछ लोग हमारे कंफ्यूज भी हो रहे थे गुजरात से भाई बहन है कि तरोई क्या चीज़ होती है, तो मैं बता देती हूँ आपको, गुजराती में उसको तुरिया कहते हैं। ठीक है, जो ये नुस्खे दिए है तुरिया के नुस्खे दिए है। तुरिया की साग बनाकर आप खाएंगे, उसके क्या फ़ायदा है, उसके जड़, उसका बीज कौन सी बीमारियों को ठीक करता है, ये घरेलू उपाय दिए। ठीक है, और विषय बहुत ही सुंदर है। हम तो चाहते हैं कि आप जुड़िएगा और अपनी राय व्यक्त करिएगा, बाकी हम तो बैठे ही है, काफ़ी कुछ स्पष्ट किया है। कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, द्वार पर आपको जो चाहे लिखिए, जो इच्छा हो लिखिए, ठीक है, शुभ लिखिए, लाभ लिखिए, लेकिन हमेशा शुभ विचार रखिए। शुभ विचार रखने से अपना भी भला होता है तो दूसरा का भी भला होता है, क्योंकि जो अच्छे संकल्प चलते हैं ना, उससे हमारा मन बड़ा खुश रहता है, और मन बड़ा खुश रहता है तो चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। एक तो आप नेगेटिव थॉट्स चलाकर देखिएगा, आपके चेहरे की उदासी, मतलब जो चेहरे की खुशी है वो गायब हो जाएगी और चेहरा उदास उदास दिखेगा। आप खुद ही गौर करके कभी अपने ऊपर ही आप ये आजमाइए कि नेगेटिव थॉट्स से आपके चेहरे की प्रतिक्रिया क्या होती है और पॉजिटिव थॉट्स से आपके चेहरे की प्रतिक्रिया किस तरह चेंज हो जाती है, आपको जवाब स्वयं ही मिल जाएगा। तो जब हम किसी के प्रति अशुभ विचार रखते हैं, नेगेटिव विचार रखते हैं, तो चेहरा उदास सामने वाला मिलता है तो क्या कहते हैं, अरे जब देखो तब इनका तो मुँह चढ़ा ही रहता है, कभी इनके चेहरे पर स्माइल तो रहती नहीं है, है ना। और उदास चेहरा किसको पसंद आएगा भला, कि निकाट के वो साइड में से होके निकल जाएगा देखा अनदेखा करके कि अरे भाई जाने दो, इतना चेहरा चढ़ा हुआ है, इतना उदास दिख रहा है, पता नहीं क्या क्या बातें करेगा, इससे अच्छा है अपने आप चुपचाप निकल जाओ वहाँ से, तो बोलेंगे भी नहीं। और यही चेहरे की मुस्कुराहट देखेंगे, अगर पॉजिटिव सोच है हमारी तो चेहरे की मुस्कुराहट दिखाई देगी, तो कितने ही लोग साइड में से निकलने वाले होते हैं ना, वो भी आपसे मिलकर आपसे बात करके जाते हैं कि अरे कैसे हो भाई, क्या है, कैसे क्या कर रहे हो आजकल, है ना, बात करने की कोशिश करेंगे कि इनको देखो जब देखो तब इनका चेहरा खिलखिला रहता है, तो खिलखिला चेहरा सभी को पसंद आता है। बस फर्क इतना ही है, हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम सोच किस तरह की रखते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। शुभ रखेंगे तो चेहरा खुशनुमा दिखाई देगा, अशुभ रखेंगे तो चेहरा उतरा हुआ दिखाई देगा, तो नुकसान सबसे पहले किसका हो रहा है, दूसरा का हो रहा है या अपना हो रहा है। बहुत सीधी और शॉर्ट बात है कि किसी के प्रति अगर हम अशुभ सोचते हैं तो नुकसान सबसे पहले अपना होता है, सामने वाले का तो होना होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, लेकिन अपना तो हो रहा है ना, कि चेहरा उदास, मन झुलझुलाहट से भरा हुआ। किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प चलाते हैं तो पहले तो मन ही ऐसा हो जाता है और उसकी प्रतिक्रिया पूरी बॉडी पर होती है, तो ऐसे क्यों संकल्प चलाने हैं जिसकी वजह से हम भी दुखी हो रहे हैं और फिर सामने वाले के प्रति सोच सोच करके उसको दुखी करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सामने वाले को पता ही नहीं कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, तो वो तो मस्त है, लेकिन दुखी हम ही हो रहे हैं। चले हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहेंगे। हेलो,
1: भूरा राम बोल रहे हो सर बहन जी।
0: भूरा राम जी, राम राम, कैसे हो आप?
1: राम सर, आप बैठा हूँ, काल पे बैठा और आपके सुन रहा हूँ, सब बातें सुन रहा हूँ
0: जी,
1: और सब मधुबन भाइयों को और सबको मित्र राम राम है। और ये आज क्या मेरे को बराबर वो फोन में लगा था तो बराबर सुनने में नहीं आया था, क्या विषय है कुछ समझ नहीं आया।
0: अच्छा, विषय मैं सुना देती हूँ। केवल द्वार पर शुभ लाभ लिखने से कुछ नहीं होगा, शुभ विचार रखिए अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, तो लाभ ही लाभ होगा। क्या कहेंगे आप?
1: हाँ, खैर ये तो शुभ लाभ तो एक शास्त्रों से बनाए हुए हैं, लेकिन अपनी भावना से होनी चाहिए शुभ लाभ। खैर ये तो शास्त्रों के हिसाब से अपन होली दिवाली पर जो घर में प्रोग्राम होता है शुभ लाभ लिखते हैं, सब शुभ लाभ लिखते हैं, लेकिन वो शुभ लाभ अपने अंदर में शुभ भावना होनी चाहिए और शुभ विचार होना चाहिए और शुभ दूसरों के प्रति भी अपने को शुभ सोचना चाहिए, अशुभ नहीं सोचना चाहिए। तो शुभ और अशुभ इसमें बोले तो ये उसका जीवित शब्द है, अशुभ शुभ और अशुभ, मतलब अशुभ मतलब शुभ की जगह अशुभ किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, मेरा ये विचार है बहन जी, और तो क्या करूँ।
0: जी जी बहुत सुंदर विचार है। और आज के प्रश्न का जवाब देंगे,
1: क्या है प्रश्न?
0: आज का प्रश्न है हमारे हाथों की जो पांचों उंगलियां है उनका नाम बताइए।
1: इतना तो मेरे को भी ये सब पूरा पांचों का तो नाम नहीं आता, मैं उनको कुछ ऐसे बोलते प्रश्न नहीं है न बोलते, लेकिन मेरे को इतना ख्याल नहीं है।
0: अच्छा चलिए कोई बात नहीं, फिर भी आपने विषय को स्पष्ट करने की अच्छी कोशिश की है, बहुत बहुत आभार आपका। तबीयत अच्छी है आपकी?
1: बस दवा ले रहा और बैठा हूँ, थोड़ा ठीक है अभी तो, थोड़ा वापस ताके वाके खुलवाए कल
0: जी
1: और बैठा आराम से।
0: अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खाने पीने का भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है?
1: ओके ओके धन्यवाद।
0: हाँ जी बहुत बहुत आभार। तो ये थे भूराराम जी ओर से, आपने भी विषय को स्पष्ट करने की बहुत ही अच्छी कोशिश की है। तो जैसा कि भूराराम जी बता रहे थे कि देखिए शुभ लाभ ये तो हमारे सब यंत्र मंत्र है जो शास्त्रों में लिखा है ऐसे लगाते हैं, लेकिन विचार तो अपने ही है ना, तो अपने विचार को शुभ रखिए, श्रेष्ठ रखिए, तो लाभ ही लाभ होगा। ठीक है, शुभ और लाभ लिखते हैं तो शुभ और लाभ तभी होगा, तभी मिलेगा हमें जब हम दूसरों के प्रति हमारे विचारों को शुभ रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, श्रेष्ठ रखेंगे, तो जीवन में शुभ ही शुभ होगा और लाभ ही लाभ मिलेगा। बस यही खुशनुमा जीवन का राज है। और आइए आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है हमारे हाथों की हथेलियों के हाथों के मतलब पांचों उंगलियों का नाम बताना है। तो पांचों उंगलियों का नाम बताने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के प्रश्न का जवाब आप दे सकते हैं। और आज मित्र डे नहीं है, वो अगस्त महीने में आता है फ्रेंडशिप डे, ठीक है? कोई दूसरा डे हो तो पता नहीं, शायद हो सकता है महाराष्ट्र में कुछ हो। तो आइए बस इस विषय को समाप्त करते हैं, अगर आप जुड़ना चाहें तो आप अपनी बात को रख सकते हैं, बाकी इस विषय को यही समाप्त करते हैं और सुनते एक अच्छा सा गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in। हर घर

ओम शांति। नमस्कार, मैं हूं नीलम कंबोज, करनाल हरियाणा से, और आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो।

0: आशियाना और आशियाना में जगदीश भाई भजपुरा से जुड़ चुके हैं। नमस्ते, राम राम जगदीश भाई।
1: राम राम जी जी, राम राम, नमस्ते। क्या हो रहा है?
0: बस और तो बढ़िया, आप सुनाइए।
1: बस ठीक ठीक है जी जी।
0: अच्छा, आज के प्रश्न का आप जवाब देंगे?
1: बिल्कुल।
0: आज का प्रश्न है, हमारे हाथों के पांचों उंगलियों का नाम बताना है।
1: अंगुष्ठा, अंगूठे का नाम।
0: हाँ जी हाँ जी, मैं सुन रही हूँ।
1: मध्यम, अनामिका, कनिष्ठा।
0: चलिए, बहुत अच्छा। कार्यक्रम के अंत में आपका जवाब सुनाएंगे, सही है गलत है, ठीक है? और अभी देखिए रेसिपी का नंबर आ गया है, आप कुछ सिखाना चाहेंगे?
1: नहीं, मैं तो नहीं सिखाऊंगा रेसिपी तो।
0: कभी आप भोजन बनाते हैं या नहीं बनाते, ये बताइए। कभी बना?
1: बनाता हूँ भोजन तो, ये लेडीज ही कई बार अपने नहीं होती है, बना लेता हूँ भोजन वोजन तो सब।
0: अच्छा, फिर तो कोई भी सब्जी सिखा दीजिए।
1: कड़ी वड़ी और तो सब मैं पावरफुल हूँ मैडम।
0: अरे वाह, क्या बात है, कड़ी सिखा दीजिए फिर सभी को। कड़ी भी प्रॉपर हर किसी को नहीं आती बनाना।
1: नहीं नहीं, सब बनाते हैं कड़ी तो
0: जी, इसलिए आप सिखा दीजिए।
1: ओ मैं नहीं सीखूंगा जी जी, मैंने शर्म आ रही है, कड़िया में कोई खेला गई वो रांडुलिया काम करे दी क्या।
0: अरे देखो, ये आपकी सोच को चेंज करिए। बड़े बड़े प्रतिभोज कौन बनाते हैं? बड़े बड़े प्रतिभोज में कौन बनाते हैं? होटलों में सेफ कौन है?
1: मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरे को फिर बुलाएगी नहीं, वो बनाने लग जाएगी, कौन बुलाएगा मेरे को।
0: अच्छा
1: ठीक है जी,
0: ठीक है। हाँ चलिए, राम राम
1: राम राम।
0: तो देखिए, जो भी रेसिपी सिखाना चाहे सिखा सकते हैं, क्योंकि होटलों में सेफ कौन है, बड़े बड़े प्रतिभोज में कौन भोजन बनाता है वो आप सभी जानते हैं। हलवाई में कौन है? भाई लोग ही है ना, बहनें भी हेल्प करती है, लेकिन कैसे, जैसे पूरी बेलना है, साग भाजी साफ करना है, बड़े बड़े जो दो दो तीन तीन हज़ार का, चार चार पाँच पाँच हज़ार का जो भोजन बनता है, पंडाल में भोजन बनता है, कथा के उसमें भाई लोग ही बनाते हैं। तो ज़रूर आप जुड़िएगा, और जिसको भी शौक है वो सिखा सकते हैं रेसिपी, ठीक है? बाकी हमने सोचा है कि अभी हम आपको भरवा काचरी की सब्जी बनाना सिखा रहे हैं। काचरी जिसको चिबड़ा भी कहते हैं और काचरा भी कहते हैं, राजस्थानी में हम काचरी और काचरा दोनों ही कहते हैं, ठीक है? तो भरवा काचरी आपको सिखाने जा रहे हैं। इसका अचार भी बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, वो भी हम आपको कल सिखा देंगे। आज भरवा काचरी आपको सिखा रहे हैं, तो आप ले लीजिए काचरी, छोटी वाली लीजिएगा, ठीक है? और फिर आप लीजिएगा हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर, राई, जीरा, सौंफ और तेल, हींग, ये आपको लेना है मसाले में। फिर से दोहरा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, काचरी लेनी है छोटी वाली, फिर आप लीजिएगा राई, जीरा, सौंफ, हींग, धनिया पाउडर, हरी मिर्च, अदरक, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर और तेल। ये हो गई सामग्री। अब बनाने का तरीका भी आपको साथ ही साथ सिखा रही हूँ। आप क्या करेंगे, काचरी की धुलाई करिए। धुलाई करने के बाद इसके चीरा लगाइए, लंबा चीरा। भले तो आप लंबा चीरा लगाइए, भले ऊपर से आप डंठल की तरफ से चीरा करना चाहेंगे तो डंठल निकाल करके आप इस तरह आड़ा और तिरछा दो भाग काटिए, लेकिन नीचे से चिपका हुआ होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है? और फिर आप थोड़ा सा बीज और उसका पल्प भी निकाल करके टेस्ट कर लीजिए कि कड़वी तो नहीं है काचरी। कड़वी होगी तो सब्जी पूरी फेंकनी पड़ेगी आपको, इसलिए ऐसे आपको, भले आप खाली चीरा लगा रहे हैं तो भी आप थोड़ा सा पल्प और बीज निकाल करके ज़रूर देखिएगा कि कड़वी तो नहीं है, ठीक है? और इसके बीज सॉफ्ट होते हैं, इसलिए अगर कड़वी नहीं है तो रहने दीजिए, बीज नहीं निकालना है, ठीक है? अब आप इसके तो चीरा लगा दिया है, हरी मिर्च, अदरक ये ली है, इसके आप पेस्ट कर दीजिए, ठीक है? पेस्ट करके इसी में ही आप धनिया पाउडर डाल दीजिए, नमक, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर भी इसी में डाल दीजिए, फिर सौंफ, जीरा, ये भी राई भी, इन सबको कूट करके ये मसाला सब अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए, ठीक है। हींग पाउडर भी इसी में डाल दीजिए, और थोड़ी सी डालनी है, हल्की सी, हल्की सी हम छोक में डालेंगे। तो ये सब डाल करके अच्छी तरह मिक्स करके, आवश्यकता पड़े तो ऊपर से पानी लीजिए, नहीं पड़े तो पानी मत लीजिए, क्योंकि अदरक हरी मिर्च वैसे गीली होती है ना। तो सब मिक्स करके फिर आप काचरी में भर दीजिए इस मसाले को, और जब ये सारी काचरी में आप मसाला भर दो, तो आप रखिए अब कढ़ाई गैस पर, गैस चालू करिए, तेल में, कढ़ाई में तेल डालिए, तेल गर्म हो जाए तो इसमें हल्की सी हींग डाल दीजिए, और फिर आप ये सारी काचरी डाल दीजिए जो हमने मसाले से भर के रख रखी है, ठीक है। और धीमी आंच कर दीजिए, एक बार हिला करके आप ढक्कन लगा दीजिए, फिर ढक्कन, और अब इसको गलने दीजिए 10-15 मिनट। बीच में आप एक आध बार और इसको हिलाते रहिए, और फिर आप 15 मिनट तो लगेंगे ये सब्जी बनने का, ठीक है। फिर आप ढक्कन हटा करके हल्का सा चाकू अंदर डाल करके देख लीजिए ये सब्जी गली कि नहीं गली, नहीं तो उंगली से भी आप दबा कर देख सकते हैं। सब्जी सीज गई हो तो गैस बंद कर दीजिए। ये बन गई भरवा काचरी की सब्जी, बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी। ये मक्के की रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं काचरी की सब्जी, बाजरे की रोटी के साथ भी टेस्टी लगेगी, गेहूं की रोटी के साथ तो वैसे ही अच्छी लगती है, ठीक है। तो इस तरह भरवा काचरी की सब्जी बन चुकी है। फिर से विधि दोहरा रही हूँ, काचरी की धुलाई करिए, और धुलाई करके इसके चीरा लगाइए। चीरा लगा करके आप ऐसा चीरा लगाइए कि काचरी के दो भाग नहीं होने चाहिए, ठीक है। फिर आप थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिए बीज और पल्प को कि ये काचरी आपकी कड़वी तो नहीं है, सारी काचरी का टेस्ट करना है। आप ठीक है, जो मीठी है अच्छी है रहने दीजिए। और अब आप हरी मिर्च अदरक की पेस्ट कर लीजिए, इसी पेस्ट में आप लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर डालिएगा, थोड़ी सी हींग भी डाल दीजिए, और सौंफ, राई, जीरा ये भी कूट करके इसी में डाल दीजिए सारे मसाले में, और सारे मसाले को अच्छी तरह मिक्स करके काचरी में भर दीजिए। भरने के बाद अब आप कढ़ाई रखिए गैस पर, तेल डालिए, तेल गर्म हो जाए तो आप हल्के से हींग डालिएगा, और ये सारी काचरी डाल करके फिर ढक्कन लगा दीजिए, और 10-15 मिनट में ये सब्जी सीज जाएगी। तो 5-7 मिनट के बाद ढक्कन हटा कर देखिएगा, बिल्कुल धीमी आंच पर रखना है ताकि सब्जी आपकी जले नहीं और सीज भी जाए। फिर आप देख लीजिए, अगर नहीं सीजी हो तो फिर से ढक्कन फिट बंद कर दीजिए, फिर आप बीच में देख लीजिए कि सब्जी गली कि नहीं गली, गल जाए तो गैस बंद कर दीजिए, बहुत नहीं गलानी है, थोड़ी सी, ठीक है। और बस ये काचरी तैयार हो चुकी है हमारी सब्जी, भरवा काचरी, और इसके साथ आप मक्की की रोटी बना करके भी खा सकते हैं, बाजरे की रोटी बना करके भी खा सकते हैं, गेहूं की चपाती बना करके भी खा सकते हैं। तो जो भी हम सात्विक चीज़ बनाते हैं, अपने इष्ट देव को भोग जरूर लगाना है। तो लीजिए एक स्वच्छ थाली, थाली में आप जल के ग्लास भर के रखिए, तुलसी पत्र रखिए, और एक प्लेट में काचरी की सब्जी रखिए, चपाती जो भी बनाई है आपने, मक्की की रोटी वगैरह जो भी रखिएगा, ऊपर से स्वच्छ कवर ढक करके आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद ही भोग स्वीकार करिए, ठीक है, और आइए साथ ही साथ अब एक गीत भी सुन लेते हैं फिर से। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: बहू मुझे लड़का ही चाहिए।
1: माँ माँ माँ माँ माँ माँ अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना, मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
2: माँ अब तो बस करो।
0: बहू क्या सोच रही हो, घर चले, नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है ना। चलो
3: कोख को कवर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में लाए।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में देखिए गर्मी की हम बात करेंगे कि गर्मी बहुत पड़ रही है। अभी कल किसी का फ़ोन आया, तबीयत ख़राब हो गई थी, लूज मोशन शुरू हो गए थे और बॉडी पेन भी बहुत हो रहा था। तो बोले कि बहन जी क्या करें, ऐसी तबीयतें, उठने की ताकत ही नहीं है। तो अभी यह हालत हो रही है क्योंकि अभी गर्मी टू मच पड़ रही है ना, अति गर्मी है। ऐसी गर्मी में आप बच के रहिएगा, जितना हो सके आप छांव में काम करिए, बहुत ज़रूरी है तो आप धूप में निकलिए। हमने पहले भी कहा था कि आप धूप में निकलते हैं तो या तो छाता लेके निकलिए, या दुपट्टा पहन के, या टोपी, चश्मा, गॉगल्स आपको लगा के जाना है। इन बातों का तो ध्यान रखना ही है, ठीक है। और साथ ही साथ खाने पीने का ध्यान भी रखना है। आप तरल पदार्थ वाली चीज़ें ज़्यादा खाइए, रस्से वाली, जिसको बोल सकते हैं हम, रस्से वाली चीज़ें ज़्यादा खाइए। आप सलाद खाते रहिए, आप तरबूज, खरबूजा, ये खाते रहिए क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छा है। पसीना होता है ना गर्मी में, पसीना होता है तो पानी की कमी होती है, लेकिन जब हम ये पानी वाले फल खाते हैं तो पानी की पूर्ति हो जाती है। नहीं तो भले पंखा चालू है फिर भी पसीना टपक रहा है, ऐसी चालू है फिर भी पसीना टपक रहा है, ऐसी हालत हो रही है लोगों की। इसलिए खाने पीने का पूरा ध्यान रखिएगा। और उसके बावजूद भी अगर इस तरह की बातें हो जाती है, इस तरह स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो आप एक तो देखिए लूज मोशन शुरू हो जाता है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स या ORS का घोल बना करके लेते रहिए, ये बहुत फ़ायदा करेगा। कल वो बहन को बताया था तो वो बहन का तबीयत ठीक हो गई, शाम होते होते कहाँ वो 4-5 बार उनको शौचालय में जाना पड़ा, और जब ये नुस्खे आजमाए तो एक भी बार नहीं गए। बोले कि मेरी पूरी रात भी अच्छी कटी और मुझे एक भी बार नहीं जाना पड़ा। तो या तो इलेक्ट्रॉनिक्स का घोल या ORS का घोल पीते रहिए बीच बीच में, और हो सके तो उस दिन आप अनाज से बचिए। लूज मोशन है तो अनाज मत खाइए, जैसे अनाज में भोजन मत करिए। आप फ्रूट खाइएगा तो तरबूज खा लीजिए, भले आप खरबूजा खाइए, और एक आध बार नींबू शरबत भी आप बना के पी सकते हैं, वो भी आपके कैपेसिटी के अनुसार, क्योंकि तबीयत खराब होती है ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा खाइए, कोई ज़्यादा खाना ज़रूरी नहीं है। आप खीरा ककड़ी खाइए, ये भी फ़ायदा करेगा, पानी वाली चीज़ें। तो इस तरह अगर आप अपने सेहत का ध्यान रखेंगे तो आपकी तबीयत भी ठीक रहेगी और गर्मी से ज़रूर बच के रहेंगे, ठीक है। बस आइए फिर से एक ब्रेक लेकर के पुनः लौटते हैं, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही हैं, काफ़ी अच्छे रहे हैं। सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर करिएगा, और नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए हैं। तरोई के क्या फ़ायदा है, उसकी सब्जी, जड़, इसके बीज, सब कुछ फ़ायदा करता है, कौन सी बीमारियाँ ठीक करता है आप सभी ने जाना है। तरोई जिसको गुजराती में तुरिया कहते हैं, और खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई। तो आज की रेसिपी में आपको जो भरवा काचरी की सब्जी सिखाई है, ज़रूर बना करके खाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। और आज का प्रश्न बहुत ही अच्छा था, हमारे हाथों की पांचों उंगलियों का नाम बताना है। तो जवाब दिया है सुरेश भाई जोटाना से, आपने चार जवाब सही दिया है। अंगूठे का आपने नहीं बताया, अंगूठे का आपने अंगूठा ही बोला है, अंगुष्ट बोलते हैं, ठीक है। और दीपा सोमानी कपासन से, आपका एकदम सही जवाब है। संगीता जी, आपने भी चार जवाब सही दिया है। निर्मला जी भिलवाड़ा से, आपका भी चार जवाब सही है। फिर भूराराम जी ओर से, आपने विषय को स्पष्ट किया है। बाबूलाल खराड़ी, बाबूलाल भाई खराड़ी से, आपने भी चार जवाब सही दिया है, अंगूठे का नहीं दे पाए। जगदीश भाई भजपुरा से जुड़े हैं, आपने भी चार जवाब सही दिया है। मंजू जी बाड़मेर से, ललिता जी तलेटी आबू से, मदन भाई मेहसाना से, आप सभी का चार चार जवाब सही है, अंगूठे का कोई नहीं दे पाए है। तो चलिए मैं नाम सुना देती हूँ। अंगूठे को अंगुष्ट कहते हैं, अंगूठे के बाद पहली वाली उंगली को तर्जनी कहते हैं, और जो सबसे बड़ी उंगली है तर्जनी के पास उसको मध्यमिका कहते हैं। फिर जिसे हम तिलक लगाते हैं मध्यमिका के पास वाली, सबसे लंबी उंगली के पास वाली, इसको अनामिका कहते हैं, और चिट्टी उंगली को कहते हैं अंगुष्ठा। अंगुष्ठा अंगूठे को, और कनिष्ठ, इसको कनिष्ठ कहते हैं, सबसे छोटी वाली उंगली को कनिष्ठ कहते हैं। तो आप सभी के लिए ढेर सारी तालियां, आप सभी जुड़े और बहुत अच्छी कोशिश की, बहुत ही अच्छी कोशिश की आप सभी ने इसके लिए। फिर विषय में जुड़े हैं सुरेश भाई झोटाना से और भूरा राम जी और से, तो आप दोनों के लिए ढेर सारी तालियां। आज का मीठा मोती सुनाना चाहूँगी। जीवन में घटने वाले विषम परिस्थितियाँ हमें अपने अंदर परिवर्तन लाने का इशारा करती है। अब मैं आपको कृष्ण कन्हैया पर प्यारा सा भजन सुनाऊँगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे इजाज़त। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

बीज रही सतरंगी चुनड़ी मोहन को पीतांबर, झूम झूम कर मचगी होली लाल हो गयो अंबर मारो प्यार।

राधा मोहन मोहन राधा जोड़ी प्यारी प्यारी, चरणा को चाकर में थारो जाऊं शरण बलिहारी का मणगा।

0: पर जादू कर गयो।
1: क्या आपका फोन चोरी हो गया है? क्या आप जानते हैं कि अपना मोबाइल फोन कैसे ब्लॉक करें और ट्रेस करें? आप sancharsathi.gov.in पर संचार साथी की मदद ले सकते हैं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के अंदर ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल CEIR पर क्लिक करें। आपको केवल फोन नंबर, फोन का ब्रांड, फोन बिल, FIR कॉपी, फोन का IMEI नंबर की जरूरत है। पूरी जानकारी भरें और अपने चोरी हुए फोन के दुरुपयोग से बचें। किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम हिंसा को नो, आपका अपना सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। दोस्तों, हम हिंसा को नो कार्यक्रम में लगातार अलग अलग विषयों के बारे में जानकारी ले रहे हैं, लेकिन आज हम जानेंगे घरेलू हिंसा के प्रकार। दोस्तों, घरेलू हिंसा हम उसे कहते हैं जो घर परिवार वालों से, चाहे वो घर पर या अन्य किसी स्थान पर किए जाने वाले अत्याचार। घरेलू हिंसा चार प्रकार की होती है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और यौन हिंसा। ये चार प्रकार की हिंसा अक्सर हम घर परिवार में और समाज में देखते रहते हैं, लेकिन आज हम ऐसे परिवार में लेकर जाना चाहते हैं जहां पर कुछ बदलाव है, परिवार में आपसी प्यार है, विश्वास है, महिलाओं में हिम्मत है। तो चलिए चलते हैं आज के नाटक की ओर।
1: लंबी सफर है, ऊंची उड़ान, पढ़ लिख कर बनूंगी सबसे

0: सीमा, या घड़ी घड़ी डोर बेल क्यों बाज रही है? कौन है? अंजू की गांव बात कर रही है?
1: खुद ही पूछ लो।
2: पापा, यो पीयूष है, कदी समय पे नोट्स लिखे कोनी और पछे आ जावे नोट्स लेबा का वास्ते।
0: यो पीयूष कौन है बेटा?
2: मारो क्लास फेलो है पापा।
1: आपने अंजू समय पे काम करे तो चालो की केक तो काम आवे।
2: माँ, आप और पापा कतरा बढ़िया हो जो मारा पे कदी शक को नहीं करियो और हर प्रकार की छूट भी दे रखी। बाकी मारी सहेली सीता विको फ्रेंड रोहन का साथ में कोई बात कर ली थी परसों, विने खूब मारी विका मम्मी पापा खूब।
1: बेटा तू हर काम सोच समझ करे अनी वास्ते थारा पे विश्वास है और थारा करता भी मारी परवरिश पे मने पूरो विश्वास है।
3: साथी डारे छोरा चोरी जद देखू जद घर भरियो उमड़ियो घुमड़ियो रे ऊ मैं तो जद देखू जद घर सुनो अबे तो मैं भी गणो खुश हूँ मैं फुल राव हालरी।

0: तो
1: कई बात है बेटा, आज तो थारा पग धरती पे कोनी टिकरिया।
0: हाँ माँ, बात ही एड़ी है तो दादी बनवा वाली है।
1: अरे वाह वाह बीनड़ी, ले बेटा यो मुख मीठो कर, गुड़ खा। मने तो थे दो ही जना खुश कर दीदा, पर यो कई राजू तू बीनड़ी ने कई क्यों जो बीनड़ी उदास लाग रही।
0: माँ, थारी बिंदड़ी ने डिलीवरी री चिंता लाग रही है।
1: देख बीनड़ी, एड़ा टाइम पे थारे कई भी मानसिक चिंता कोनी करनी, तू खुश रह ताकि बालक पे भी आछो प्रभाव पड़े।
2: जी माँ जी, आप तो मने घना अच्छा राखो, पर
1: तू कई समझे मने, थारा पियर की आर्थिक परिस्थिति को ठा कोनी मैं सब समझू। डिलीवरी अपना घर में ही वे और थारी माँ ने भी बुला लेवा ताकि तू खुश रह सके। थारे कट्टे ही कोनी जानो समझी, और थारे जो भी इच्छा होवे बेधड़क माने केचे।
2: मैं कतरी भाग्यशाली हूँ कि मैंने माता पिता जेड़ा सास ससुर मिलिया और एक अच्छा दोस्त जेड़ा पति। अगर हर लड़की ने एड़ो ससुराल मिले तो किने पियर की याद को नहीं आवे और हर बहु खुश रह सके।
1: कई सोच में पड़ गई बीनड़ी।
2: काई नहीं मम्मी जी, मैं घणी खुश हूँ, आप मारी सास को नहीं माँ हो।
3: दिवाली में तो खूब मनावा, सब मिलकर नाचा गावा, आयो त्योहार आजो आनंद हिरदाम समाओ।
2: पापा जी, मम्मी जी, आप इतना जल्दी क्यों उठिया? और साफ सफाई आप रेवा दो, मैं हूं ना, सब सफाई कर ले हूं, आप आराम करो।
0: यो बता बेटा कि दीपावली तो अकेली मनाई?
2: नहीं नहीं पापा जी, आपा सब साथ में मनावा।
4: तो साफ सफाई भी सब मिलन करा ताकि दिवाली रो आनंद सब मिलन ले सका, क्यों श्याम?
5: हाँ माँ, मैं तो सोच ली तो मैं दीपावली पे गुलाब जामुन बनाऊं।
6: हाँ भैया, आपने गुलाब जामुन बहुत बढ़िया आवे बनाता, और मैं बनाऊं मठड़ी।
0: मैं बनाऊं मोहन थाल।
2: जय श्री कृष्णा। हेलो माँ, बोलो।
7: बेटा थारे बड़ो परिवार है, दीपावली री साफ सफाई तो ध्यान सु कर जे। सुन, मिठाई तो अतरी बना कोनी सके तो मैं भेजू।
2: माँ मैं थारे वीडियो कॉल करूं।
7: यो कई बेटा, ब्यान जी सा, ब्याई जी सा, जमाई सा, सब मालन साफ सफाई कर रहा घर की, मारा तो भाग्य खुल गया।
5: हाँ माँ, आप काई चिंता मत करो, मिठाई भी सब मिलन ही बनावा।
7: वाह हावरो वे तो एड़ो, रखो बेटा फोन, मारा तो खुशी का आंसू आ गया।
4: बिन्नी ले बेटा यो गले को हार, मारी शादी के बाद पहली दिवाली ही जद मारी सास मने दी दो और मैं थने देऊं, थारी भी पहली दिवाली है, आसू यो थारो है।
0: बींदनिया टू व्हीलर की चाबी, पहली दिवाली पे मारा तरफ किया छोटी सी भेंट, आसू छोटो मोटो काम तो खुद ही कर सके कि पे डिपेंड नहीं रहे इनने वास्ते।
2: थैंक यू पापा जी, थैंक यू मम्मी जी।

0: सा मुक्सु कयो नहीं जायो सैको नी हो वेसा।
1: हेलो प्रिया, काई बात है? आज तू घणे खुश लाग रही है।
2: हाँ पूजा, आज मैं घणे खुश हूँ। आज मैं हमेशा के लिए छुटकारो मिल गयो। मैं टेंशन फ्री वही गई।
1: अरे काई बात हुई प्रिया, कि कौन थोने छुटकारो मिलियो, कसान टेंशन फ्री हुई? भाई पूरी बात बताओ तो ठा पड़े।
2: काई बताऊं पूजा, मारा ननदोई जी है जो मने घणो परेशान करता, अश्लील फोटो भेजता, खराब मैसेज करता, गलत इशारा करता। मैं तो तंग आके वाऊ आखिरकार हिम्मत जुटान घर में सास ससुर को बात करी, सगड़ा सबूत भी बताया, तो वे सब मिली मारा ननदोई जी ने खूब समझायो। अच्छे वे सगला रे सामने माफी मांगी। हाज आज हूँ अबे हल्की होगी। मारा सास ससुर मारो खूब मनोबल बढ़ायो और मारो खूब साथ दियो।
1: काई बात कर रही प्रिया, थारा में यह हिम्मत कया ना आई?
2: हिम्मत तो खुद ने ही जुटानी पड़े, ढीला पोचारा तो दुनिया बेच खावे।
1: थैंक यू प्रिया, थारा अनी डिसीजन सो तो मारा में भी ताकत आ गई। मैं भी थाने मारी यही बात करवा जा रही हूँ कि मने भी एक छोरो घणो तंग करे, पर वीको काय करनो, वो थारा सो सीखवा मल्यो। अगेन थैंक्स, चल आओ जी।
2: बेस्ट ऑफ लक पूजा।
1: थैंक यू प्रिया, बाय।
3: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 FM पर हिंसा को नो कार्यक्रम में। दोस्तों, जब हम हिंसा को नो कहते हैं तो वो परिवार और समाज कैसा होता है, आज हमने नाटक के द्वारा देखा है। अभी हम सुनेंगे आबू के अंचल में रहने वाली उन आवाजों को, उनका क्या अनुभव है घरेलू हिंसा को लेकर।
4: नमस्कार, मेरा नाम ललिता है और मैं आपको शारीरिक हिंसा के बारे में बताना चाहती हूँ। तो हमारे जीजा जी थे, वो ट्रक चलाते थे, तो वो बहुत नशा करते थे और आते थे ना तो मारते थे। और ऐसा नहीं अकेले में मारते हो, जैसे कि हमारी दीदी बड़ी मम्मी के सामने मारते, बड़े पापा के सामने मारते, रिश्तेदारों के सामने मारते, सबके सामने मारते। मेरी दीदी है ना चुपचाप मार खा लेती थी। क्यों? कि भाई मायके भी नहीं जा सकते हैं और ससुराल में भी सास ससुर नहीं है, तो हम कहेंगे भी किससे और जाएंगे भी कहाँ। पति का भरोसा है भाई, मार खाते रहो चुपचाप। तो ऐसे कईयों साल तक चला। हमारी बहन, छोटी बहन की शादी थी तो वहाँ पे गए थे, तो बैठ के बातें करने लगे, फिर डांस होने लगा औरतों का, फिर उनको वो अच्छा नहीं लगा। तो जाते थे, शराब पी के आते थे और उसको बहुत मारते थे दीदी को। तो फिर वहाँ पे दीदी ने ना खुद भी मारा और औरों से भी मारवाया उनको। बोला आप, तुम्हें मतलब पता चलेगा कि औरत जितना सहती है ना वो सहती है, जब वो नहीं सहती है ना तो वो किसी की नहीं सुनती है। भाई उसको भी जैसे तुम्हें अपनी इज्जत का वो होता है, भाई चार जनों के लोगों बीच में मार रही है तो मेरा कोई क्या इज्जत रह जाएगी, मैं तो मर्द हूँ। वो भी तो औरत है ना, आप मर्द को जन्म देने वाली औरत ही तो होती है ना, आप उस औरत पे अत्याचार करते हो। हमारी दीदी ने सबको यही बताया, भाई कितना हो जाए मतलब सहो नहीं। और यही सा हमारी बुआ के साथ भी हुआ। तो मेरी बुआ ने तो खैर उनको जेल में डलवा दिया, तो अब वो नहीं मारते हैं। और मेरी दीदी के साथ भी ऐसे हुआ, तो अब जीजा जी नहीं मारते हैं और दोनों आराम से रहते हैं। और अभी काफ़ी उन्होंने तरक्की भी कर लिया, क्योंकि नशा छोड़ दिया और नशे में आके वो मारते थे वो, तो उनको भी जब 3-4 बार पड़ा तो वो सुधर गए। यौन हिंसा कई बार सोचते हैं यार बात करना कईयों को अच्छा नहीं लगता है यौन हिंसा के बारे में, क्योंकि वो प्राइवेट बातें हो जाती है। मैं फील्ड में एक औरत से मिली हूँ जो यौन हिंसा की शिकार है, उनके 10-12 बच्चे हैं ऐसे। उनके पति गुजर गए हैं तो वो अपने बच्चों के साथ रहती थी, तो उनके बच्चे में से जो उनका सबसे बड़ा वाला बेटा था वो अपनी माँ के साथ ही रेप करता था। जब वो मना करती थी तो वो सबके सामने शराब पी के सबके सामने मारता था, गांव वालों के सामने मारता था, रोड पे ऐसे मारता था जब वो नहीं मानती थी। और बहुत बार जबरदस्ती किया उसने, मारा भी बहुत, मतलब कपड़े निकाल के भी वो मारता था। उसके खिलाफ किसी ने केस भी नहीं किया, क्योंकि जो उस औरत की हेल्प करना चाहता था, मतलब उनको बचाना चाहते थे उस चीज़ से, चाहे वो औरत हो या जेंट्स हो, जो बेटा था ना वो उनके साथ भी मतलब झगड़ा करना, मारपीट करना ये सब करता था शराब पी के। और कई बार उसने दूसरे लोगों के साथ भी ऐसे किया, उसने मारपीट किया है। माँ के पास कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए उन्होंने बच्चों को छोड़ के दूसरी शादी कर ली।
5: नमस्ते जी, मैं नंदू कंवर बोल रही हूँ। मारी शादी ने 35 हो गई, यानी कि 35 साल हो गई। जब से मैं शादी कर मेरे ससुराल गई, के बाद में मैंने कोई परेशानी नहीं है, कि जो मैं घर में काम करती हूँ या मेरे को पैसे हैं, मेरा पीर का दियड़ो दहेज है, मार पीर की दियड़ी कोई भी चीज़ है, मैं कोई अधिकार नहीं जमाई और सब जो भी मारो मान रखियो, मतलब ससुराल में कि भाई थे या करो था को जो चीज़ बाप दादा को ले आ वह आपको ही अधिकार है, तुम्हारे सासू छू लगा ननद देवरणी जिठाणी कोई मारा हक नहीं जमाओ, जो मारे मन चाहिए तो मैं यूज करियो और जो मारे चाहिए भाई कोई ने भी देनो लेनो कहीं भी करियो तो मैं मारा हिसाब ही दियो लियो, ठीक है। फिर बाद में जब मारे खुद की भी मैं काम सिलाई पकड़ी जैसे भी चाहे भले वो 100 रुपये की सिलाई करी 50 की करी, जो मारे मन में हुई कि वह चीज़ खरीदनी है वो कोई ने देनो लेनो है तो वो ही दियो लियो और वही पैसा मारे कन जमा है, पर मारो परिवार कोई मैंने यूँ परेशान नहीं करियो कि आज आपका पैसा वहाँ न दो मैं कोई सामान लेवा करा, कोई परेशानी नहीं है। और आज भी मारे घर में मैं करूँ तो मारे ने कोई डिस्टर्ब नहीं करे और सब अच्छे से अच्छे काम करूँ मैं मारे, और जो भी सिलाई करो भले ही अपन 2 रुपये की कि भाई कोई बुनाई करो रहे कोई काज बटन करो रहे कोई भी काम करा आप तो मारे घर में मैं ही बाप रहूँ, और जो भी कोई पैसा आवे तो भाई देवरानी जिठानी लेनो देनो हो चाहे आगे सास ससुराल को देनो लेनो हो तो बेटा आप बोलो और आपने मन चाहे वो काम करो, तो ऐसो मारे तो घर में कोई परेशानी की बात नहीं है। और जो को भी कोई मैंने पूछे कहते अतरा मजबूत किया हुआ कि आपा काम करा और आपा ही नाम नहीं करा तो दूसरों कौन करी, तो सब समझदारियों काम ले और चालर जकी भी आवे तो मैं तो आई कोशिश कर भी खेऊँ, और कहते डरो मत कोई भी मत डरो अपने बढ़िया बढ़िया काम करनो और सारी होशियारी के साथ में चालनो सबने साथ में लेट चालनो, और जो आप काम करा और बीमे भी कोई हुआ तो भी ज्ञान बतावा कि बेटा यूँ नहीं करनो और यूँ करवाऊँ आगे आपने अच्छे काम हुई आगे पैसा टक्का घर बार परिवार सब आपने चलानो है तो सब भी हिसाब चालो। तो जो भी मार्केट कोई सिलाई वाली भी आवे ना वो भी बात पूछे कि भाभी साहब मैं तो यूँ परेशान आ घर हूँ दहेज की खातरी मन लड़े मगर आदमी भी कोई यूँ मान लड़े टाबर भी है कोई पड़ोसन भी माने यूँ के देवे कि भाई थे थाना यूँ लड़े करे तो आप घरे चले जाओ आंसू अलग हो जाओ, मैं एक ही बात हूँ कोई अलग नहीं होनो कोई इशू भी जो भी कह आपने काम करनो मजबूती के साथ करो मजबूती के साथ रहो और बढ़िया काम करो और सबने ज्ञान करो।
6: नमस्कार मेरा नाम तमन्ना है, हमारे पास में एक आंटी जी रहती है तो वो मतलब मानसिक हिंसा की शिकार हैं, उनके सास ससुर मतलब थोड़े पुराने ज़माने के, उनकी सोच मतलब नए ज़माने के साथ में बदली नहीं है, उनके साथ में एक बेटी है और वो फिर से प्रेग्नेंट है, तो उनके सास ससुर बोले कि हमको अब इस बार पोता ही चाहिए पोती नहीं चाहिए, पोतियाँ मतलब बड़ी होगी इतना खर्चा पैसा लगाएंगे शादी करके तो इनको दूसरे घर जाना है इसलिए हमें एक और पोती नहीं चाहिए हमें पोता चाहिए, पोता होगा तो हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा हमारा नाम रोशन करेगा, ऐसे ऐसे करके उनको बहुत ताने मारते थे और पूरा घर का काम उनसे ही करवाते थे, ना उनको टाइम पे भोजन देना ना उनका मतलब हॉस्पिटल वगैरह लेके मतलब ढंग से ध्यान ही नहीं रखना, बस जरा सी गलती हो जाए तो बस उनको सुनाना सुनाना, वो इतनी सास ससुर से परेशान हो जाए वो सोचते थे कि अब मेरे भी दूसरी लड़की नहीं होनी चाहिए, अब वो मतलब उनके ऑपरेशन से लड़की हुई वो हॉस्पिटल से जैसे ही घर आई तब भाई ताने शुरू, बेटी हुई है एक बेटी हमसे पालनी जा रही है या दूसरी पर ऐसे ताने दे कर करके उनको मतलब सुना सुना के 5 दिन की वो बच्ची हुई और वो भी ऑफ हो गई, फिर वैसे ही वो बीमार थी और वो मतलब डिप्रेशन में चली गई, फिर उन्होंने अपने पति को बोला तो पति बोले कि मैं सेटल होता हूँ वैसे ही मैं तुम्हें लेके जाता हूँ, अब वो क्या करे वो हिंसा को सहन कर रही है और अपनी चुप भी लगाए बैठी है।
3: तो सुना दोस्तों हमारे आबू की महिलाएं और लड़कियां किन हालातों से गुजर रही हैं, हम हमारे घर परिवार की महिला और लड़कियों को किस प्रकार की सुरक्षा या न्याय दे पा रहे हैं। हमारी इस कार्यक्रम की यही कोशिश है कि हम अपनों के लिए खड़े रहे और उनको साथ दें। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको आज का विषय घरेलू हिंसा के प्रकार बेहतर समझ में आया होगा, और आपके कोई अगर सुझाव है या अनुभव है तो आप हमारे साथ बांट सकते हैं। हमारा नंबर है 9414151415। अभी हम लेते हैं आपसे विदाई और कहते हैं सुनो समझो चुप्पी तोड़ो और कहो हिंसा को नो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। अभी आप सुनिए ये गीत आरजे उषा की जुबानी।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: हेलो सर, मैं स्वाति बोल रही हूँ आपके खाई बैंक से। सर आपका ATM कार्ड एक्सपायरी होने वाला है सर।
2: सावधान रहें, ये एक स्कैम कॉल है। अपना OTP या ATM पिन किसी के साथ भी शेयर ना करें।

सुनेगा ये जहां कहेंगे जो हम सुनेगा।

0: कीजिए।
1: हेलो नमस्कार, रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप, 107.8 FM रेडियो मधुबन पर स्वागत है आप सभी का। कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड और आज हमारे जो गेस्ट मौजूद हैं उनसे हम थोड़ा इंग्लिश में बात करेंगे दोस्तों, लेकिन उनके म्यूजिक को जब हम सुनेंगे तो मुझे लगता है सारी बाउंड्रीज भूल जाएंगे। तो आज हम स्टूडियो में स्वागत कर रहे हैं, टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस एंड इज ब्रदर निकोलस। एंड यू नो म्यूजिक हैज नो बाउंड्रीज। व्हेन वी हियर म्यूजिक समटाइम्स इवन इफ वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द लिरिक्स, इट्स द म्यूजिक दैट गेट्स टू आवर हार्ट्स एंड दिस शो इज ऑल अबाउट म्यूजिक। सो ब्रदर निकोलस, आई वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल आवर लिसनर्स।
2: थैंक यू वेरी मच, it's a pleasure to be here with you.
1: Same here, and we love to hear about you as well as your music. There's a piano sitting right next to me and I'm very excited to hear it, and it's very wonderful, colorful kind of instrument, so it's very beautiful. So I think our listeners will be able to hear it very soon. First I would like you to give us a little bit introduction about you.
2: Okay, I think there is many things we can say, but hello to everybody first. I came into this world in 75, and I was very a child who has some energy, you know, to be involved in something. So at the age of 10, I really discovered that music was something for me where I can express myself. I was a very shy personality, introverted. And music allowed me to grow inside, to have a conversation with myself, to build my inner world. And on top of that, without noticing,

सुनेगा ये जहां कहेंगे जो हम, सुनेगा ये जहां मिलकर जो

0: समाज री दुनिया रा हम सफर दोस्तों अपनो समाज कार्यक्रम रे मायने रेडियो मधुबन ने सुनवा वाला सगला श्रोताओं ने केसी जीन कर रहा घना घना राम राम गणी खम्मा अन्न जय माता दी। आप सुन रहा हो ब्रह्मा कुमारी रो सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। हम सुनता रहो मुस्कुराता रहो। श्रोता बंधुओं अन्न कार्यक्रम रे मायने अपो समाज रे माये फैली कुरुतियों वे है वनों ने कम करवा वास्ते समाज रा लोगों ती बात करो हो, समाज रा लोगों ने जागरूक करवा वास्ते समाज रा लोगों रा विचार लो हो और उन्होंने जागरूक करो हो। तो अन्य अलावा अपने भारत देश में कई जातियों वे है तो हर जाति रा अलग अलग रिवाज वे है, तो वे रिवाज रेडियो मधुबन रे मार्फत आपो प्रसारित करवा री कोशिश करो हो। तो आज आपो होतपुर गांव में एक समाज रा बंधु है, गुरु ब्राह्मण समाज रा बंधु वनोती आपो बात कर रही हूँ। तो वनोरो नाम है लसाराम जी गुरु जो होतपुर गांव में रहे है और सिलाई रो काम करे। तो अनोती आज आपो अनोरे समाज रे बारे में बात कर रही हूँ। तो सबसे पहला अपने मेहमान लसाराम जी गुरु रो स्वागत करो हो। तो लसाराम जी गुरु आप रो रेडियो मधुबन में स्वागत है।
1: नमस्कार सब भाइयों ने राम राम।
0: श्रोता बंधुओं आप सब ने रोम रोम किया है अपने मेहमान लसाराम जी और आपने भी मारा तरफ और रेडियो मधुबन तरफ रोम रोम है और आप रो भी रेडियो मधुबन में स्वागत है। तो अपने लसाराम जी ने पूछो हो कि आप सोनपुर गांव में कतरा साल तिर हो रही हो।
1: अच्छा जब गाड़ी रो स्टेशन आयो लेन आई मोरे दादाजी मारवाड़ी गाड़ी लेन ले नया तरह जमादारी करके यहाँ सातुर गांव में आवेन बसिया।
0: ठीक है आपरो कहना है कि आपरे दादाजी एटा आया था जद रेलवे लाइन बिछाई थी आबू रोड में वन टाइम है। तो आपरे दादाजी वन टाइम में अटका करता रेलवे लाइन में
1: जमादारी की थी।
0: रेलवे लाइन मतलब रेलवे में सर्विस की थी जमादारी री
1: जमादारी की थी
0: जमादारी।
1: हाँ
0: ठीक है। तो वन साल थी आप होतपुर गांव में रह रिया
1: हमेशा
0: जी। तो आपरे परिवार में हमें कतरा मेंबर है।
1: हमारे परिवार में हमें तो मैं और तीन भाइयों का बच्चा है
0: जी।
1: मोटा जी पूर्णिमा जी और प्रताप जी इनके मैं दिख रहा।
0: प्रताप जी रहा आप दिख रहा हो। ठीक है अच्छी बात है। तो आपरे जो गुरु ब्राह्मण है तो अन्य बारा में आपने पूछू गुरु ब्राह्मण रो मतलब का काम तो अन्य बारा में आप थोड़ी जानकारी दो।
1: ब्राह्मण में एक काम तो पढ़ना पोतावना करता था वेला भर्ती थी
0: जी।
1: अच्छा भर्ती खत्म होने के बाद में वे अपने हिवाई तो धंधो ही की हो।
0: तो वर्ती क्यों खत्म हुई? पहला जो शादी करावा आप जापता तो वर्ती खत्म क्यों हुई?
1: वो भाइयों बंटवारा हो गया ना
0: बंटवारा। वो तो वर्ती तो वारो तो आवता भाई छह महीना तू कर जे बारह महीना तू कर जे
1: वो तो गाँव में छोड़ दीजो ना।
0: अच्छा जो गाँव में छोड़े दो तो हमें आप वर्ती नहीं है शादी करावा काम नहीं रही है
1: कोई कह रहा निकाली सिलाई रो काम है।
0: आप सिलेरो काम करो कतरा साल थी मतलब सिलेरो काम हाथ में ली दो
1: आप? मैं हाई साल हुई
0: सिलेरो काम करो केरा फैंसी काम करो मारवाड़ी
1: मारवाड़ी।
0: अच्छा मारवाड़ी में क्या है ग्रासी और आदिवासी जाति
1: दबाड़ी ग्रासिया और दबाड़ी
0: काम आप करो। ठीक है अच्छी बात है। तो मारा देखवा है कि सबसे पुराना शायद आदिवासी कपड़ा हुआ में आप प्रेस लागे।
1: हाँ बस मुझ बनाऊ हूँ
0: मैं तो कोई बीजा
1: कोई बनावता नहीं है
0: जी। ठीक है आप रे खुदरे कतरा बेटा है?
1: वहाँ खुदरे बच्चा तीन था वन में एक बच्चो रियो है
0: मतलब
1: गुजरिया
0: गुजरिया
1: गुजरिया।
0: आप रे तीसरो बेटो हमें है जो वो क्या करे?
1: पत्थरोरी गढ़ाई में जाए
0: पत्थरी गढ़ाई करे। अच्छी बात है। तो वने ने बनाया नहीं आप
1: बढ़ावियो आठवीं पास करे
0: जी
1: न बने आगे बढ़ियो नहीं
0: जी। तो बनने बाद में बच्चा आप कौम हिकमा मिलियो तो हमें बड़ा धंधो बराबर करें।
1: ठीक है धंधो जाए तो ड्यूटी है नहीं तो कोई नहीं है। तो
0: पत्थर घड़े आबरोड में वे के आबरोड थी बाहर नहीं जाए
1: और रिको कॉलोनी में
0: रिको में जाए। ठीक है चलो अच्छी बात है। तो चलो मैं आप परिचय हुआ है तो हम हमें आपने समाज रे बारे में गुरु ब्राह्मण रे बारे में पूछते तो मैं आपने पूछू आपने समाज रे में कोई टाबर रो जन्म वे तो क्या रिवाज करो?
1: टाबर तो जन्म वे जन्म स्त्री काढ़े ने कंकु पत्री बनावो
0: मतलब जन्म पत्री बनावो
1: जन्म पत्री बनावो
0: पर मुई क्यों जन्म तो वो पर पैसे जिकन आपने वाली ने वो मेलो का मोरते मेली है तो आपने रिवाज है?
1: हाँ है रिवाज है मोरत मेलवा रिवाज है शादी करो दिवाली माते ओनो करो
0: नहीं तो मोरते मेलो तो मोरते मेलो बड़े आपने बने ने मोरते मेली तो टाबर वे तो पैसे कोई रिवाज करवा जाओ हमने
1: हाँ रिवाज करवा जाओ ચલો
0: ટાબર હવા મહિના બાદ હલાય તો ઓણો દે આપણે કોઈ
1: ઓણો આપણે શાદી કરો જબ શાદી બાદ મેં દિવાળી આવે જે શાદી ઓણો કરાવે
0: તો ઓણો વે કે ગોણો કે વણી તો
1: ઓણો કે ગોણો કે વાત એક એક જ વાત
0: પર જો નેન કા ટાબર ને લેના હોય જ્યારે જાઈ આણો દેખ ને
1: હા વણી જાઈ આરો ઓણો કે
0: જાઈ આરો ઓણો આપણે દીએ
1: હા
0: કા દીએ મતલબ જાઈ આણો
1: વંડે મા બાપ આગે હે જો કોઈ છોટા કડકલી ગાલો કોઈ ભી મોટીયો ગાલો કોઈ ભી જો મને ઈચ્છા પ્રમાણે મળે જો મને દે
0: જેરી વની ગુદડી હેરો કોમ કરે ઠીક અચ્છી બાત હે આપને ઉડમણી દેતા ભાઈ જો ભી મનક ભાઈ બન જાતા ભી
1: ના ને દેતા હે
0: અચ્છા હા આપો લે ના હો તો રંગ છોટ ના કરતા ભાઈ
1: રંગ છોટ ના કરી સૂરમો ખાય
0: અચ્છા હા ચૂરમો ખાય દેસી ઘીરો
1: દેસી ઘીરો
0: દેસી ઘીરો ડાલડાર ખાવા તો નહી ખાતા
1: ડાલડાર ને ખબર આવતા પણ અમે આલ ડાલડા છે
0: અચ્છા અચ્છા ચલો અચ્છી વાત હે તો અમે હું આપને પૂછું હું ચલો આપણે બચ્ચાર જન્મ હોય આપ લઈને આવ્યા તો અમે હોળી આવે તો ઢૂળ કરો આપણે
1: હા ઢૂળ કરો સા
0: તો ઢૂળ મેં કા રિવાજ કરો

0: अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? जिसे आप जानते भी नहीं उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और अब वीडियो कॉल रिसीव करने जा रहे थे। किसी भी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। आपका सोशल मीडिया अकाउंट हमेशा प्राइवेट या लॉक्ड रखें। किसी भी अनजान व्यक्ति की वीडियो कॉल कभी ना उठाएं। कोई भी व्यक्ति आपके प्राइवेट फोटोग्राफ्स या वीडियोस को लीक करने की धमकी दे या ब्लैकमेल करे तो बिना किसी डर या संकोच के तुरंत पुलिस का संपर्क करें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ।
1: श्रोता बहनों को शालिनी का नमस्कार
2: और संध्या गुप्ता का भी नमस्कार।
1: बहनों आपका स्वागत है अपने पसंदीदा कार्यक्रम जब पंख मिले अधिकारों के, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
2: और शालिनी आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं? आज हम बात करें बचपन पर।
1: बिल्कुल। देखो भाई, बचपन एक ऐसा मधुर शब्द है जिसे सुनते ही लगता है मानो शहद की मीठी बूंद जुबान पर रख ली हो। सच में इतनी कोमल कच्ची यादें दिल में उमड़ने लगती हैं और मुस्कुराहट आ जाती है होठों पर। देखो ना,
2: और मुझे तो लगता है कि बचपन वो है ना, लगता है कि जैसे छोटे से नन्हे कृष्ण कन्हैया की छवि हमारी आंखों के सामने आ गई है।
1: हाँ, क्यों नहीं।
2: बचपन वो है जहाँ मनुहार भी है, दुलार भी है, प्यार भी है और जिद भी है।
1: सच मुझे। और देखो ना, कितने सारे खेल हम बचपन की बात जब करते हैं तो याद आने लगते हैं। वो गिल्ली डंडा, वो तितली पकड़ना, घरौंदे बनाना, ये सब आज जब हम इतने बड़े हो गए हैं, वयस्क हो गए हैं, तो किसी को, किसी बच्चे को ये सब करते हुए देखते हैं तो अपना बचपन याद आने लगता है कि कितना सुंदर, सरल और सुविधाजनक था।
2: और देखो ना, ना कोई चिंता, ना कोई फिक्र, और बस वही अल्लड़ सी खिलखिलाट और किलकारियां जहां से गूंजती थी वहीं से लगता था कि जैसे कोई बचपन चला रहा है।
1: बिल्कुल संध्या। और देखो ना, बचपन कितना भोला और भावुक होता है, और लेकिन कभी कभी हम उस बचपन को ऐसे ऐसे तनाव और दबाव के बोझ से दबा देते हैं कि लगता है जैसे बच्चों का बचपन ही कहीं खो गया है और वो कुमला से गए हैं।
2: फिर उसे शालिनी बचपन तो नहीं कहा जाएगा ना, बस वो नाम मात्र का बचपन होता है।
1: हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा।
2: बचपन तो वहां कुचल चुका है, वहां तो वयस्कों जैसा जीवन हो गया है। तो आज हम एक बहुत ही मतलब भयावह तस्वीर है समाज की, उसकी तरफ अपनी सखियों का ध्यान खींचते हैं।
1: हाँ देखो, जब खेलने खाने की उम्र हो और तितलियां उड़ाने और गिल्ली डंडा खेलने की उम्र हो, और उस उम्र में अगर बच्चे को काम करने के लिए मजबूर कर दिया जाए या उसे कमाने के लिए मजबूर कर दिया जाए, तो हम उस समाज की क्या स्थिति हो सकती है, इस विषय पर थोड़ी बातचीत करेंगे।
2: हाँ, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गई कि आज हम बाल श्रमिकों के बारे में बात करेंगे, बाल श्रम के बारे में बात करेंगे। हाँ। आखिर शालिनी ये बाल श्रम अगर देखा जाए तो है क्या? अगर इसकी एक सामाजिक परिभाषा अगर हम गढ़ते हैं तो वो परिभाषा तो ये लगती है कि जैसे मजबूरी में की गई मजदूरी ही बाल मजदूरी है।
1: हाँ देखो संध्या, मुझे लगता है कि देखो घर में भी तो हम अपने बच्चों को कितनी बार काम करवाना करवाते हैं उनसे, यानी कि तुम ये करो, तुम ये सीखो, तुम वो सीखो, अपनी चीजें जगह पर रखो, बिस्तर बनाओ, कभी अपनी पढ़ाई खुद करो, तो क्या वो भी इसी श्रेणी में गिना जाएगा कि जब घर के बच्चों से काम करवाया जाए सिर्फ उनको सिखाने के लिए?
2: देखिए शालिनी, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार अपने शारीरिक या मानसिक विकास को क्षति पहुंचाकर 14 वर्ष या इससे कम आयु में ही वयस्कों के अनुरूप कार्य करना और वयस्कों के जैसे जीवन जीने वालों को बाल श्रमिक कहा जाता है। और जैसा कि आपने प्रश्न किया, तो बाल श्रम दो प्रकार का है। अपने माता पिता के साथ हाथ बटाता हुआ काम सीखता है अगर कोई बच्चा, तो उसकी पढ़ाई, मनोरंजन, स्वास्थ्य, खेलकूद पर कोई असर नहीं पड़ता है, तो वो बाल श्रम में नहीं रखा जाएगा। अच्छा। दूसरा, इसके विपरीत, जिसे मजबूरी में धन कमाने के लिए बड़ों की तरह यानी कि वयस्कों की तरह कार्य करना पड़ता है और बचपन से संबंधित उसकी मूलभूत आवश्यकताएं खत्म हो जाती हैं, वो असली बाल श्रमिक है। और इस दौरान उसको शारीरिक और मानसिक यातनाओं का भी सामना करना पड़ता है।
1: हाँ, ये तुमने बहुत ही अच्छी परिभाषा बताई संध्या, कि भाई इस तरह का जो बाल श्रम है, जो दूसरी तरह का है, जहाँ उसकी मूलभूत जो जरूरतें हैं उनका भी ख्याल नहीं रखा जाता है, ना वहाँ खेल होता है, ना स्कूल है, ना प्यार है, ना आत्मीयता है, तो ये सब तो उसके लिए कल्पना की बातें रह जाती है ना। तो इस तरह के जो बाल श्रमिक हैं, मुझे लगता है कि वो तो बिल्कुल मानव अधिकारों के खिलाफ ये बात है कि उनसे कार्य कराना।
2: और वैसे देखा जाए तो बाल श्रम कानूनी से ज्यादा एक सामाजिक, आर्थिक और नैतिक समस्या है। होना तो ये चाहिए कि इस तरीके की समस्याओं के निदान की जिम्मेदारी समाज को अपने कंधों पर लेनी चाहिए, लेकिन जब समाज अपनी जिम्मेदारी से पलायन करता है तब कानून की मदद से उन समस्याओं का समाधान ढूंढा जाता है।
1: हाँ भाई, देखो इस विषय पर जब हम बात कर ही रहे हैं, बहुत ही गंभीर ये समस्या बन चुकी है और भारत में भी बहुत सारे बाल श्रमिक हैं, लेकिन एक यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार ये समस्या सिर्फ भारत की नहीं है बल्कि विश्व भर की है। क्यों? क्योंकि उस रिपोर्ट के अनुसार दुकानों में, कारखानों में, ईंट भट्टों में या खदानों में, माइंस में, और उसके साथ साथ घरेलू कार्यों में भी करोड़ों की संख्या में बच्चे काम कर रहे हैं। बच्चे यानी कि 14 वर्ष से जो कम आयु के हैं वो कार्यरत हैं। और उस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि बांग्लादेश में करीब 55,000 से भी ज्यादा बाल श्रमिक हैं जो खाली वस्त्र उद्योग में कार्यरत हैं, और उनकी वजह से, उन बच्चों की वजह से बांग्लादेश में अमेरिका को लगभग 75 करोड़ डॉलर के वस्त्र निर्यात जो करता था वो सिर्फ उन बच्चों के या बाल श्रमिकों के कारण ही कर पाता है। लेकिन जब से अमेरिका ने बाल श्रम पर कानून लागू किए और उनके द्वारा तैयार किए माल पर उन्होंने पूरी तरह से रोक लगाई, तब से बहुत सारे, लगभग 75% बाल मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया गया, और जिससे कि हालात ये हो गए कि उनके परिवार और वो खुद भुखमरी की स्थिति तक आ पहुंचे।
2: ये आंकड़े तो कहीं से भी ठीक नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर माना किसी भी जगह की अर्थव्यवस्था बिगड़ती है तो इसका ये तो उपाय नहीं है कि बाल श्रमिकों को रोजगार दिया जाए।
1: बिल्कुल,
2: बड़ों को रोजगार करना पड़ेगा।
1: हाँ,
2: लेकिन एक बात आप सोचिए कि छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथ में किताबें होनी चाहिए, कलम होना चाहिए, खेल होना चाहिए, खेल
1: के स्थान
2: होने चाहिए, मैदान होने चाहिए, पार्क होना चाहिए, फुटबॉल हो, बैट बॉल हो, अच्छा बढ़िया पौष्टिक भोजन हो, तो इन सब की जगह इस उम्र में ही उनके पास अगर होता है तो क्या होता है? सिर्फ काम काम काम और नौकरी।
1: बिल्कुल, और भाई सचमुच इतनी ऐसी बातें सुनकर और इन बच्चों को काम करता हुआ देखकर मन में बहुत ही ज्यादा दुख की भावना उत्पन्न होती है कि हम किस तरह से इन बच्चों को इनका बचपन वापस लौटा सके। देखो ना, एक आंकड़े तो बताते हैं कि 2001 की जब जनगणना हुई तो उसके अनुसार भारत में बाल श्रमिकों की संख्या लगभग 1,30,00,000 थी, और ये ज्यादातर इसमें से बाल मजदूर जो थे वो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत थे, क्योंकि वहां पर बहुत खेती होती है या और तरह के भी काम होते हैं, तो उन सब में बच्चों को नियुक्त किया जाता है।
2: यहाँ आपने ग्रामीण क्षेत्र की बात की है तो मैं आपका ध्यान दूसरी तरफ भी खींचना चाहूंगी कि अकेले दिल्ली में 18% बच्चे बाल मजदूरी करते हैं, दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी में भी। और इनका औसत वेतन क्या होता है? 90 रुपए महीने।
1: ये तो सचमुच बहुत ही दिल दहलाने वाली बात है कि इतने छोटे बच्चे इतनी मेहनत से काम करते हैं और उनको मजदूरी क्या मिलती है? सिर्फ 90 रुपए
2: महीने की मजदूरी पर ये बच्चे काम करते हैं। और किन क्षेत्रों में लगे हुए होते हैं इनसे आप भी भली भांति परिचित हैं।
1: हाँ भाई, देखो जो मैं जनगणना की तुमको बात बता रही थी कि इसमें, इसके अनुसार लगभग 60% बच्चे जो हैं वो तो 10 वर्ष की आयु से कम है, और वो व्यापार और व्यवसाय में 23% है, और जबकि 36% जो बच्चे हैं वो घरेलू कार्यों में भी रत हैं। तो देखो कहाँ कहाँ हम बच्चों को, उनको मजदूरी करवा रहे हैं उनसे, और समाज की कितनी जिम्मेदारी इसमें हो जाती है कि वो ऐसे बच्चों का क्या करे। आखिर उन्हें कमाने की जरूरत है या नहीं है, कमा रहे हैं तो वो कितने घंटे काम कर रहे हैं, इन सब बातों पर विचार करना चाहिए।
2: और हमें तो सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि आखिर बाल मजदूरी की जरूरत पड़ी तो क्यों पड़ी? जो बचपन इतना सुंदर था, सलोना था, उसे हमने कुचलने की कोशिश क्यों की? और इसके लिए उत्तरदायी समाज का उच्च तबका भी है और समाज का निम्न वर्ग भी है।
1: और मेरे ख्याल से मध्यम वर्ग को भी क्यों छोड़ा जाए, वो भी तो इसके लिए उतने ही जिम्मेदार हैं।
2: बिल्कुल सही कह रही
1: हैं। तो कहने का अर्थ तो ये हुआ संध्या कि समाज का हर वर्ग इन्हें बाल श्रमिकों की जो ये आज हालत है और इनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है।
2: अच्छा, आप वर्ग की बात कह रही हैं, मुझे लगता है कि इनकी मानसिकता जो है वो जिम्मेदार है। अब आप देखिए
1: मानसिकता
2: उच्च वर्ग की भी निम्न वर्ग की भी। अब निम्न वर्ग की सोच आप देखिए, उनकी भी सोच क्या होती है, जितने हाथ होंगे उतना पैसा होगा। और उच्च वर्ग की मानसिकता क्या होती है कि हम बच्चों से ज्यादा काम कम पैसों में ले सकते हैं।
1: बिल्कुल।
2: अब इसे आप क्या कहेंगे, विडंबना कहेंगे ना? दोनों स्थितियों में कुचला क्या जाता है,
1: बच्चे,
2: बचपन कुचला जाता है।
1: बिल्कुल।
2: और दांव पर क्या लगता है, देश का भविष्य दांव पर लगता है। जिसकी बहुत बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ती है, जिसका हमें अभी आभास नहीं हो रहा है।
1: और संध्या मुझे तो लगता है जब तुमने दिल्ली की बात बताई तो उसमें ये भी देखने में आता है जो हम अपनी खुद आंखों से देखते हैं कि शहरी क्षेत्रों में बच्चों की संख्या मेरे ख्याल से ग्रामीण क्षेत्रों से कहीं ज्यादा है, क्योंकि यहाँ ये कैंटीन्स में काम करते हैं या फिर जगह जगह जो कूड़े के ढेर पड़े रहते हैं उनसे कचरा उठाते हैं या उसमें कुछ भी चीजें जो बेचने लायक होती हैं वो उठाते हैं,
2: घर पर काम करते हैं,
1: हाँ, सामानों की फेरी लगाते हैं,
2: उद्योगों में काम करते हैं,
1: हाँ। और तो मतलब इन बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो कहीं रिकॉर्ड में ही नहीं है लेकिन फिर भी वो काम कर रहे हैं और मजदूरी कर रहे हैं। तो और ऐसे जो जोखिम वाले काम हैं या व्यापार हैं, उद्योग हैं, उनमें भी ये बच्चे बहुत ज्यादा कार्यरत हैं। और जैसे कि प्रदूषित हानिकारक जो प्रदूषित कारखाने हैं वहां ये काम करते हैं और वहां की हवा कितनी विषैली होती है तो जो इनके स्वास्थ्य पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव डालती है और तमाम तरह की परेशानियां और बीमारियां उससे पैदा हो जाती है।
2: अगर हम इतने संवेदनशील होते तो शायद इन बच्चों को काम पर ही ना लगाते, तो हमने तो कहां उस हवा की फिक्र की और कहां उस बचपन की फिक्र की। और शालिनी, अब हम इसके कारणों में जाते हैं कि क्या कारण है जो हम बच्चों को काम में झोंक देते हैं और उनके बचपन को असमय ही कुचल देते हैं। सबसे पहला कारण तो शालिनी लगता है कि गरीबी है, कि इतनी ज्यादा गरीबी है कि परिवार का खर्च उठाना ही मुश्किल हो गया है।
1: तो माँ बाप एक बार के लिए भी ये नहीं सोचते हैं कि हमें इन बच्चों से काम नहीं कराना चाहिए और इनके लिए ये काम नहीं है, बल्कि वो बच्चे ज्यादा पैदा करते ही इसी मानसिकता से हैं कि जैसे कि तुमने कहा कि ज्यादा जितने हाथ होंगे उतनी ज्यादा कमाई होगी और भरण पोषण हम उनका कर पाएंगे।
2: इसके अलावा दूसरा कारण देखा जाए तो ये भी है कि कई बार बच्चों की मृत्यु गरीब परिवारों में ऐसा ज्यादा देखने में आता है असमय ही हो जाती है, कुपोषण के कारण हो गई या किसी और कारण से भी हो गई, क्योंकि वहां स्वच्छता नहीं रहती तो वो बीमारी का शिकार भी जल्दी हो जाते हैं। तो ऐसे में जो रिश्तेदार उनको पालते हैं वो उन पर एहसान करके पालते हैं और उन बच्चों का खर्च उठाना नहीं चाहते, इसलिए उन्हें जल्दी काम पर लगा देते हैं। अच्छा, शिक्षा का ना होना भी।
1: हाँ, अशिक्षक तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि जब माँ बाप ही शिक्षित नहीं होते हैं तो उनको लगता है सिर्फ बच्चों को पढ़ाकर क्या फायदा होगा, इसलिए वो बहुत जल्दी उनको किसी ना किसी काम में लगा देते हैं।
2: और शिक्षा का महंगा होना भी,
1: हाँ,
2: इसका एक बहुत बड़ा कारण है।
1: संध्या, ये बात तो है, देखो महंगी है शिक्षा लेकिन फिर भी सरकार की ओर से
2: सुविधाएं भी हैं
1: और ऐसे स्कूल खोले गए हैं जहाँ बिल्कुल शिक्षा निशुल्क है, दी जाती है। पर फिर भी यदि शिक्षा के प्रति कोई रुचि ना हो या मानसिकता ना हो तो ऐसे स्कूल में तो माँ बाप बच्चों को नहीं भेजेंगे ना।
2: और देखिए कई परिवारों में तो माता पिता हमेशा बीमारी रहते हैं तो वहां क्या किया जाए, वहां पर फिर ये जो छोटे बच्चे हैं
1: मजबूर हो जाते हैं
2: उनको काम करना पड़ता है। कई सामाजिक परंपराएं हमारे यहाँ ऐसी हैं और कर्जे में डूबे हुए होते हैं।
1: हाँ,
2: आप देखिए कि जहाँ भात की परंपरा है विवाह के समय तो धन ज्यादा लगता है, तो अब ऐसे में क्या किया जाए, छोटे बच्चे को भी काम पर लगा दिया जाए।
1: हाँ,
2: तो जो जितने हाथ होंगे उतनी कमाई होगी।
1: बिल्कुल।
2: तो इसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या और है शालिनी की, ये बच्चे अपनी आवाज नहीं उठा पाते, इनकी कोई यूनियन नहीं होती, इनका कोई संगठन नहीं होता, और ये अपने अधिकारों के प्रति जागरूक तो कैसे होंगे, क्योंकि हम उनसे इतनी उम्मीद तो नहीं कर सकते,
1: नहीं कर सकते।
2: और इनके आवाज को सुनने वाला अगर कोई मसीहा आ जाए तो बात अलग है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, जनसंख्या है। इसके अलावा मतलब देखा जाए तो ये सारे कारण जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल संध्या, सब कारण एक दूसरे से जुड़े हैं, क्योंकि ये समस्या सिर्फ पारिवारिक नहीं बल्कि सामाजिक है, आर्थिक है
2: और मानसिक समस्या भी है ये।
1: हाँ, और जिसने बहुत ही भयावह रूप ले लिया है और जो एक राष्ट्रीय समस्या अब बन चुकी है।
2: और जिस देश के बच्चों का कोई भविष्य नहीं होता, उस देश का कोई भविष्य नहीं होता, ये बात हमें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए।
1: बिल्कुल संध्या, देखो हम इसी चर्चा को अपने अगली कड़ी में बहुत ही विस्तार से करेंगे कि बाल श्रमिक जो हैं उनको लेकर क्या समाज कर रहा है, क्या कानून कर रहा है, और हमारी भी कितनी जिम्मेदारी बनती है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए बहनों से लेते हैं इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।

होंगे हम तो विघ्न हार जाएंगे शिक्षा बनेगी बल स्वस्थ होगा कल सहयोग की ईंटों से सफलता बनाएंगे पूरा करेंगे जो हुआ शुरू कुछ करने का वक्त आ गया चल रहा सिलसिला साथ का।

0: नमस्ते दोस्तों। भाई आज मीना और उसके दोस्तों का जोश तो देखते ही बन रहा है। क्या कहा? क्यों? अरे भाई, हर साल की तरह इस साल भी उनके गांव में तिगुना मजा जो चल रहा है। दरअसल हर साल गर्मियों की छुट्टियों में गांव के लड़कों और लड़कियों के बीच मनोरंजक खेलकूद का एक मुकाबला होता है। ये मुकाबला पूरे 3 दिन चलता है, इसलिए इसका नाम है तिगुना मजा। अब जैसे पहले दिन कृष्णा और मीना के बीच पहेलियां बूझने का मुकाबला हुआ, जिसे जीता अपनी मीना ने, और आज हुआ दूर रखे छोटे से डिब्बे में कंचे फेंक के डालने का मुकाबला सुनील और मिली के बीच। वो देखो, गीता दीदी सब बच्चों को उसी का नतीजा बता रही हैं।
1: बच्चों, आज का मुकाबला जीता है सुनील ने।
2: सुनील, सुनील, ये, सुनील।
1: तिगुने मजे के आखिरी दिन यानी कि कल होगा एक बहुत अनोखा मुकाबला, खजाने की खोज, जिसमें भाग ले रहे हैं लड़कों की टीम से दीपू,
2: दीपू, दीपू, दीपू, दीपू,
1: और लड़कियों की टीम से रीना,
2: रीना, रीना, रीना, रीना, रीना, कहाँ है रीना?
3: मैं भी वही सोच रही हूँ मिट्टू, कि ये रीना कहाँ रह गई? मीना, मीना, रीना, तुम अब तक ठीक कहाँ?
4: मेरी छोटी बहन पारो को बुखार हो गया है। माँ पिताजी को खाना देने खेत गई थी, इसीलिए मैं घर पे रुककर पारो का ध्यान रख रही थी।
3: पारो को तो चाची ने कल टीका भी लगवाया था ना?
4: हाँ मीना, शाम को माँ पारो को टीका लगवा के आई और रात को उसे बुखार हो गया।
5: किसे बुखार हो गया मीना? कहीं आज की हार से सब लड़कियों को तो बुखार नहीं हो गया?
3: सुनील, रीना की छोटी बहन पारो को बुखार हो गया है, हम उसी की बात कर रहे थे।
5: इसका मतलब कल के मुकाबले में जीत दीपू की होगी, क्योंकि रीना तो शायद अब खेलेगी नहीं। क्यों दीपू?
1: खेले या ना खेले, जीतना तो मैंने ही है।
3: सुनील, दीपू, रीना कल जरूर खेलेगी, और कौन जीतता है और कौन हारता है ये तो कल ही पता चलेगा।
0: और अगले दिन।
1: बच्चों, तुम सब जल्दी से हाथ धो लो, तब तक मैं ये अमरूद धो देती हूँ।
0: गीता दीदी अमरूद धो के ले आई। सब बच्चों ने एक एक अमरूद लिया, लेकिन रीना ने अमरूद नहीं लिया।
3: क्या हुआ रीना, तुम अमरूद क्यों नहीं खा रही?
4: मीना, अगर मैंने अमरूद खाया तो उसके बीज मेरे दांतों में फंस जाएंगे।
3: फिर क्या हुआ रीना, घर जाके दांत मांझ लेना। क्यों दीपू?
1: सुमी ठीक कह रही है रीना, खा लो अमरूद, वरना मुकाबले के बाद कहोगी
6: मैंने अमरूद नहीं खाया था ना, इसलिए मैं दीपू से हार गई।
1: बच्चों, तिगुने मजे का आखिरी मुकाबला अब से ठीक आधे घंटे बाद शुरू होगा। दीपू तैयार?
6: बिल्कुल तैयार।
1: और रीना तुम?
4: मैं भी तैयार हूँ गीता दीदी।
1: शाबाश। सब बच्चे ध्यान से सुनो, आज के मुकाबले का नाम है खजाने की खोज। ये जो तुम रेत का टीला देख रहे हो, मैंने इसके बीच में छुपाया है वो खजाना, यानी कि एक डिबिया। सीटी बजते ही रीना और दीपू इस रेत में हाथ डाल के उस डिबिया को ढूंढेंगे। जिसने डिबिया पहले ढूंढ ली वो होगा इस मुकाबले का विजेता।
3: रीना, मुझे पूरा विश्वास है कि ये मुकाबला तुम ही जीतोगी।
4: मैं इस मुकाबले में हिस्सा नहीं ले सकती।
3: ये तुम क्या कह रही हो रीना?
4: मैं ठीक कह रही हूँ मीना, मैं उस रेत में हाथ डालूंगी तो सारी रेत मेरे नाखूनों में घुस जाएगी और मेरे हाथ भी गंदे हो जाएंगे।
3: थोड़ी देर की तो बात है रीना, खेल के बाद अपने हाथ धो लेना।
4: नहीं, मैं अपने हाथ गंदे नहीं करूंगी।
3: मेरे पास एक तरकीब है रीना, अभी बताती हूँ। गीता दीदी?
1: हाँ मीना, कहो।
3: दीदी, अभी तो मुकाबला शुरू होने में समय है, क्या तब तक रानू और मैं भाग के उसके घर से दस्ताने ले आएं?
1: ले आओ, लेकिन जल्दी आना।
3: जी दीदी। चलो रीना, तुम्हारे दस्ताने लेके आते हैं।
6: दस्ताने लेके आते हैं, दीपू को हराते हैं।
0: मीना और रीना भाग के रीना के घर पहुंची।
3: नमस्ते चाची।
7: खुश रहो मीना बेटी। लेकिन तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? रीना, तेरा तो मुकाबला था ना?
4: उसी के लिए दस्ताने लेने आए हैं माँ। मीना तुम माँ के पास रुको, मैं अभी आई।
2: अभी आई, दस्ताने लाई।
3: चाची जी अब पारो कैसी है?
7: अब तो पहले से फर्क है बेटी, मैंने उसे बुखार उतारने की दवा जो दे दी थी।
3: चाची कल तो आप पारो को टीका लगवा के लाई, फिर उसे बुखार कैसे हो गया?
7: मीना बेटी टीका लगने के बाद अक्सर बच्चों को बुखार आ जाता है। और अरे रीना बेटी मिल गए दस्ताने?
4: हाँ माँ, लेकिन अभी आपने कहा कि टीका लगने की वजह से ही पारो को बुखार हुआ है, फिर आपने पारो को टीका लगवाया ही क्यों?
7: उसे खतरनाक बीमारियों से बचाना है इसीलिए। टीका लगने के बाद बच्चों को मामूली बुखार होना तो आम बात है, लेकिन वो बुखार उतारने वाली दवा से ठीक भी तो हो जाता है। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि हम बच्चों को टीका ही ना लगवाएं, आखिर उन्हें खतरनाक बीमारियों से भी तो बचाना है। रीना बेटी बड़े फायदे के लिए छोटी मोटी तकलीफ को सहने में ही समझदारी है।
4: आप ठीक कह रही हैं माँ, टीका लगने से भले ही पारो को बुखार हुआ हो लेकिन वो खतरनाक बीमारियों से तो बची रहेगी। चलो मीना।
7: तुमने अपने दस्ताने वापस क्यों रख दिए रीना?
4: अब मुझे इनकी जरूरत नहीं माँ।
3: लेकिन अगर रेत तुम्हारे नाखूनों में?
4: मीना बड़े फायदे के लिए छोटी मोटी तकलीफ सहने में ही समझदारी है।
0: मीना और रीना भागी भागी वापस अपने दोस्तों के पास पहुंची। थोड़ी देर बाद दीपू और रीना का मुकाबला शुरू हुआ।
2: दीपू।

0: लेकिन अगर तुम्हारे दांतों में अमरूद के बीज फंस गए तो?
1: आज मैंने एक बात सीख ली है मीना।
0: वो क्या?
1: बड़े फायदे के लिए छोटी मोटी तकलीफ सहने में ही समझदारी है।
2: भाई वाह, तिगुने मजे की कहानी सुनकर तो अपना मजा चौगुना हो गया है ना। चलो अब अपने इस चौगुने मजे को थोड़ा और बढ़ाते हैं मीना और मिट्ठू की नई कविता सुनकर।
0: बच्चों को जब टीका लगता हो सकता उन्हें बुखार है,
3: लेकिन उसे मत घबराना, उसका भी उपचार है।
2: भाई वाह, बिल्कुल सही बात कही है मीना और मिट्ठू ने। छोटे बच्चों को टीका लगने पर बुखार तो हो सकता है, लेकिन वो उम्र भर खतरनाक बीमारियों से तो बचे रहते हैं, है ना। चलो अब अपने मजे को और बढ़ाते हैं। क्या कहा, कैसे? अरे भाई गाना सुन के भूल गए।

0: गाना सुन के मजा आया ना? मुझे भी बहुत मजा आया। अब चलते हैं थोड़े और मजे करने। सोचो सोचो कहाँ चले? सही पहचाना, अब चलते हैं मीना की क्लास में खेलने।
1: बच्चों आज हम खेलेंगे नाम अनेक अक्षर एक। मैं आप सबको एक अक्षर दूंगी और उस अक्षर से आप मुझे किसी व्यक्ति, जानवर, वस्तु और जगह का नाम बताएंगे, ठीक है?
2: जी जी।
1: तो आज का अक्षर है स। अब स से बताओ किसी मशहूर व्यक्ति का नाम।
3: सलमान खान। हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग दबंग।
1: शाबाश दीपू। बच्चों पता है ना सलमान खान कौन है?
4: अभिनेता, हीरो, एक्टर, फिल्मों में काम करते हैं।
1: हाँ बिल्कुल ठीक। चलो अब सर से किसी जानवर का नाम बताओ।
5: सांड।
1: सही जवाब कृष्णा। और बच्चों पता है दक्षिण भारत में पोंगल के पर्व पर सांड दौड़ और सांड युद्ध की परंपरा है। चलो अब सर से किसी वस्तु का नाम कौन बताएगा?
4: सर से सुराही।
1: बिल्कुल सही मिली। सुराही में पानी भर के रखने

0: ए, वो कैसा हो जाता है?
1: ठंडा।
0: बिल्कुल ठीक। चलो अब बताओ सर से किसी जगह का नाम।
2: सीतापुर।
0: बिल्कुल सही मीना। और सीतापुर भारत के किस राज्य में है?
2: उत्तर प्रदेश में।
0: शाबाश। तो मजा आया ना बच्चों?
1: जी मेरी।
3: भाई मुझको भी बहुत मजा आया, आपको भी आया ना? फिर ठीक है, अब मैं चलता हूँ। हम जल्द ही मिलेंगे अपनी मीना की नई कहानी, नए गीत और नए खेल के साथ। और हाँ, अपनी दोस्त मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, अपने सुझाव, विचार, अनुभव सब लिखना।
4: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 1100003।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
1: रेडियो मधुबन।
2: नटखट बंटी। पात्र परिचय। पापा के रूप में सैंडी, मम्मी के रूप में कृष्णा, बंटी के रूप में आदित्य और नरेटर शशिकांत। बंटी के पापा घर के फिजूल खर्चों से बहुत परेशान थे।
3: बिजली का बिल, फोन का बिल, केबल का बिल, पेपर का बिल, ओ मेरी तो पूरी तनख्वाह इन बिलों में चली जाती है।
4: हाँ पापा, और मेरी स्कूल की फीस में भी तो काफी खर्चा होता है।
3: हाँ बेटा, कल्चर एक्टिविटी चार्ज, स्कूल यूनिफॉर्म, स्पोर्ट्स, ना जाने क्या क्या चार्ज देने पड़ते हैं।
4: पापा एक आइडिया है खर्च बचाने का।
3: वो क्या है?
4: पापा मैं अपने स्कूल से नाम कटवा लेता हूँ, काफी खर्च बच जाएगा।
3: चुप रहो शरारती बंटी, जब देखो तो पढ़ाई से बचने का तरकीब सोचते रहते हो।
4: सॉरी पापा, मैं कोई दूसरी तरकीब सोचता हूँ खर्च कम करने की।
3: ये हुई ना बात, खर्च बचाना ही है तो फिजूल खर्च बचाओ, ना कि जरूर की चीजों की कटौती करके स्कूल जाना ही छोड़ दो।
4: पापा ये फिजूल खर्च क्या होता है?
3: फिजूल खर्च मतलब बेवजह के खर्च, जैसे बगैर जरूरत के सामान खरीदना, टीवी फालतू चलाना, थोड़ी थोड़ी दूर के लिए गाड़ी की सवारी और मुफ्त में पेट्रोल को बेकार जलाना।
4: पापा बस मैं समझ गया, आज से इस घर में फिजूल खर्च बंद।
5: वाह बंटी, बहुत समझदार हो गए हो। मैंने गलती से गैस खुला छोड़ दिया था, तुमने फौरन बंद कर दिया।
4: हाँ मम्मी, आखिर फिजूल खर्च बचाना है।
3: बंटी जाओ गोपाल के साथ मेरे स्कूटर पर और लॉटरी से मेरे कपड़े प्रेस करा लाओ।
4: नहीं पापा, स्कूटर से पेट्रोल जलेगा और लॉन्ड्री में प्रेस कराने से खर्च बढ़ेगा, मैं घर पर ही आपके कपड़े प्रेस कर देता हूँ।
2: पापा ऑफिस जाते वक्त अपना नया शर्ट पहन रहे थे तभी चीख उठे।
3: ओ नो, ये मेरे नए शर्ट रोशनदार कैसे बन गए?
4: सॉरी पापा, प्रेस करते वक्त प्रेस जड़ा ज्यादा गर्म हो गई थी।
3: भाई बंटी, खर्च बचाने की तुम चिंता ना करो, वो तुम्हारा काम नहीं है, इस तरह तो तुम और भी मुसीबत बढ़ा दोगे।
5: बंटी जरा देख कर आना, काम वाली बाई क्यों नहीं आ रही है, कहीं बीमार तो नहीं है?
4: नहीं मम्मी, बाई को तो मैंने मना किया है, वो क्या है कि फिजूल खर्च बचाना है।
5: ओ नो, फिजूल खर्चे के चक्कर में ये लड़का जीना ही हराम कर देगा। बंटी आज से तुम खुद की फिजूल खर्चों पर कंट्रोल करो, ना कि घर बार को डिस्टर्ब करो।
2: रात को बंटी महाराज अंधेरे में बैठकर टीवी का प्रोग्राम देख रहे थे।
5: अरे शरारती बंटी, क्या तुमने होमवर्क कर लिया और ये अंधेरे करके टीवी क्यों देख रहे हो?
4: ओ मम्मी, आपने ये तो कहा था कि खुद की फिजूल खर्चे पर कंट्रोल करो, इसलिए अंधेरा करके बिजली का बिल बचा रहा हूँ।
2: मम्मी ने समझाया कि अंधेरे में टीवी देखने से आंखें खराब होती है और इस तरह बंटी को फिजूल खर्च क्या है ये समझाने में मम्मी पापा को काफी मेहनत लगी।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: फ्रेंड्स, अगेन आई हैव कम विथ अनदर लेसन विच इज लेसन नंबर 9, मैन्स ट्रू सन। Name of the book is Golden Rays and the writer of this lesson is H.M. Lambert. So, again, I welcome you. First, about the text इसमें दिया हुआ है, उससे हम start करते हैं। तो class 10th राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की Golden Rays की English की जो book है, main book, वो हम पढ़ रहे हैं और इसका 9th लेसन अभी हम आज करेंगे। अ मैन्स ट्रू सन इज अ टचिंग स्टोरी, द टचिंग स्टोरी अबाउट एन ओल्ड जेंटलमैन, एक बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में बहुत ही मन को छू लेने वाली ये कहानी है। और वो बुजुर्ग व्यक्ति हु ट्रीटेड ही जेनरसली इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम एनी पनिशमेंट। और ये बुजुर्ग व्यक्ति जो थे, उन्होंने एक चोर को बहुत ही सज्जन तरीके से स्वागत किया, बल्कि उसको किसी तरह पनिशमेंट नहीं दिया, किसी तरह का दंड नहीं दिया। द जेंटलमैन्स काइंडनेस टच्ड द हार्ट, और इसकी जो दयालुता थी इस बुजुर्ग व्यक्ति की, उसकी वजह से ये जो चोर था, उस चोर के हृदय पर उसका बहुत असर पड़ा। एंड माइंड ऑफ द थीफ हु बिकेम अ रिफॉर्म्ड पर्सन, और वो बाद में बहुत ही परिवर्तित व्यक्ति बन गया चोर, एंड गेव अ सरप्राइज गिफ्ट टू द जेंटलमैन, और उसने इस बुजुर्ग व्यक्ति को एक उपहार दिया। बस यही कहानी है। अब हम टेक्स्ट को पढ़ते हैं, अबाउट द टेक्स्ट पढ़ लिया, अब एक्चुअल टेक्स्ट हम पढ़ते हैं। ओके, देयर वर अ ग्रेट फेस्ट बींग हेल्ड इन द हाउस ऑफ अ सर्टेन जेंटलमैन, एक कोई विशेष सज्जन व्यक्ति थे, उनके घर पर एक बहुत बड़ा भोजन का आयोजन किया गया था, दावत का आयोजन किया गया था, जिसको आमतौर पर हमारे गाँव में जीमण बोलते हैं इस तरीके से, या आजकल पार्टी बोल सकते हैं। इट वॉज हिज बर्थडे, और ये उनका जन्मदिन था। एंड मैनी ऑफ हिज रिलेशंस हैड कम फ्रॉम फार एंड नियर टू ग्रीट हिम, और दूर पास के सब रिश्तेदार उसके इस प्रोग्राम में उसका अभिवादन करने के लिए और उसका स्वागत करने के लिए आए थे। एंड ब्रिंग हिम गिफ्ट्स, और उसके लिए उपहार भी लेके आए थे। He entertained his guests, उसने अपने जो मेहमान थे उनको बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया। It was his duty to look after them, उनको ठीक से उनकी देखभाल करना, उनका स्वागत करना, ये तो उसका कर्तव्य था। भाई घर पे हमारे कोई आया है, अच्छा उसके साथ व्यवहार करना, ये तो हमारा कर्तव्य है ना। In the evening, शाम को ही gave a great feast, शाम को बहुत शानदार स्वादिष्ट भोजन का आयोजन किया उन्होंने। एंड द गिफ्ट्स विच द गेस्ट्स ब्रॉट, और जो उपहार, जो तोहफे वो जो मेहमान लेकर के आए थे, वर प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द हॉल, जो हॉल था उसके बीचों बीच में उनको रख दिया गया, सो दैट ऑल माइट सी देम, ताकि हर कोई उनको देख सके। व्हेन द फीस्ट वॉज ओवर एंड गेस्ट्स हैड गॉन, जब वो भोजन समाप्त हो गया, जब वो पार्टी पूरी हो गई और मेहमान चले गए, द मैन वेंट टुवर्ड्स द प्लेस वेयर द गिफ्ट्स वर, तो वो आदमी उस जगह पे गया जहाँ पर सारे के सारे उपहार रखे हुए थे। एंड बिगेन टू पुट देम अवे केयरफुली, और उनको बहुत ध्यान से इधर उधर, मतलब जहाँ उनकी जगह थी, जहाँ उनको रखना था, वहाँ रखने लगा। As he did so, जैसे उसने ऐसा किया, he suddenly caught sight of the shadow of a man on the floor of the hall. तो हॉल के फर्श पर उसी समय उसको एक व्यक्ति के सिर की छाया नजर आई। मैंने देखा कुछ तो गड़बड़ है। ही न्यू दैट देयर मस्ट बी समवन हाइडिंग इन द रूफ। उसने देख लिया, वो समझ गया कि छत में कोई है जिसने छुपा रखा है अपने आप को, या जो छुपा हुआ है। एंड रियलाइज दैट देयर वॉज अ थीफ अप देयर। और ये समझ गया ये बुजुर्ग आदमी कि वहां पर एक चोर है। ही कॉल्ड हिज सर्वेंट, उसने अपने नौकर को पुकारा एंड सेड, और कहा, ऑल द गेस्ट्स हैव नॉट येट बीन, कि सारे के सारे जो मेहमान हैं उनको अभी भाई खाना नहीं खिलाया गया है। ब्रिंग बैक द डिशेस, खाना वापस लेकर के आओ। द सर्वेंट डिड एज ही वाज टोल्ड, जैसा कि सर नौकर को कहा गया नौकर ने वैसा ही किया। ही ब्रॉट बैक सेवरल डिशेस, कई सारे जो खाना था वो लेकर के आ गया। एंड वेटेड फॉर हिज मास्टर टू टेल हिम, और उसने इंतजार किया कि उसका मालिक आदेश दे कि भाई ये किन्हें परोसना है। मेहमान तो उसके अनुसार सब चले गए थे, बट लेकिन द मैन टोल्ड हिम फास्ट सिंपल, टोल्ड हिम टेल की सेकेंड फॉर्म, लेकिन उस आदमी ने उसे बताया टू लीव देम एंड गो, भोजन को यहीं छोड़ दो और जाओ। देखिएगा, समझिएगा बात को, उस आदमी ने यह कहा कि भोजन को यहीं छोड़ दो और जाओ। एज ही विश्ड टू बी अलोन, क्योंकि वो चाहता था वो अकेला। देन फिर ही लुक्ड अप, ऊपर देखा उसने, पास सिंपल ही चल रहा है, कहानियों में अक्सर भूतकाल में बात होती है ना, पास टेंस में, और पास सिंपल में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। एट द मैन हु वाज हाइडिंग इन द रूफ, उन्होंने देखा उस आदमी की तरफ जिसने कि अपने आप को छत में छुपा रखा था। एंड सेड होता है, इट इज गुड ऑफ यू टू कम टू माय हाउस ऑन माय बर्थडे, आज मेरे जन्मदिन के अवसर पर तो मेरे घर आए हो, ये देख करके बड़ा अच्छा लगा। आई थॉट, मैंने सोचा दैट कि ऑल द गेस्ट्स हैड लेफ्ट, कि सारे मेहमान चले गए हैं, बट यू हैव नॉट बीन येट सर्व्ड, लेकिन तुम्हें तो अभी तक हमने खाना खिलाया ही नहीं। प्लीज कम एंड शेयर दिस हम्बल मील विद मी, कृपया करके आओ और मेरे साथ ये भोजन स्वीकार करो। द थीफ वॉज वेरी मच अफ्रेड, चोर तो डर गया। एज ही क्लाइम्ड डाउन फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, जैसे ही वो अपने छुपने के स्थान से नीचे उतरा, बट ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड हिमसेल्फ ट्रीटेड एज ऑल द अदर गेस्ट, लेकिन उसको ये देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस भद्र पुरुष ने, इस सज्जन आदमी ने उसका स्वागत भी बाकी मेहमानों के जैसे ही किया। तो कहते हैं ना स्टूडेंट्स की अच्छाई ही बुराई को हरा सकती है, बुराई बुराई को नहीं हरा सकती। हिज होस्ट सर्व्ड हिम विद ग्रेट कट्स, पूरे शिष्टाचार के साथ उस व्यक्ति ने उसको खाना खिलाया। एंड व्हेन ही रोज टू लीव, जब वो जाने के लिए उठा, द ओल्ड मैन गेव हिम अ गिफ्ट, तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उसको एक उपहार भी दिया, एंड अ बैग ऑफ कॉइन्स, और एक सिक्के भी, सिक्कों का एक थैला भी दिया। खाना भी मिल गया, सिक्के भी मिल गए और उपहार भी मिल गया, वाह। एंड हिमसेल्फ टुक हिम टू द गेट, और खुद दरवाजे तक छोड़ने गया, पूरा अच्छा व्यवहार किया उसके साथ ऑफ द। देखते हैं इस सब का क्या असर होता है। सेवरल ईयर्स लेटर, कई वर्षों के बाद, द ओल्ड जेंटलमैन्स बर्थडे फीस्ट वॉज अगेन बींग हेल्ड, इस सज्जन व्यक्ति के जन्मदिन के अवसर पर दोबारा से एक पार्टी रखी गई। मैनी गेस्ट्स केम, बहुत सारे मेहमान आए, एंड ब्रॉट हिम गिफ्ट्स, और उसके लिए उपहार लेकर के आए। एंड एज ही वॉज ग्रेटली लव्ड, और इस प्रकार सभी उसका आदर करते थे, प्रेम करते थे। सम ऑफ द गिफ्ट्स वर ब्यूटिफुल, कुछ उपहार तो बहुत ही सुंदर। Towards द एंड ऑफ द इवनिंग, शाम होते होते अ स्ट्रेंजर केम, एक अजनबी व्यक्ति आया, ब्रिंगिंग अ स्मॉल बॉक्स फॉर द ओल्ड मैन, इस बुजुर्ग व्यक्ति के लिए एक छोटा सा बक्सा लेकर के आया। ही रिफ्यूज्ड टू टेल हिज नेम, उसने अपना नाम बताने से मना कर दिया, बट आस्क्ड इफ ही कुड सी द ओल्ड मैन हिमसेल्फ, लेकिन उसने साथ ही साथ पूछ लिया कि क्या वो खुद, ये जो आज जिनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, उनसे मिल सकता है। ओके, व्हेन द ओल्ड मैन ओपन्ड द बॉक्स, जब उस बुजुर्ग व्यक्ति को बॉक्स दिया गया, उसने बक्सा खोला, ही फाउंड इनसाइड इट अ प्रेशियस पर्ल, तो उसके अंदर एक बहुत ही बहुमूल्य, बहुत ही खूबसूरत माणिक था, एक मोती था, वर्थ अ ग्रेट डील ऑफ, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत ज्यादा महंगा। He told his servant, उसने अपने नौकर से कहा, to bring the stranger immediately, तो उस अजनबी को तुरंत लेके आओ भाई, कौन है वो अजनबी देखें तो सही। The stranger entered, वो अजनबी आया। As he approached the old gentleman, जैसे ही वो बुजुर्ग व्यक्ति के पास आया, he bowed low, उसने झुक करके अभिवादन किया, सलाम किया, प्रणाम किया, जिसको भी आप जो भी कहें। He knew that his host was unable to recognize him. वो समझ गया कि उसका जो मेजबान है वो उसको पहचानने में अब योग्य नहीं है, असक्षम है। Because his sight was, क्योंकि अब उसकी आंखों की रोशनी, उम्र बढ़ने के बाद आंखों की रोशनी चली जाती है ना। So he went nearer and said quietly, he knew that his host was unable to recognize him because his sight was dim. So he went nearer, वो इसीलिए अजनबी व्यक्ति उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास गया, and said, और कहा बहुत शांति से, I am the one whom you helped greatly many years ago. मैं वही हूँ जिसकी मदद आपने कई वर्षों पहले की थी। It was very kind of you to feed me when I came to your house uninvited. जब मैं बिना बुलाए आपके घर आया था और आपने बहुत ही प्रेम से, बहुत आदर के साथ मेरा सम्मान किया, मुझे खाना खिलाया, कुछ रुपए भी दिए थे, मुझे बाहर तक छोड़ कर भी आए। The old man replied, उस बुजुर्ग व्यक्ति ने जवाब दिया, It is a great joy to hear that I was able to do some good to you. मुझे ये सुनकर के अच्छा लगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सका। It is my duty, ये मेरा कर्तव्य है, to look after you, आपकी देखभाल करना। I want you to have dinner with me. मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ भोजन करो, but in order to invite you, आपको बुलाने के लिए, I must first know your name, मुझे तुम्हारा नाम मालूम होना चाहिए। The man who had brought the priceless gift replied, वो व्यक्ति जो उपहार लेकर के आया था, बहुमूल्य उपहार, जवाब दिया, श्रीमान सर, once before on another occasion like this, आज ही के जैसे किसी और अवसर पर, you invited a guest without knowing his name, आपने एक मेहमान को बिना नाम जाने बुलाया था। That guest was hiding in your roof, जो कि आपके छत पर छुपा हुआ था, and wishing you ill, वो कुछ खराब सोच करके आया था, कुछ बुरा सोच करके आया था, चोरी करने के उद्देश्य से आया था। Yet, फिर भी, you treated him with honor, आपने उसका बहुत ही अभिवादन किया, बहुत स्वागत किया, and कर्टसी और बहुत शिष्टाचार का व्यवहार उसके साथ। Would you not invite him today as you did then, जैसा आपने तब किया था, क्या आज आप ऐसे आमंत्रित नहीं कर सकते हैं? The old gentleman remembered how he had found the thief hiding in his roof. उस बुजुर्ग व्यक्ति को याद आया कि कैसे उसकी छत पर एक चोर छुपा हुआ था एंड द स्ट्रेंजर एक्सप्लेन्ड हाउ द काइंडनेस शोन टू हिम ऑन दैट ओकेजन और किस प्रकार उस अजनबी के साथ दया का व्यवहार किया था हैड चेंज्ड हिज लाइफ और उसी व्यवहार ने उसके जीवन को बदल दिया सिंस दैट डे उस दिन से ही हैड गिवन अप हिज एविल वेज जो बुरे बर्ताव बुरे काम थे उसके वो उसी दिन से उसने छोड़ दिए एंड ट्राइड टू अर्न हिज लिविंग बाय ऑनेस्ट वर्क ईमानदार काम करके ही उसने अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया एज यस वेंट बाय समय बीता ही बिकेम वेरी रिच वो बहुत अमीर बन गया बट दैट डिड नॉट मेक हिम एरोगेंट लेकिन अमीर व्यक्ति बनने के साथ साथ वो घमंडी नहीं बना गुस्से नहीं बना इट वॉज हिज ड्यूटी अब ये उसका कर्तव्य था कि ही फेल्ट टू शो टू अदर्स द सेम काइंडनेस दैट हैड बीन शोन टू हिम बाय द और अब ये उसका कर्तव्य बन गया कि जो अच्छा व्यवहार उसके साथ किया गया था वैसा ही अच्छा व्यवहार वो दूसरों के साथ द ओल्ड जेंटलमैन वॉज डीपली टच्ड बाय द स्टोरी इस कहानी से ये बुजुर्ग व्यक्ति बहुत ही प्रभावित हुआ एंड व्हेन ऑल द अदर गेस्ट्स हैड लेफ्ट जब बाकी सब मेहमान चले गए ही टर्न्ड टू द स्ट्रेंजर वो उस अजनबी की तरफ मुड़ा एंड सेड और कहा टू हिम उससे कि यू सी तुम देखते हो आई हैव मैनी सन्स एंड ग्रैंडसन मेरे बहुत पोते पोतियाँ हैं बेटे बेटियाँ हैं बट नन ऑफ देम सीम्स सो डियर टू मी लेकिन मुझे इतना प्रिय कोई नहीं लगा दिस नाइट आज रात एज यू जैसे कृष्ण थ्रू अ लिटिल काइंडनेस एक थोड़ी सी दया के बदले विच आई डिड टू यू जो मैंने आपके लिए किया सो मैनी ईयर्स अगो जो कि बहुत वर्ष पहले अदर एक्ट्स ऑफ काइंडनेस हैव बीन बॉर्न आपके अंदर ही वैसा ही भाव पैदा हो गया एंड नाउ देर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ सन्स एंड ग्रैंडसन और अब कोई सीमा नहीं है जबकि बेटों की पोते पोतियों की एंड ग्रेट ग्रैंडसन्स ऑफ दैट वन स्मॉल डीड ऑफ माइन और मेरे उस छोटे से एक अच्छे कार्य ने आज आपके अंदर इतना परिवर्तन कर दिया आई एम ग्रेटफुल टू यू मैं तुम्हारे प्रति आभारी हूँ बिकॉज क्योंकि यू हैव बीन द मीन्स ऑफ पासिंग ऑन दैट काइंडनेस उस दया को दूसरों तक पहुँचाने का तुम माध्यम बने हो यू आर इंडीड अ ट्रू सन टू मी तुम वास्तव में मेरे सच्चे पुत्र हो दैट्स वाई द नेम ऑफ द स्टोरी इज अ मैंस ट्रू सन एंड इट वॉज वेरी गुड of you to come to me and tell me your story और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज आप मेरे पास आए और आपने अपनी अपनी कहानी यहाँ पर मुझे सो ये आज एंड हुआ इस स्टोरी का दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी नंबर 9 फ्रॉम द बुक गोल्डन रेस कुछ मीनिंग्स इसमें दिए हुए हैं लास्ट में हम देख लेते हैं क्योंकि फीस्ट इंग्लिश का मीनिंग है इंग्लिश में ही अ ग्रैंड ट्रीट या बैंक्वेट यानी कि वही बहुत बड़े एक तरह से खाना पार्टी या उत्सव जैसा माहौल ग्रीट नाउन है ये वेलकम ग्रीट का मतलब वही स्वागत अभिवादन एंटरटेन्ड ये भी नाउन है सर्व्ड टुक केयर ऑफ यानी परोसना एक तरह से या स्वागत करना ध्यान रखना देखभाल करना कॉट साइट ऑफ ये ईडियम है कॉट साइट ऑफ देखिए दो तीन शब्द जहां मिल जाए तो वो ईडियम हो जाता है और जिसका कोई मीनिंग भी निकलता हो लेकिन वो सेंटेंस नहीं हो वो होता है ईडियम कॉट साइट ऑफ सॉ यानी देखा अ ग्रेट डील ऑफ ये भी ईडियम है अ बिग क्वांटिटी बहुत बड़ी मात्रा बहुत बड़ी संख्या क्वाइटली ये एडवर्ब है शांति से इन ए लो वॉइस धीमी आवाज में प्राइसलेस ये एडजेक्टिव है वेरी कॉस्टली बहुत ही महंगा ग्रेटफुल ये भी एडजेक्टिव है थैंकफुल यानी आभारी तो ये कुछ मीनिंग्स दिए हुए थे इसके बाद में अब हम लेसन नंबर 10 पढ़ेंगे. आज 9 हमारा कंप्लीट हो गया है. सो वेट फॉर द लेसन नंबर 10.

0: से बहस।
1: बचपन की सुरक्षा है एक खास जिम्मेदारी, इस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति के साथ उन्हें लंबे समय के पुनर्वास के लिए मदद भी करता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। बच्चे या बड़े जो उनकी सहायता करना चाहते हैं डायल कर सकते हैं 1098 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: हेलो सर, मैं स्वाति बोल रही हूँ आपके खाई बैंक से। सर आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है सर।
1: सावधान रहें, ये एक स्कैम कॉल है। अपना ओटीपी या एटीएम पिन किसी के साथ भी शेयर ना करें।
2: या तुम्हें पता है मेरे को ना नेचर में रहना बहुत पसंद है।
3: मुझे भी बहुत पसंद है।
2: शिक्षा तुम्हें पसंद है?
4: हाँ मुझे तो नेचर बहुत पसंद है। कितनी ठंडी हवा आती है ना, जब लाइट चली जाती है, हम पेड़ के नीचे बैठे होते तो मैं अच्छा लगता है।
2: उस टाइम तो मजा ही अलग होता है, धरती पे स्वर्ग। अरे कौन धरती पर स्वर्ग लेकर आ गया है?
5: दीदी हम लाए हैं।
2: अच्छा,
5: पेड़ों के साथ।
2: पेड़ों पौधों के साथ तो अलग ही महसूसता होती है। सच में क्या बात है, आज सारे बच्चे पेड़ पौधों के बारे में बात कर रहे हैं।
5: हाँ जी दीदी।
2: चलो करते हैं, चलो फिर एक काम करते हैं, बच्चों की दुनिया में आज बात करते हैं प्रकृति के बारे में, कैसा रहेगा?
5: अच्छा।
2: तो चलो चलते हैं इस सफर पर। और बच्चों की दुनिया में आज कौन कौन है हमारे साथ वो भी तो जान ले।
6: मेरा नाम राघव है, मैं क्लास सिक्स में हूँ।
7: मेरा नाम शिक्षा है, मैं क्लास टेंथ में हूँ।
8: मेरा नाम शिवांशी है, मैं क्लास टेंथ में हूँ।
9: मेरा नाम रिया है, मैं क्लास सेवेंथ में हूँ।
2: ओके, तो बच्चों प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रकृति तो जैसा आपने बताया ना कि कितना अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवा आती है, तो आपको क्या क्या अच्छा लगता है जब आप किसी ऐसी जगह पर जाते हैं? वैसे तो हम लोग जिस जगह पे रहते हैं, माउंट आबू में बात करें, आबू की बात करें, तो बहुत सुंदर जगह है ना।
7: हाँ।
2: सबसे अच्छा क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पर?
7: यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, अगर है ना लाइट वगैरह भी, वैसे तो जाती नहीं है, पर अगर चली भी जाए तो बाहर बैठो चेयर पे और ठंडी हवा आ रही होती है पेड़ के नीचे, इतना अच्छा रिलैक्स फील होता है पेड़ के नीचे। अगर है ना कोई भी स्ट्रेस हो, कुछ आपको मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा हो, तो बस पेड़ के नीचे जाके बैठो, बहुत अच्छा लगता है।
2: पेड़ के नीचे अच्छा लगने लगता है। राघव को क्या अच्छा लगता है?
6: दीदी अगर अपा को कुछ सोल्यूशन चाहिए तो अगर अपा पेड़ के नीचे जाके बैठेंगे तो सोल्यूशन अपा को मिल जाएगा।
2: पेड़ के नीचे सोल्यूशन मिल जाता है? अच्छा, आपको मिला है कभी सोल्यूशन?
6: हाँ मिला है।
2: क्या मिला है?
6: मतलब एक बार उधर बैठा था तो मुझे साइकिल में हवा भरना आ गया था।
2: पेड़ ने राघव को हवा भरना सिखाया? मतलब आपको याद नहीं आ रहा था पेड़ में नीचे बैठे तो याद आ गया, ऐसा? कि सीख ही लिया आपने पहली बार?
6: नहीं मतलब मेरे को हवा भरने में उसने मदद की, उसकी साइकिल की पेन नहीं मिल रही थी तो वो मिल गई।
2: अच्छा वो मिल गई,
6: ऐसा बोला।
2: ओके ओके ठीक
5: है। ऐसा बोलना चाहिए था ना कि पिन मिल गया, ऐसा थोड़ी बोलना था कि साइकिल में हवा भरने।
2: तो पेड़ उसका दोस्त है ना, पेड़ ने उसकी मदद कर दी है ना राघव। ठीक है। और आपको क्या अच्छा लगता है रिया? सबसे अच्छा यहाँ पे क्या लगता है आबू में, माउंट में, जब आप जाते हो तो?
9: यहाँ के ट्रीज वगैरह।
2: ट्रीज अच्छे लगते हैं।
9: और यहाँ पे पोल्यूशन भी नहीं है, और लाइट चली जाए तो यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं लगती।
2: हाँ ये बात है, पोल्यूशन भी नहीं है ना इतना जितना बाकी शहरों में हम जाते हैं तो देखते हैं। तो वो भी अच्छा लगता है, खुला आसमान दिखाई देता है ना। और शिक्षा?
7: और यहाँ पे हम जब जाते हैं ना घूमने तो किसी जगह यहाँ पे देखो जैसे पानी वगैरह, आनंद सरोवर में झरने वगैरह चलते हैं।
2: हाँ।
7: वहाँ पे व्यू इतना अच्छा लगता है ना, मन करता है बस वहीं पे बैठे रहो
2: देखते रहो,
7: बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे तो।
5: और दीदी शाम को घर के बाहर बैठने में तो मजा ही अलग है, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, एसी से भी ठंडी
2: है ना।
5: एसी की जरूरत ही नहीं पड़ती,
2: एसी की जरूरत ही नहीं पड़ती।
6: दीदी जब हम इधर नहीं आए थे तो मैंने सुना था कि इधर पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है, और इधर आके पता चला इधर तो पानी की कमी नहीं, बारिश ही आ जाती है पूरी।
2: ऐसा कोई कोई लोग सोचते हैं ना कि राजस्थान है तो सिर्फ डेजर्ट होगा, है ना, सूखा होगा, यहाँ पे तो बस कैमल्स ही होंगे। कई बार लोगों को भ्रांतियाँ होती हैं अलग अलग जगह के बारे में जब पता नहीं होता ना, जबकि ये तो हिल स्टेशन भी है राजस्थान में, माउंट आबू तो है ना। पहाड़ किसी को नहीं अच्छे लगते, पहाड़ों का तो किसी ने नाम
6: नहीं
2: लिया।
5: हम जब हरियाणा में थे हमारे घर के पास में ही पहाड़ था, तो मतलब हम उधर ना पहाड़ के पूरे चक्कर में फेरी बना रखी थी, तो शाम को उस फेरी पे घूमने जाते थे ना, तो ठंडी ठंडी हवा चलती थी तो चलने में मजा आता था।
6: दीदी हम तो पहाड़ के ऊपर भी चढ़ते थे।
2: पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते थे?
5: और दीदी उधर मतलब अलग अलग मतलब भेड़ बकरियां आती रहती थी ना, तो ऐसे लगता था कि हाँ जंगल में ही घूम रहे हैं पूरा।
2: हाँ ऐसा फील होता है ना।
5: हाँ, पूरा
2: जानवर भी हैं वहाँ पे। ओके,
5: पूरा मस्त फील होता है,
2: मस्त लगता है। हाँ शिक्षा?
7: मैं तो जहाँ पे रुकी हूँ ना अभी, वहाँ पे छत पे एक झूला है, मैं तो उस पे बैठती हूँ, बस पहाड़ को ही देखती रहती हूँ, मैं बोर भी नहीं होती पता नहीं क्यों, बस सोचती हूँ मैं यहाँ से इस रास्ते से ऊपर जा सकती हूँ, इस रास्ते से सरल है यहाँ पे पहुँच जाऊंगी, इस पे ट्रैकिंग करेंगे, पता नहीं मन में यही चलता रहता
2: प्लानिंग है। चलती रहती है
7: हाँ। बोर भी नहीं होते,
2: बोर नहीं होते ना, अकेले बैठे हो तो भी बोर नहीं होते।
7: हाँ, नहीं होते।
9: दीदी हम, मेरे पापा आर्मी में है तो हम असम गए थे, वहाँ पे हमारे घर के चारों तरफ पहाड़ थे तो हम वहाँ पे रोज जाते थे और ठंडी ठंडी आ रही थी वहाँ पे, अच्छा लगता था।
2: क्या बात है, तो आपको तो असम तो बहुत सुंदर जगह है ना, कोई गया है असम?
5: नहीं, पर असम में तो मतलब पहाड़ तो बहुत ज्यादा है क्योंकि वहाँ पे टीकी ग्रोइंग है ना, पहाड़ तो फिर बहुत ज्यादा है।
2: रिया बता सकती है हमको क्या अच्छा है असम के बारे में जो आपने देखा?
9: वहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चलती है, लाइट ना हो तो हम वैसे रह सकते हैं,
2: रह सकते हैं वहाँ पे ना,
9: और लाइट हो फिर भी हम फैन ऑफ करें तो वहाँ पे फिर भी रह सकते हैं।
2: कितना सुंदर है ना हमारा भारत भी, सारे शहर सारे अलग अलग गाँव भी जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। आप लोग कोई गाँव गए हो कभी?
6: गाँव में नहीं रहते, मतलब गाँव भी नहीं है वो, शहर भी नहीं है
5: वो, टाउन है। टाउन और गाँव दोनों ही कह सकते,
2: दोनों कह सकते हैं। ओके, तो गांव के बारे में सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है?
7: गांव में ना दीदी, अगर पड़ोस में लोग भी हो ना, बिल्कुल अपने परिवार जैसी फील आती है वहाँ पे। सब लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अगर जानते नहीं हो ना फिर भी आपसे बात करेंगे वहाँ पे सब लोग, जैसे कि वहाँ पे डॉगी वगैरह घूमते हैं सब, आपके इतने फ्रेंडली होते हैं, इतने अच्छे दोस्त होते हैं वहाँ पे हर एक लोग। वहाँ पे ना घर के बाहर पेड़ लगा है तो वहाँ पे सब एक साथ बैठते हैं, लाइट चली जाए तो घर के बाहर आके सब बैठ जाते हैं, फिर बातें होती है, सब अपने अपने बारे में बताते हैं कि हमारे यहाँ पुराने टाइम में ऐसा होता था, सब अपनी अपनी हिस्ट्री खोलते हैं, फिर है ना वहाँ पे चटाई बिछा के बैठते हैं बाहर, फिर अच्छा लगता है सुनने में सबके बारे में, फिर तो रात को नींद ही नहीं आती जब तक, और लाइट आ जाए ना तो ये लगता है अब तो आना ही नहीं था, बात अधूरी रह गई,
2: क्यों आ गई लाइट।
7: हाँ
2: ओके, और शिवांशी, रिया आप लोगों को क्या अच्छा लगता है बताओ, जो जिसको बताना बताओ। अच्छा, गाँव के बारे में, रिया आप गए हो गाँव, क्या अच्छा लगता है, कुछ भी जो भी एक भी चीज अच्छी लगती है आप बता सकते हो?
9: वहाँ पे पोल्यूशन ज्यादा नहीं होता है।
2: पोल्यूशन तो नहीं होता है, सही बात है, पोल्यूशन से ना स्वास्थ्य के लिए भी नुकसान होता है वैसे तो, लेकिन साथ साथ जो खुला आकाश हमें आज दिखाई देता है वो भी नहीं दिखाई देता है शहरों में ना, बिल्डिंग्स में पोल्यूशन में, तो वो भी अच्छा लगता है।
5: और दीदी गाँव में ना सुबह सुबह जब वो चिड़िया 5-6 बजे ऐसे चहचारी होती है और सुबह 3-4 बजे मुर्गा बांग देता है, वो सुन के बहुत मजा आता है।
2: उससे उठ जाते हो?
5: एक बार
6: दीदी
5: मतलब उठी हुई थी बाय चांस, मैं वैसे ही छत पे गई थी तब सुना था
2: ना।
6: दीदी मुझे एक बात अच्छी लगती है, मैं तो 6 बजे बैठ पर उठा के बाहर चला जाता हूँ।
2: अच्छा, सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है ना। आप लोगों ने उगता हुआ सूरज देखा है? और ढलता हुआ सूरज देखा है? क्या ज्यादा अच्छा लगता है? उगता हुआ अच्छा लगता है,
6: उगता हुआ ऐसा लगता है कि ऊपर संतरा आ गया आसमान में, ऑरेंज ऑरेंज और नीचे से रेड रेड लगता है।
2: हाँ सही बात है, सही बात है, ऑरेंज ऑरेंज कैसा, इतने सारे कलर्स दिखाई देते हैं ना सूर्योदय जब होता है तो, कितने लाल लाल सा।
6: दीदी एक बार मैंने वो देखा था, एक रेनबो था उसके साथ, उसके ऊपर एक और रेनबो था, तो मैंने 2 रेनबो एक साथ देखे थे।
2: हाँ ये तो बड़ा रेयर है, ऐसा तो बहुत कम दिखाई देता है ना कि 2 रेनबो साथ दिखाई
5: देता है, ऐसा भी कम दिखाई देता है जब सूरज और रेनबो एक साथ निकले।
2: हाँ
5: अभी थोड़े दिनों पहले भी यहाँ पे रेनबो निकला था ना आबू में।
2: अच्छा?
5: हाँ पहाड़ों पे खत्म हो रहा था।
2: वाह कितना सुंदर लग रहा होगा ना। हाँ,
5: उसमें से फिर ना जब ऐसे मतलब बादल हट रहे थे ना सूरज के साथ, तो ऐसे लग रहा था कि रेनबो में से रोशनी निकल रही है।
2: वाह
6: दीदी अगर अपा दूर से देखते तो अपा को ऐसा लगता है कि ये इधर है, तो अगर अपा उधर जाते तो ऐसा लगता है वो और ज्यादा दूर हो गया।
2: सही बात है, मतलब कहीं से भी जाते हैं वो अलग अलग नजर आता है।
5: जैसे अपन ड्राइंग बनाते हैं ना वैसे नेचर्स भी ड्राइंग बनाती है। अभी थोड़े दिनों पहले ही जैसे हम बादलों में देख रहे थे, हमने पहले कान्हा जी देखे, तो कहीं थोड़ी दूर गए, उसके बाद हमने बर्ड देखी क्लाउड्स की बनी हुई, अलग अलग चीजें से बनाती रहती है।
2: रिया आपने देखा है कभी बादलों में कोई शेप या कुछ और दिखाई दिया हो ऐसा?
9: एक बार देखा था।
2: क्या देखा था?
9: महादेव जी की फोटो।
2: अच्छा वो आपको बादलों में नजर आई? अरे वाह। और शिक्षा?
7: मैंने तो एक बार उसमें बस छोटा सा हाथी देखा था।
2: हाँ छोटा हाथी भी दिखाई देता है ना, कुछ भी एनिमल्स भी दिखाई देते हैं कभी कभी।
6: दीदी मैंने रियल शिव जी देखे थे, मतलब बादलों से शिव जी बने हुए थे उनके, ऐसे वो इधर जैसे वो एक गंगा भी थी और इधर जो रियल चांद था बादलों से भी बना हुआ था वो रियल चांद था।
2: अच्छा
6: आधा था वो भी।
2: अच्छा कहाँ दिखाई दिया आपको?
6: मैं खेल रहा था तब दिखाई दिया था, रात हो गई थी तब।
2: आसमान में?
6: मैं सबको बुला के भी आया था, शिवांशी तो बहुत ज्यादा लेट आई थी
5: उस दिन, वो महाशिवरात्रि थी उस दिन।
2: अच्छा अरे वाह, तब तो आप बहुत लकी हो, है ना, आपने तो साक्षात दर्शन कर लिए। नहीं अच्छी बात है, आपको कभी कभी ना आपके अंदर भावना होती है ना, वो भी आपकी भगवान के प्रति कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है कि आप क्या देखते हो, है ना। और भगवान जी तो आपके साथ है ही हमेशा, तो क्यों नहीं दिखाई दे सकते भाई। और अच्छा क्या लगता है आप लोगों को, जैसे आपने बादलों के बारे में कहा, अगर मैं आपसे पूछूं आपका फेवरेट ट्री कौन सा है या फ्लावर कौन सा है?
5: मेरी फेवरेट ट्री तो मैंगो है।
2: ओके और फूल?
5: रोज।
2: ओके और रिया को कौन सा पसंद है पेड़ और फूल?
9: दीदी बनियन एंड लोटस।
2: बनियन ट्री पसंद है आपको, क्यों अच्छा लगता है बनियन ट्री?
9: वो देखने में मुझे अच्छा लगता है।
2: अच्छा ओके और शिक्षा को क्या पसंद है?
7: दीदी मुझे भी ना बरगद का ही पेड़ पसंद है, क्योंकि मेरे घर के बाहर भी ना वही लगा है,
2: बरगद का पेड़ लगा है। और फूल कौन सा अच्छा लगता है?
7: फूल मुझे गुलाब अच्छा लगता है, हमारे घर में ना गुलाब इतने सारे लगे हैं और उनकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है।
2: गुलाब की खुशबू बड़ी अच्छी लगती है ना। राघव को कौन सा पेड़ और फूल अच्छा लगता है?
6: मुझे तो रोज अच्छा लगता है।
2: और पेड़ कौन सा अच्छा लगता है?
6: ड्रैगन फ्रूट का।
2: ड्रैगन फ्रूट का अच्छा लगता है। ओके हाँ वही, आजकल तो बहुत लोग ड्रैगन फ्रूट उगा रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, और हमें यहाँ भी हम देखते हैं बड़ा रेयर फ्रूट है वो, है ना
7: दीदी? उसका तो नाम बदल दिया गया अभी।
2: अच्छा
7: हाँ अभी मधुबन में उसका नाम ना लोटस फ्रूट रख दिया गया है।
2: ओके
7: हाँ क्योंकि है ना उसका ड्रैगन फ्रूट तो चाइना का नाम था, अब यहाँ पे मधुबन में तो उसका नाम बदल दिया,
2: तो नाम बदल दिया गया है उसका। ओके बहुत सुंदर भी दिखता है ना पिंक पिंक कलर का।
6: दीदी वो बाहर से ना पिंक कलर का होता है और अंदर से उसके अंदर सस्पेंस होता है, उसके अंदर तीन कलर, कोई भी वो रेयरली होता है, रेयरली तो सबसे ज्यादा वो मिलता है येलो मिलता है और वाइट और पिंक कॉमन होते हैं।
2: अच्छा येलो भी होता है ड्रैगन फ्रूट? अच्छा ये तो मुझे भी नहीं पता था।
6: वो बाहर से तो पिंक ही दिखता है पर अंदर से अलग अलग कलर होते हैं, इसीलिए वो ज्यादा रेयर होते हैं।
2: वाइट तो होता है ना उसमें डॉट डॉट जैसे दिखाई देते हैं।
5: दीदी वो फ्लावर जैसे होते हैं, उनको सिर पे भी लगा सकते
2: हैं। हाँ तो अगली बार गिफ्ट में दिया जा सकता है किसी को।
5: किसी का ड्रैगन फ्रूट फेवरेट हो ना तो उसको देते हैं। हाँ। सिर में लगाएंगे।

0: अच्छा लगता है, हवा भी बहुत शुद्ध करता है वो, है ना, और एक अच्छी फीलिंग आती है उसके आसपास रहो तो. और साथ साथ फूल फूल भी बहुत सारे सुंदर लगते हैं. रात की रानी भी बहुत अच्छा लगता है, उसकी जो महक होती है ना वो बड़ी अच्छी होती है. आप वहाँ पे वॉक करो तो सच में ऐसा लगता है कि आप प्रकृति की गोद में हो, तो वो भी बहुत सुंदर लगता है. कमल बहुत सुंदर लगता है ना, बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल हैं. वैसे रोज़ भी बहुत अच्छे हैं, रोज़ तो बड़े सारे कलर्स के भी होते हैं, है ना
1: दीदी. तभी आप कमल पुष्प समान है.
0: कमल पुष्प समान तो बनना है हम सबको.
2: चाइना रोज अलग वैरायटी होती है एक रोज की.
0: हाँ, रोज की तो बड़ी सारी वैरायटी. ब्लैक रोज भी होता है पता है,
2: चाइना रोज भी होता है, वो अलग होता है.
0: अच्छा, वो तो मुझे भी नहीं पता.
1: हर कलर के आने लग गए, रेड, पिंक, ब्लू.
0: ब्लू भी होता है रोज,
1: कलर्स डालता है.
0: येलो भी होता है ना
2: दीदी, कई तो नेचुरली भी ब्लू होते हैं.
0: आप लोगों ने कभी आपने कभी रोज गार्डन या ऐसे फूलों वाले कुछ गार्डन्स कभी विजिट किए हैं?
1: एक बार करा है चंडीगढ़ में.
0: आपने रिया कहाँ पे? आपने रिया कहाँ पे किया?
3: दीदी बहादुरगढ़ में.
0: बहादुरगढ़ में क्या है वहाँ पे?
3: नाम याद नहीं.
0: कोई बात नहीं, मतलब वहाँ पे क्या देखा आपने?
3: फ्लावर्स थे अलग अलग टाइप के,
0: बहुत सारे तरह के फ्लावर थे. शिक्षा
4: दीदी, हमारे यहाँ तो है ना छोटा सा बगीचा है.
0: ओके.
4: हाँ, वहाँ पे ही हमारे यहाँ बहुत सारे फूल लगे हैं सुंदर सुंदर.
0: कितना अच्छा लगता है हमको देख.
4: हाँ, हमारे पास जब है ना फ्री टाइम होता है स्कूल से, जैसे की छुट्टी होती है, आज फ्री है तो हम चले जाते हैं वहीं पे बैठते हैं.
0: अरे वाह. हाँ राघव.
2: दीदी चंडीगढ़ में हम घूम के आए थे, रॉक गार्डन था और एक और था, उधर झरना भी था एक अच्छा.
0: तो मतलब सबको प्रकृति अच्छी लगती है, लेकिन ये तो हमें महसूस होता है जब हम प्रकृति के नज़दीक होते हैं. किसी ने आप में से कभी कोई पेड़ लगाना या पौधा लगाना या फूल लगाया है कभी?
1: हाँ जी, हाँ? लगाया.
0: सबने लगाया है. हाँ, राघव ने भी लगाया है. अच्छा, कौन सा लगाया है, कब लगाया है, थोड़ा सा बताइए अपना अपना एक्सपीरियंस. हाँ बताओ राघव. कोई बात नहीं, जब तक बाकी लोग बताएंगे तब तक याद कर लेना, ठीक है?
2: नहीं, पहले से ही मुझे याद नहीं है. मैंने बहुत जब छोटा था मैंने तब याद था मुझे, अब तो याद नहीं है. तभी मैंने पहले बोल दिया क्योंकि आप पहले पूछ रहे थे.
0: अच्छा, तो छोटे थे तब लगाया था आपने, इसलिए अब याद नहीं है, है ना? कोई बात नहीं, अभी अब जब थोड़े बड़े हो गए हो ना तो फिर से लगा लेना, ताकि अब आपको याद रहे.
2: दीदी अब तो स्कूल की एक्टिविटी मिली है, हम मैंगो ट्री लगाएंगे.
0: अच्छा, आम का पेड़ लगाना है.
1: नहीं भी, आम खाते हैं ना सारे, उसके गीटके सुखा के फिर करेंगे.
0: ओके.
1: मम्मी कहते हैं सारे के आम के पेड़ ही लगाने, और कोई फ्रूट नहीं है तुम्हारे पास.
2: दीदी मैं तो ये सोच रहा हूँ जब मैम देखेंगे तो मैम बोलेंगे क्या पूरे वेकेशन आम ही खा रहे थे क्या तुम लोग,
0: इतने सारे पेड़ लगा दो.
1: अलग अलग वेराइटी के सारे, कोई सिंदूरी है, कोई तोता आम है, कोई लंगड़ा आम है, कोई नॉर्मल आम है.
0: हाँ, बहुत सारी वेराइटी होती है आम की भी. तो आप लोग तो आम का पेड़ लगाने वाले हो, और बताओ कौन सा लगाया है, क्या अनुभव था आप लोगों का?
4: दीदी हमने तो बगीचा भी बताया था ना, उसमें मैंने चीकू का पेड़ लगाया था. हाँ, और उसमें हिबिस्कस भी लगाया था एक फूल.
0: अरे वाह.
4: हाँ, उसमें रात रानी भी है.
0: वाह.
4: हाँ,
0: तो उसको कैसे लगाया, क्या किया था उसमें, मतलब पहले डाला जड़ों को या मिट्टी डाली, क्या किया?
4: वो तो नर्सरी से लेके आए थे.
0: हाँ.
4: तो वहाँ पे उसमें पूरा सब कुछ था, बस गड्ढा खोदा था हमने और पापा ने मिलके. गड्ढे में उसको पॉलीथिन से निकाला, उसमें रख दिया, ऊपर से मिट्टी डाल के पानी डाला थोड़ा सा. और दीदी उसी दिन है ना, थोड़ी देर हुई होगी, मैं बस है ना वो हाथ धोए कि उतने में बारिश हो गई.
0: अरे वाह.
4: उसके बाद वो इतने सुंदर खिले ना, 3-4 दिन बाद ही उनमें फूल लगे.
0: हाँ, और खुद लगाओ कोई पौधा और उसमें कोई फूल या फल निकल के आता है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है.
4: हाँ.
0: है ना, कितनी खुशी होती है,
1: ऐसे लगता है मेहनत रंग लाई.
0: हाँ, सही बात है.
2: दीदी अगर अपन फ्रूट उगाते और वो अगर अपन लेने ही जा रहे होते फिर अपन देखते हैं कोई और ले रहा है और वो एक ही बचा था, तो अपन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है.
0: हाँ, ये तो है. लेकिन फिर देखो पेड़ और पौधे ऐसी चीज है ना जो देते ही रहते हैं, मतलब उसमें अभी तो नहीं तो कल परसों फिर फूल निकल आएगा, फिर से फल निकल आएगा, है ना
2: दीदी? कई पेड़ तो ऐसे होते हैं जिसमें फूल और फल एक साथ ही निकलते हैं.
0: बिल्कुल. रिया आपने कभी पेड़ लगाया, पौधा लगाया?
3: हाँ दीदी, मैंने अपने पिछले स्कूल में लगाया था.
0: कौन सा?
3: अमरूद का पेड़ लगाया था और रोज लगाया था.
0: अच्छा, कैसे किया था, क्या किया था?
3: पहले दीदी गड्ढा खोदा, नर्सरी में से लाए थे प्लांट, वो लगा दिया उसमें.
0: ओके.

0: फिर वो थोड़े दिन बाद वो उसमें फ्लावर्स आ गए थे।
1: तो उसको बाद में देखते रहते हो आप लोग कि कैसा कुछ उग रहा है, क्या हो रहा है?
0: हर रोज पानी डालते थे।
1: हर रोज देखते हो? पौधों से बातें करते हो कि नहीं करते हो?
2: करते हैं दीदी।
1: करते हो? रिया आप करते हो?
0: हाँ दीदी।
1: क्या बातें करते हो?
0: वो जब लाइट चली जाती फिर जब बाहर बैठते हैं तो इतने आराम से वो इतनी ठंडी हवा देते हैं। मैं सोचती हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ, आप इतनी ठंडी हवा कैसे देते हो?
1: हाँ सही बात है भाई, आप तो इतने अच्छे हो, इतनी ठंडी ठंडी हवा हमको देते हो, है ना? उनसे बातें करनी चाहिए। पता है आपको कि एक रिसर्च हुई है, वो आपको साइंटिस्ट का नाम पता है कि क्या है जिन्होंने रिसर्च की है प्लांट्स के ऊपर?
0: नहीं पता।
1: भारत के ही साइंटिस्ट हुए जिन्होंने ये रिसर्च करके बताया था कि प्लांट से अगर आप म्यूज़िक सुनते हैं या आप बातें करते हैं तो वो बहुत अच्छा ग्रो होते हैं, अगर उनको ना किया जाए कुछ उसके बजाय। मतलब दो प्लांट्स लिया गया, एक से बातें की गई, म्यूज़िक सुनाया गया, एक को कुछ नहीं किया गया। तो जिससे बातें करते हैं और जो म्यूज़िक सुनाते हैं ना, वो जल्दी ग्रो करते हैं और अच्छा ग्रो करते हैं। आप तो जानते हो यहाँ पे तो तपोवन में भी है ना यौगिक खेती होती है, तो वहाँ पे मेडिटेशन करते हैं सीड्स के साथ, और जब वो प्लांट्स उग जाते हैं तब तो पता है बहुत अच्छा अच्छा फल देते हैं, और बहुत बड़ा बड़ा साइज की कभी लौकी निकल के आती है, कभी कुछ निकल के आता है।
0: दीदी तो पापा को उस प्लांट में पानी नहीं देना पड़ता?
1: बिल्कुल देना पड़ता है।
0: तो आप ही ने तो बोला अभी अगर बातें करेंगे तो वो अपने आप ग्रो होगा।
1: हाँ तो वो बेहतर ग्रो होगा, लेकिन देखो अभी राघव है, राघव को हम बातें करेंगे, अच्छे से दोस्त बनेंगे, खेलेंगे तो वो ज्यादा खुश रहेगा ना, है ना? लेकिन उसको खाना और पानी तो फिर भी चाहिए ना, उसके बिना कैसे बातों से काम चलेगा सिर्फ। लेकिन खाना पानी के साथ कुछ भी खेलो नहीं तो फिर राघव को इतनी खुशी नहीं होगी ना, है ना? बिल्कुल, बस उसे खाना पानी दिया जाए, उसके साथ खेला ही ना जाए, उसको बोले एक ही जगह बैठे रहो तुम, कुछ नहीं करना,
0: टीवी तो देख
1: रहा, कुछ भी नहीं मिलेगा फिर, नहीं इतना अच्छा मजा नहीं आएगा ना। तो पेड़ पौधों को खाना पानी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ में उनके दोस्त बनो, उनसे बातें करो, तो वो और अच्छे से ग्रो होते हैं, है ना? आपके दोस्त बन जाते हैं।
3: दीदी पेड़ कितने अच्छे होते हैं ना, हमसे कभी कुछ लेते नहीं है, बस थोड़ा सा पानी मांगते हैं, वो भी किस लिए, जिससे वो हमें फ्रूट वगैरह दे सके।
1: सही बात है, सब कुछ देते ही देते हैं।
3: हाँ, कभी कुछ लेते नहीं है। लाइट चली जाए तो ठंडी हवा आती है, धूप होती है तो छाया मिलती है, और भूख लगती है तो उनपे से हम फल वगैरह भी ले लेते हैं।
1: सही बात है, सब कुछ तो मिलता है, ठंडी हवा, पेड़ पौधे फल देते हैं हमें, सब कुछ देते हैं। सही बात है, उनसे कितना कुछ सीखने को मिलता है।
3: हाँ
1: है ना। कोई और कुछ कहना चाहता है जाते जाते?
2: यही कि दीदी पेड़ बहुत अच्छे हैं, उनसे प्यार करो, बस काटो मत उनको।
3: सेव ट्रीज, पेड़ों को बचाओ, उनको लगाओ, काटो मत।
0: पेड़ को कभी काटना नहीं चाहिए।
3: सेव ट्रीज सेव अर्थ,
1: सेव ट्रीज सेव अर्थ। तो ये काम तो हम सबको मिलके करना है ना? तो हम लोग भी फिर एक एक पेड़ तो हमेशा हर साल में एक तो लगा ही सकते हैं ना,
2: सकते हैं
1: है ना? अपनी बर्थडे का दिन फिक्स कर सकते हैं कि लगाएंगे, या कोई और दिन भी कर सकते हैं, और फिर सिर्फ लगाना नहीं है, उसकी केयर भी करनी है पूरी, है ना?
3: हाँ।
1: दोस्तों की तो केयर की जाती है, तो ऐसी पेड़ की भी करनी है। चलिए प्रकृति के साथ और नजदीक आते हैं और प्रकृति को अपना दोस्त बना लेते हैं। सच में आप प्रकृति के पास बैठेंगे तो टेंशन भी भूल जाएंगे और कई तरह की चीजें तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी। तो प्रकृति को बनाइए दोस्त, और फिलहाल इन दोस्तों से लेते हैं इजाजत और कहते हैं हमारे दोस्तों को बाय बाय।
4: बाय बाय।
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM
4: सुनते रहो।

0: तो बच्चों, सबको समझ आ गया आज का हमारा विषय? रोहित, तुम्हें कोई डाउट तो नहीं?
1: मैम, यह आपको कैसे बताएगा, ये तो बोल भी नहीं सकता।
0: रोहित बोल नहीं सकता, परंतु ये अपनी साइन लैंग्वेज से हमें समझा तो सकता है। बच्चों, मानसिक रूप से रोहित हम सब की तरह स्वस्थ है। कर्म इंद्रियां तो बस एक साधन है, मानसिक और बौद्धिक रूप से हम सब समान हैं।
2: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बने, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं, मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
3: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आँखों से देखिए सुंदर ये संसार।
4: स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी जी देशभक्त थे, केवल ऐसा कहना उन्हें छोटा करना होगा। वे तो सन्यासी थे, सन्यासी के लिए फिर देश क्या और समाज क्या। सन्यासी तो देश काल से परे होता है। वस्तुतः वे मनुष्य से प्रेम करते थे, उन्होंने मनुष्य में ही ईश्वर को देखा था। वे सभी देशों के मनुष्यों के प्रति श्रद्धा का भाव रखते थे। जो दुर्बल, अक्षम तथा पीड़ित थे, फिर वे चाहे जिस किसी देश के मनुष्य क्यों ना हो, उनके विशेष प्रीति भाजन थे। स्वामी जी को निग्रो समझकर अमेरिका के एक होटल में घुसने नहीं दिया गया, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि वे निग्रो नहीं हैं। जो सताए हुए थे वे ही उनके समजातीय थे, इसलिए निग्रो उनके भाई थे, मिश्र की पतिताएं उनकी बहन थी।
1: फिर भी भारतवर्ष के लोगों के प्रति उनकी संवेदना अधिक थी। भारत के दलित उनके भाई, उनके रक्त थे। भारत उनके बचपन का झूला, यौवन की फुलवारी और बुढ़ापे की काशी थी। भारत का प्रत्येक धूल कण उनके लिए पवित्र था। भारत के प्रति उनका इतना आकर्षण क्यों था? क्योंकि भारत पुण्य भूमि है, भारत ऋषियों का देश है, भारत ने सिखाया है सत्य के लिए सब कुछ त्याग किया जा सकता है, किंतु किसी चीज के लिए सत्य का त्याग नहीं किया जा सकता।
0: भारत सत्य की साधना में डूबा हुआ है, भारत ही सत्य है। भारत की मृत्यु होने से सत्य की मृत्यु होगी। जितनी उच्च भावनाएं हैं सब की मृत्यु होगी। इसी सत्य की साधना के कारण भारत पुण्य भूमि है, क्योंकि सत्य ही मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है। भारत वैश्विक क्षेत्रों में कमजोर हो सकता है, पर उच्च चिंतन के क्षेत्र में वो सभी देशों का सिरमौर है।
1: भारत ज्ञान पीठ है, भारत ज्ञान चर्चा में संपूर्ण शक्ति लगाता आया है, इसी से वो दरिद्र है। भारत तपस्वी, साधक, ब्राह्मण है, उसके ज्ञान के आलोक से संपूर्ण पृथ्वी आलोकित है। थोड़े बहुत सारे देश उसके ऋणी हैं। उसने सदैव दिया ही है, कुछ लिया नहीं। भारत आज भी बहुत कुछ दे सकता है। वस्तुतः संपूर्ण पृथ्वी आज भी भारत की ओर आंख उठाए देख रही है।
0: भारत गरीब है, इसलिए दूसरे राष्ट्र भारत को अवज्ञा की दृष्टि से देखते हैं। इसलिए स्वामी जी ने चाहा था कि भारत पाश्चात्य विज्ञान और तकनीकी शिक्षा का आश्रय ले। स्वामी जी ने गौर किया था कि दरिद्रता की मार से मनुष्य पशुओं से भी नीचे गिर गया है। इसी से उन्होंने कहा,
2: पहले अन्न फिर बाद में धर्म।
0: उनके गुरुदेव ने भी कहा था,
3: खाली पेट में धर्म नहीं रहता।
0: वैश्विक सुख स्वच्छंदता की आवश्यकता तो है, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। भोग के उपकरण प्रचुर हो, जीवन सुख स्वच्छंदता से भरा हो, जीवन मान यश से उन्नत हो, लेकिन उसके साथ साथ मनुष्य में मनुष्यत्व का भी विकास हो।
1: स्वामी जी वेदांत में विश्वास करते थे। वेदांत के मतानुसार मनुष्य में ईश्वर है, लेकिन मनुष्य इसे नहीं जानता, उसे ये सिखाना होगा। वैश्विक प्राचुर्य के साथ ही उसमें ऐसा क्रम विकास हो जिससे वो जान सके कि वो ईश्वर है। उन्नति का अर्थ केवल वैश्विक उन्नति नहीं, बल्कि वास्तविक उन्नति है मनुष्य के चरित्र में, उसके अंतर्निहित दैवत्व में। स्वामी जी कहते थे, यदि एक व्यक्ति बुद्ध हो सकता है तो हम में से प्रत्येक बुद्ध हो सकता है। हम में से प्रत्येक में ये संभावना है। जीवन का उद्देश्य है उस संभावना को प्रकट करना। केवल बाहरी संपत्ति अर्जित करना यथेष्ट नहीं, अंदर की संपत्ति भी अर्जित करनी होगी।
0: अंदर की संपत्ति यानी सत्यानुराग, प्रेम, प्रीति, स्वार्थहीनता, दूसरों के सुख में स्वयं सुखी होना, दूसरों के दुख में स्वयं दुखी होना, यही धर्म का सार है। स्वामी जी का विश्वास था कि धर्म के साथ विज्ञान का समन्वय किया जा सकता है। विज्ञान के द्वारा बाहरी प्रकृति पर विजय प्राप्त की जाती है और धर्म के द्वारा अंतर प्रकृति पर। विज्ञान के द्वारा उद्योग विस्तार, कल कारखानों का निर्माण, भोग के उपकरण में वृद्धि तथा जीवन यात्रा सहज और स्वच्छंद किया जा सकता है, लेकिन क्या वही सब कुछ है? मनुष्य यदि मनुष्य ना रहे, पशु हो जाए, दुष्ट हो जाए, स्वार्थ परक और दुर्नीति परायण हो जाए, तो क्या कोई समाज अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है? तो क्या कोई सभ्यता अंत तक बची रह सकती है?
1: इसलिए जरूरत है सच्चे मनुष्यों की, निस्वार्थ सेवा परायण, उदार हृदयवान मनुष्यों की, ऐसे मनुष्यों की जो केवल अपने सुख की बात न सोचें, सभी के सुख की बात सोचें, जो सभी संकीर्णताओं से ऊपर हो, जो भाषा धर्म और जाति का भेद भूलकर मनुष्य को मनुष्य के नाते श्रद्धा करे, जो दूसरों को अपना बना सके, ऐसे मनुष्य धर्म के द्वारा ही तैयार होते हैं। धर्म ही मनुष्य को उदार बनाता है, प्रेमी बनाता है, सत्यनिष्ठ बनाता है। धर्म माने धर्म मत नहीं, धर्म माने सत्य, प्रेम, क्षमा, निस्वार्थ परता इत्यादि। यही धर्म विज्ञान से युक्त हो, ऐसा स्वामी जी ने चाहा था। भारत इसे ही अपना जीवन दर्शन मानता है। ये जीवन दर्शन ही भारत का वैशिष्ट्य है। स्वामी जी ने चाहा था इसी जीवन दर्शन की नींव पर भारत एक नया समाज गढ़ेगा। इस प्रकार भारत विश्व के सामने एक नया उदाहरण स्थापित करेगा।
0: स्वामी जी कहते थे कि भारत का राष्ट्रीय पाप ये है कि वो अपने जन साधारण की अवज्ञा करता आया है। इसी पाप के कारण भारत इतना दुर्बल हो रहा है तथा बार बार वो विदेशी शक्तियों के द्वारा पददलित हुआ है। जन साधारण का बहुत बड़ा अंश है दलित, अर्थात परिश्रम करके जीने वाले मनुष्य, जो खेतों में खेती करते हैं, कल कारखानों में हथौड़ी चलाते हैं, वे ही धन उपार्जित करते हैं, लेकिन वे ही उस धन से वंचित हैं।
1: सभी देशों में

0: यही हो रहा है, भारत में यही हो रहा है। लेकिन स्वामी जी ने समझा था कि अब परिवर्तन आएगा, सभी देशों में आएगा। दरिद्रों का रक्त शोषण चिरकाल तक कभी भी नहीं हो सकेगा, पर दलितों के हाथ में क्षमता आने से ही समस्या का समाधान नहीं होगा। जो कार्यक्षमता की डोर संभाले, वे यदि योग्य मनुष्य न हो तो साधारण मनुष्य जिस अंधेरे में पड़ा है उसी में पड़ा रहेगा। पद का भी एक नशा होता है, एक बार जो पदारूढ़ होता है वो पद छोड़ना नहीं चाहता। केवल इतना ही नहीं, वो अपने पद का दुरुपयोग भी करता है। दलित भी दलित के ऊपर अत्याचार करता है।
1: सामर्थ्य को पचा पाना बहुत कठिन है। जो धर्म प्राण व्यक्ति है, जिसका चरित्र धर्म के आदर्श से गठित है, वही पद सामर्थ्य को पचा सकता है। वही सेवा भाव से अपना कार्य करेगा। वो सोचेगा कि पद आत्म तृप्ति के लिए नहीं है, वरन लोक कल्याण के लिए है। सेवा करने का अवसर पाकर वो स्वयं को धन्य मानेगा। उसका जीवन स्वयं के लिए नहीं, दूसरों के लिए होगा। ये त्याग और सेवा ही भारत का राष्ट्रीय आदर्श है। स्वामी जी ने चाहा था कि इस आदर्श से अनुप्राणित लोग ही पदभार संभालें।
0: स्वामी जी ने चाहा था कि दलितों की सेवा के लिए 1,00,000 युवक आगे आए। वे लोग अजय शक्ति से देश के ऊपर टूट पड़ेंगे, यही थी उनकी आशा। लेकिन सबसे पहले उन्होंने सोचा था कि वे मनुष्य के समान मनुष्य बने, जो बुद्धि, हृदय, कर्म शक्ति एवं निस्वार्थ सेवा का मनोभाव लेकर वे घर घर जाकर मनुष्यों को जगाएंगे। इसी सेवा को उन्होंने शिव ज्ञान से जीव सेवा का नाम दिया है। यही है युग धर्म। इसमें मैं नहीं, केवल तुम ही ईश्वर हो, अर्थात ईश्वर के प्रति श्रद्धा और प्रीति का भाव लेकर दलितों की सेवा करना।
1: ये सेवा बुद्धि ना रहने से पद का दुरुपयोग अवश्य संभावी है। ये दुरुपयोग ना हो, इसलिए स्वामी जी ने बार बार कहा था।
2: देश तो स्वाधीन होगा ही, लेकिन जिससे स्वार्थी लोग पद का दुरुपयोग न करें, इसलिए हम लोगों का कर्तव्य है कि धर्म के उच्चतम चिंतन द्वारा संपूर्ण देश में एक प्रवाह बहा दें। इससे देशवासियों के मन में इस चिंतन की एक तह जमेगी। इस चिंतन की तह पर नूतन समाज का, नूतन सभ्यता की भित्ति गढ़ उठेगी, तभी दलित शासन सार्थक होगा।
1: स्वामी जी ने इस कार्य में युवा समाज को आगे आने का आह्वान किया था।
0: देश स्वाधीन हुआ, अब देश को गढ़ने की बारी है। इस कार्य में युवा समाज हाथ लगाए, यही स्वामी जी की प्रत्याशा थी। ये कार्य लोग किसी प्रकार की पद प्राप्ति की इच्छा से नहीं करेंगे। पद उनका लक्ष्य नहीं होगा, उनका लक्ष्य होगा जो दुर्बल, दरिद्र, अक्षम है, उनकी सेवा करना। ये सेवा त्याग की नींव पर स्थित होगी, किसी प्रकार के लाभ की आशा से नहीं, अपनी आशा आकांक्षा पूर्ण करने के उद्देश्य से नहीं। जो नेता होंगे, जो देश चलाएंगे, वे बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की भावना से स्वयं को उत्सर्ग करेंगे। यही था स्वामी जी का संदेश। ये त्याग केवल युवा समाज ही कर सकता है, इसीलिए स्वामी जी आशा पूर्ण दृष्टि से उनकी ओर निहार रहे थे।
1: एक विदेशी इतिहासकार ने लिखा है कि इस संसार में महापुरुषों को पहचानना आसान है, लेकिन उनके वास्तविक स्वरूप की उपलब्धि करना कठिन है। स्वामी विवेकानंद के संबंध में ये उक्ति विशेष रूप से सटीक प्रतीत होती है। साधारणतः लोग उन्हें श्री रामकृष्ण के आध्यात्मिक मानस पुत्र, सर्वत्यागी सन्यासी, श्री रामकृष्ण मठ और मिशन के प्रतिष्ठाता तथा हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में ही भक्ति करते और पूजते हैं।
0: यद्यपि यही स्वामी जी का वास्तविक परिचय है, तथापि ये उनके अनन्य अपूर्व व्यक्तित्व का केवल एक श्रेष्ठ अंश मात्र है। धर्म जगत के बाहर भी देश और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जो उनका अमूल्य अवदान है, वो सर्वदा हम स्मरण नहीं रख पाते, लेकिन बिना इसे जाने स्वामी जी के अपूर्व व्यक्तित्व के संबंध में ठीक ठीक धारणा करना संभव नहीं। एक प्राचीन उदाहरण के द्वारा हम उसे आसानी से समझ सकते हैं। कुछ अंधे व्यक्ति एक हाथी देखने गए। हाथी के शरीर के विभिन्न अंगों को हाथ से टटोला। उन्होंने अलग अलग निष्कर्ष निकाला। जिसने उनके पैरों को टटोला, उसने सोचा कि हाथी एक खंभे के समान है। जिसने उनके कान को टटोला, उसने सोचा कि हाथी का शरीर सूप के समान है, इत्यादि इत्यादि।
1: उसी प्रकार यदि हम लोग स्वामी जी को केवल धर्म प्रचारक सन्यासी के रूप में सोचें, तो उनके व्यक्तित्व, उनकी प्रतिभा और अवदान के संबंध में हम लोगों की धारणा बिल्कुल गलत होगी। उनके व्यक्तित्व के और भी इतने पहलू थे कि किसी एक गुण के द्वारा ही वे ख्याति अर्जित कर सकते थे।
0: उदाहरण स्वरूप बंग साहित्य में बोलचाल की भाषा के प्रचलन की बात की जा सकती है। सामान्य लोगों का विश्वास ये है कि सर्वप्रथम प्रयत चौधरी ने ही सबुज पत्र नामक मासिक पत्रिका में इसका व्यवहार किया। वो पत्रिका 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुई, लेकिन इसके बहुत पहले ही स्वामी जी ने भाववार कथा यानी चिंतनीय बातें प्राच्य और पाश्चात्य परिव्राजक इत्यादि ग्रंथों में बोलचाल की भाषा का व्यवहार किया है। इस विषय में प्रत्यक्ष प्रमाण ये समस्त ग्रंथ ही हैं। इसीलिए इसके विस्तृत विचार की आवश्यकता नहीं है।
1: लेकिन धर्म जगत के बाहर इसकी अपेक्षा स्वामी विवेकानंद का महान वैशिष्ट्य उनके स्वदेश प्रेम, देशात्म बोध और राष्ट्रीय चेतना में है। ये सब उनके भाषण और रचनावली में इतने स्पष्ट रूप से व्यक्त हुआ है कि उसके समर्थन में प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर भी कुछ एक घटनाओं का उल्लेख हम करेंगे।
0: लंदन से भारत वापसी के ठीक पूर्व एक व्यक्ति ने उनसे पूछा था,
3: स्वामी जी, 3 वर्षों तक शक्ति, ऐश्वर्य और विलासिता के केंद्र पाश्चात्य देशों में रहने के बाद अपने देश लौटकर आपको कैसा लगेगा?
0: तब स्वामी जी ने उत्तर दिया,
2: यहाँ आने के पहले भी मैं अपनी जन्मभूमि भारत वर्ष को प्यार करता था, लेकिन अब भारत का प्रत्येक धूल कण मेरे लिए पवित्र है, उसकी हवा मेरे लिए पवित्र है, भारत मेरा तीर्थ स्थान है।
1: संसार त्यागी सन्यासी होते हुए भी स्वामी जी का देश प्रेम अतुलनीय था, निवेदिता ने लिखा है।
4: उस समय उनसे प्रायः प्रतिदिन मेरी भेंट होती थी। भारत का चिंतन ही उनका ध्यान ज्ञान था।
1: अन्यत्र निवेदिता ने स्वामी जी के सर्व जाति प्रेम का उल्लेख कर उनकी स्वजाति वात्सल्य के संबंध में कहा है,
4: जिस मुहूर्त मैंने उनके साथ भारत में पदार्पण किया था, उसी क्षण से उनकी मृत्यु पर्यंत मैंने अपने गुरुदेव में अग्नि की एक निरंतर दहन ज्वाला को देखा था। वह कोई तत्व, कोई आध्यात्मिक सत्य की उपासना या उन्मादना नहीं थी, वो था देश और जाति की दुर्दशा निवारण का प्राणपण प्रयास और उसकी निष्फलता के कारण मर्मांतक पीड़ा।
0: स्वामी जी का देश प्रेम केवल मानसिक भावावेग नहीं था, उन्होंने देश की स्वाधीनता अर्जन करने के लिए युवकों को अनुप्रेरणा दी थी। 1901 ईस्वी में ढाका के युवकों का एक दल उनसे उपदेश सुनने आया। उन्होंने उनसे कहा,
2: बंकिम चंद्र की पुस्तकों को पढ़ो, आनंदम की संतानों के समान देशभक्त बनो। तुम लोगों का प्रधान कर्तव्य जन्मभूमि की सेवा है, सबसे पहले चाहिए राजनीतिक स्वाधीनता।
0: उन्होंने अन्य युवकों के एक दल से कहा था,
2: आगामी 50 वर्षों के लिए हमारी गरियसी भारत माता ही हमारी आराध्य देवता है। अन्यान्य व्यर्थ के देवताओं को इन कुछ वर्षों के लिए भूल जाने में कोई हानि नहीं है। अन्यान्य देवता लोग सो रहे हैं, तुम्हारी स्वजाति यही देवता ही एकमात्र जाग रहे हैं।
1: स्वामी जी ने स्वदेश चिंतन को धर्म चर्चा से उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित किया था। राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका न निभाते हुए भी समकालीन राजनीतिक नेताओं की अपेक्षा उनकी राजनीतिक दृष्टि बहुत अधिक दूरगामी थी। भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के आवेदन निवेदन की नीति की निंदा करते हुए उन्होंने उच्च स्वर में घोषणा की थी,
2: भिक्षा के द्वारा देश की स्वाधीनता अर्जित नहीं की जा सकती, हमें अपनी शक्ति पर निर्भर होना होगा।
0: एक अन्य विषय में भी स्वामी जी ने कांग्रेसी नेताओं के अधिकतम ज्ञान और उनकी दूरदृष्टि का परिचय दिया था। कांग्रेस का गठन शिक्षित मध्यवित समुदायों के प्रतिनिधियों को लेकर हुआ था, लेकिन स्वामी जी ने ही सर्वप्रथम घोषणा की,
2: भारत के पिछड़े वर्ग, मूर्ख, दरिद्र, कृषक, श्रमजीवी, एक शब्द में कहें तो समग्र जनशक्ति के जागरण के बिना भारत की स्वाधीनता संभव नहीं।
1: उन्होंने अपने दिव्य चक्षु से भारत के भविष्य को देखते हुए कंपित कंठ से घोषणा की थी,
2: ये सभी समुदाय सदा से निपीड़ित अवहेलित कृषक, मछुआरे, बनिए तथा दूसरे कल कारखानों के श्रमिक लोग ही भारत में स्वाधीनता लाएंगे तथा भविष्य में प्रमुख पद प्राप्त कर भारत की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
1: इस संबंध में स्वामी जी की बहुत सी युक्तियां उनके भाषणों और ग्रंथों में मिलती हैं।
0: भारत के उच्च वर्णों के प्रति स्वामी जी ने कहा है,
2: तुम लोग हो 10,000 वर्ष के पुराने ममी, तुम्हारे पूर्वजों ने चलायमान शमशान कहकर जिनसे घृणा की है, आज भारत का जो भी वर्तमान जीवन है वो उनसे ही है, और चलायमान शमशान हो तुम लोग, तुम लोग शून्य में विलीन हो जाओ और नवीन भारत निकल पड़े।
1: इन लोगों ने सहस्रों वर्षों से अत्याचार सहा है, चुपचाप सहा है, और उससे पाई है अपूर्ण सहिष्णुता, हमेशा से दुख भोगा है, और उससे पाई है अटल जीवनी शक्ति, और तुम हो अतीत के अस्थि पंजर, यही है तुम्हारे सामने भारत के भविष्य के उत्तराधिकारी।
0: इन सब का मूल स्रोत है उनके गुरु श्री राम कृष्ण के दो मंत्र,
5: जीवों के प्रति शिव ज्ञान और दरिद्र नारायण।
0: इसी के प्रभाव से इस ग्रह त्यागी सन्यासी ने कहा था,
2: मेरे लिए इन निर्धन चिर निपीड़ित मनुष्यों की उन्नति अपने मोक्ष लाभ की अपेक्षा एक महत्तर उद्देश्य और आदर्श है।

0: भगिनी निवेदिता ने स्वामी जी के संबंध में कहा है,
1: भारतवर्ष था स्वामी जी के गंभीर आवेग का केंद्र, भारतवर्ष था उनका दिवा स्वप्न, भारतवर्ष था उनकी रात्रि का दुः स्वप्न। केवल इतना ही नहीं, वे स्वयं हो गए थे भारतवर्ष, हो गए थे रक्त और मांस की गढ़ी भारत प्रतिमा। स्वामी जी ने एक बार स्वयं अपने बारे में कहा था कि वे घनीभूत भारत हैं। वस्तुतः स्वामी जी की संपूर्ण सत्ता से मानो भारत प्रेम फूट पड़ता था।
0: भगिनी क्रिस्टीन ने कहा है,
2: जब वे इंडिया का उच्चारण करते थे तब उनमें इतना गर्व, इतना प्रेम और इतना अपनापन झलकता था कि जो भी उसे सुनता वही भारत वर्ष से प्रेम करने लगता। स्वामी जी के मन में भारत वर्ष के प्रति इतना प्रेम केवल इसलिए नहीं था कि भारतवर्ष उनकी मातृभूमि है, ये प्रेम आदर्श की नींव पर स्थित था, जिस आदर्श के लिए उनका जीवन उत्सर्गीकृत था, उसी आदर्श को उन्होंने भारत वर्ष में साकार रूप में देखा था, इसीलिए उनका इतना भारत के प्रति प्रेम था। विवेकानंद ने यदि दूसरे देश में जन्म ग्रहण किया होता तब भी भारतवर्ष से इतना ही प्रेम करते, क्योंकि उनकी दृष्टि में भारत सत्य स्वरूप था। एक अंग्रेजी कविता में उन्होंने भारत को संबोधित करते हुए कहा है, ओह ट्रुथ, हे सत्य। उनकी दृष्टि में ये देश पुण्य भूमि है, इसका प्रत्येक धूल कण उनके लिए पवित्र है।
3: स्वामी जी ने अपने परिव्राजक जीवन में इस पुण्य भूमि भारत का आविष्कार किया था। उन्होंने भारत परिक्रमा के समय केवल धार्मिक स्थलों को ही नहीं देखा, अपितु जो स्थान पुरातन या ऐतिहासिक दृष्टि से समृद्ध थे उन स्थानों को भी देखा, क्योंकि भारत को जानने के लिए ये सब स्थान भी उनके लिए आवश्यक उपादान थे। उन्होंने कन्याकुमारी के अंतिम शिलाखंड पर बैठकर भारत का ध्यान किया था। हम लोग पहली बार ही एक ऐसे सन्यासी को देखते हैं जिसके ध्यान का विषय है देश। उनकी भारत परिक्रमा वास्तव में भारत का अन्वेषण था।
0: मनुष्य ईश्वर प्राप्ति के लिए साधना करता है, स्वामी जी ने भारतवर्ष की उपलब्धि करने के लिए साधना की है, और उनकी आराध्या देवी भारत माता ने भी मानो उनकी साधना से प्रसन्न होकर अपना संपूर्ण रहस्य उनके सामने उन्मोचित कर दिया है। इसीलिए भारतवर्ष के अतीत का इतिहास, उसकी वर्तमान की समस्या और प्रयोजन तथा उसका संभावित भविष्य, सब कुछ विवेकानंद के भारत चिंतन में स्पष्ट रूप से झलकता है।
3: विवेकानंद ने भारत की शक्ति और दुर्बलता दोनों को ही जाना। उन्होंने केवल भारत के गौरव की ही बात नहीं की, वरन उसका लज्जाजनक चित्र भी अंकित किया। फिर भी निंदकों के सामने उन्होंने भारतवर्ष को और भी निंदनीय करने की अभद्रता नहीं की, उन्होंने सर्वत्र सत्य ही कहा। विदेशियों के सामने भारतवर्ष के गौरव का यथार्थ चित्र अंकित किया है, और स्वदेशियों के सामने आत्म संशोधन के लिए गौरव के साथ साथ त्रुटियों की सच्ची तस्वीर भी खींची है। निवेदिता ने बड़े ही सुंदर ढंग से कहा है,
1: भारत के त्रुटियों के प्रति वे अत्यंत कठोर थे, भारतवासियों के सांसारिक ज्ञान के अभाव के प्रति निर्मम थे, फिर भी भारत के भविष्य के गौरव की बात सोचकर उनके समान सराबोर होते किसी और को नहीं देखा गया। क्यों? क्योंकि भारत के गुण दोषों को स्वामी जी अपने व्यक्तिगत चरित्र के गुण दोषों के रूप में देखा करते थे, इसीलिए वे इस देश के दोषों के संबंध में जैसे निर्मम थे वैसे ही वे भविष्य के भारत के सुख स्वप्न को लेकर विभोर थे।
0: स्वामी जी धर्म को भारत की प्राण शक्ति के रूप में अनुभव करते थे, और वे जन साधारण और नारी जाति की दुरवस्था को राष्ट्रीय महापाप मानते थे, उन्होंने राष्ट्र के जीवन के स्पंदन को दरिद्रों की कुटिया में ही महसूस किया था। इसीलिए उन्होंने दरिद्र जनता की भूख मिटाने की समस्या को प्राथमिकता दी थी। दरिद्रता के अलावा उन्होंने शिक्षा को सर्व रोग हरण महा औषधि के रूप में माना है।
3: उन्होंने धर्म को केंद्र बनाकर और पाश्चात्य विज्ञान तथा तकनीकी विद्या को उससे युक्त कर देश की शिक्षा व्यवस्था को गढ़ना चाहा था। यही शिक्षा शिक्षार्थी को एक साथ आत्मनिर्भर और मानवीय गुण संपन्न बनाएगी तथा इसी शिक्षा से ही राष्ट्र की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी।
0: वे कहते थे,
4: अशिक्षा से भी ज्यादा बुरी कुशिक्षा है। अशिक्षित व्यक्ति क्लीन स्लेट है, उस पर कुछ नया लिखा जा सकता है, लेकिन कुशिक्षित व्यक्ति ऐसा नहीं है। उसकी कुशिक्षा का प्रभाव मिटाना कठिन है। जो शिक्षा मनुष्य को बहुत सी नकारात्मक विचारधारा से भर देती है, शिक्षार्थी अपनी स्वयं की शक्ति में आस्था खो देता है और उसके साथ साथ अपने पूर्वजों तथा देश की सभ्यता और संस्कृति से अश्रद्धा करने लगता है।
3: वर्तमान भारत की समस्या में हमने आधुनिक काल के विचार देखे। 100 साल पहले भी स्वामी जी ने धर्म भाव, राष्ट्रीयता बोध और आत्म प्रत्यय समन्वित इन सकारात्मक मनोभावों को ही सर्वसाधारण में इन्हें संचारित करना चाहा था। अपनी शक्ति और संभावनाओं के लिए ही विवेकानंद की आवश्यकता है।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद में।

0: मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। और आज मुक्सीरा नक्षत्र है, इसके साथ ही महेश भूपति, ख्वाजा अहमद अब्बास, इन सभी का जन्मदिन है। और इसके साथ ही बीडी जत्ती, नटराज रामकृष्णन, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम को यादगार बनाते हैं आप सभी के साथ मिलकर। और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारा सा विचार के साथ। और शाम के समय में 4:00 हो रहे हैं और आप हो मेरे साथ। और शाम के समय में चाय वाला टाइम पर मैं आपके साथ रहता हूँ। चाय के साथ आप कुछ नाश्ता पानी भी कर रहे होंगे, चलिए अच्छा है। बिस्कुट या फिर नमकीन खाते हुए कार्यक्रम का एंजॉय कीजिए। कभी कभी अच्छा लगता है शाम के समय में, है ना, थोड़ी सी चाय और थोड़ी सी नमकीन हो या कुछ ऐसी कुछ खाने के साथ खारी। मुझे याद है कि हम लोग बचपन में जो है माँ हमारी खारी वाली बहुत फिरते थे और टोस्ट या फिर खारी जो है बॉक्स यानी डब्बे में भर के रखा करते थे। मैंने भी एक बार उसकी जो है लेकर रखते और फिर जब भी चाय का टाइम होता तो सभी एक एक टोस्ट और खारी ज़रूर खाते थे। तो बड़ा मस्ती से खाते और बड़ा एंजॉय करते, तो मूड बिल्कुल आपका अच्छा हो जाता था हमारा। चलिए आप ऐसा अगर है तो अवेलेबल करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप कार्यक्रम को सुनिए। आपकी मस्ती और खुशी बढ़ाने के लिए मैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाऊंगा। हाँ, लेकिन उसके पहले एक सुंदर विचार कहते हैं, तब तक पैसे कमाओ जब तक तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हारे फ़ोन नंबर की तरह ना दिखने लगे। है ना कमाल की बात। तब तक पैसे कमाओ जब तक तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हारे फ़ोन नंबर की तरह ना दिखने लगे, है ना। तो चलिए आशा करूँगा आपको ये बात, इसका मतलब ये नहीं कि बस सिर्फ पैसे कमाते रहें, जीवन में भी कुछ और चीज़ें हैं वो भी करते रहें, लोगों की सेवा करते रहें। जब पैसा आपके पास इतना हो कि जिससे आपको कहीं किसी से मांगना नहीं पड़े, है ना, किसी भी समय पे, ये ध्यान रखें। आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ले चलता हूँ एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफर कार्यक्रम, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

भाई वाह वाह वाह वाह वाह। पर तुम्हारा क्या गया, अभी समझना नहीं है कि मुझे चढ़ गई है।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए सफर कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और महेश भूपति के बारे में बात करते हैं, एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में बात करते हैं जी हाँ, जिनका जन्मदिन आज है और भारत के ये बहुत ही पॉपुलर खिलाड़ी है जिन्हें टेनिस में लेजेंडर प्रिंस के साथ युगल मुकाबले में शानदार सफलता मिली थी, यानी अर्जित की थी। इनका पूरा नाम महेश श्रीनिवास भूपति है। भूपति को 1996 में अर्जुन पुरस्कार और 26 मार्च 2001 को लेजेंडर पेस के साथ भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान प्राप्त किया गया दिया गया। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं। आज जी के दिन यानी 7 जून 1974 को बेंगलुरु कर्नाटक में इनका जन्म हुआ। इनका नाम महेश श्रीनिवास भूपति और फिर भूपति ने टेनिस में लेजेंडर पेस के साथ युगल मुकाबला में शानदार सफलता अर्जित की। इनका पिता का नाम सीजी के भूपति और दाहिने हाथ के इस खिलाड़ी की लंबाई 6 फुट 2 इंच है और उसका निवास मस्कट, ओमन तथा भारत में बेंगलुरु में है। टेनिस का खेल उनके परिवार के लिए कोई नया नहीं है। महेश के पिता भी टेनिस के खिलाड़ी थे और डेविस कप टीम के सदस्य रह चुके हैं। भूपति के कोच एंड्रिक पिपानो है। इनको बम्बैया फिल्में देखना बहुत पसंद है और फिल्मों की डीवीडी अपने साथ लेकर चलते रहते हैं। उनकी रैंक युगल खेल में नंबर 1 है और उसके शौक नेट सर्फिंग और क्रिकेट खेलना है। 2002 में मॉडल श्रुता जयशंकर से इन्होंने विवाह किया और ये कहना गलत नहीं होगा कि कोलकाता की तेजी लेजेंडर पेस और बेंगलोर के महेश भूपति के मिलते हैं टेनिस की दुनिया में धमाल हो गया और जोड़ी ने 1999 में दुनिया की हर जोड़ी के चक्के छुड़ाए और 1996 में भूपति के साथ युगल वर्ग का ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने की भविष्यवाणी की थी। तब उनका अच्छा खासा मजाक बनाया गया और उन्हें छोटा मुंह बड़ी बात कहा गया क्योंकि उस समय उनकी जोड़ी विश्व क्रम में 80वें क्रम पर थी, परंतु दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और सफलता के शिकार पर ऐसे चढ़े कि बस आगे बढ़ते ही गए बढ़ते ही गए। भारतीय जोड़ी का एक 2 चक्र जीतना ही बहुत बड़ी बात समझी जाती थी, परंतु लेजेंडर प्रिंस और महेश भूपति की जोड़ी ने 8 अलग अलग ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट को अपने हाथ किया और इसके बाद ये साबित करके दिखाया 1999 में फ्रेंच व विंबलडन खिला खिताब जीते और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ओपन में भी फाइनल में संघर्ष जारी रहा और महेश भूपति के बारे में कहा जाता है कि वो लेजेंडर पेस के विपरीत अंतर्मुखी व संवेदनशील इंसान है। उनमें जबरदस्त पेशेवर परिपक्वता है और इस तरह से 1996 में अर्जुन पुरस्कार और

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, लेट्स से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए बात करते हैं एक और शख्सियत के बारे में, ख्वाजा अहमद अब्बास के बारे में। जी हाँ, ये भी एक विशेष फिल्म निर्देशक, लेखक और उर्दू लेखक। वे उन कुछ गिने चुने लेखकों में याद किए जाते हैं जिन्हें मोहब्बत, शांति और मानवता का पैगाम लोगों को देना अच्छा लगता है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने अलीगढ़ ओपन यूनिवर्सिटी में अपना पढ़ाई पूरा करके बॉम्बे कार्निवल में लंबे समय तक बतौर संवाददाता और फिल्म समीक्षक के रूप में काम करते रहे और इनका स्तंभ द लास्ट पेज सबसे लंबा चलने वाला स्तंभों में गिना जाता है। और 1941 में से 41 से लेकर 1986 तक चला अब्बास इप्टा के संस्थापक सदस्य थे। और अब्बास की बात करें तो 7 जून 1914 को हरियाणा राज्य के पानीपत में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। और वे 1857 के विद्रोह के शहीदों में एक थे। इनके दादा ख्वाजा गुलाम और ये उनके पोता अपने पिता गुलाम सिस्तें थे जो उनके पवित्र कुरान पढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित करते थे, जबकि मशरू खातून उनकी माँ थी। और उनके खानदान का मकान अयूब अंसारी तक जाता है जो पैगंबर मोहम्मद के साथी थे। अपनी शुरुआती शिक्षा के लिए अब्बास हालांकि मुस्लिम हाई स्कूल से पढ़ाई पूरी की है और उसके बाद परदादा यानी प्रसिद्ध उर्दू शायर ख्वाजा हुसैन अली और मिर्जा गालिब के शागिर्द थे। इनके द्वारा स्थापित किया गया था और 7वीं कक्षा तक अध्ययन किया और 15 वर्ष की आयु में उन्होंने मैट्रिक समाप्त की और बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से आगे की पढ़ाई पूरी की और फिर LLB करके अपने जीवन का अधिकांश समय फिल्म लेखन में उन्होंने बिताया। इस तरह से कार्यक्षेत्र की बात करें तो अब्बास साहब ने जल्द ही पत्रकारिता में अपना जो है वर्चस्व बनाया और अलीगढ़ ओपन नाम की देश की पहली छात्र प्रकाशित पत्रिका इन्होंने शुरू की। इससे पहले उन्हें तुरंत अपने BA के बाद नेशनल कॉल नाम के अखबार में काम मिला था और वो अखबार का काम संभालते हुए आगे फिर बॉम्बे कार्निवल में शामिल हो गए और फिर जल्द ही फिल्म विभाग के संपादक भी बने और वहाँ के पत्रकार का रूप इन्होंने एक नया काम किया। और 47 तक काम करते हुए 36 में वे बॉम्बे टॉकीज के पार्ट टाइम पब्लिसिस्ट के रूप में काम करते रहे और जो हिमांशु राय और देविका रानी की प्रोडक्शन कंपनी थी उसमें यह काम करे और 1941 में अपनी पहली कहानी नया संसार भी इसी कंपनी को इन्होंने बेची। तो इस तरह से फिल्मी सफर इनका शुरू हो गया और फिल्मों का सफर करते हुए राही, नीचा नगर, अमर कहानी, ये फिल्में ख्वाजा अब्बास की एक कहानी एंड वन डिड नॉट कम बैक पर आधारित थी जिसे उन्होंने डॉक्टर द्वारकानाथ कोटिस के जीवन पर लिखा था। तो इस तरह से फिल्मों के लिए लिखना इनका बाएं हाथ का खेल था। तो आइए अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक, सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत, उसके बाद फिर आगे सुनेंगे ख्वाजा अब्बास की कहानी, कैसे उनकी दोस्ती राज कपूर से हुई और फिर राज कपूर के जीवन में उनका कितना बड़ा अहम रोल है वो जानते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर सफर, इस कार्यक्रम को सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए ख्वाजा अब्बास की आगे की कहानी सुनाते हैं और राज कपूर के साथ इनका कैसे जुड़ाव रहा। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफर कार्यक्रम को। राज कपूर के दोस्त बन गए और उनके लिए उन्होंने अपना साथ निभाया, आवारा, श्री 420, जागते रहो, मेरा नाम जोकर जैसी उनकी कई सफल फिल्में हैं और आरके बैनर की फिल्म हीना जिसे रणधीर कपूर द्वारा पूरा किया गया। अब्बास साहब की एक कहानी पर आधारित थी। अब्बास साहब ने राज कपूर की फिल्म रात राम तेरी गंगा मैली की शुरुआत और अंत भी किया। एक ऐसी बात है जिसे कम लोग जानते हैं, राज कपूर ख्वाजा साहब के करीबी थे और उन्हें मेरी आवाज़ बुलाया करते थे। उनके अपने जीवन पर बनी फिल्म मेरा नाम जोकर के बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाने के बाद राज कपूर संकट में फंसे। अब्बास साहब ने सिर्फ इस साधारण निर्देशक की मदद करने के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता किया। उन्होंने एक मसालेदार किशोरावस्था के रोमांस की फिल्म बॉबी लिखी। फिर ये सुपरहिट साबित हुई और राज कपूर फिर से सफलता की लहर पर सवार हो गए। लेकिन बॉबी में भी अब्बास साहब अपने समाजवादी दृष्टिकोण और अपने प्रगतिशील विचारों को स्थापित करने में सफल रहे। इसे फिल्म की विषय वस्तु में रोपित कर दिया था और अपने चमत्कार सतह से नीचे ये अमीर और गरीब के संघर्ष की कहानी कहती है। तो इस तरह से ये फिल्म राज कपूर को फिर से अपने फाइनेंस को मजबूत करने में सफलता हासिल कराए। इस तरह से अद्भुत कहानी धरती के लाल थे, बहुआयामी व्यक्ति थे, साथ हिंदुस्तानी फिल्म। तो इस तरह के नेहरू जी से इनके संबंध अमिताभ बच्चन की नज़र से ख्वाजा अहमद अब्बास जब अपने जीवन के अंतिम दिनों में गंभीर रूप से बीमार थे और अर्थभाव से जूझ रहे थे, तब उन्होंने अपनी फिल्म सात हिंदुस्तानी के अधिकार उतनी ही राशि में बेचे थे जितनी राशि उनके इलाज के लिए जरूरी थी। हिंदी सिनेमा के मिलेनियर स्टार अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में अब्बास से जुड़ी यादों को ताज़ा करते हुए ये बताया था कि अब्बास सिद्धांतों पर विश्वास रखने वाले ऐसे ईमानदार व्यक्ति थे जिनके मन में व्यावसायिक अपनी जड़ नहीं जमा सकी। वो दूसरों के लिए जीने में विश्वास करते थे लेकिन किसी से अपेक्षा नहीं करते थे। उनका दिल बहुत बड़ा था। उन्होंने लिखा है कि अब्बास इतने स्वाभिमानी व्यक्ति थे कि जीवन के अंतिम समय में भी उन्हें किसी की सहायता लेना मंजूर नहीं था और उनसे भी नहीं जिन्हें अब्बास ने ही खोजा था और एक पहचान दी थी। बिग बी के अनुसार गंभीर रूप से बीमार और अर्थभाव से जूझ रहे अब्बास ने तब सात हिंदुस्तानी के अधिकार सिर्फ उतने ही राशि में बेचे थे जो उनके इलाज के लिए जरूरी थी, जबकि उन्हें अच्छी खासी रकम मिल सकती थी। अमिताभ ने लिखा कि यह बात अब्बास ने किसी को नहीं बताई थी क्योंकि उन्हें डर था कि यह सुनकर लोग उनकी मदद करने के लिए आगे आएंगे। ये उनके सिद्धांतों के खिलाफ होता। वो केवल अपनी मेहनत की कमाई पर विश्वास करते थे। बिग बी पहली बार ख्वाजा अहमद अब्बास से तब मिले थे जब उन्हें अब्बास ने अपनी फिल्म सात हिंदुस्तानी में एक रोल के लिए बुलाया था। यह फिल्म पुर्तगालियों के कब्जे में गोवा को मुक्त कराने पर बनी थी और उन दिनों अमिताभ बच्चन फिल्म जगत में पैर जमाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो चलिए, ये थी कुछ खास बातें। और गोवा में पूरी यूनिट एक छोटे से सरकारी गेस्ट रूम पे गेस्ट में रुकी। ये सुविधाएं नहीं के बराबर ही थी और रात को लालटेन का इस्तेमाल होता था क्योंकि वहाँ बिजली नहीं थी। लालटेन की रोशनी में ही अब्बास हाथों में कागज कलम लेकर रात भर कहानी और सीन की तैयारी करते और अगले दिन शूटिंग होती थी। तो है ना कमाल की बात। तो चलिए, ये थी कुछ खास बातें ख्वाजा अब्बास के बारे में। और आखिरी दिनों में उनकी एक फिल्म एक आदमी 1988 में काम हुआ इसमें, और ये फिल्म उनकी मृत्यु के बाद रिलीज हुआ। उनके लिखने के बाद फिल्म किसी भी कीमत पर रुकनी नहीं चाहिए, ये उनका जो है मानना था, जो आज भी आली पीटर जॉन के दिल को खुरेदती है। ख्वाजा अहमद अब्बास 72 वर्ष की आयु में 1 जून 1967 को इनका निधन हुआ। अपने अंतिम दिनों तक लिखते रहे। अब्बास साहब को भारत में समानांतर व न्यू रियलिस्टिक सिनेमा रहनुमा में गिना जाता है। तो ये थी कुछ खास बातें ख्वाजा अब्बास के बारे में, आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

0: ओम शांति। नमस्कार, मैं आकाश मानिसार से नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉलंटियर मेंबर। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर

एक बार स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। मंगल कामनाएं करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब हम लोग किसी की कहानी सुनते हैं तो हमारे जीवन में भी बड़ा मोटिवेशन मिल जाता है कि कैसे व्यक्ति जो है इतना सारा काम कर लेता है ना। और एक तरफ जो है व्यक्ति अपनी रोजी रोटी के लिए मशक्कत कर रहा है और एक तरफ लोग जो है पूरी समृद्धि के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं, है ना। तो ये जो गैप है, ये जो कहीं ना कहीं खाई है, इसको दूर करने के लिए शायद मुझे लगता है कि हम सभी को मिलकर काम करना होगा। और मिलकर काम करने के साथ साथ हर व्यक्ति को अपने ऊपर काम करना होगा। देखिए, थोड़ा सा अपनी आप को खोल के देखिए, मतलब अपने आप को देखिए कि आपके अंदर क्या हुनर है, क्या कला है, कैसे आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए और हर जगह जो है सीखने की ललक बना के रखिए और सीखते हुए थोड़ा सा मेहनत कीजिए। छोटा काम कोई भी छोटा नहीं होता अगर आप करते हैं तो, है ना। तो इसीलिए हर काम जो आपके हाथ में आता है उसे करिए पूरे ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ। फिर देखिए आप भी अपनी जो जीवन में जो गैप है वो भरने में कामयाब हो जाएंगे। तो चलिए इस कार्यक्रम में, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। और जाते जाते फिर से आपको ले चलता हूँ एक और सुंदर विचार के साथ जोड़ना चाहूँगा। तो मैं जिस तरह से बातें आपसे शेयर कर रहा था उसी से आधारित एक विचार सामने है मेरे। काम इतना शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे। काम इतना शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे। अब ये बातें जो है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इतना शांति से काम करते हैं, जैसे आप सभी जानते हैं जो रिसर्चर होते हैं, जो अनुसंधानकर्ता होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, उन सभी का शांति सबसे बड़ा प्रिय विषय है। और शांति में रहकर वो दुनिया से कट जाते हैं और अपने आप में खोकर एक नई चीज़ को इन्वेंट करने में समय लगाते हैं। उनके चिंतन, उनकी विचारधारा जो है एक दिन रंग लाती है और उनकी सफलता पूरी दुनिया में शोर मचा देती है, है ना, कमाल की बात। तो आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, यानी रेडियो मधुबन के साथ। सलाम, नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसे समुद्र मंथन से अमृत निकला, वैसे ही आत्म मंथन से शांति, सच्चाई और समाधान निकलते हैं। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: हल्की गुनगुनी सर्दी की दस्तक के साथ ही दीपावली के पहले सफाई अभियान हर बरस की कहानी होती। लगता कि दिवाली में घर का हर कोना सजा धजा लगे, फूलों सा महके और चांदनी सा चमके। पर साफ सफाई के साथ सुबह से ही किचन का रुख करना तो घर की लक्ष्मी का परम धर्म होता है ना, यानी पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा। त्योहारों में पति बच्चों की फरमाइशों की लंबी फेहरिस्त होना भी लाजमी होता। किसी को नमकीन तो किसी को मीठा पसंद। घर में आने जाने वालों के लिए भी अलग से नाश्ता तैयार रखना, उफ। उसके बाद समय निकालकर घर की साज संभाल, सफाई और पुराने बरसों से गंदे पड़े बेकार सामान को ठिकाने लगाना, हर साल की यही कवायद। खैर, जो भी हो, दिवाली पर तो घर का हर कोना जगमग होना ही चाहिए ना, क्यों ना हो। साफ सुथरे वातावरण से ही तो दिल और दिमाग खुशियों से दो चार हुआ करते हैं। खुद को ही समझाती निष्ठा, बच्चों को स्कूल कॉलेज के लिए रवाना कर, पति को ऑफिस जाने से पहले टांट पर रखे लकड़ी के बक्से को नीचे उतारने का हुक्म बजा कर उसके लिए टिफिन तैयार करने किचन की ओर जाती है। बेशक बिन घर परिवार के जीवन अधूरा है, पर दिन के 24 घंटों में से चंद पल खुद के लिए सहेजना, खुद से बातें करना, खुद की पसंद नापसंद को तवज्जो देना, कुछ बीती बातों को याद कर मुस्कुराना, तो कुछ भविष्य के ताने बाने गुन्ना भी एक स्त्री के लिए बेहद जरूरी होता है। चाय की शौकीन निष्ठा पति के ऑफिस के लिए निकलते ही एक कप गर्मा गर्म काली मिर्च और लौंग वाली चाय बनाकर बड़े से कप में लेकर ड्रॉइंग रूम में बिछी चटाई पर बैठ जाती है। भाई, गर्मा गर्म चाय के प्याले के साथ सुमधुर भूले बिसरे गीत हों तो सारी थकान चुटकियों में दूर हो जाती है और काम भी बड़ी स्फूर्ति से होता है। चाय की चुस्कियों के साथ ही निष्ठा ने पास रखे रेडियो को ऑन किया तो एफएम पर गाना बज रहा था, प्यार के धागे धागे तोड़े नहीं टूटे। सच, इन धागों से ही रिश्तों के ताने बाने बुने जाते रहे हैं। धागा यदि रेशम का हो तो सात समुंदर पार परदेश में बसा भाई भी लाडली बहना की प्रीत में बंधा अपने होम टाउन की ओर यानी गृहनगर की ओर दौड़ा चला आता है। और अगर सूत के धागे की बात हो तो बेशक हमारे जहन में परसों पुरानी यादें भी ताजा हो जाया करती हैं। गाना सुनते सुनते निष्ठा ने सामने रखी लकड़ी की पेटी पर पड़ी धूल एक कपड़े से झाड़कर उसका ढक्कन खोला तो उसकी आंखें विस्मित सी हो गईं। जिंदगी की आपाधापी, बच्चों की परवरिश और पति के बार बार ट्रांसफर के चलते शहर शहर घूमते रहे। पिछले कुछ वर्षों से हर दिवाली नए नए महंगे महंगे बंधनवार सोफा टेबल कवर चादरें खरीद खरीद कर घर को कुछ दिन सजा कर रखते, पर चंद दिनों बाद ही उन्हें देख देख जब बोरियत सी महसूस होती तो फिर या तो उन्हें उतार कर भविष्य में कभी उपयोग न करने के लिए पलंग के बॉक्स के हवाले करते या फिर घर में काम करने वाली महरी को दे दिए जाते। पर न जाने क्यों दादी माँ के साथ बिताई अविस्मरणीय यादों की एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी इन धागों की बनावट से निष्ठा का अलग ही अनुराग रहा है। तभी तो तकरीबन 30-35 साल पुरानी इन चीजों को कई बार घर में सजाकर वापस पॉलिथिन में पैक करके उसने दिलो जान से साथ संभाल कर रखा हुआ है। चाय की चुस्कियों के साथ ही उन बेशकीमती यादों को थामने वाली पैकिंग खोलकर प्यार से उन पर हाथ फेरा तो दादी के प्यार के कोमल स्पर्श से निष्ठा का बाल मन चहकने सा लगा। बचपन की यादें होती भी तो अनमोल और अविस्मरणीय हैं। दादी माँ की बनाई क्रोशिए के तोरण, रंग बिरंगे फूलों से सजे तकिए के कवर, टेबल कवर और यहां तक कि दादी माँ ने निष्ठा के दुपट्टे में क्रोशिए के कंगूरे भी सजा रखे थे। मैचिंग हेयर बैंड्स के प्रति निष्ठा की दीवानगी के चलते उन्होंने पतली इलास्टिक पर क्रोशिए की फ्रिल वाली कारीगरी कर इतने शानदार फ्रिल वाले हेयर बैंड्स की डिजाइन इजाद की कि देखने वाले का दिल ही खुश हो गया। इन सारी वस्तुओं को देख निष्ठा तो जैसे वही पुरानी 6-8 साल की छोटी बच्ची ही बन गई थी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं अंजलि खेर जी की लिखी ये कहानी जो कि टी टाइम सीरीज के अंडर है और कहानी का टाइटल है यादों का अनमोल खजाना। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले बस इतना सा कहूंगा कि चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो निष्ठा इन सारी वस्तुओं को देख जैसे वही पुरानी 6-8 साल की छोटी बच्ची ही बन गई थी। निष्ठा का बचपन दादी के इर्द गिर्द ही गुजरा। धागे की बुनावट के साथ रिश्तों को पिरोकर रखना भी तो दादी ने ही सिखाया था। दादी माँ सारा दिन जमीन पर बैठकर पैरों को मोड़ बड़ी बड़ी लच्छियां अपने घुटनों पर फंसाकर कभी रंग बिरंगे तो कभी सफेद धागों के गोले बनाया करती, फिर सुलझे धागों के गोलों को साफ सुथरी पन्नी में रखती जिससे यहां वहां जमीन पर लुढ़क कर धागे खराब ना हो। पन्नी में रखे धागों के गोलों का एक छोर बाहर निकला रहता जिसका एक सिरा बाएं हाथ की अनामिका में लपेट दाहिने हाथ में क्रोशिया पकड़ दादी माँ बड़े बड़े फूल धड़ाधड़ बनाया करती और बाद में उन सबको क्रोशिया से जोड़कर कभी बड़ा सा टेबल कवर तो कभी सोफा बैग बनाती। हाथ पर हाथ धरकर खाली बैठना या पड़ोसनों से बेमतलब की गप्पे लड़ाते बैठे रहना दादी माँ की आदत ही नहीं थी। क्रोशिये का एक आइटम बनता और दादी किसी को एक एक वस्तु गिफ्ट में दे देती या फिर इसी लकड़ी की पेटी में सज जाती और वापस दादी फिर कुछ नया बनाने लग जाया करती। आश्चर्य की बात होती कि उनकी बनाई क्रोशिये की हर वस्तु में कुछ न कुछ नई कलाकारी होती। रंगों का संयोजन तो इतना आकर्षक होता जैसे किसी सिद्ध हस्त की कुशल कारीगरी हो। घर में आने जाने वालों, मेहमानों, रिश्तेदारों में शायद ही ऐसा कोई होता जिनके घरों में दादी माँ के हाथ से बनी क्रोशिये की एक भी वस्तु ना हो। दादी जब भी कोई नई चीज बनाना शुरू करती निष्ठा पालथी मार उनके पास जाकर बैठ जाती और क्रोशिया चलाना सीखने की कोशिश करती। उनकी बनाई वस्तुओं की तारीफ होते देख निष्ठा ने भी जिद करके पापा से क्रोशिया मंगा ही लिया और लगी सिखाने की जिद करने दादी माँ से। दादी ने उसे क्रोशिये से चैन बनाना और फिर 3 से 2, 2 से 1 करके घर बनाकर क्रोशिये से सबसे पहले थैली बुनना सिखाया था। शुरुआत में कोई चैन छोटी तो कोई बड़ी बनती तो कई बार क्रोशिये से घर बनाते बनाते धागा खींचने से सारा कुछ उधड़ जाया करता तो निष्ठा रोने लग जाया करती, पर दादी माँ बहुत ही प्यार से समझा कर वापस बुनने की सलाह देती। फिर क्रोशिये का ऐसा जुनून निष्ठा पर हावी हुआ कि उसने कभी तिरंगा तो कभी सतरंगी छोटी बड़ी ढेर सी थैलियां बनाई, फिर तो छोटा मोटा सामान लाने के लिए उन्हीं थैलियों को ले जाया जाता। क्योंकि कुछ ना कुछ रचनात्मक करने की आदत विरासत में दादी माँ से ही मिली थी, सो निष्ठा ने थैलियों की बनावट में नवाचार लाने का प्रयास कर भोपाली बटुआ स्टाइल में बुनने का प्रयास किया। दादी माँ तो थी ही कलाकार, उन्होंने बटुए को बंद करने वाली डोरी के दोनों किनारों पर रंग बिरंगे कंगूरे बनाकर गोटा पट्टी लगा और भी आकर्षक बना दिया था। दादी माँ और निष्ठा की मिली जुली इस नई कलाकृति को जो भी देखता बस देखता ही रह जाता। कहते हैं ना, मूल से ज्यादा प्यारा सूद होता है, तो अपनी नातिन को मिली तारीफ से दादी माँ ने क्रोशिये की बुनावट को और भी रचनात्मकता प्रदान की क्योंकि वो निष्ठा को और भी अच्छी चीजें बनाना सिखाना चाहती थी। उनकी सोच में थोड़ा बहुत निष्ठा भी शिरकत करने लगती और जोड़ तोड़ कर दादी माँ हर बार कुछ ऐसा बनाती कि देखने वाले हैरान हो उठते कि ये हाथों का बनाया हुआ है या बाजार से खरीदी गई कारीगरी। चाय का प्याला आधा खाली हो चुका था और निष्ठा अभी भी दशकों पुराने यादों में खोई हुई थी। वहीं उसी कमरे में जिसमें रखी प्रत्येक वस्तु पर दादी माँ के हाथों के धागों से बुनी कारीगरी का कोई न कोई नमूना सजा था और कमरे की सुंदरता में 4 चांद लगा रहा था। एक बार दादी माँ ने घर के बड़े से टेबल के लिए टेबल कवर बनाने के लिए एक बहुत बड़ा और 7 छोटे-छोटे पंचकोण आकार के फूल बुनकर तैयार किए। दादी उन सभी फूलों को अपने बिस्तर पर फैलाकर उन्हें आपस में जोड़ने के लिए बार बार अलग अलग तरीके से सेट करके देख रही थी। निष्ठा उनके कमरे में पहुंची तो देखा नीले रंग की चादर पर सफेद रंग के क्रोशिये के वो फूल इतने खूबसूरत लग रहे थे कि बात मत पूछो। उसने दादी से कहा कि दादी, क्या इन फूलों को ऐसे ही चादर पर नहीं टांगा जा सकता? देखो तो चादर पर ये फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। दादी माँ चादर पर फूलों को सेट कर खड़ी होकर निहारते हुए बोली, अरे वाह, तूने बात तो एकदम खरी कही है बिटिया, अब तो तेरा भी दिमाग इन सब में भला सा चलने लगा है। निष्ठा का आइडिया दादी माँ को इतना भाया कि वो आनंद फानन बाजार में जाकर प्लेन मैरून चादर लेकर आई और साथ ही मोहल्ले में रहने वाले दर्जी को भी बुला लाई और उसे चादर पर फूलों को टांकने की समझाइश देने लगी। हालांकि दर्जी को फूल टांकने में थोड़ी कठिनाई जरूर हुई, पर चादर तो क्या खूब बन पड़ी थी, जो देखता नजर ही नहीं हटती थी चादर पर से, उस दिवाली तो हमारे घर दादी माँ की इस कृति को देखने मोहल्ले भर की भीड़ जम पड़ी थी। आज भले ही पेंच वर्क वाली चादर कॉमन है, पर 30 बरस पहले तो हमारी दादी माँ के हाथों बनी उन कृतियों ने ही धमाल मचा रखा था। पड़ोस वाली कार्तिका दी के घर जब चुनमुन आई तो दादी माँ ने उसके नामकरण पर क्रोशिये से क्या तो सुंदर गुलाबी रंग की ऊन की जैकेट क्रोशिये से बुनी थी। चुनमुन पर तो जैकेट बड़ी ही फब रही थी। फिर तो जिसने भी चुनमुन को वो जैकेट पहने देखा, दादी माँ के पास अपने अपने बच्चों के लिए बुकिंग कर दी। कुछ लोग तो नए साल, दिवाली या फिर दादी माँ के जन्मदिन पर सुंदर खिले रंगों वाली ऊन ही गिफ्ट करने लगे, जिससे दादी माँ उनके नन्हे बच्चों के लिए ऊन की क्रोशिये से बुन कभी जेब वाली जैकेट तो कभी घेर वाली नरम नरम फ्रॉक बुनकर गिफ्ट किया करे। एक बार निष्ठा ने दादी माँ से क्रोशिये का एक स्टोल बनाकर देने की डिमांड की। बस फिर क्या था, क्रोशिये से घर बनाने का गणित लगाकर धूप छांव वाले कलर का एक सुंदर सा स्टोल बनाकर दादी माँ ने बड़े ही प्रेम से निष्ठा के हाथों थमा दिया। उस स्टोल को कुर्ती के साथ गले में लपेट सके और ज्यादा ठंड में उसे कानों पर भी बांधा जा सकता था। जन्मदिन पर दादी माँ से मिला यह अनमोल उपहार आज भी निष्ठा की इस लकड़ी की पेटी में सुरक्षित है। दादी माँ और निष्ठा की घर में सबसे ज्यादा घुटती थी। निष्ठा की हर छोटी बड़ी फरमाइश को वो जरूर से पूरा किया करती। निष्ठा भी जानती थी कि वो दादी माँ से जो भी बुनने को कहेगी, दादी माँ 2 दिन में चट से बनाकर रख देंगी, क्योंकि क्रोशिये की बुनावट में कुछ नई चुनौती उन्हें हमेशा से भाया करती थी। चुनौती देने में निष्ठा सबसे आगे हुआ करती, और आए दिन कभी थर्मस के लिए क्रोशिये का कवर तो कभी कुर्ती के साथ पहनने के लिए जैकेट और वो भी कॉलर वाली, और भी न जाने कैसी कैसी चीजें बनाने की मांग किया करती। निष्ठा की कल्पनाओं में सोची हुई वस्तु को दादी माँ यूं गढ़ जाती जैसे उनके पास अपनी नातिन के मन की बात पढ़ने के लिए कोई जादू की छड़ी ही हो। आज भले ही बाजार में सजावट के सामान और फैशनेबल कपड़ों की भारी भरमार है, पर जो प्यार की गर्माहट, यादों की चहचहाहट और अपनेपन की नरमाहट, दादी माँ के हाथों का गुलगुला प्यार भरे स्पर्श की अनुभूति इन सारी धागों की बुनावट में है। वो भला दुनिया की महंगी से महंगी रेडीमेड मशीन से बनी वस्तुओं में भी कहां। डोरबेल के बजते ही निष्ठा की तंद्रा टूटी और वो दरवाजा खोलने के लिए उठ गई। सामने कांता खड़ी थी, दिवाली की साफ सफाई के लिए मदद करने आई थी। बस इसी मोड़ पर हमें भी यादों की गलियों में बहुत गहरे ले जाकर छोड़ती हुई ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आप सुन रहे थे टी टाइम सीरीज में एक और कहानी, यादों का अनमोल खजाना, जिसे लिखा है अंजलि खेर जी ने। मैं समझता हूं कहीं ना कहीं बीच बीच में आपकी भी आंखें नम हुई होंगी इसे सुनते हुए। यादें होती ही कुछ इतनी मधुर हैं, पर वो जो नम हुई हैं उसमें प्रेम और स्नेह ही ज्यादा है ना। अगले पड़ाव पर एक नई लघु कथा, कहानी, नज्म, पोएम के साथ में फिर आपके बीच हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। अमित का बहुत बहुत नमस्कार और ढेर सारी शुभकामनाएं।

0: हम
1: रेडियो मधुबन सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: 107.8 एफएम रेडियो मधुबन सुन रहे हैं आप, और रेडियो मधुबन पे समय हो गया है कार्यक्रम युवा मंच का। जी हाँ दोस्तों, 107.8 एफएम आपका अपना रेडियो मधुबन है, और इस कम्युनिटी रेडियो में हम आपके लिए लेकर आते हैं अलग अलग विषयों के कार्यक्रम। और अभी जो विषय का कार्यक्रम है, जहां पर हम युवाओं की बात करते हैं, युवाओं से जुड़ी हुई चीज़ों की बात करते हैं, और कई बार बात करते हैं कि हमारा समाज हमारे युवाओं को क्या सपोर्ट दे सकता है ताकि वो निश्चिंत होकर आगे बढ़ सकें। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ जो अतिथि मौजूद हैं युवा मंच में, इस मंच पर आज मौजूद

0: रवि महाजन जी। रवि महाजन एक ऐसे युवा हैं जो आज के समय का जो एक सबसे चर्चित विषय है, जहाँ पर हम डिजिटल पेमेंट की बात करते हैं, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, ऑनलाइन बुकिंग्स की बात करते हैं, और जब भी कोई चीज़ होती है तो हम कहते हैं कि अरे भैया कौन जाके लाइन लगाएगा, हम ऑनलाइन बुक कर लो ना, ऑनलाइन निकाल लो ना, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दो ना। तो ऐसे ही विषयों में जब इतनी टेक्नोलॉजी हमारे को सुविधा प्रदान कर रही है, उसी समय कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छी चीज़ों के अंदर भी बुराई ढूंढ लेते हैं, और ऐसे ही बुराइयों करने वालों को पकड़ने के लिए सरकार को साइबर सिक्योरिटी विभाग बनाना पड़ता है। तो महाराष्ट्र में साइबर सिक्योरिटी विभाग में कार्यरत रवि महाजन हैं, जो साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं, और सबसे पहली बात तो वो युवा है। बहुत बहुत स्वागत है रवि जी आपका।
1: नमस्ते, ओम शांति।
0: कैसे हैं रवि भाई?
1: बस बढ़िया।
0: तो जैसा कि मैं हमारे श्रोताओं को बता रहा था कि एक ऐसा विषय जो आज के समय का बजवर्ड है, साइबर साइबर साइबर, किसी को भी कहो डिजिटल साइबर,
1: राइट।
0: और बहुत बार तो सरकार इस बात को प्रमोट करती आती है कि भैया आप ऑनलाइन चीज़ों का इस्तेमाल करें, अभी कैश कम यूज़ करें, डिजिटल कैश यूज़ करें,
1: राइट,
0: और बुकिंग के लिए लाइन नहीं लगाएं, डिजिटली करें,
1: राइट।
0: ऐसे तो इस समय पर आप लोगों की उपयोगिता बहुत बढ़ जाती है,
1: राइट।
0: तो क्योंकि ये मंच युवाओं का मंच है, तो मैं युवाओं की ओर से आपको ये पूछना चाहूँगा कि ये जो फील्ड है, ये आपने कैसे चुनी, अपने बारे में कुछ बताइए और इस फील्ड के बारे में बताइए।
1: हाँ जी, नाम रवि महाजन। मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट में साइबर फॉरेंसिक डिवीजन एज अ साइंटिफिक ऑफिसर, जिसे हिंदी में कहते हैं वैज्ञानिक अधिकारी, के रूप में मैं कार्यरत हूँ
0: जी।
1: नागपुर डिस्ट्रिक्ट में हूँ
0: जी।
1: और कई मीन्स बहुत सारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जैसे ईडी, सीबीआई, एनआई, एटीएस महाराष्ट्र, क्राइम ब्रांच और पुलिस स्टेशन और ऑल महाराष्ट्र, जिसमें तांत्रिक जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के लिए जो भी हेल्प दिया है, तो नियर अबाउट 12 साल का एक्सपीरियंस जो है तो इसी फील्ड में, जिसमें इन्वेस्टिगेशन, साइबर सिक्योरिटी, साइबर फॉरेंसिक, इंसिडेंट हैंडलिंग, तो इस सब चीज़ों में
0: काम करते हैं।
1: हाँ,
0: तो मेरा ये सवाल है कि ये जो फील्ड है, थोड़ी सी सुन करके बहुत सारे लोग इस साइबर के मतलब इंटरनेट के द्वारा होने वाले अपराधों से पीड़ित रहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, एक रोज़ कभी ना कभी कोई भी अखबार उठा लो, आज इनके इंटरनेट के द्वारा धोखाधड़ी करके 50 लाख उठा लिए, इसको ये नुकसान कर दिया, या कभी किसी की फ़ोटो कुछ उटपटांग बना के डाल दी, कई बार तो बहुत ज़्यादा भी सीरियस हो जाते हैं। तो आपने इस फील्ड को कैसे चुना?
1: तो फील्ड में चुना तो नहीं, लेकिन अपन कहते हैं ना कि एक नदी की एक जैसे बहाव होता है, लेकिन बहाव में भी एक एकाग्रता होती है, राइट
0: जी।
1: तो उस बहाव से मैं इस फील्ड में आ गया, और जो फील्ड मैंने चुन लिया तो उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको बिल्डअप किया, और उसमें अपना 100% जो है, जैसे कि बोलते हैं एकदम स्टिक, तो उस टाइप में मैं इस फील्ड में से बहता गया, और हर पॉइंट पर मैं एक एनालाइज करता रहा, साइबर सिक्योरिटी फील्ड में हो चाहे साइबर फॉरेंसिक, इंसिडेंट हैंडलिंग, ये सब चीज़ों में मैं परफेक्ट बनने की मैंने कोशिश किया।
0: क्या पढ़ाई करनी पड़ती है अगर कोई साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में जाना चाहता है?
1: इसमें तो एक कंप्यूटर आपका बेसिक होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए, या बीई कंप्यूटर होना चाहिए, इंजीनियरिंग या समथिंग कुछ साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड। अभी मास्टर डिग्री भी बहुत सारे गवर्नमेंट ने, अभी यूनिवर्सिटीज़ ने ओपन किया है, एक साइबर सिक्योरिटी अलग सा डिपार्टमेंट उन्होंने, बहुत सारे भारत में ऐसी यूनिवर्सिटी जैसे
0: ब्रांच खोली
1: है, यस, ब्रांच अलग से ब्रांच खोली है, जैसे नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है, उसके बाद इसमें भी एक आपका सिक्योरिटी मास्टर इन साइबर सिक्योरिटी, मास्टर इन साइबर फॉरेंसिक, तो ये ऐसे अलग अलग ब्रांचेस, स्पेशल ब्रांचेस यूनिवर्सिटीज़ ने निकाले।
0: तो मैं महसूस होता है कि जैसे बहुत सारे तो विभाग हैं सुरक्षा के लिए सरकार ने बनाए हैं, चाहे वो भारतीय सेना हो या फिर पुलिस विभाग हो, राज्य की पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, लेकिन ये एक ऐसा विभाग है जैसे कि वो कंप्यूटर पे बैठ के ज़्यादा काम करना होता है।
1: राइट राइट राइट, कंप्यूटर पे बैठ के काम, दैट इज़ द अनदर थिंग, लेकिन यहाँ पे दिमाग भी, जैसे शारीरिक प्लस मानसिक, इसका दोनों का बैलेंस आपको रखना पड़ता है। और रिजल्ट जो रहता है साइबर सिक्योरिटी के लिए, जिस आप एनालिसिस करें हर चीज़, तो उसके लिए पेशेंस भी बहुत ज़रूरी है।
0: ओके, धीरे रखना पड़ता है,
1: तो ही रिजल्ट अपने को आ सकता है।
0: बिल्कुल सही बात दोस्तों, जैसे आप सुन रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी माना खाली कोई हाथ में डंडा लेके रखवाली नहीं करनी है बंदूक लेके, लेकिन बुद्धि के घोड़े दौड़ाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपने एक शब्द मुझे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जैसे एविडेंस, उसको बारे में कुछ कहा, दूसरा आपने एक साइंटिफिक स्टडी करने, फॉरेंसिक का शब्द यूज किया, फॉरेंसिक का माने क्या होता है?
1: फॉरेंसिक जैसे हम कहते हैं कि अगर कुछ एक चीज है, जैसे उसमें हम, जैसे हम पीएचडी करते हैं तो एक सब्जेक्ट में हम क्या करते हैं, पीएचडी करते हैं, राइट। तो फॉरेंसिक एक ऐसी चीज है जिसमें आपको ओवरऑल नॉलेज चाहिए होता है, जैसे कंप्यूटर सिक्योरिटी का नॉलेज चाहिए होता है, राइट। आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज चाहिए, आपको डेटाबेस का नॉलेज चाहिए, आपको नेटवर्किंग का नॉलेज चाहिए, राइट। तो अलग अलग जो मीन्स कोडिंग का नॉलेज चाहिए, अलग अलग जो डोमेन है सिक्योरिटीज के बाद में, मीन्स व्हाट एवर रिलेटेड टू कंप्यूटर,
0: ओके।
1: सो इस सब मिला के वो फॉरेंसिक, साइबर फॉरेंसिक ये बनाए। मीन्स कल समझो हमारे, जैसे हमारे यहाँ पे भी क्राइम रजिस्टर होता है,
0: ओके,
1: राइट। जैसे डेटा थेफ्ट होता है,
0: जी जी जी,
1: डेटा थेफ्ट होता है किसी कंपनी से, तो वो रजिस्टर होता है,
0: केस बनता है।
1: हाँ, जैसे पेट्रोल पंप के कुछ अलग फेक पेट्रोल पंप में चिप लगाते हैं तो प्रोग्रामिंग असेंबल हो जाती है। तो जैसे पेट्रोल में आपको समझो 99-100 रुपीज का पेट्रोल डालना है,
0: जी जी,
1: तो कई बार ऐसा देखा गया कि 60 रुपीज का ही आपको पेट्रोल मिला है, बाकी 40 का मिला है। तो ये दैट इज द प्रोग्रामिंग,
0: कंप्यूटर की छेड़छाड़,
1: राइट। प्रोग्रामिंग करके वो छेड़छाड़ करना चिप में, और उसकी तो फायदा उनको ही होता है, लेकिन नुकसान तो
0: जनता को होता है। तो ये भी साइबर सिक्योरिटी में आता है?
1: हाँ, ये भी साइबर सिक्योरिटी,
0: मतलब कंप्यूटर से जुड़े हुए,
1: कंप्यूटर फॉरेंसिक में आता है, जैसे कोडिंग एनालिसिस उसमें हम करते हैं, राइट। जैसे डेटा थेप में हम अलग अलग जो डोमेन रहते हैं, जैसे उसने अगर किसी एम्प्लॉय ने डेटा चुराया है तो किस फॉर्म में चुराया, बाय ईमेल चुराया है, बाय सोशल मीडिया एप्लीकेशन चुराया है, कुछ रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशन से चुराया है, या लोकल उसका कुछ अकाउंट ऐसा है कि उस पर उसने अपलोड किया है डेटा कंपनी का। तो ऐसे अलग अलग जो केसेस है, तो बहुत सारा उसमें हमको डेटा देखना पड़ता है, अलग अलग फाइल्स, हजारों में लाखों में कुछ फाइल एनालाइज करना
0: पड़ता है,
1: राइट।
0: ये तो बहुत मुश्किल काम है दोस्तों, क्योंकि स्थूल रूप से जो चीज़ दिख रही है आंखों के सामने, तो कैसे ना भी कैसे हम देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर ये हथियार इस्तेमाल हुआ है या और कोई चीज़ें, लेकिन जब कंप्यूटर की बात होती है तो ये सबकी बात, सबके बस की बात नहीं होती है, क्या कहेंगे आप,
1: राइट।
0: तो जैसे मैं आपको पूछ रहा था कि हमारे दोस्त अगर साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में जाना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा आपने बताया कि अलग अलग विश्वविद्यालय में इसके कोर्स होते हैं,
1: राइट।
0: और उस कोर्स को हम जाके परस्यू कर सकते हैं, और कोर्स को करने के बाद में फिर क्या करना पड़ता है,
1: राइट। तो कोर्स स्टार्टिंग करने से पहले आप नेटवर्किंग के जो कंसेप्ट है, कंप्यूटर के जो बेसिक कंसेप्ट है, नेटवर्किंग जो बेसिक कंसेप्ट है, तो उसकी थोड़ा एकदम डिटेल में आपने जाना चाहिए। फिर उसके बाद जो भी साइबर सिक्योरिटी स्पेशल कोर्सेस है, जैसे इसी काउंसिल की साइबर इन इथिकल हैकिंग, राइट, उसके बाद साइबर इन इंसिडेंट हैंडलर, राइट, सर्टिफिकेट, तो अलग अलग प्रोफेशनल सर्टिफिकेट जो है वो अवेलेबल है, CHFI, हैकिंग एंड फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, राइट। लेकिन ये जो ये सब सिक्योरिटी के लिए बहुत, ये सर्टिफिकेशन की बहुत मदद होती है। तो आप मास्टर डिग्री प्लस सर्टिफिकेशन प्लस आपका बेसिक नॉलेज नेटवर्किंग का, तो आप एक अच्छे एक्सपर्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन सकते हैं।
0: मैंने एक ओवरऑल 360 डिग्री आइडिया होना भी जरूरी है, और साथ साथ में कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन भी हमारे को होना चाहिए,
1: राइट, जो ग्लोबली एक्सेप्टेड हो, ऐसे सर्टिफिकेट हमने करने चाहिए ताकि हम भारत में भारत की कंपनियों को अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर दे सके जो ग्लोबल लेवल पे होते हैं,
0: कंपेटेबल,
1: यस।
0: मैंने कि क्योंकि क्राइम का जो है अब एक बॉर्डर भी क्रॉस हो चुकी है, कि कई बार ऐसे पता चलता है कि विदेश से हमारे मोबाइल में व्हाट्सएप आता है, फिर कोई लिंक आ जाता है, फिर कोई और कुछ हो जाता है। बीच में एक अखबार में मैंने पढ़ा था कि जैसे एक संगठित अपराध कहा जाता है, एक अपराध की श्रेणी है जहाँ पर जानबूझ करके अपराध किया जाता है, तो साइबर क्राइम में भी काफ़ी सारे संगठित अपराध हो रहे हैं, बहुत सारे लोग मिल के फेक कॉल सेंटर चला के मिल करके लोगों को बुद्धू बनाने का काम करते हैं,
1: राइट राइट। जैसे कि हम देखते हैं पेपर में, हम न्यूज़ पढ़ते, जैसे राजस्थान में भरतपुर है, मेवाड़ है, उसके बाद हरियाणा में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है, झारखंड में कुछ डिस्ट्रिक्ट है, तो ऐसी कुछ जगह है जहाँ पे ये एक सिस्टम चलता है, और वो टीम रहती है, पाँच से छः जने की टीम रहती है, फिर एक स्क्रिप्ट बोलता है इसके साथ में, सामने वाले के
0: टेलीफोन
1: पे, यस, टेलीफोन पे स्क्रिप्ट बोलता है, तो वो जैसे वो डिजिटल हिप्नोटिज्म करता है आपको, राइट,
0: इन सब मिल करके आपको एक तरफ धकेल,
1: तो आपको वो टाइम नहीं देते हैं, तो आप जैसे उनको OTP बताएंगे या जो फ्रॉस्टर है वो आपको लिंक भेजेंगे, वो लिंक आप एक्सेस करेंगे, वो लिंक एक्सेस करने के बाद आपको वो बोलेंगे कि आप एक एप्लीकेशन है एनी डेस हो या कोई रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, वो इंस्टॉल करने लगाते हैं, और आपको चांस भी नहीं देते हैं, राइट तो
0: सोचने का चांस
1: अवेयर तो बहुत सारी बैंक कर रहे, बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी आता है।

0: मोबाइल मोबाइल फोन तो सब एक्सेस वो हैकर्स को ब्लास्टर को मिल जाता है. तो फिर उस पर बाद में अगर आप उसको पैसे नहीं देते हैं स्क्रिप्ट के बाद, जैसे आप बोलते हैं वो ब्लास्टर बोलता है राइट
1: जी,
0: तो जैसे सामने वाले से पैसे नहीं आ रहे हैं तो आपको ब्लैकमेल करता है. तो आपको जो फोटो एडिट, जो आपकी जो फोटो है चाहे कोई फीमेल हो तो उसका जो अल्ट्रेशन ऑफ बॉडी जो है तो वो कुछ पीक लगा के वल्गर पीक लगा के वो उनको ब्लैकमेल करते
1: जोड़ तोड़ कर.
0: तो ऐसे समय में अपन खबरदारी रखने की एक नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके पहले कंप्लेन करना है राइट. हर डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर सेल ओपन हुआ है या अभी जैसे गवर्नमेंट में एक प्लेटफॉर्म ओपन किया है 1930, आप कॉल तुरंत करेंगे तो आपका पेमेंट भी फ्रीज हो सकता है तुरंत.
1: अगर हम फाइनेंशियल फ्रॉड के शिकार हुए हैं तो उसको रोक सकते हैं,
0: उसको रोक सकते हैं.
1: okay.
0: अगर अपन सोशल मीडिया के मीन्स शिकार हो गए राइट, हमारी पिक्चर से समथिंग कुछ है तो हम cybercrime.gov.in पे हम जाके वहाँ पे पहले दर्ज कराए राइट. फिर बाद में लोकल पुलिस स्टेशन पे जाइए और साइबर सेल डिस्ट्रिक्ट का हर सेल होता है साइबर सेल, तो वहाँ पे भी जाके हम कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं और तुरंत एक्शन हो सकती है.
1: चलिए बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके. और दोस्तों युवा मंच कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और हमारे साथ मौजूद है रवि महाजन जो साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं और सबसे पहले वो एक प्रतिभाशाली युवा हैं. उनसे हम बात कर रहे हैं और जहां पर हम बात कर रहे हैं कि कैसे अच्छी चीज़ों के लिए बनाए गए जो साइंस के साधन हैं उनको भी लोग दुरुपयोग करके किस प्रकार से मिसयूज़ कर लेते हैं और समाज को व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए गीत याद आ रहा है, वो गीत सुनते हैं और फिर लौट कर आएंगे. जी हाँ दोस्तों, आपके लिए पेश है लता मंगेशकर जी की आवाज़ में झूठ बोले कौवा काटे. ये गीत सुनते हैं और फिर लौट कर आएंगे. रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए.

0: नमस्कार, गुड इवनिंग। 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन और दोस्तों कार्यक्रम चल रहा है युवा मंच। दोस्तों, युवाओं के मंच युवा मंच पे आज हमारे साथ मौजूद हैं रवि जी, जो एक प्रतिभाशाली युवा हैं और साथ साथ में एक साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट।
1: हाँ जी,
0: स्वागत है सर आपका वापस से।
1: हाँ जी,
0: तो जैसे हम बात कर रहे थे कि साइबर सिक्योरिटी के अलग अलग चीज़ें हैं, उसके महत्व है कि किस प्रकार से हम लोग एक दूसरे को साइबर के होने वाले अपराधों से बचा सकते हैं और अगर किसी को इस फील्ड में जाना तो क्या कर सकते हैं, आगे मैं चलना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा कि साइबर सिक्योरिटी की जो इश्यूज हैं तो उसमें युवाओं का भी कई बार नाम आ जाता है। कई बार हम पढ़ते हैं कि इस बच्चे ने ये गेम का एप्लीकेशन डाउनलोड किया, फिर अपने पिताजी के या माताजी के अकाउंट से 6 लाख रुपया उसमें चले गए, या ऐसे कुछ कुछ ऐसी चीज़ें भी आती हैं आपके पास कुछ?
1: राइट, बहुत सारी चीज़ें आती हैं क्योंकि आजकल जो जैसे स्पॉन्जेस गेम जैसे पबजी है, राइट, उसके बाद में जैसे स्नेक के कुछ गेम्स हैं, राइट, तो जब हम ये खेलते हैं, राइट, जैसे ग्रुप में खेलते हैं तो रैंडमली हमारे ग्रुप में, जैसे फेसबुक के ग्रुप में होगा तो रैंडमली हमको वो ऐड कर देते हैं, राइट। तो ऐड होने के बाद हमको तो मज़ा तो बहुत आता है
0: जी,
1: लेकिन उसमें कुछ ऐसी लिंक वो डाल देते हैं और सब एक्सेस कर लेते हैं।
0: सब एक्सेस कर लेते हैं?
1: यस, सब मीन्स जैसे जैसे हमने फेकलोन्स के बारे में पहले देखा कि हमारा डेटा पूरा हैक हो जाता है, राइट, एक्सेस हो जाता है हैकर्स को। तो सामने वाला वही करता है कि एक लिंक जो है, एक स्पाइवेयर लिंक उसमें डाल देता है, राइट, जो ग्रुप में डाल देता है और वो सभी उसको ऐसे लगता है कि ये कुछ नया गेम्स है, राइट, या कुछ गेम के रिलेटेड है वो लिंक। तो जैसे कि इम्पर्सनेशन हो जाता है, तो जब वो लिंक एक्सेस करते हैं तो अपना जो भी उस ग्रुप में है वो सब का डेटा वो एक्सेस कर लेता है और उसके बाद एक इंडिविजुअल जो टारगेट होता है कि बाबा जैसे उसे कहा जाता है कि तुम ये टास्क करो और नहीं करोगे तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, राइट, एक ब्लैकमेलिंग, ब्लैकमेलिंग जो डिजिटली अपहरण जो बोलते हैं, राइट, डिजिटली अपहरण। तो इस कंसेप्ट से वो हर टास्क, जैसे अभी हम देख रहे हैं जैसे टास्क फ्रॉड होता है, जैसे अलग अलग इस पे, जैसे आपको व्हाट्सएप पे अचानक कोई भी नंबर से मैसेज आ जाता है।
0: मेरे को तो कल के दिन में 3 मैसेज आए थे इसी जगह से, दो तो अंतर्राष्ट्रीय नंबर थे।
1: राइट, तो ऐसे कोई ऐप होते हैं जैसे वो ऐप हर सेकंड नया नंबर जनरेट होता है वो ऐप से, और वो ऐप से व्हाट्सएप भी हम उसको ओटीपी की जरूरत नहीं होती, कुछ नहीं होते, वो ऑथेंटिकेशन हो जाता है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन थ्रू, राइट। तो उससे हम वो नंबर से हम व्हाट्सएप इंस्टॉल कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। तो आपको आपने देखा होगा हर मीन्स बहुत सारे भारतीयों के नंबर में मोबाइल के व्हाट्सएप में अचानक एक कुछ नंबर आता है और वो कहता है कि हाय हेलेना या कुछ फीमेल का नाम, एक अट्रैक्टिव करने के लिए कि आप मैं एक लिंक भेज रही हूँ, आप ये लिंक सब्सक्राइब करोगे, राइट, या शेयर करोगे तो आपको 150 रुपये मिलेगा या 300 रुपये मिलेगा।
0: मैं एक ऐसा ही मैसेज कल आया था, मैं कल के दिन में मेरे पास,
1: राइट,
0: और जब पहले से उन्होंने खाली लिखा हेलो,
1: राइट,
0: और हेलो लिखा तो वैसे मैंने जैसे बताया कि 2 विदेशी नंबर मेरे व्हाट्सएप पे आए,
1: राइट,
0: तो 2 विदेशी नंबर आए तो मैंने तो उसको ब्लॉक लिस्ट कर दिया,
1: राइट।
0: उसके बाद में जो भारतीय नंबर आया,
1: राइट,
0: तो भारतीय नंबर आया तो मेरे को, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था किसी का मैं व्हाट्सएप आएगा,
1: राइट,
0: तो मुझे लगा हो सकता है उनका हो, तो उसने खाली हेलो ही लिखा,
1: राइट।
0: मैं सोचा कि भैया ये मेरे को उस व्यक्ति ने तो नहीं मैसेज किया है,
1: राइट,
0: और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, मेरे हाथ में ही मोबाइल है अभी,
1: राइट।
0: तो इसमें पहले लिखा था कि हेलो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, फिर मैंने जवाब नहीं दिया, फिर अगले दिन सुबह दोबारा आया हेलो गुड मॉर्निंग हाउ आर यू,
1: राइट।
0: तो मैंने उसको लिखा हु इज दिस, कौन है आप, कौन है, तो उसने लिखा आई एम अनिका पटेल फ्रॉम DDB मीडिया वर्ल्ड वाइड, कैन यू प्लीज गिव मी 2 मिनट इन योर प्रीसियस टाइम। मैंने लिखा कि आप यहाँ लिखिए जो भी आपको चाहते हैं, क्योंकि मैंने इंटरनेट पे सर्च किया DDB मीडिया वर्ल्ड वाइड क्या है,
1: राइट,
0: तो वहाँ पर कुछ एक वेबसाइट दिखी मेरे को,
1: हाँ,
0: तो हो सकता है कुछ काम है, मीडिया वाले हैं हम लोग भी,
1: राइट।
0: तो बाद में उसने लिखना शुरू किया कि हमारी कंपनी ऐसे लोगों को ढूंढ रही है जो कि रिव्यू लिखेंगे, उसके बदले आपको पैसा मिलेगा। मैंने लिखा कि आप गलत नंबर पे मैसेज कर रहे हैं और आप कृपया अपनी नंबर लिस्ट में से नंबर निकाल दीजिए,
1: राइट।
0: पर उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, उसने लिखा नहीं, मैं आपसे कोई ज्वाइन करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, आप एक बार ट्राई तो करो ना, ये करो ना वो करो करके, फिर मैंने उसको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया,
1: राइट। जैसे कि आप देखेंगे कि जैसे आप अवेयर मीन्स इसमें अवेयरनेस बहुत जरूरी है, जैसे कोई भी लिंक आते हैं, राइट, कोई भी लिंक आती है तो वो मालवेयर बेस है कि उसमें कुछ एक कोडिंग छुपी हुई है, तो ये हमें एनालिसिस करना चाहिए पहले, क्योंकि जैसे हम वो स्क्रिप्ट हमें देते हैं राइट, तो वन बाय वन तो हमें एक एक मैसेज हमने पहले एनालिसिस करना है, हमारा विवेक आपको जागरूक रखना है राइट,
0: वो लिंक टेम्पटिंग भी बहुत होता है राइट, ऐसा लगता है कि नहीं करके देखते ना क्या होगा,
1: राइट राइट करके यस आपको करना भी है तो बहुत सेफली कीजिए, वो लिंक लीजिए, उसके बाद उसको अपने पीसी पे ओपन कीजिए वो लिंक राइट, वो लिंक ओपन करने के लिंक ओपन मत करिए, उसको कॉपी करके जो कुछ वेबसाइट है स्टैंडर्ड वेबसाइट जैसे jotty.com है राइट, या virustotal.com है, या समथिंग और एक दो वेबसाइट है जो एनालिसिस करती है, लिंक एनालिसिस करती है, अगर वो मालवेयर बेस है तो रिजल्ट दे देगी, तो उसको आप एक्सेस ही नहीं कीजिए।
0: अच्छा, वो लिंक वहाँ डाल के हम चेक कर सकते हैं। हाँ,
1: तो हमें दूसरी,
0: क्या वो वेबसाइट का नाम दोबारा बोलना चाहेंगे हमारे श्रोता जो है?
1: virustotal.com और jotty.com है।
0: ओके,
1: ये दो वेबसाइट है एंड्रॉइड के लिए राइट, तो हम ये जो लिंक उसमें डाल सकते हैं, तो मालवेयर पे उसमें अगर मालवेयर छुपा है तो वो लिंक आपको इन्फॉर्मेशन दे देगी, ये एक तरीका है। और दूसरा एक अपना एक खुद का एक समझ होता है कि बाबा हम सब्सक्राइब कर रहे हैं और मुझे 150 रुपये मिलेगा, और बाद में वो कहते हैं कि हम तुम दोबारा सब्सक्राइब शेयर करोगे तो आपको 3000 मिलेंगे राइट, तो हम ये तो बड़ी लालच है, तो ये लालच में हम ना खोए, हम हमारा थोड़ा विवेक जागरूक रख के हम अपना जो जो टाइम जो मोमेंट है वो बचा सकते हैं, और हम घर वालों, हम अपनी सुरक्षा और घर वालों की एक डिजिटल सेफ्टी अपनी हो सकती है।
0: यूथ जो घर में है, जो अभी मेरे रेडियो को सुन रहे हैं और जो घर में रहते हैं यूथ, तो उनका क्या रोल हो सकता है घर के अंदर साइबर सिक्योरिटी का?
1: उनका तो बहुत रोल हो सकता है, क्योंकि एक युवा जो है वो हर ये घर में समय सबका मोबाइल हैंडल करता है, या वाईफाई सिक्योरिटी जो है, जैसे वाईफाई वो इंस्टॉल करता है तो उसका सिक्योरिटी, वो जो इंस्टॉल करने वाला है उसके पास ही उसका पासवर्ड वगैरह सब कुछ होता है, और वो इतना वीक होता है तो बहुत मिस, कोई उसने मोबाइल नंबर डाल दिया होता है या समथिंग कुछ @@123 समथिंग कुछ, जो कि बहुत इजीली हैकेबल है राइट, तो आप वाईफाई का एक्सेस आपके हाथ में लीजिए, आप खुद का क्रेडेंशियल एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड उसको दीजिए, 10 कैरेक्टर विथ डिजिट एंड ऑल राइट स्पेशल कैरेक्टर, तो एक अगर आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखेंगे, स्ट्रॉन्ग क्रेडेंशियल रखेंगे, तो आपका जो भी डिवाइसेस है वो हैक नहीं होंगे राइट।
0: तो ये रोल युवा ही प्ले कर सकते हैं।
1: हाँ, ये रोआ ये, क्योंकि युवा को ये मालूम होता है कि ये जो डिजिटली चीजें है कि बाबा वाईफाई में जो कुछ है, जो भी कुछ कंटेंट है वो कैसे वर्क करते हैं, वो तो युवा को ही जानकारी होते हैं राइट, क्योंकि उसने बहुत सारे कोर्सेस किए, वो अपने आप जो आजकल ऐप भी आ रहे हैं कि हम कितना घंटा सोशल मीडिया पे बिता रहे हैं, कितना घंटा कंप्यूटर पे बिता रहे हैं राइट, तो वो दे देता है। तो युवा नियर अबाउट 20 hours, जैसे एक सर्वे में आया कि सोशल मीडिया पे नियर अबाउट 18 to 20 hours हो,
0: मतलब 24 घंटे में से 18 घंटे सोशल मीडिया
1: पे राइट राइट राइट, इसलिए
0: ये मुझे भी चेक करना पड़ेगा फिर
1: राइट खुद। तो ऐसे कुछ ऐप्स है वो आप इंस्टॉल कीजिए, जबकि बहुत जरूरी है ताकि हम घर वालों की तरफ भी हमारा लक्ष्य हो, क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड हो गए, अगर हम इतनी 18 से 20 घंटे हम इसमें ही बिजी रहेंगे तो हम घर वालों के डिजिटल गैजेट पे कब ध्यान रखेंगे, अगर उनके साथ कोई फ्रॉड होता है तो आपको समझ में नहीं आएगा।
0: क्या क्या शिक्षाएं हैं जो अपने माता पिता को बता सकते हैं युवा, क्या सिखा सकते हैं
1: उनको
0: फ्रॉड से बचने के लिए?
1: फ्रॉड से बचने के लिए जैसे कि नॉर्मल चीजें, जैसे कोई भी लिंक डाउनलोड करने को बोलता है राइट, तो वो माता पिता को बताना चाहिए कि आपको अगर कोई कॉल आता है तो उनको अगर बैंकिंग का कुछ डिटेल या कार्ड का डिटेल मांगता है तो वो देना ही नहीं चाहिए। फ्रॉड तीन बातों से होता है, तो आपको फ्रॉडस्टर आपको डिटेल्स आपके खुद की मांगेगा राइट, लेकिन प्रीवियस पहले वो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपको कहेगा, सर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है, जो कि आपकी सच में रहती है राइट, इंश्योरेंस पॉलिसी रहती है,
0: बैंक हमारी जानकारी उनके पास आ जाती है।
1: हाँ, उनके पास आ जाती है बाय थर्ड पार्टी, जो डेटा ब्रिज कहते हैं उसको राइट, तो हर जैसे पीछे मूवी की जो एप्लीकेशन था उसमें जो भी जितने भी कस्टमर थे उनका सब डेटा हैक हो गया राइट, तो उसको उनको रैंडमली कॉल आने लगा राइट, तो ऐसी सब जो चीजें होती हैं, तो इसमें हम अवेयर कर सकते हैं हमारे पेरेंट्स को कि कोई लिंक आए, कोई OTP मांग रहा है या कोई बैंक डिटेल्स मांग रहा है, जहाँ पे ऐसा सस्पिशियस लग रहा है तो वहाँ पे शेयर करना ही नहीं चाहिए राइट। ये हुई पहली बात। दूसरी बात होती है जैसे हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं राइट, तो एक फेक प्रोफाइल हमारे सामने आता है, उसको हम हैंडलिंग करते हैं और जो कुछ स्क्रिप्ट होती है तो उसमें हम बहते चले जाते हैं। तो कब रुकना है, कौन सा प्रोफाइल वेरीफाई करना है, इसकी जानकारी बच्चों ने माँ बाप को देना चाहिए, पेरेंट्स को देना चाहिए, ताकि वो फ्रॉड से बच सकें। जैसे बहुत सारे आजकल मैट्रिमोनियल फ्रॉड से या समथिंग, जैसे हमारी सेम प्रोफाइल, जैसे मुझे एक इंसिडेंस याद आता है राइट, तो मेरा जो एक ऑफिसर थे तो उनका फेसबुक क्लोन हुआ, उनका जो सेम अकाउंट फर्स्ट ने ये किया तैयार किया, और उस अकाउंट से जो भी हमारे म्यूचुअल फ्रेंड थे उनको पैसे मांगने लगा, और उसने लगा कि मैं मीटिंग में हूँ तो मुझे अभी तुरंत 5,000 भेज दो, ये मेरा UPI है, और बहुत सारे लोगों ने उसको पैसा भेजा,
0: बहुत सारे लोगों को भेज दिया
1: राइट। क्योंकि हम इसमें सिक्योरिटी हमने ये लेना चाहिए कि हमारा फेसबुक प्रोफाइल जो है हम लॉक ही नहीं करते राइट, तो हमारा सब म्यूचुअल फ्रेंड की लिस्ट उसके पास ऑलरेडी मॉनिटरिंग हो जाती है और वो सबको मैसेज भेजते रहता है।
0: आप ही कह रहे हैं तो मुझे याद आ रहा है कि मेरे भी फेसबुक में बना ऐसे ऐसे लोगों के फ्रेंड रिक्वेस्ट आते हैं जिनको मैं ऑलरेडी फ्रेंड हूँ
1: राइट,
0: तो उसी नाम से दोबारा
1: राइट, तो ये समझ के चलने का, और हम अपने सर्च करना चाहिए कि सेम नाम से कितने अकाउंट्स है और उनका ओरिजिनल अकाउंट कौन सा है, तो सामने वाले का जो अकाउंट है उसको भी हमने जानकारी देना चाहिए कि बाबा इसमें
0: आपके नाम पे तीन अकाउंट,
1: हाँ तीन अकाउंट है, तो आपका दो अकाउंट की आप रजिस्टर कर सकते हैं पुलिस स्टेशन में, तो वो दो अकाउंट जो रहेंगे वो ब्लॉक कर सकते हैं पुलिस स्टेशन से।
0: साइबर सेल में कैसे रजिस्ट्रेशन करें?
1: साइबर सेल में आप जो जो कुछ इंश्योरेंस है उसका फेसबुक आईडी, जो आईडी का जो लिंक है वो आप दे सकते हैं, उसमें एक एप्लीकेशन लिखी उसमें वो फेसबुक लिंक आप कॉपी पेस्ट कीजिए और सबमिट कर दीजिए साइबर सेल को, वो ब्लॉक कर देंगे।
0: चलिए, तो सरकार ने भी काफ़ी इस बारे में सोच मतलब चर्चा चला रखी है।
1: हाँ, गवर्नमेंट की तो बहुत सारे जो प्रोग्राम्स है, हर महीने में जैसे अक्टूबर में एक साइबर सिक्योरिटी सप्ताह होता है, पूरा मंथ होता है, पूरी जागरूकता होती है, लेकिन कई बार हम एक नॉर्मली उसको ले लेते हैं कि चलिए ये तो चलता ही रहता है, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है क्योंकि 90% हम उस पर आधार डिजिटल सब, जो जैसे हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं राइट, तो हर एक इस पे गैजेट है, हमारे घर में पहले कुछ भी नहीं था, आज सब हर एक के पास मोबाइल है, हर एक के पास PC है, हर एक के पास दस दस अकाउंट है सोशल मीडिया के, हर एक स्मार्ट TV तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं,
0: जिम्मेदारी आ जाती है।
1: यस।
0: तो चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करते हुए, और आपने अच्छा अभी जो अवेयरनेस दी कि यूथ क्या रोल प्ले कर सकते हैं अपने परिवार के अंदर, जहां अपने माता पिता को गाइड कर सकते हैं, उन्हें सिखा सकते हैं कि कैसे आपको लिंक पे क्लिक नहीं करना है, या फिर कोई अनजान व्यक्ति या जान का व्यक्ति भी अगर कुछ मांगता है डिटेल्स जो कि आपके व्यक्तिगत हैं, तो डिटेल्स को आपको शेयर नहीं करना, आपके फेसबुक प्रोफाइल को भी लॉक करके रखना है, अगर लॉक करेंगे तो लोगों का पता नहीं चल जाएगा कि आपके फ्रेंड्स कौन है, फिर वो आपके फ्रेंड्स को कॉन्टैक्ट करके बुद्ध बनाने का प्रयास नहीं करेंगे।
1: राइट।
0: तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करते हुए, लेकिन समय हो रहा है कि एक ब्रेक लें और श्रोताओं को समझने का मौका दें जो अभी तक हमने बताया है। जब तक श्रोता इस बात पर एनालाइज करते हैं, तब तक उनको एक गीत सुनाते हैं। सुनाए गीत बताइए आप। आपके पसंद एक बुरा मत सुनो ये है, ये बुरा मत सुनो, बुरा मत करो, बुरा मत देखो, तो बुरा मत सुनो वाला गीत है जो मोहम्मद रफी जी की आवाज में है, मैंने भी सुना नहीं है, 1969 का गीत है। आइए सुनते हैं ये गीत और फिर लौट कर आएंगे 107.8 FM पर। दोस्तों, हमारे साथ बने हुए रवि महाजन, साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं और एक प्रतिभाशाली युवा है। आप सुनिए गीत, फिर लौट कर आते हैं

0: तो दोस्तों, सुना आपने बहुत ही खूबसूरत गाना 107.8 रेडियो मधुबन पर, और जहां पर हमको बुरा मत सुनो बुरा मत देखो इस बारे में बताया जा रहा था, क्योंकि कुछ लोग अच्छाई में बुरा ढूंढ लेते हैं तो फिर दर जरूरत पड़ जाती है हमारे देश को सुरक्षा देने वाले जवानों की। और ना सिर्फ बंदूक लेके लोग जवान सीमाओं पर डटे हुए हैं या पर पुलिस स्टेशन पर डटे हुए हैं, क्राइम हो रहा है उसके पर भी बहुत सारा काम करना पड़ रहा है, बहुत सारा लोड है। कोई दोस्त हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आइए बात करते हैं। हेलो नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं? लगता है फोन कट गया है। तो थोड़ी देर पहले जब हम ब्रेक में गाना सुन रहे थे तब भी हमारे एक दोस्त ने फोन किया था, जो माउंट आबू के अपने जो अंधजन विद्यालय है वहाँ से फोन किया था। बहुत ही छोटे से दोस्त थे और बहुत प्यारी उनकी आवाज़ थी, और उन्होंने बताया कि किस प्रकार उनको एक गाना सुनना है जो देशभक्ति से जुड़ा हुआ गाना है। और जो दोस्त हमें अभी कॉल करना चाह रहे थे वो दोबारा कॉल कर सकते हैं, हम फिर से उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। तब तक चलते हैं रवि जी के पास।
1: हाँ जी।
0: तो रवि भाई, आपने जैसे परिवार के अंदर युवाओं के रोल के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई, हमारा ध्यान खिंचवाया कि युवा कौन सा ऐसा रोल प्ले कर सकते हैं जिससे बहुत सुरक्षा में सहायता हो सकती है। फिर भी अगर हो जाता है, और जैसे आपका विभाग है लोगों को सहायता करता है, आपने वेबसाइट के बारे में बताया और एक नंबर के बारे में बताया कि जहाँ पर कॉल करके हम सहायता ले सकते हैं, पर ये जो प्लेटफॉर्म है जैसे सोशल मैसेजिंग के एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, जैसे व्हाट्सएप है या टेलीग्राम है, इनमें भी कुछ खतरे हैं?
1: राइट। जैसे देखो, अभी तो इतने प्लेटफॉर्म्स निकले हैं, राइट। जैसे नॉर्मल तो है, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, राइट, इंस्टाग्राम है, तो ऐसे टेलीग्राम है, सिग्नल्स है, वी चैट है, उसके बाद स्नैपचैट है, बहुत सारे ऐसे चैटिंग एंड डेटिंग एप्लीकेशन है। तो ये एप्लीकेशन जितना जाओगे तो ये जो जंजाल है ऐपों का जंजाल, तो ये बहुत बड़ा जंजाल है। तो इसमें हम एक वर्चुअल वर्ल्ड जो है उसके साथ हम बात कर रहे हैं, हमें मालूम नहीं आगे वाला पर्सन कौन है क्या है, राइट, लेकिन फिर भी हम ट्रस्ट उस पर कर रहे हैं, राइट।
0: जी जी जी,
1: फिर भी हम ट्रस्ट कर रहे हैं और उसके साथ बातें कर रहे हैं, उसके साथ अपनी निजी इन्फॉर्मेशन, निजी जीवन का
0: चित्र, आवाज़, वीडियो,
1: यस पूरा। जैसे आजकल जैसे फाइनेंशियल क्राइम में जैसे देखा जाता है, तो फ्रॉस्टर वालों की भी एक स्क्रिप्ट हर महीने में अलग अलग चेंज होती है, हर दो महीने में।
0: इस सुनने में बड़ा फनी लगता है कि जैसे मैंने आपसे पहले भी एक साइबर एक्सपर्ट आए थे, बात किया था, तो वो मुझे बता रहे थे कि जैसे हम पढ़ाई करने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए लाखों रुपया खर्च करके लोग पढ़ते हैं, ऐसे साइबर क्राइम करने वाले जो फ्रॉडस्टर होते हैं, जो धोखाधड़ी करते हैं, उसके लिए भी वो पैसे दे के ट्रेनिंग लेते हैं।
1: राइट। उनका तो एक जैसे नाइजीरियन होते हैं, नाइजीरियन, तो नाइजीरियन में ऐसा देखा गया है कि वहाँ पे क्लासेस होती है, राइट। तो यहाँ पे भी ऐसे
0: क्लासेस
1: होती है, तो वही फोर्स से हमने भी एक सिक्योरिटी के भी क्लासेस हमने ओपन करना चाहिए, उसका अवेयरनेस हमने बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारे साथ, हमारे निजी जीवन के साथ या हमारे घर वालों के निजी जीवन के साथ कोई
0: खिलवाड़
1: ना हो, राइट। तो ये हमें ख्याल में रखना चाहिए, राइट। तो इसमें अलग अलग जो फ्रॉस्टर होते हैं, हर जैसे कि देख रहे कि पहले जैसे कोरोना में था, कोरोना में इलेक्ट्रिसिटी बिल जो था, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको एक लिंक भेजी जाती थी, अगर आपने पैसा नहीं दिया, राइट, तो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इलेक्ट्रिसिटी वो कट की जाएगी, तो आप डर जाते थे, राइट। तो वहाँ से जो लिंक रहती थी वो HTTP, उसमें हमें एक कॉमन एक लिंक होती है HTTP और एक HTTP विथ यस होती है, तो हमें वो फर्क समझ में नहीं आता है और हम वो एक्सेस कर लेते हैं और पेमेंट भी कर देते हैं, राइट। तो ये जो छोटा छोटा एक ये होता है कंसेप्ट, तो हमें सीखना चाहिए या उसके बारे में अवेयर होना चाहिए,
0: फिर बाद में फेक लोना है मेरे को, राइट। मतलब जैसे मैंने को भी कुछ ना कुछ तो जानकारी रहती है, पर कभी कभी ऐसा लिंक आ जाता है, कोई पूछ लेता है, कई बार हम लोगों को कहते हैं, मतलब आपसे ही ये सवाल है ये, कि लोग कहते हैं कि अच्छा जो सरकार के लिंक होते .gov.in वाले होते, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, बाकी में नहीं करना चाहिए। पर मैंने कुछ दिन पहले देखा था कि किसी ने गाड़ी चलाई, गाड़ी में कुछ फाइन लगा, फाइन लगने के बाद मैसेज आया, व्हाट्सएप या SMS आया, और उसमें एक लिंक था, तो शॉर्ट URL था bit.ly करके, तो वो खोलने से तो सरकार की वेबसाइट पे जा रहा था।
1: अच्छा।
0: लेकिन जैसे कि उस व्यक्ति ने कुछ दिन पहले किसी साइबर एक्सपर्ट से सुना था कि भी आपका जो URL है .gov.in नहीं होगा तो आप नहीं खोलना, तो उसको bit.ly दिखा, तो उसको लगा ये फ्रॉड मैसेज।
1: राइट।
0: दोनों फर्क करना में बहुत मुश्किल
1: राइट राइट, इसीलिए हमने जो वेरीफाई जो है, जैसे हमने कहा कि हर एक वेबसाइट जो है वो वेरीफाई करनी चाहिए कि उसका सोर्स कहाँ से, राइट, उसका कंटेंट क्या क्या है, उस वेबसाइट में कंटेंट क्या क्या है, राइट। जैसे आप गवर्नमेंट की वेबसाइट देखोगे तो एक ऑथराइज वेबसाइट आपको प्रॉपर वहाँ पे जो भी सांकेतिक चिन्ह है या कंटेंट है वो आपको एक ऑफिशियली वो सब आपको, जैसे विजुअल आप जाओगे जैसे cybercrime.gov.in जाओगे तो आपको अलग अलग टैब दिखेंगे, बराबर, राइट। तो दैट इज वेबसाइट, तो हमने वो जो URL है वो वेरीफाई करना चाहिए फिजिकली, वो डाल टाइप करके वो देखना चाहिए, राइट। तो उसमें जैसे कि हम बता रहे थे इलेक्ट्रिसिटी बिल की स्क्रिप्ट फ्रॉस्टर ने शुरू की, फिर बाद में फेक लोन ऐप की उन्होंने शुरू किया, फिर अभी लेटेस्ट वाला जो है, जैसे हमारा बहुत बढ़िया काम जो है अपने भारत में हो रहा है, जैसे राम मंदिर का एक बहुत उद्धार हो रहा है, पुनर्निर्माण हो रहा है राम मंदिर का, तो उसके अकॉर्डिंगली भी फ्रॉस्टर इतने जागरूक हो गए कि उन्होंने अभी लिंक भेजना शुरू किया है कि हमें ये लिंक पे भेजो डोनेशन, आपको आने की जरूरत नहीं, आप ऑनलाइन भेज सकते, तो लिंक भेज रहे और चंदा जमा कर रहे हैं।
0: तो वैसे जो लिंक आ रहे हैं आजकल व्हाट्सएप में कि श्री राम जी के मंदिर के निर्माण के लिए डोनेशन करिए, तो कई बार इसमें फेक भी होंगे,
1: ये सब फेक ही होता है क्योंकि एक ऑथराइज जो है ये लिंक ऑलरेडी दिया है गवर्नमेंट ने,
0: गवर्नमेंट ने दिया
1: है, तो वहाँ पे भी आप या आपके हर डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में कोई संस्था ऐसी है कि वो घर जा जाकर उन्होंने प्रोवाइड किया है जो कुछ डिटेल्स है, यस, डोनेशन के लिए, तो आप पहले एक वेरीफाई कर लीजिए और बाद में आप पेमेंट कर लीजिए ताकि आपका जो
0: कुल मिला के काफी जागरूकता का स्तर भी काफी होना चाहिए,
1: हाँ जी,
0: कभी भी खतरे में आ सकते,
1: हाँ जी,
0: राइट। तो आपने जैसे ही सोशल ऐप, सोशल मैसेजिंग वाले जो ऐप हैं उसके बारे में बताया कि लिंक्स वगैरह आते हैं और इससे फ्रॉड होते हैं, जो व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनकी क्या क्या सुरक्षा की टिप्स देना चाहेंगे?
1: सुरक्षा की टिप्स जैसे व्हाट्सएप की सुरक्षा टिप्स, आपका मोबाइल जो है, राइट, आपका जैसे हम किसी की भी हाथ में मोबाइल दे देते हैं जो हमारा पहचान का नहीं होता है कई बार, एक जैसे मुझे एक इंसिडेंस याद आता है कि एक बंदे ने दूसरे बंदे को 2 मिनट के लिए मोबाइल दे दिया और उसने ऐसा कहा कि मुझे सिर्फ घर पे कॉल करना है, राइट, लेकिन उसने वो कॉल लगा रहा था और साइड बाय वो क्या कर रहा था, उसमें एक एप्लीकेशन, एक लिंक वो डाल रहा था जिससे वो पूरा डेटा मॉनिटर हो सके, उसको बोलते हैं स्पाईवेयर, राइट, जिसने APK डाल दिया और वो पूरा जो डेटा था उसका वो मॉनिटर हो गया पूरा,
0: राइट, मोबाइल मॉनिटरिंग,
1: राइट राइट। तो ऐसे कुछ अगर हम सामने वाले के हाथ में मोबाइल देते हैं, राइट, तो हमारा जो निजी इन्फॉर्मेशन वो चला जाता है, राइट, हमारे क्रेडेंशियल अगर वीक है तो सोशल मीडिया के, जैसे हम फेसबुक में अपना मोबाइल नंबर डालते हैं, बर्थडे डालते हैं, राइट, नॉर्मल चीज़ें, बहुत सिंपल चीज़ें, हम क्रेडेंशियल वीक रखते तो अकाउंट हैक होना ही है, राइट, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, तो उसमें हमें बहुत बारीकी से ध्यान देना चाहिए।
0: तो जैसे अपने सोशल मीडिया का बताया, तो मोबाइल का जो हैंडलिंग है,
1: हाँ हाँ,
0: तो इसमें क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है, जैसे पासवर्ड या ऐसा क्या कुछ करना चाहिए?
1: मोबाइल का तो पासवर्ड तो अपने को
0: क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए,
1: मोबाइल का पासवर्ड तो रखना ही है, अपने को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है, और हैंडल करते वक्त हमारा पासवर्ड जो है वो किसी को न दिखे, ताकि अगर आप कहीं जाते हो, समझो मोबाइल छोड़ के गए और किसी दूसरा उस मोबाइल का वो अगर उसको पासवर्ड वो देख लेता है आपका, तो पुनः डाल सकता है और वो एक्सेस कर सकता है आपका मोबाइल, राइट। और उसके बाद आप कुछ जैसे कंप्यूटर भी आप यूज़ करें सोशल मीडिया, राइट, तो आपकी नॉर्मल कि मैं बार बार क्यों खोलूँ, तो मैं वो सेव पासवर्ड करके रखता हूँ, राइट, तो उसमें से भी हैकर्स जो है, फ्रॉस्टर जो है, वो वहाँ से पासवर्ड ले सकते हैं और आपका अकाउंट हैक कर सकते हैं, राइट। इंस्टाग्राम पे भी आपके बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं आजकल।
0: इंस्टाग्राम पे किस प्रकार के फ्रॉड होते हैं?
1: इंस्टाग्राम पे वही है जो स्पॉन्जी स्कीम, जैसे फेक लोन ऐप के जो लिंक्स आते हैं, राइट, तो वही पे सबसे ज़्यादा, जैसे हमारे हम देखते हैं कि एक बंदे ने एक फेक प्रोफाइल बनाया, राइट, एक लेडीज का फेक प्रोफाइल बनाया और उसके अकॉर्डिंगली, मीन्स मैंने जैसे पहले कहा कि वर्चुअल जो रियलिटी वो अलग है, राइट, हम कोई भी अकाउंट के एक्सेस उनको देते, फॉलो कर लेते, राइट, कुछ आगे से रिक्वेस्ट आता है उनको हम फॉलो कर लेते और उसके अकॉर्डिंगली वो आपको लिंक भेजता है, राइट, तो आपका जो इंस्टाग्राम का जो आईडी है उसके रिलेटेड जो भी आपका ईमेल है वो सब उसके पास वो क्रेडेंशियल जाती है राइट तो वो एक्सेस करने के बाद आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो जाता है और उसका ओटीपी वो डाइवर्ट कर लेता है और जो कुछ इंफॉर्मेशन है वो सब वो एक्सेस करता है और फिर बाद में जो कुछ फ्रॉड हो तो बाद में अपने को पता चल ही जाता है,
0: मुश्किल हो जाता है। हाँ जी, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज युवा मंच में आप आए और साइबर सिक्योरिटी के बारे में अलग अलग जो विषय हैं उसके संबंधित उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बात किया। एक विषय जो अभी और भी दो दिन से चल रहा है इंटरनेट पे, मैंने अखबार में पढ़ा था कि डीप फेक, तो सचिन तेंदुलकर के नाम से एक न्यूज़ आई थी कि सचिन तेंदुलकर की आवाज़ और चेहरे का इस्तेमाल करके किसी ने वीडियो बनाया था जो कि वास्तविकता में सचिन जी ने रिकॉर्ड नहीं किया था, फिर उन्होंने इस बात की कंप्लेंट की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ समय पहले ये कहा था कि डीप फेक वीडियो जो है, तो इसका इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालना चाहिए।
1: राइट, जैसे कि हम सेलिब्रिटीज देखते हैं रश्मिका मंथाना का जो कुछ मीन्स उनके निजी जीवन के साथ भी खिलवाड़ हुआ, राइट,
0: कोई किसी ने उनका वीडियो उनका चेहरा और शरीर किसी का लगा दिया,
1: उसके बाद सारा तेंदुलकर का देखा हमने, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का देखा जो गरबा खेलते हुए, यस, तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे तरीके से देश को जागृत किया क्योंकि ये सब जो टेक्नोलॉजी से राइट, और ये अभी उसके टूल्स आएंगे मार्केट में, ये दैट इज द जेन्युइन और नॉट, राइट, वो फेक है या रियल है वो अभी टूल्स तो धीरे धीरे आएंगे, लेकिन
0: तो कोई इन चीजों का अगर शिकार हो कि जैसे किसी का वीडियो किसी ने या फोटो को ऐसा बना दिया कि दिखता आपके जैसे पर आप हो नहीं, पर कुछ गड़बड़ करते हुए आपका वीडियो बना मतलब ऐसे बना दिया कंप्यूटर के अंदर,
1: राइट,
0: तो उसमें क्या एक्शन लेना चाहिए आम जनता को?
1: उसमें पहले एक्शन वैसे जो लीगल एक्शन हो तो होने ही चाहिए क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस अपना यही चाहिए कि पहले पुलिस स्टेशन जाए या साइबर सेल जाए, वहाँ पे तुम्हारी जो कंप्लेंट है वो जो आईडीज है या वो जो कौन से प्लेटफॉर्म पे वो जो एआई बेस जो हमारा वॉइस जो है या कुछ पिक्चर्स है वाट एवर जो कुछ है वो सबमिट जो स्क्रीनशॉट लेके या लिंक लेके वो सब पुलिस स्टेशन को देना चाहिए ताकि वो अटक से वो ब्लॉक कर सकें।
0: तो दोस्तों आज युवा मंच में हमारे साथ मौजूद थे साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट रवि महाजन, और आप एक प्रतिभाशाली युवा हैं और अपने समाज के लिए महाराष्ट्र पुलिस में कार्यरत हैं और साइबर सिक्योरिटी के लिए लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। तो बहुत कुछ जाना आज हमने सोशल मीडिया के बारे में, सोशल मैसेजिंग ऐप के बारे में, मोबाइल कैसे इस्तेमाल करना इस बारे में भी जाना, ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारी आपने दी हमको, बहुत बहुत शुक्रिया आपका,
1: थैंक यू।
0: तो सर विदा लेते हैं आज युवा मंच कार्यक्रम में आज इतना ही, और एक गीत पेश करेंगे देश के इस सेवक के नाम धरती हिंदुस्तान की, जो देशभक्ति का गीत है, और कुछ समय पहले हमें कॉल किया था हमारे माउंट आबू के जो अंधजन विद्यालय है वहाँ से अर्जुन है, अर्जुन 9 साल के हैं और उन्होंने ये गाना हमसे डिमांड की थी, तो वो गाना पेश करते हैं, फिर मिलेंगे, सुनते रहिए, मुस्कराते रहिए रेडियो मधुबनी।

जब आंखें बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। अरे अगर हम मर भी गए तो कोई गम नहीं, मरते वक्त मेरे यारों मिट्टी हिंदुस्तान की हो।

दुनिया को साफ साफ कहना होगा, देश प्रेम की प्रबल धारा में हर मन को बहना होगा। अरे जिसे लगे ये तिरंगा पराया, वो मेरा देश छोड़कर जाए। अगर हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तानी बनकर ही रहना होगा, हिंदुस्तानी बनकर ही रहना होगा।

है अमन की गंगा तो बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो। अरे लाल और हरे रंग में मत बांटो हमको, लाल और हरे रंग में मत बांटो हमको, मेरे छत पे भी एक तिरंगा रहने दो।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन पर एक नए कार्यक्रम में एक नए अंदाज में आप सभी के सामने आए हैं। कार्यक्रम का नाम है एक दुनिया एक भाषा। दोस्तों, सारा विश्व एक परिवार है और एक ही दुनिया के अंदर हम सभी रहते हैं, लेकिन भाषाएं हम सभी की अलग अलग हैं। लेकिन एक दुनिया एक भाषा कैसे हो सकती है, ये सोचने वाली बात है। तो आज इसी भाषा के ऊपर हम चर्चा करेंगे और उसका साधन या माध्यम क्या हो सकता है, ये भी आज हम जानेंगे। इस बातचीत को बेहतर बनाने के लिए और हम सभी को एक नई भाषा से रूबरू कराने के लिए हम सभी के बीच में है अनुभवी ललित कुमार दिवाकर जी। आप एक हैम है। हैम यानी कि जो आप सभी ने कई बार सुना होगा कि जब भारत में या कहीं पे भी देश विदेश में कोई भी आपातकालीन दुर्घटना घटती है, उस समय जब संचार का माध्यम की आवश्यकता होती है तो इस हैम का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी एक नई बात है जो हम आज सीखेंगे जानेंगे। तो ललित कुमार जी, आप एक हैम हैं, आपका कॉल साइन है VU2LB। आप 1965 से इस टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं। वैसे आप पेशे से भावनगर एयरपोर्ट में सीनियर कम्युनिकेशन असिस्टेंट के रूप में रिटायर हुए हैं। अभी वर्तमान में आप बहुत एक्टिवली हैम को प्रैक्टिस कर रहे हैं। वैसे आप शुरुआत से ही हैम को प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर द रिटायरमेंट वो अभी और ज़्यादा समय दे रहे हैं हैम रेडियोस के लिए। तो दोस्तों, हम स्वागत करते हैं ललित जी को एक दुनिया एक भाषा इस कार्यक्रम में। नमस्कार जी।
1: नमस्कार, धन्यवाद।
0: हमें बेहद खुशी हो रही है जो आज आप समय दिया और जिनके पास 50 साल से भी ज़्यादा अनुभव है इस फील्ड में और सबसे पुराना हैम है आप, एक तरीके से कहा जाए तो आप इस फील्ड की पूर्वज है। बहुत सारी अनुभव और बहुत सारी शिक्षा का आप धनी हैं। तो आज हम सबसे पहले आपके अनुभव से जानना चाहेंगे कि आपका ये जो जर्नी है, जो यात्रा है हैम रेडियो के साथ, वो कैसे शुरू हुई और वो रुझान कैसे बढ़ा आपके अंदर, कैसे आपने सीखा, ये सारी बातें।
1: बात सही है आपकी। जब मैं करीब 18-19 साल का था तो आगे की पढ़ाई के लिए मैं राजकोट मेरा जाना हुआ और वहाँ पर एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, वहाँ मैंने रेडियो ऑफिसर का कोर्स ज्वाइन किया। और उस वक्त हमारे इंस्ट्रक्टर जो जीवन भाई अडीचा, जिनको मैंने गुरुजी बनाया, उनका कॉल साइन था VU2JF। मैं उनके पास ही पढ़ाई करता था और वो ये हॉबी जानते थे और हमारे लिए तो बिल्कुल वो नई हॉबी थी। तो उनके साथ रह के फिर मैंने जान लिया कि हैम कैसे बनना है, हाउ टू बिकम ए हैम। तो उनका मार्गदर्शन मिला और 6 महीने में वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन WPC दिल्ली से जो आते हैं एग्ज़ाम के लिए, उनका आना हुआ राजकोट में और Grade 1 की जो परीक्षा होती है वो मैंने पास कर ली। और उसके बाद मैंने लाइसेंस के लिए, जो हम उसको टिकट कहते हैं, टिकट लेने के लिए अप्लाई किया और फिर पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह होके मेरे हाथ में वो मेरा लाइसेंस आया और मेरी पहचान VU2LB कोड से उन्होंने करवाई। वो जो VU2LB है, वर्ल्ड में एक ही वो कोड रहता है और वी जो होता है वो इंडिकेट करता है एशिया, और एशिया में जो हैम होते हैं वो वीयू से स्टार्ट होते हैं, स्पेशली इन इंडिया। वीयू में वीयू जो प्रीफिक्स आता है, इट इंडिकेट्स के ये स्टेशन है वो भारत का है। तो मेरा कॉल साइन है VU2LB। कोई भी अगर मेरा कॉल साइन सुनेंगे तो उनको तुरंत पता लगेगा कि ये स्टेशन भारत का है। पूरे वर्ल्ड में सभी को ऐसे कॉल साइन दिया है और उससे पता चलता है कि ये स्टेशन कहाँ का है। तो समझिए कि अमेरिका का कोई स्टेशन है तो उनका प्रीफिक्स के से शुरू होता है, W से शुरू होता है। तो ऐसे पूरे वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज हैं उनको ऐसे प्रीफिक्स दिया है। और ITU होता है जो वर्ल्ड का इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, वो लोग ये कॉल साइन का ये अरेंजमेंट करते हैं। और फिर आखिर में देखा जाए तो भारत सरकार का ये WPC है वो हमें लाइसेंस देते हैं और कॉल साइन भी उसी वक्त हमें असाइन करते हैं। जी
0: जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने कहा। वी मतलब एशिया, यू मतलब इंडिया, टू का मतलब क्या होता है सर?
1: टू ऐसे वो प्रीफिक्स और सफिक्स को सेपरेट करने के लिए एक फिगर दिया जाता है। तो कोई जो सीनियर हैम होते हैं उनको फिगर टू बीच में देते हैं, और जो कोई जूनियर हैम हैं जिन्होंने ग्रेड वन या ऐसे कुछ जनरल ग्रेड का एग्जामिनेशन पास नहीं किया है उनको फिगर थ्री देते हैं। जैसे कि मेरा VU2LB है, तो दूसरे जो हैम है ग्रेड टू पास किया है तो उनका VU3 उसके बाद सफिक्स देते हैं, ऐसे कॉल साइन होता है। तो मेरा जर्नी वहाँ राजकोट से शुरू हुआ और वहाँ हमारे एक क्लब स्टेशन भी बनाया था हमारे गुरुजी ने, और वहाँ से हम देश विदेश बातचीत करते थे। तो माइक्रोफोन से भी हम बात कर सकते हैं, मतलब कि आवाज हम आपस में वॉइस कम्युनिकेशन से भी कर सकते हैं और मोर्स कोड से भी बातचीत कर सकते हैं। पुराने जमाने में जो हमारी टेलीग्राम व्यवस्था थी पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस में, वो हम संदेशा देने के लिए वहीं जाते थे और वो मोर्स कोड से हमारा संदेश है वो दूसरी जगह पहुंचाते थे। तो वही वो भाषा हमको सीखनी पड़ी, उसको कहते हैं मोर्स कोड। तो जो अल्फाबेट होता है A to Z वो मोर्स कोड में कन्वर्ट किया गया है। मोर्स नाम के जो एक वैज्ञानिक हो गए उन्होंने वो कोड का शोधन किया, मतलब उन्होंने वो भाषा का आविष्कार किया, इसलिए वो जो सीक्रेट लैंग्वेज है उसको मोर्स कोड नाम दिया गया है। तो वो मोर्स कोड सीखने में करीब 2 महीना लगेंगे अगर अच्छी तरह से हमें सीखना है तो, और फिर वही मोर्स कोड से पूरी भाषा बनती है। और जैसे आपस में मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ वॉइस से, तो ऐसे मोर्स कोड से मतलब जो एब्रिविएशन कोड है उससे हम बात करते हैं। और जो लोग वो भाषा सीखे हुए हैं, जिनको परिचय है, वो सब मतलब समझते हैं, वो तुरंत उसका डिकोडिंग करेंगे और जो हम मैसेज कोड में भेजेंगे वो डिकोड करके उसका अर्थ वो समझ लेंगे। तो देखा जाए तो वो सीक्रेट लैंग्वेज है, लेकिन जिन्होंने वो भाषा सीखी हुई है उनके लिए वो चीज़ आसान है। और पूरे वर्ल्ड में जो मोर्स कोड के जो सीनियर हैम हैं वो सब लोगों को ये भाषा मालूम है। और ये भाषा में मैं यहाँ से जर्मनी भी बात कर सकता हूँ, अमेरिका भी बातचीत कर सकता हूँ, रशिया से भी बातचीत करता हूँ। तो मोर्स कोड में जो कोड होते हैं उसको कोड को वो लोग क्यू कोड कहते हैं। वो क्यू कोड है वो ITU जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है उन्होंने वो बनाया हुआ है। अगर हमें लंबी बातचीत नहीं करनी है तो कोड

0: हमें ये संदेश है उनको जरा स्लो उसमें भेजना है ताकि वो समझ पाए। तो इसे ये जो लैंग्वेज है पूरा हम वॉइस में भी बात कर सकते हैं, मोर्स कोड में भी बातचीत कर सकते हैं और डेटा कम्युनिकेशन से भी हम बात कर सकते हैं। उसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स लगाने हैं और जैसे हमारे पास टाइपराइटर है, फैक्स मशीन है, ऐसे दोनों साइड में हम अपने ट्रांसमीटर के साथ लगा देंगे, ट्रांस रिसीवर के साथ। तो हम जो मैसेज टाइप करेंगे वो मैसेज बाय वायरलेस वो ट्रांसमिट होगा और जो मैसेज हमें रिसीव करते हैं उनका जो स्क्रीन है, अगर उन्होंने मॉनिटर लगाया है तो स्क्रीन में वो संदेश है उसका डिकोडिंग होके डिस्प्ले होगा। तो बहुत सारे मोड है जैसे हम बात कर सकते हैं, हम सैटेलाइट से भी बातचीत कर सकते हैं और सैटेलाइट भी लॉन्च किए हुए हैं, हमारे भारत से भी लॉन्च हुआ है और अमेरिका और ऐसे बड़े बड़े जो कंट्रीज है उनमें जो हेम वाले जिनका ग्रुप रहता है उन्होंने उसका सर्जन किया हुआ है, फिर गवर्नमेंट की मदद से उन्होंने अवकाश में उसको लॉन्च किया है। तो हम सपोज भारत से हमें कहीं अमेरिका बातचीत करनी है तो थ्रू सैटेलाइट भी हम बात कर सकते हैं, ऐसा भी प्रोविजन है। तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन बहुत कुछ है, लेकिन अगर बहुत आसान तरीका अगर हमें चाहिए तो वॉइस कम्युनिकेशन, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मेरे हाथ में ट्रांस रिसीवर का माइक्रोफोन है तो उसमें मैं बोलूँगा और जो फ्रीक्वेंसी गवर्नमेंट ने हमें दी हुई है वो फ्रीक्वेंसी पे हम रेडियो ट्यून करेंगे और तो उस फ्रीक्वेंसी पे हमारे कोई दोस्त लोग सुनते हैं तो वो सुनने के बाद जो मेरा कॉल है वो सुनने के बाद तुरंत वो वहाँ से जवाब देंगे, प्रत्युत्तर देंगे और उस प्रकार से हम आपस में बातचीत कर सकते हैं। हम टेक्निकल बात भी कर सकते हैं, हमारे कोई हॉबी है उसके बारे में भी हम बातचीत करते हैं, लेकिन हम पॉलिटिकल जो सिचुएशन है देश में वो कोई हम उसकी बात करना हमारे लिए मना है और ऐसे दूसरी कोई बात हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे हॉबी के बारे में फिर कुछ डिजास्टर है, कहीं किसी को मेडिसिन की जरूरत है तो ऐसे कुछ मानव सेवा करनी है तो उसके मैसेज हम भेज भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। और जब अर्थक्वेक होता है, मतलब कि भूकंप होता है और उस वक्त कोई कुछ कम्युनिकेशन ठप हो जाता है तो हम अपना ये जो ट्रांसरिसीवर है उसका वो इतना रिलायबल है कि ऐसी सिचुएशन में भी हम उसको चालू कर सकते हैं और जहां हमें कम्युनिकेशन करना है, जहां बात करनी है वहां हमारे जैसे हम दोस्त लोग होंगे वो भी अपना रेडियो चालू करेंगे और फिर हम आपस में वायरलेस से बात करते हैं। तो वो हम जो हैम रहते हैं वो उस प्रकार से भी हम डिजास्टर में जो आपत्तकालीन स्थिति है उसमें भी अपना कम्युनिकेशन जारी रख सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करते हैं और जो प्रिस्क्राइब बैंड्स होते हैं फ्रीक्वेंसी के उसमें हम अपना कम्युनिकेशन जारी रखते हैं और जो इम्पोर्टेंट मैसेज है उसके वो हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, ऐसे हमारा कम्युनिकेशन होता है। मोर्स कोड से भी कर सकते हैं और वॉइस कम्युनिकेशन से भी हम कर सकते हैं।
1: सो ललित जी, आपने तो बहुत सारी नई बातों को इंट्रोड्यूस किया हमारे श्रोताओं के साथ, तो हम थोड़ा सा इसको विस्तार से समझना चाहेंगे। जैसे आज हम एक दुनिया एक भाषा के बारे में बातचीत कर रहे हैं, जो भाषा है आपने कहा कि ये मॉर्स कोड है जिसके माध्यम से जब डिजास्टर होता है कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएँ होती हैं तो फिर हम एक भाषा से उनके साथ कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये भाषा कैसे काम करती है और ये एक भाषा मॉर्स कोड का मतलब क्या होता है, ये कोई कोड लैंग्वेज है?

0: आदान प्रदान होता है समाचार का।
1: हाँ, ये जो मोर्स कोड है, जैसे कि अल्फाबेट है, पूरा अल्फाबेट उसको मोर्स कोड में उसका कन्वर्जन किया है। अगर मुझे ए भेजना है तो उसके लिए डॉट और डैश मुझे भेजना है। जैसे कि डॉट के लिए मैं डिट बोलूँगा, डैश के लिए मैं डा बोलूँगा। तो उसका सपोज कीजिए कि डॉट के लिए अगर एक सेकंड में देता हूँ तो डैश के लिए मुझे 3 सेकंड देना है। डॉट का ड्यूरेशन 1 सेकंड का होगा तो डैश का ड्यूरेशन 3 सेकंड का होगा, और दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो एक लेटर बनता है। जैसे कि मुझे ए, अल्फाबेट का ए भेजना है तो मैं एक डॉट भेजूंगा और एक डैश भेजूंगा। जैसे कि डॉट को कहता हूँ डिट, डैश के लिए कहता हूँ डा, डिडा। जैसे मैंने डिडा भेजा तो सामने वाले सुनेंगे तो उनको लगेगा कि डिडा आया। अच्छा, दोनों का कॉम्बिनेशन से क्या होता है वो तुरंत समझ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आत्मसात किया है ये कोड। वो अपने कागज में लिख लेंगे ए। अगर मुझे बी भेजना है, अल्फाबेट बी, तो उसके लिए कोड है डा डिट डिट डिट, मतलब कि एक डैश और 3 डॉट्स। तो उस भेजने के लिए मैं भेजूंगा डा डिट डिट डिट, तो वो अपने पेपर में बी लिखेंगे। तो पूरा जो अल्फाबेट है उसको डॉट और डैश की जो भाषा है जिसको मोर्स कोड कहते हैं उसमें कन्वर्ट किया है। और जिन लोगों को ये भाषा मालूम है वो तुरंत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में समझ लेते हैं कि ये क्या भेजा है। ये ए भेजा है, बी भेजा है, सी भेजा है या डी भेजा है। तो पूरे अल्फाबेट में से कोई भी लेटर आया तो हम तुरंत ही समझ लेते हैं और इमीडिएटली हम पेपर में लिख देते हैं। और ऐसे जो कोई एक छोटा सा पैराग्राफ होगा वो पैराग्राफ मोर्स कोड में आएगा तो हम उसके मुताबिक सुनने के बाद एक पेपर में लिख देते हैं, और जब वो समापन उसका होता है तो उसमें से पूरा एक मैसेज बाहर आता है। तो उस हिसाब से हम मोर्स कोड में भी संदेश भेज सकते हैं और फोनेटिक्स में भी हम भेज सकते हैं। जैसे कि ये जो अल्फाबेट है A to Z, अगर मुझे ए भेजना है तो उसके लिए मैं बोलूँगा अल्फा। जैसे मैं अल्फा बोलता हूँ तो वो ए लिखेंगे। अगर मुझे बी भेजना है तो मैं बोलूँगा ब्रेवो। मुझे अगर सी भेजना है, फिगर सी, तो उसके लिए मुझे भेजना है, बोलना है चार्ली। तो ये जो अल्फाबेट को ये फोनेटिक्स रूप जो दिया है वो इंटरनेशनली प्रूव किया हुआ है। तो सब लोगों को मालूम है कि ए के लिए अल्फा ही बोला जाता है, बी के लिए ब्रेवो बोला जाता है, सी के लिए चार्ली बोला जाता है, डी फॉर डेल्टा। ऐसे पूरा अल्फाबेट है उसके लिए ये फोनेटिक्स लैंग्वेज भी बनाई गई है। तो ये हम हेम रेडियो में वो लैंग्वेज हमें आत्मसात करना है, हमें सीखनी है, और ये हम बिल्कुल आसानी ढंग से सीख सकते हैं। ऐसे उसमें कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि हमें सीखना है, वो हमारा स्पिरिट होता है, इसलिए हम जरूर जल्दी सीख जाते हैं। तो हम बात करते हैं उसमें हम फोनेटिक्स भी यूज़ करते हैं, क्यू कोड्स भी यूज़ करते हैं, ऐसे एब्रिविएशंस यूज़ करते हैं, और ये जैसे मैंने मोर्स कोड में बोला अल्फा कोड, अल्फाबेट्स, ये सब हम ऐसे उसका उपयोग कर सकते हैं। जी
0: जी। सो मोर्स कोड का मतलब ये है कि एक कोड लैंग्वेज है डिडा, यानी कि एक डैश और एक डॉट और एक डैश, इस भाषा में कम्युनिकेशन होता है। मतलब कोई टाइपराइटर वगैरह होता है जिसमें आप लोग ये डॉट और डैश टाइप करके भेजते हैं समाचार?
1: हाँ, उसके लिए एक मोर्स की बनी हुई रहती हैं, जो हमारे अगर पुराने जो पोस्ट ऑफिस होते थे उसमें संदेशा भेजने के लिए मोर्स की का यूज़ किया हुआ जाता था तो वो मोर्स की से हम ये डॉट और डैश जनरेट कर सकते हैं। तो डिट के लिए हमें जितना समय देना है, सपोज एक सेकंड, तो डिट देते हैं। अगर डा हमको भेजना है तो 3 सेकंड हमें वो जो बार होता है वो प्रेस करेंगे 3 सेकंड के लिए, तो डैश जनरेट होता है। तो अगर मुझे अल्फाबेट में ए भेजना है तो डिट डा मतलब डॉट और डैश ऐसे मुझे भेजना है तो वो मोर्स कोड के भेजने के लिए उसको कहते हैं मोर्स की। मोर्स की जो साधन है उससे हम मोर्स कोड में संदेश भेज सकते हैं। तो एक छोटा सा साधन आता है और वो हमें अपने रेडियो के साथ कनेक्ट करना है और जो हमारा संदेश है उसको हम डॉट और डैश में ट्रांसमिट करते हैं और उससे जो लैंग्वेज बनती है मोर्स कोड वो दूसरे एंड में सुनाई देती है और उसका डिकोडिंग करके उसमें से जो मैसेज है उसका मीनिंग समझ लेते हैं।
0: जी ललित जी, जैसे आपने कहा कि एक छोटा सा डिवाइस होता है उसको आप रेडियो के साथ कनेक्ट करते हैं फिर उसके बाद टाइप करके संदेश भेज सकते हैं। आज तक हमने जो रेडियो देखा है प्रसारण का माध्यम है जिसमें हम गीत संगीत और बहुत सारे कार्यक्रम बहुत सारी सूचनाएं सुनते हैं जैसे आज हम आपकी आवाज़ सुन रहे हैं रेडियो मधुबन के जरिए। तो ये कौन सा रेडियो है जिसको साथ आप ये जोड़ने से इस मशीन को जोड़ने से आप इस भाषा में इस कोड लैंग्वेज में सारी दुनिया के साथ वार्तालाप कर सकते हैं या कोई संदेश का आदान प्रदान कर सकते हैं?
1: हाँ, वो जो रेडियो है उसमें ऐसा सुविधा होती है कि अगर सामने से कोई मैसेज आ रहा है कोई संदेश आ रहा है मोर्स कोड में वो सुनने के लिए उसमें रिसीवर रहता है मतलब एक रेडियो रहता है जिस माध्यम से बाहर से जो कोई संदेश आता है वो हम सुन सकते हैं वो हम रिसीव कर सकते हैं। और हम जो संदेश देते हैं अगर हमने माइक्रोफोन से संदेश दिया है वॉइस कम्युनिकेशन में मैसेज दिया है तो हमारे पास माइक्रोफोन होगा, माइक्रोफोन में हम बोलेंगे और वो जो माइक्रोफोन में से जो ऑडियो वॉइस है वो इलेक्ट्रॉनिक जो वेव्स है इलेक्ट्रिकल वेव्स उसमें कन्वर्जन होता है फिर वो रेडियो होता है ट्रांस रिसीवर उसको कहते हैं ट्रांसमीटर होता है उसमें चला जाता है और फिर वो रेडियो फ्रिक्वेंसी में उसका कन्वर्जन होता है और फिर एरियल जो हम बाहर लगाते हैं उससे वो प्रसारित हो जाता है। तो ये संदेश हमें लेना है या देना है तो उसके लिए हमारे पास एक गैजेट होना चाहिए जो जिसको हम इक्विपमेंट कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट उसका नाम है ट्रांस रिसीवर। तो उसमें हम संदेश भेज भी सकते हैं और वही यंत्र से हम संदेश रिसीव भी कर सकते हैं इसलिए उसको नाम दिया है ट्रांस रिसीवर। और वो 12 वोल्ट की बैटरी से भी चलता है और अपने जो घर में 220 वोल्ट एसी आते हैं जो पावर सप्लाई उस पर भी चलता है। बीच में हमको एक बैटरी एलिमिनेटर लगाना पड़ता है 12 वोल्ट का कि जो 220 वोल्ट से 12 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट होता है और वो हमें ट्रांस रिसीवर को पावर सप्लाई के रूप में देना है। तो ऐसा एक इक्विपमेंट आता है और उस इक्विपमेंट की मदद से हम संदेश है बाहर भेजते हैं और संदेश भेजने के लिए बाहर एंटेना हमें लगाना है। बहुत प्रकार के एंटेना होते हैं जिस से जो अच्छा काम होता है उस प्रकार का एंटेना हम टेरेस में या बाहर खुले मैदान में 2 पोल के बीच में या ऐसे हम लगा सकते हैं और उससे हमारा जो रेडियो मैग्नेटिक वेव्स है वो ट्रांसमिट होता है मतलब उसका प्रसारण होता है और वो इक्विपमेंट से हम रेडियो मैग्नेटिक वेव्स आता है सामने से उसको हम रिसीव करते हैं और रेडियो से हम सुन लेते हैं। तो ये एक माध्यम है ट्रांस रिसीवर वो हमें आवश्यकता होती है।
0: जी तो मतलब जो एक आम रेडियो हर घर में होता है या हर मोबाइल में होता है वो सिर्फ वन साइडेड है, मतलब रेडियो स्टेशन से जो प्रसारण होता है सिर्फ वही सुन सकते हैं, लेकिन ये हैम रेडियो जो होता है वो कम्युनिकेशन का माध्यम है, जहाँ पर रिसीविंग भी होता है तो सेंडिंग भी होता है, मतलब आप अपना समाचार भेज भी सकते हैं, आप रिसीव भी कर सकते हैं, चाहे वो वॉइस मैसेज के जरिए या टेक्स्ट मैसेज के जरिए। सो ललित जी, आप एक बात बताइए कि जैसे आपने कहा कि मार्स कोड के जरिए रेडियो की फ्रीक्वेंसी, मतलब रेडियो एक प्रकार का तकनीकी माध्यम बन गया है, रेडियो का मतलब कोई मशीन नहीं है।
1: हाँ, ये मशीन नहीं है, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, ऐसा साधन है कि जो हमारी भाषा है या हमारा संदेश है उसको भेजने के लिए उसका हम उपयोग करते हैं, और संदेश है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में उसका रूपांतर करते हैं तभी हम भेज सकते हैं, क्योंकि हमारी जो आवाज़ है अपना वॉइस उसकी दूरी बहुत कम है, मतलब दूर तक इतना ये जा नहीं सकता है, और थोड़ा आगे जाके वो क्षीण हो जाता है, डंप हो जाता है, लेकिन ये रेडियो मैग्नेटिक वेव्स हैं बहुत दूर जा सकता है, जो लाइन ऑफ साइट में जाते हैं ग्राउंड वेव्स, तो वो देखा जाए तो उसकी लेंथ जो है वो कम होती है, मतलब कि 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर इतने दूर तक हम भेज सकते हैं। अगर भाई हम स्काई भेजेंगे, स्काई मतलब कि हमारे जो रेडियो वेव्स हैं हाई फ्रिक्वेंसी के, वो आकाश में जो लेयर हैं उसको आइनोस्फेरिक लेयर कहते हैं, और वो काल्पनिक लेयर है, लेकिन हमारे रेडियो मैग्नेटिक वेव्स जो हमारे ये एंटेना होते हैं जो हम ट्रांस रिसीवर के साथ लगाए हुए हैं, तो उसे ये रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वहाँ से ट्रांसमिट होते हैं और आइनोस्फीयर में जाके टकराएंगे और रिफ्रेक्शन होके परावर्तित होके फिर से वो आएगा नीचे, और जहाँ वो भी आएगा वहाँ ऐसे कोई स्टेशन है तो वो लोग सुन सकेंगे कि हमने संदेश क्या भेजा है, तो उसे हम लॉन्ग डिस्टेंस कवरेज कर सकते हैं। हम 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, 10000 किलोमीटर की दूरी से हम बात कर सकते हैं, इतना दूर तक हम बात कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास जो रेडियो पावर है वो भी इतना ज़्यादा ज़रूर नहीं है, कम पावर से हम 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर लॉन्ग डिस्टेंस बात कर सकते हैं। और अगर हमने मोर्स कोड जैसा अगर कोई माध्यम सिलेक्ट किया तो कम पावर में हम दूर दूर तक अपने मैसेज भेज सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं।
0: ललित जी, जैसे आपने कहा कि दूर दूर तक भी, हजारों मील दूर भी आप संदेश भेज सकते हैं, और जैसे आपने शुरू में भी कहा कि चाहे वो आप रशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, कहीं पे भी आप अपनी संदेश भेज सकते हैं, तो इतनी दूर के लिए तो हम इंटरनेट के माध्यम यूज करते हैं, तो हैम रेडियो की या इस मार्स कोड की क्या आवश्यकता है, कहाँ पे उपयोग होता है ये चीजें?
1: बात सही है, लेकिन जहाँ इंटरनेट नहीं है, जहाँ इंटरनेट की सुविधा नहीं है, और वहाँ भी अगर हमें संदेश देना है, जहाँ इंटरनेट ठप हो जाता है, मतलब वो माध्यम हम बात नहीं कर सकते हैं, वहाँ हम हैम रेडियो से बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो इक्विपमेंट है वहाँ से ही ये रेडियो वेव्स जनरेट होते हैं और हमारे ही एंटेना से वो प्रसारित होते हैं और हम रिसीव कर सकते हैं। आइनोस्फीयर जो लेयर्स होते हैं तो उसको ई लेयर कहते हैं, एफ लेयर कहते हैं, ऐसे उनका नाम दिया हुआ है, तो वहाँ से रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है, और ऐसे संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुँचता है और हम सुनते हैं। लेकिन जहाँ इंटरनेट नहीं है वहाँ भी हम आसानी से ये संदेश पहुँचा सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से कोई विलेज है जहाँ कुछ भी सुविधा नहीं है, तो वहाँ हम ये हैम रेडियो से ये संदेश व्यवहार कर सकते हैं, तो जब भी कुछ आपत आती है तभी ये इंटरनेट की भी सेवा होती नहीं है हमारे पास, तभी ये हेम रेडियो का हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमारे पास वही साधन है कि हम खुद रेडियो फ्रिक्वेंसी अपने साधन से जनरेट करते हैं और रेडियो मैग्नेटिक वेव से हम संदेश दूर दूर तक भेज सकते हैं, और वो भी बहुत रिलायबल कम्युनिकेशन होता है। और मोर्स कोड में अगर हम संदेश भेजेंगे तो उसके जो रिलायबिलिटी है वो बहुत ही बढ़िया होती है, उसमें भूल होने की संभावना बहुत कम है। तो वो रिलायबल कम्युनिकेशन हम मोर्स कोड से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्किल ऑपरेटर चाहिए कि जिनको ये भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अगर वो भाषा नहीं हमें मालूम मोर्स कोड की, तो हम बोल के भी बातचीत कर सकते हैं, फोनेटिक्स में भी बातचीत कर सकते हैं, जो मैंने पहले बताया अल्फाबेट में ए के लिए हम अल्फा बोलते हैं, बी के लिए ब्रेवो बोलते हैं, सी के लिए चार्ली बोलते हैं, लाइक ऐसे भी हम लैंग्वेज बना के उसका सेंटेंस बना के मैसेज बना के भेज सकते हैं।
0: जी सो ललित जी, एक ऐसी भाषा जो सारी दुनिया को संदेश पहुंचा सकती है, जिस भाषा के बारे में आप अभी बातचीत कर रहे हैं, तो इसकी भी कोई सीमा होती है कि इतनी ही शब्दों में आपको भेजना है? क्योंकि एक तो कोड लैंग्वेज है जैसे आपने कहा मॉर्स कोड, तो कितना वर्ड लिमिट होता है और कितना शॉर्ट मैसेजेस भेज सकते हैं?
1: चाहे तो हम एक सेंटेंस एक वाक्य भी भेज सकते हैं, और चाहे तो हम एक जो पैराग्राफ है वो भी भेज सकते हैं, लेकिन भेजने के मोर्स कोड भेजने के लिए हमें मैनुअल सुविधा है और ऑटो कीयर है, उससे भी हम भेज सकते हैं। उसमें भी लिमिटेशन होता है, हमारा जो कान है उसकी मर्यादा है डिटेक्ट करने के लिए। अगर हम बहुत ही हाई स्पीड से भेजेंगे, जैसे कि एक मिनट में हम एक शब्द भेजते हैं, तो वन वर्ड पर मिनट उसकी स्पीड मानी जाती है। एक मिनट में अगर हम दो वर्ड भेजते हैं तो टू वर्ड्स पर मिनट उसकी स्पीड मानी जाती है। तो जनरली अगर देखा जाए, कंफर्टेबली अगर कोई मैसेज हमें भेजना है तो 15 या 20 वर्ड की जो एक मिनट में हम 20 शब्द भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं, वो स्पीड हम कंफर्टेबली भेज सकते हैं। और जिन लोगों ने ये लैंग्वेज सीखी है उनके लिए कोई तकलीफ नहीं है, तो वो आराम से मैसेज भेज भी सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। तो स्पीड लिमिटेशन ऐसा है कि जिनको जितनी प्रैक्टिस वो इतनी ज़्यादा स्पीड से भेज सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 30 वर्ड्स पर मिनट से अगर हम ज़्यादा स्पीड से भेजेंगे तो हमारे कान है वो डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, उसको पता नहीं चलेगा कि क्या ये आ रहा है, डॉट और डैश है उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, उसको समझ में नहीं आएगा कि डैश आया या डॉट आया। जब वो समझ में नहीं आया तो लिख नहीं पाएंगे और वो भाषा का वहाँ लिमिटेशन हो जाता है। तो हमारा मनुष्य का जो हियरिंग का जो लिमिटेशन है वो 30 वर्ड पर मिनट है, वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अगर उससे ऊपर जाएगा तो दिक्कत होती है और कठिनाइयाँ का हमें सामना करना पड़ता है। और वैसे बहुत धीरे अगर मैसेज भेजेंगे तो 5 वर्ड्स पर मिनट, मतलब एक मिनट में 5 वर्ड हम भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। और वेरी कंफर्टेबली अगर हमें भेजना है तो 12 वर्ड्स पर मिनट, 12 वर्ड एक मिनट में भेजना है और 12 वर्ड हमें एक मिनट में रिसीव करना है। तो एक मिनट में हम कितने वर्ड्स भेज सकते हैं उससे स्पीड का ये काउंट होता है, और जैसे हमारी प्रैक्टिस उसके मुताबिक हम उसकी स्पीड ज़्यादा कर सकते हैं कम कर सकते हैं। अगर हम ज़्यादा स्पीड से भेजते हैं, सामने रिसीव करने वाला है वो कम स्पीड में रिसीव करता है, तो हमको क्यू कोड में वो सिग्नल भेजेगा, क्यू और एस, क्यू वो फोनेटिक्स में उसको क्यूबेक कहते हैं, आर के लिए रोमियो कहते हैं, एस के लिए सियरा कहते हैं, क्यू आर एस भेजेंगे। और मोर्स कोड में क्यू के लिए जो कोड है वो भेजेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि ये स्पीड उनको ज़्यादा है और ये QRS कहते हैं, मतलब स्लोली भेजो आप, तो फिर हमें स्लो स्पीड में भेजना है और वो कहेंगे बस ये स्पीड ठीक है, देन वी कैन, तो फिर उसके बाद हम वो स्लो स्पीड में भेज सकते हैं। ऐसा है वो स्पीड, हम आपस में एक दूसरे की जो समझ है उसके मुताबिक भेजना है, उस स्पीड से भेजना है
0: जी। सो ये सब डिपेंड करता है कि हम कितना फास्ट इस भाषा के माध्यम से संदेश भेज पाते हैं। कई बार ललित जी हम मूवीज में ऐसे देखते हैं, कोई वॉर जोन है या ऐसे चीज़ें जहाँ पर इशारों में वो बातें करते हैं, उंगलियां चलाते हैं या ऐसा कुछ, ऐसा ही होता है ये?
1: नहीं, ये बिल्कुल हमें कान से सुनना है।
0: ओके।
1: कान में डॉट और डैश आएगा, डिड डा ऐसा हमें सुनाई देगा, डिड डा, तो हम ए लिख देते हैं, डिडी डा तो हम यू लिखते हैं, डिड डिड डिड डा तो हम वी लिखते हैं, डा डी डी डिड तो बी लिखते हैं, ऐसे ही ये भाषा होती है।
0: ओके, मतलब ये टाइप करके भेजने की नहीं, सुन के लिखने की भाषा है ये?
1: हाँ बिल्कुल, हम सुन सकते हैं, सुनने के बाद जो हमारा हाथ में पेन है, पेन से हम पेपर में लिख सकते हैं। अगर हमारे पास टाइप राइटर है तो हम सुनने के बाद हम टाइप ही वो मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली, जहाँ हम ए लिखते हैं तो हम ए टाइप कर देंगे तो पेपर में ए ए छप जाएगा। तो जैसे मतलब हमने प्रैक्टिस की है ऐसे मुताबिक हम मैसेज है पेपर में लिख सकेंगे, बाय पेन से भी लिख सकते हैं, टाइपराइटर से भी लिख सकते हैं।
0: जी
1: जी।
0: सो ललित जी आपका क्या स्पीड है और अभी तक आपने तो किस प्रकार की ये भाषा है ये चीजें तो आपने बताई, आपने कभी यूज किया और किस प्रकार का आपने कम्युनिकेशन किया, कैसे थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपकी जो अनुभव है उसको आप शेयर करेंगे?
1: हाँ, शुरू में मुझे मैंने ये मोर्स कोड है उसका प्रयोग ज्यादा किया और मेरे पास एक छोटा सा टॉय ट्रांसमीटर था उससे, जिसका पावर 5 वोल्ट का था, तो पावर हम जो मेजर करते वोल्ट में करते हैं, तो वो जो मेरे पास खुद का बनाया हुआ ट्रांसमीटर था, इलेक्ट्रॉनिक वाल का बनाया हुआ था और उससे जो आउटपुट मिलता था मुझे 5 वोल्ट, वो 5 वोल्ट से मैंने थ्रू आउट वर्ल्ड कम्युनिकेशन किया है। मैंने यहाँ से अमेरिका बातचीत की है, जर्मनी से भी की है, न्यूजीलैंड भी बातचीत की है, ऑस्ट्रेलिया, मतलब मैंने कम्युनिकेशन किया है 5 वोल्ट से और वो भी मोर्स कोड से। तो मोर्स कोड में अगर देखा जाए, अभी अगर आप मुझे पूछते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि 25 वर्ड्स पर मिनट में संदेश आराम से भेज सकता हूँ और रिसीव कर सकता हूँ, लेकिन 30 की स्पीड से अगर मैसेज हम भेजेंगे तो मैं सुन लूँगा लेकिन मैं लिख नहीं पाऊँगा, क्योंकि वो स्पीड से मतलब हम लिख नहीं पाते हैं, वो हमें संदेश मिलता है दिमाग से और हमारे हाथ तक पहुँचता है तो हमारा हाथ वो स्पीड के साथ काम नहीं कर पाएगा, तो वहाँ हमारा लिमिटेशन आता है। लेकिन 30 वर्ड की स्पीड से मैसेज आता है तो मैं कान से सुन लूँगा, मैं समझ भी लूँगा, लेकिन अबाउट 30 स्पीड जो है फिर वो समझना हमारे लिए मुश्किल है, तो ये बात है।
0: बहुत सुंदर सर, जैसे टाइपिंग में भी एक लिमिट होता है कि 1 मिनट में आप कितने शब्दों को टाइप कर सकते हैं, कितना आपका स्पीड है, उसी तरीके से मार्स कोड में भी एक स्पीड का एक माप है कि आप 1 मिनट के अंदर आप इतने सारे शब्दों का संदेश आप भेज सकते हैं। सर, इस भाषा के बारे में और कोई चीज़ है जो हमें जाननी है? लेकिन मुझे एक बात ये समझ में आता है कि आपकी बातचीत से भले ये कोड लैंग्वेज है लेकिन इसको जब अपनी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं उसके लिए अंग्रेजी आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अंग्रेजी अल्फाबेट्स को ही इस डॉट लैंग्वेज में बनाया है। तो
1: हाँ, क्योंकि ये मोर्स कोड है, वो ये जो अल्फाबेट है A to Z उसमें उसका ये कन्वर्जन किया है। हमारे जो भारतीय भाषा है उसमें उसका कोई डॉट और डैश में ये नहीं किया हुआ है, इसलिए इंग्लिश जानना तो जरूरी है और हेम रेडियो में एक बार अगर आ गए तो अपने आप हम इंग्लिश में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने जो भी विदेश के दोस्त लोग मिलते हैं जो हमसे बात करते हैं, तो वो उनसे भी बात हमें करनी है, उनकी बात भी हमें सुननी है, तो अपने आप हमारा मुहावरा आगे बढ़ता है और वो हम जल्दी जल्दी सीख पाते हैं। तो मैंने ये भी देखा है कि जिन लोगों का अंग्रेजी भाषा पे इतना ये नहीं है वर्चस्व, वो लोग भी अगर उनको प्रैक्टिस अच्छी है तो वो जल्दी इंग्लिश भी सीख लेते हैं और वो इंग्लिश भाषा में भी आसानी से संदेश का जो भेजना होता है, रिसीव करना होता है, वो उनके लिए आसान हो जाता है। शुरू में हमें लगता है कि ये थोड़ा कठिन है, लेकिन ये चीज़ कठिन बिल्कुल नहीं है। जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस होती है ऐसे हम इसमें हमारा ये प्रोफिशिएंसी, हमारा जो अनुभव है आगे बढ़ता है और हम सीख सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा अनुभव तो हमें चाहिए और थोड़ा कुछ टाइम हम उसके लिए निकालेंगे तो सब कुछ आराम से हम सीख सकते हैं।
0: जी, तो इस मॉर्स कोड को सीखने के लिए भी कोई ट्रेनिंग क्लासेस या फिर कहीं पे कोचिंग वगैरह होती है इसकी?
1: हाँ जी, मॉर्स कोड के लिए क्या होता है कि हमारे पास हमारे आजू बाजू हेम रेडियो वाले कोई सीनियर ऑपरेटर है, जो दोस्त लोग का अगर हम संपर्क करेंगे और वो सीनियर है तो उनको मॉर्स कोड मालूम है कि कैसे सीखा जाता है और किसको कैसे मतलब दूसरे को सिखाया जा सकता है, तो उनका संपर्क करने से वो लोग हमें सिखा सकते हैं। लेकिन आजकल क्या है कि अपने मोबाइल में यूट्यूब की जो सुविधा है उसमें मॉर्स कोड के क्लासेस आते हैं और वहाँ से हम 5 वर्ड की स्पीड से लेकर 30 वर्ड्स पर मिनट की जो स्पीड है उसके यूट्यूब में बहुत सारे लेसन्स आते हैं, तो वहाँ से हम ले सकते हैं और सीख भी सकते हैं। वरना अगर हमारे पास कोई हैम है तो एक छोटा सा ऑसिलेटर बनाएंगे और एक मोर्स की लगाएंगे, मोर्स की से हम मोर्स भाषा का ये बनाएंगे और उसका ऑडियो रूपांतर करने के लिए एक ऑडियो ऑसिलेटर चाहिए जिसमें एक स्पीकर रहता है, एक ऑसिलेटर रहता है कि वो जो ऑडियो जो वो है उसको जनरेट करता है, और डिड्डा ऐसी जो लैंग्वेज है वो हम मोर्स कोड की जो भाषा है मोर्स की के साथ वो ऑसिलेटर लगा देंगे, ऑडियो ऑसिलेटर, तो वो दोनों की मदद से कोई अच्छा ऑपरेटर है, रेडियो ऑपरेटर, हेम ऑपरेटर, वो हमें सिखा भी सकता है। तो सीनियर है में अगर वो मोर्स कोड जानते हैं तो उनसे जरूर हम सीख सकते हैं। और मेरे पास अब काफ़ी दोस्त लोग आते थे, काफ़ी लोगों को मैंने सिखाया भी है, क्योंकि उस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ कि उस वक्त हमारे पास यूट्यूब ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, इंटरनेट भी कुछ नहीं था, तो सीखने के लिए हमें आपस में एक दूसरे के सामने बैठना पड़ता था और हम जो संदेश देते थे वो आपस में हम कंफर्म कर लेते थे, हमने भेजा और वो फिर मैसेज पढ़ के हमको बताएंगे कि ऐसा ऐसा मैसेज मैंने रिसीव किया है, और उसके लिए हम सुविधा कर सकते हैं। और यूट्यूब से रेडीमेड लेसन्स है वो भी हम समझ सकते हैं, और वहाँ भी टीचर्स लोग हैं जो सीनियर हैं, हम अपना यूट्यूब में लेसन्स दिए हैं, वो भी सुन के भी हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी सुविधा है यूट्यूब के थ्रू।
0: ये भाषा क्या है, उसको कैसे यूज करना है, ये सब चीजें तो जान लिया ललित जी, लेकिन आखिर में हमें ये बताइए सबसे ज्यादा इसकी आवश्यकता कब और कहाँ होती है?
1: सबसे ज्यादा इसकी आवश्यकता डिजास्टर में, जब मतलब कुदरती आपत्ति आती है, जैसे कि जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं ऐसा कुछ घटना हो जाती है, तभी जब कम्युनिकेशन इंटरनेट वगैरह सब बंद हो जाता है, तब हम अपना ये हॉबी से जो एसेंशियल मैसेज है जो बहुत आवश्यक मैसेज है, जो गवर्नमेंट को अपने जो दूसरी जगह है मैसेज भेजना है, जैसे कि अहमदाबाद सचिवालय से मैसेज कहीं राजकोट के ऑफिस में भेजना है, और दोनों के बीच में इंटरनेट की सुविधा भी नहीं है, दूसरा भी कम्युनिकेशन ठप हो गया है, तो ये हेम रेडियो से संदेश बिल्कुल भेजा जा सकता है, वॉइस कम्युनिकेशन से भी भेजा सकता है, मोर्स कोड से भी मैसेज भेजा जा सकता है, और वो भी बहुत आसान, जो हमारे पास इक्विपमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स साधन होते हैं, उससे हम भेज सकते हैं, उसमें बहुत कीमती साधनों की जरूरत नहीं है, और टूक समय में हम अपना ये कम्युनिकेशन है एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ऐसा है, इसके लिए हमें बहुत इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, बहुत लोगों की भी ज़रूरत नहीं है, जो हम ऑपरेटर लोग हैं जो अपने पास इक्विपमेंट है वो हम इमरजेंसी में उपयोग कर सकते हैं, और संदेशा है उसका हम आदान प्रदान कर सकते हैं, और उसे जब इसकी ज़रूरत है तभी हम बिल्कुल मददगार हो सकते हैं।
0: जी ललित जी, जैसे हैम रेडियो हम ज़्यादातर डिज़ास्टर कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि जब किसी भी प्रकार की आपातकालीन विपदा होती है उस समय हम कम्युनिकेशन यानी कि संचार माध्यम को एस्टैब्लिश करने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। तो आज आपने उस तकनीकी माध्यम से जिस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है मॉर्स कोड, उसके बारे में आपने हमें जानकारियाँ दी। अंत में जाते जाते और कोई जानकारी जो आपको लगता है इस भाषा के बारे में जानना है, या कोई आप जो श्रोता सुन रहे हैं उनको आप सीखने की क्या ज़रूरत है, या फिर उनको मोटिवेट करना चाहते हैं इस मॉर्स कोड को सीखने के लिए?
1: हाँ, मॉर्स कोड से क्या है कि वैसे अभी देखा जाए तो ये थोड़ा कठिन होता है सबके लिए सीखने का, लेकिन अगर जिसको सीखने का मन बना लिया है वो उनके लिए आसान है, तो ये सीखना ज़रूरी है। और ये ज़रूरी नहीं है कि इमरजेंसी में हमें मॉर्स कोड में ही मैसेज भेजना है, इमरजेंसी में हम वॉइस कम्युनिकेशन से भी, मतलब आपस में बातचीत करके भी संदेश भेज सकते हैं। तो वो संदेश भेजने के लिए हमें, जैसे ये मॉर्स कोड अल्फाबेट्स में मैंने डिट और डैश की जो भाषा बताई, तो ये फोनेटिक्स जो भाषा है वो अगर हम सीखेंगे तो वॉइस कम्युनिकेशन में हम मैसेज आराम से भेज सकते हैं। इमरजेंसी में जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ऐसे ही बात कर सकते हैं, उसके लिए हमें माइक्रोफोन में बोलना है, और सुनने के लिए सामने जो स्पीकर होगा वो स्पीकर से हम आवाज़ सुन सकते हैं, और स्पीकर में जो आवाज़ आएगी उससे मैसेज बनता है, वो हमें समझ में आएगा कि वो क्या चाहते हैं, क्या हमें मैसेज दे रहे हैं, और हम जो माइक्रोफोन में बोलेंगे वो उनके स्पीकर में सुनाई देगा और वो समझ लेंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन होता है थ्रू वायरलेस, बिन तारिक संदेशा हम देते हैं, और ये हेम रेडियो से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और ये आसान तरीका है कि हम बोल के बातचीत करें। अगर हमें लगता है कि हमारे पास दूर बात करने के लिए कम पावर के इक्विपमेंट्स हैं, तो हम मॉर्स कोड में बात कर सकते हैं, क्योंकि मॉर्स कोड में बहुत कम पावर चाहिए और दूर दूर तक हमारे मैसेज जाते हैं, वॉइस कम्युनिकेशन में थोड़ा ज़्यादा पावर चाहिए, उसके लिए अच्छे इक्विपमेंट्स भी चाहिए। तो ये हम खुद भी बना सकते हैं थोड़ा, अगर हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है बनाने के लिए, हमने थोड़ा कुछ सीखा है, तो हम खुद के इक्विपमेंट्स भी बना लेते हैं और उससे हम बातचीत कर सकते हैं। आजकल तो अभी इतना ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया है कि जो हेम होते हैं वो कम दाम में अपने ट्रांस रिसीवर बनाते हैं, उसके ऊपर वॉइस कम्युनिकेशन करते हैं, और दूर दूर के जो स्टेशन हैं वहाँ वो बातचीत करते हैं, और ये हॉबी से हम इंटरनेशनल फ्रेंड्स भी बना सकते हैं। पहले के ज़माने में हम पत्र मित्र बनाते थे, जिनको हम जानते नहीं हैं उनको हम पत्र लिख के अपना मैसेज देते थे, हमारी पहचान उनको देते थे और फिर वो लोग हमसे लेटर के द्वारा हमारे बारे में जानते थे, तो पत्र व्यवहार था। लेकिन अभी इस जमाने में हम रेडियो से, यहाँ से अमेरिका में जो कोई हेम बैठा है जो हमें जानता नहीं है लेकिन हमारी आवाज़ सुनता है तो तुरंत हमें जवाब देता है और उस हिसाब से हम आपस में बात करते हैं और हम एक दूसरे अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। कभी हमें चांस मिला अमेरिका जाने का तो वो हम आपस में मिल भी सकते हैं और एक दूसरे अपने विचार विमर्श कर सकते हैं और पुराने जो हमने बातचीत की है उसका रेफरेंस भी दे सकते हैं। तो इंटरनेशनल अगर हमें फ्रेंड्स बनाने हैं तो हेम रेडियो हॉबी वन ऑफ द बेस्ट हॉबी है, उसे हम पूरे वर्ल्ड में हमें अच्छे दोस्त बना सकते हैं, वो भी मोर्स कोड के द्वारा, सैटेलाइट के द्वारा और या फिर वॉइस कम्युनिकेशन के माध्यम से हम दोस्त लोग बना सकते हैं। हेम रेडियो हॉबी है और ये हॉबी से हम बहुत सारे दोस्त लोग बना सकते हैं और इमरजेंसी में अपना कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश भी कर सकते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी, आज इस एक दुनिया एक भाषा में जो एक भाषा है पूरी दुनिया को एक करती है उसके बारे में बहुत विस्तृत रूप से हमें जानकारियाँ दी। मैं समझती हूँ कि थोड़ा बहुत टेक्निकल रहा है आज का इस कार्यक्रम का जानकारियाँ हैं, लेकिन दोस्तों ये वही तकनीक है जो हमें में समाचार को आदान प्रदान करने में मदद करती है। तो ये हमारी रेडियो मधुबन की एक नई पहल है जो हम आम दिन पर जिस प्रकार की हम मनोरंजन की या हर प्रकार की समाचार और बातों को हम शेयर करते हैं, लेकिन वही बातें और वही कनेक्टिविटी या वही संबंध हम एक दूसरे के साथ बना के रखना चाहते हैं तो हमें एक और भाषा या एक और तकनीक की जो ज़रूरत है वो है हैम रेडियो और उसके बारे में हम सीखने की एक कोशिश कर रहे हैं। तो आज की इस एपिसोड में इतना ही और हम फिर से बहुत धन्यवाद अदा करते हैं जो हमारे सबसे पुराना सीनियर हैम हैं इस हैम रेडियोस में। आपने हमें समय दिया और बहुत ही धैर्यता के साथ इस भाषा के बारे में विस्तृत जानकारियां दी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।
1: मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं कुछ आपको बता सका और जब भी को जरूरत है मेरी तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। श्रोतागण को बहुत बहुत बधाई, वो जरूर जो भी कोई सीखना चाहते हैं इस बारे में पता करेंगे तो बिल्कुल उनको समझ में आ जाएगा। और वहाँ भी आबू में और अपना ये ब्रह्म कुमारीज जो केंद्र है वहाँ भी हेम रेडियो का रेडियो स्टेशन है, हेम रेडियो वहाँ भी चलाते हैं और वहाँ भी क्लब स्टेशन है, वहाँ भी सीनियर हैम है, वहाँ से भी कभी कभार आप सीख सकते हैं, उनका संपर्क कर सकते हैं। और मैं तो भावनगर गुजरात में यहाँ हूँ, बाई चांस कभी आपको यहाँ आना हुआ भावनगर में और आप मुझे मिलना चाहते हैं तो आप बेशक मुझे मिल सकते हैं और इस हॉबी के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो वन टू वन मतलब आमने सामने बैठ के भी जान सकते हैं और ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। धन्यवाद
0: जी सर, बेशक हम आपसे जरूर संपर्क करेंगे क्योंकि ये तो बातचीत शुरू हुई है, हमने सिर्फ इस हैम रेडियो की एक पहलू के बारे में ही आज जानकारियां ली हैं। आपके पास बहुत सारा खजाना है, बहुत सारे अनुभव है, जानकारियां भी हैं, तो हम अगले एपिसोड में जरूर आपसे जुड़ना चाहते हैं और हैम रेडियो की और भी बातों के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। तो दोस्तों हम यहीं पे विराम देते हैं एक दुनिया एक भाषा इस कार्यक्रम में और सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.2

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी म्हारो गांव म्हारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते हैं हमें बहुत खुशी मिलता है, सबका बढ़ चढ़ कर हिस्सा देखने को मिलता है। सामुदायिक रेडियो होने के नाते सामुदायिक का गतिविधि सामुदायिक का भागीदारी देखने को मिलता है, सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, अपनापन लगता है। पहला बार भी जाते तब भी हमें बहुत खुशी मिलता है। आज इस कार्यक्रम को लेकर जब गांव और अंचल में जाते हैं, आज खासकर थोड़ा आब रोड से दूर है झामर जो कि मुंगथला ग्राम पंचायत में है, और सबको मालूम है झामर तो कृषि में बहुत नंबर वन है, खेत में इतने सुंदर खेती करते हैं, चाहे आलू हो चाहे टमाटर हो चाहे बैगन हो, सब चीज़ में उस्ताद है। और सभी अपना जो समाज गारे से आदिवासी समाज के लोग भी रहते, तो आज इस कार्यक्रम को लेकर हम आंगनबाड़ी में पहुंचे झामर फास्ट आंगनबाड़ी। और यहाँ का जो कार्यकर्ता महोदय श्रीमती बॉबी मैम है, तो बॉबी मैडम को भी स्वागत करते हैं। आंगनबाड़ी दीदी के लिए ताली बजा, ताली के साथ स्वागत किया जा रहा है। और हमारा बबीता मैडम उनका साथी सहयोगी और सहायिका आशा सबका तरफ से आज इस कार्यक्रम को रेडी किए। सभी महिलाएं धात्री महिलाएं भी आए हैं, कुछ किशोरी भी आए हैं, और हमें खुशी है छोटे छोटे नन्हे बच्चे भी आए और गीत भी आज गाएंगे आंगनबाड़ी का जो गीत है वो भी सुनाएंगे। लेकिन सुनते पहला प्रस्तुति हमारा इस कार्यक्रम को सजाने के लिए परिचय देंगे। बचपन पढ़ाए हुए तो कैसे पहुँचे कार्यकर्ता तक, कितना पढ़ाई किए उस चीज़ बताए। आपका स्वागत है, आपका नाम बताइए।
1: मेरा नाम बबी बेन है, झामर फर्स्ट आंगनबाड़ी कार्यकर्ता।
0: और कितने साल से?
1: साल तो हो गया 40।
0: 40 साल, अरे वाह 40 साल कम है, 4 डिकेड, 1 2 3 4
1: कितना तो हो गए।
0: हाँ 40। और अभी आपका उम्र कितना होगा?
1: 58।
0: मैंने 18 साल उम्र में आप आंगनबाड़ी में आ गए 40 साल नौकरी हुआ, 18 साल जो छोकरी थी।
1: हाँ 86 में लगी थी तो कितना हुआ?
0: 86 में लगे थे तो उधर हो गया 86 14 साल है, और इधर आ गया 23 साल। इतना नौकरी किए देखे हुए, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए सभी जो हमारा धात्री महिलाएं गर्भवती महिलाएं और किशोरियां बच्चे आए सभी और एक बार पुनः स्वागत करें, इतना जोर से काम ताली बजाओ। सही में इतना समय तक देखें, गाँव में बहू आती है तब से वो उसका पीछे पड़ जाते हैं और बच्चा उसको स्कूल में दाखिल तक उनका दायित्व रहता है। एक आंगनबाड़ी में जो कार्यकर्ता होता है वो बच्चों को स्कूल में दाखिल तक वो का दाखिल में उसको ज्वाइन करने 6 साल तक आप देखभाल करते हैं।
1: हाँ,
0: है ना?
1: हाँ,
0: जीरो अवस्था से लेकर। हाँ,
1: जीरो से लेके
0: क्या क्या करते बताओ?
1: धात्री महिला गर्भवती
0: क्या क्या करते?
1: गर्भ महिलाओं को 3 महीने से पंजीकरण करते हैं
0: जी,
1: बस इनको टीके लगवाते हैं, टीकाकरण में आते हैं, तो सब जांच करते हैं खून की सब
0: जी,
1: सब वो करते हैं।
0: अच्छा, और उनको क्या सिखाने
1: उसका और देते हैं?
0: हाँ, कभी गोद भराई?
1: गोद भराई वो भी देते हैं नालेर।
0: अच्छा, कितना महिलाएं आते हैं आई लोग?
1: मतलब रजिस्टर में नाम हो जितने निकले इतने को देते हैं।
0: अच्छा, उसको क्या ध्यान देने के लिए, जो गर्भवती महिलाओं को क्या क्या ध्यान देने के लिए, जैसे भारी काम नहीं करने के लिए?
1: भारी काम नहीं करना, खान पीन में हरी सब्जियां पत्तेदार सब्जियां कोई फल फ्रूट खाने की बताते हैं।
0: वो खाने से हरी सब्जियां और कठिन काम नहीं करेंगे,
1: काम
0: नहीं और ध्यान देंगे तो आय को क्या फायदा होगा?
1: सुरक्षित
0: बच्चा सुरक्षित होगा। और
1: गर्भवती महिला को भी फायदा ही होगा।
0: कैसे क्या फायदा होगा?
2: खान पान का ध्यान रखेंगी, वजन उठाना का भी काम नहीं करना, तो उसका बच्चा होगा वो भी स्वस्थ होगा, उसका भी मानसिक सही होगा। और
0: ये भी होना चाहिए आंगनबाड़ी में सीख जाते हैं, और नहीं तो आजकल उसका जो आए लोग उसका मम्मी वो भी सिखाती है ऐसे करना ऐसे नहीं करना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और
1: किशोरी
0: के लिए क्या करते हैं?
1: किशोरी के लिए महावारी के बारे में इनको
0: साफ सफाई के लिए,
1: साफ सफाई के लिए जानकारी
0: देते हैं।
1: हाँ,
0: तो आपको आंगनबाड़ी में आते हैं?
1: आते
0: किशोरिया
1: एक आई है, एक
0: किशोरिया क्या नाम है देव उनको? ज्योत्सना। ज्योत्सना के लिए ताली। एक किशोरी आए, बाकी बहुत सारे माताएं आई लोग आए हैं, लेकिन किशोरी भी आए जोशना के लिए, ताली बजाए और बहुत अच्छा लगा। आप आशा है? हाँ, इसलिए बहुत होशियार है। बोले बोले कैसे इतना बोल पाती है, अभी पता चला है आशा है। देखो हमारा आशा बीच में क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सहयोग कर रहा, बोले ये इतना चला कैसे, तब पता चला ये आशा है। तो अभी गुप्त राज पता चल गया, बहुत अच्छा, ऐसे होना चाहिए, है कि नहीं? आशा तो सबका आशा पूर्ण करता है, आशा पूरी माँ, आशा पूरी, आशा का आशा पूरी माँ, उसका भी ज़्यादा जानकारियाँ लेंगे। लेकिन पहले बबीता मैम से बात करेंगे, आपका बचपन में ऐसे आंगनबाड़ी था, आप आंगनबाड़ी में कभी गए?
1: नहीं गए हम
0: तो अभी ये लोग आंगनबाड़ी में क्यों बुला रहे, आप तो कभी गए नहीं। आप तो ये बच्चों को क्यों बुला रहे?
1: जानकारी लेने के लिए, इनको जीवन का वो करने के लिए।
0: आप तो जानकारी नहीं ले, फिर आप तो आंगनबाड़ी तक तो पहुंच गए।
1: और हम तो स्कूल में जाते थे।
0: अच्छा, स्कूल में जाते थे?
1: कौन सा स्कूल में जाते थे?
0: कितने क्लास पढ़े?
1: नौवीं तक।
0: अरे वाह, उस समय नवीं तक पढ़ाई में बहुत अच्छा पढ़ाई की है ना, पढ़ाई में रुचि, पढ़ाई में खेलकूद भी?
1: हाँ, खेलकूद तो सब होते थे।
0: हाँ, उसमें भी गरेसे समाज में, गरेसे भाषा का गीत आपको आता है?
1: गीत तो
0: नहीं आता है, लेकिन आज गीत गवाएंगे सभी से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या कहना, आंगनबाड़ी, ये जो आंगनबाड़ी बहुत सुंदर साफ सुथरा, इतना दूरस्थ जगह में है, पहाड़ी का नीचे, और वातावरण बहुत शुद्धता है, तो इसका राज क्या है, कैसे आप यहाँ तक सिलेक्शन किए, ऐसे जो मकान बनाए आप टेकरी का नीचे, कैसे बनाए, कौन पैसा दिया, और अच्छा जगह सरकार ने दिया पैसा, और जमीन?
1: जमीन भी इनको ही सरकारी।
0: सरकार का जमीन ये?
1: हाँ, तो सरकारी दे था।
0: सरकार का जमीन?
1: हाँ, बिला नाम की।
0: अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। आज इतना महिलाओं को बुलाए, आई लोगों को, तो लोग का ध्यान कैसे आप स्वास्थ्यवान कराते हैं, किस तरह आप ध्यान देते हैं, जो महिलाएं आए, आई लोग के लिए क्या क्या सजेशन, आंगनबाड़ी में क्या क्या देते
1: हैं? आंगनबाड़ी में अभी
0: अभी नहीं, कभी जब शुरुआत में,
1: शुरुआत से तो पोषण देते
0: जी,
1: पंचरी देते थे पहला, तो खिचड़ी डलिया बच्चों को खिलाते थे
0: जी जी,
1: और अब दे रहे हैं वो कोरोना के हिसाब से, वो चना की दाल, गेहूं, चावल।
0: अभी भी आता है सूखा सूखा
1: सूखा पोषण?
0: अच्छा,
1: जो नहीं चालू हुआ गर्म।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। इतना सुंदर जानकारियां दिया, आंगनबाड़ी क्या है, कैसे है, और उनका जीवन में जो सक्सेस स्टोरी बताए। कम पढ़ा लिखा है, लेकिन उस समय का पढ़ाई और आज का पढ़ाई में बहुत अंतर है। उसमें आठवीं नवीं जो पढ़ती, आज का कॉलेज का करने उतना भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि उस समय पढ़ाई बहुत मजबूत और पक्का होता था, और वो शुद्धता रहता था, और वो बहुत अच्छा लगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ एक गीत हो जाएगा सामूहिक रूप में, क्योंकि इतना दूर से आए तो कुछ एक तो आदिवासी गीत तो मांगता है ना, तो हो जाएगा। लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन। ये था आंगनबाड़ी झामर फास्ट के कार्यकर्ता का साथ साथ, और जो धात्री महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, बच्चे जो आए उनका आवाज होगा, लेकिन विराम का बाद।

0: मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी है। आज अपना आवाज ही अपना पहचान होगा। आदिवासी लोकगीत का माध्यम से कला, संस्कृति, आस्था, विश्वास को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते हैं, सही में वो गीत को उजागर करने के लिए रेडियो मधुबन हमेशा कोशिश करता है, एक मंच प्रदान करता है, जिससे मंच का माध्यम से अपना बात को गीत का माध्यम से रख पाते, चाहे त्यौहार हो चाहे कोई भी काम हो जो जाते हैं। तो आज इतना सामूहिक रूप में गीत गाने के लिए उपस्थित है, तो सभी को राम राम करते हैं, स्वागत करते हैं। तो कौन कौन आए हैं उनका आशा है, अभी आशा को भी स्वागत करते हैं। आशा, आप अपना परिचय दीजिए।
1: मेरा नाम सीमा है।
0: सीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज इतना, क्योंकि आपका काम तो बहुत जमीन स्तर पर मैंने डोर टू डोर जाना पड़ता है कि नहीं? आप कहाँ तक पढ़ाई की?
1: मैंने 8वीं तक पढ़ाई की, अभी ओपन

0: 12वीं कर रही हूँ।
1: वाह, ऐसे होना चाहिए, पढ़ाई का लगन होना चाहिए, चाहे शादी होने के बाद भी पढ़ाई का कोई उम्र होता नहीं है, कभी भी चाहेंगे तो हम ओपन में भी, सरकार ने दिया है हम बीए में भी कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। सीमा का जो लक्ष्य रखा बहुत अच्छा है, और वो जो पढ़ी लिखी होगी तो हमारा जो महिलाओं को भी वो शिक्षित कर पाएगी। तो सीमा जी आज किसको किसको बुलाए, सबका नाम थोड़ा बोलो, कौन कौन आए लोग आए हैं?
0: सोनी बाई है और फुली बाई है।
1: हाथ उठाओ, जिसका नाम लेंगे वो हाथ उठाओ। हाँ हाथ उठाओ।
0: कौनरी बाई है, फुली बहन,
1: फुली बहन हाथ उठाओ।
0: ममता बहन है,
1: ममता बहन का वेरी गुड, ममता बहन।
0: कमला बहन,
1: कमला बहन हाथ उठाओ। हाँ,
0: और धर्मी बहन,
1: धर्मी बहन, धर्मी बहन, कमला बहन, सभी को जो नाम लिए सभी के लिए ताली बजाओ। ताली बजाने में कम नहीं करने का, कोई टैक्स नहीं लगता है, ताली बजाने में कमी नहीं करना, कुछ हो कि नहीं ताली तो जरूर होगा सभी का, है कि नहीं? तो चलिए एक गीत हो जाएगा अपना आदिवासी गीत, ठीक है, क्योंकि हमारा जो शो है ना प्रोग्राम, आदिवासी गीत का बिना अधूरा, सुना सुना लगता है।

0: बहुत बहुत धन्यवाद सीमा आशा को, कितने सुंदर रूप में और सभी कुशाई में। कुछ विशेषता है, बहुत खुशी लगता है क्योंकि इस तरह आंगनबाड़ी में कोई ना कोई, जो कोई नहीं बोल पा रहा तो सीमा जी ऑलराउंडर है, वो तुरंत अपना मुँह चुप्पी तोड़ी और सबको गीत में इतना सुंदर प्रस्तुति कराई। सीमा जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ताली बजा भाई। आपका चुप्पी को तोड़ दिए, आप तो बोल नहीं रहे थे गीत गाओ इधर देख रहे उधर, किंतु सीमा आगे आकर अपना बात को रखी। इसलिए नाम ही जैसे है आशा, पोस्ट जैसे, और सीमा तो बेहद का सीमा, मतलब कोई सीमा नहीं उसका सब चीज में। हाँ भाई, हमको सीमित क्यों रख रहे हैं, हमको क्यों गीत नहीं दे रहे, हम तो कम नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी को, बहुत सुंदर प्रस्तुत दिए। पीछे कोई बोला और एक गीत हो जाए,
1: लेकिन अल्प विराम का बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल। ये था झामर फास्ट आंगनबाड़ी केंद्र के महिलाओं का आवाज, खासकर आदिवासी लोकगीत।

0: 5 YouTube वीडियो को लाइक करके 5 लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा है?
0: हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
0: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मींस ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
0: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं। क्या बात है यार।
2: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
0: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
2: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
3: नमस्ते, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ब्रेक के बाद हम पुनः मिल रहे हैं। आंगनबाड़ी झमर फास्ट के आवाज आप सब सुन रहे हैं। नेक्स्ट प्रस्तुति के लिए और हो जाए, पीछे से कोई बोल रहे हैं और एक लोकगीत होगा तो जरूर, क्यों नहीं होगा, होना ही चाहिए, सुनते हैं।
4: और एक गीत, आदिवासी गीत में इतना मिठास, इतना भाषण आता है, क्योंकि हमारा जो आई लोग सुन रहे, बच्चे भी सुन रहे, ऐसे जाते ना सीख जाते हो भी, है ना, घर से गीत सीखने के लिए इस तरह माहौल जो होता है सामूहिक रूप में। और आंगनबाड़ी में आए तो अपना एक तो फ्रीडम है कि नहीं, सभी को गाओ, ठीक है। और एक गीत हो जाए सीमा।

0: बहुत बहुत धन्यवाद सभी को नाम का साथ कितना सुंदर प्रस्तुति दिए और आदिवासी गीत हो तो ऐसे सबको मनमुग्ध कर देते हैं और हमारा आई लोग जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं गांव और अंचल में और खासकर आंगनबाड़ी में, आंगनबाड़ी तो है ही ऐसे आई लोग का घर है कहाँ कुछ असुविधा होता है या कुछ होता है तो बच्चों को भेज देते हैं और छोटे छोटे बच्चे का साथ आई लोग भी बच्चे बन जाते हैं और हमारा कार्यकर्ता और आशा और सहायिका ये लोग तो पूरा ध्यान देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमारा आशा से कुछ प्रश्न करेंगे। आशा सीमा जी, जो गांव और अंचल में जाते हैं क्या आपको कठिनाई आती है, क्योंकि महिलाओं को अपना बनाना आपको तो बहुत चैलेंज आता होगा, कोई नया बहू गांव में आते हैं वो चीज़ जमीन स्तर पर जब जाते हैं ना तो आपको क्या क्या कठिनाई आती है और नया बहू को आप कैसे अपना बनाकर फिर आंगनबाड़ी में पूरा एक धात्री महिला तक क्योंकि एक सामुदायिक रेडियो है, हमारा सामुदायिक में जो गतिविधि हो रही तो सबको पता हो और हमारा जो नए नए किशोरिया आज है कल तो बहू बनेगी, तो आप किस तरह जमीन स्तर पे काम करते हैं वो चीज बताओ।
1: एक घर में जाते हैं तो बोलते हैं राम राम भाई पहले तो,
0: अच्छा
1: कैसे हो कैसे नहीं है, बैठते हैं उनको पूछते हैं,
0: अच्छा
1: क्या तुम्हारे कोई घर में बहू नहीं आई है, बहू आई हुई है तो उनके कोई छोटे बच्चे है कि कोई है कि यू पूछते हैं तो बताते हैं,
0: मैंने बताने में कोई दिक्कत नहीं है, सब बताते आराम से तो उनको फायदा होता है क्या बताने से? फायदा ही फायदा
1: होता है। दिन में जैसे उसका पंजीकरण करवाते हैं, हर महीने जांच करते हैं
2: तो
0: कितना 5,000
1: रुपए 5,000 प्रधानमंत्री वाले वो मिलते हैं
0: तो उनको फायदा ही है।
1: फायदा ही है
0: तो हाँ, तो श्रोता मित्र सुन रहे हैं तो हमारा जो बहू है तो उनको भी फायदा मिले। पहला डिलीवरी में सरकार जो 5,000 रुपया वो क्या नकदी देते पैसा ना आता उनका अकाउंट में जाता
1: पैसा, अकाउंट में ऑनलाइन करवा।
0: अच्छा, ऐसे आपका झामर फास्ट में कितना महिला को 5,000 दिलाए, कितना लोग?
1: 52।
0: अरे वाह, ताली बजाओ। आज जो इतना महिलाएं आए हैं, आई लोग आए हैं तो इसमें किसको लाभ मिला है? 5,000 बहुत अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा मैडम अपना बात बता रहे थे जे किस तरह जमीन स्तर पर जो जाते हैं डोर टू डोर तो जो बहू को अपना बनाने में मैंने उसका जो डिटेल्स डाटा लेना जरूर होता है क्योंकि उसका पूरा डिटेल्स रखना पड़ता है, क्योंकि उसका आगे उनका जो भी लाभ मिलता है तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है, फिर उसका टीकाकरण सब चीज़ देखते हैं। तो सीमा जी, और क्या क्या चैलेंजेज आता है जो चैलेंजेज आते हैं जो घर में जाते हैं तो कभी ऐसे आपको चैलेंज आए बहुत मैंने कष्ट हुआ भाई ये लोग गाली देते हैं ऐसे कुछ?
1: प्रेम से बोलते हैं अपन तो उनको समझाते हैं, उनको फायदा भी दिलाते हैं तो वो क्यों बोलेंगे
0: सही में आशा का काम ही तो ऐसे नाम पोस्ट का नाम जैसे आशा सबका आशा पूर्ण करते हैं, चाहे बहू हो चाहे उसका पति हो चाहे उसका ससुर हो चाहे सास हो, सबको उनका फायदा के लिए करते हैं। और सरकार का जो योजना है जैसे आपने बताया जो पहला डिलीवरी में 5,000 मिलता है तो और उनको कुछ भी तकलीफ होता है तो मूंगथला लेते हैं तो अबरोड लेते हैं डिलीवरी का समय में, है ना? तो आपका सुपरवाइजर आंगनबाड़ी में जो सुपरवाइजर कभी कभी आते हैं, क्या नाम है सुपरवाइजर?
1: मधु
0: मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। चले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और एक गीत हो जाए, है ना? कोई भी गीत गाओ आराम से, आज अपना ही पूरा समय है तो चले श्रोता मित्र सुन रहे, लेकिन लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन

भगति के बस आजा भगवान बावारा देव जन मलियो ओ दो कंचन तो सुबरण जी है जी डूंगे रिया मर दो कंचन तो सुबरण जी है जी डूंग।

0: क्या आपको भी बैंक के नाम से SMS आ रहे हैं? इन SMS में फिशिंग लिंक मिल रहे हैं जो एक क्लिक से .apk फाइल को आपके फोन में डाउनलोड कर देते हैं। ऐसी फाइलें आपके फोन का पूरा नियंत्रण साइबर अपराधियों को दे देती है, यहाँ तक कि वो आपका बैंक OTP भी देख सकते हैं। याद रखें, कभी भी किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें और किसी भी साइबर अपराध की शिकायत cybercrime.gov.in पर करें। सोशल मीडिया पर साइबर दोस्त को फॉलो करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।
1: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी मिल रहा है। बोलिए ओम शांति, राम राम,
2: राम राम।
1: हमारे फास्ट आंगनबाड़ी में गीत बारी बारी सुनने को मिल रहा है, तो और एक प्रस्तुति होगा, वो भी सामूहिक रूप में। सीमा जी लीडर है और उनका साथी भी है सहयोग देने के लिए आंगनबाड़ी का कार्यकर्ता के साथ। पुनः सबको स्वागत करते हैं, राम राम करते हैं। सुनते हैं अगला प्रस्तुति सामूहिक रूप में, लोकगीत।

0: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर प्रस्तुति और हमें बहुत खुशी लग रहा है इस तरह गांव के जो हमारा आए लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए और सामुदायिक गीत और खासकर लोकगीत जो अपनापन होता है और इससे खुशी महसूस होते हैं। और अब मुझे तो समझ में नहीं आता क्या भाषा में गीत गाए, कौन सा ऊपर में गीत गाए। फिर हमारा श्रोता मित्रों भी, जो भी श्रोता हमारा सुन रहे हैं इस समय रेडियो कार्यक्रम में, आदिवासी गीत तो जो आदिवासी लोग को मालूम होता है, लेकिन हम कितने भी ट्राई करें तुम्हारा हो नाम और गाँव रो नाम बस बाप रो आयरो इतना छोटा छोटा हम सीखे, लेकिन सब चीज़ तो हमको आता नहीं। लेकिन मैं चाहूँगा हमारा सीमा जो मैम है, आशा है, हमारा आशा को पूर्ण करने के लिए एक गीत, जो गीत गाए जितने भी गीत गाए किस संदर्भ में किस ऊपर में आप गीत गाए, चाहे शादी में हो, चाहे विदाई का हो, चाहे त्यौहार का हो, तो किस किस ऊपर में आप गीत गाए उसका ऊपर में थोड़ा बता ना कि एक गीत का जो भावार्थ क्या है।
1: शादी के भी गीत गाए हैं।
0: अच्छा ठीक है, और
1: स्कूल के बारे में,
0: पढ़ाई का ऊपर, शिक्षा के ऊपर, और मैंने शादी का
2: ले जाते हैं तो वो भी गीत गाए, ममेरा ले जाता क्या क्या लेके आए ममेरा माँ।
0: अच्छा, क्या क्या लेकर आए, क्या लेकर आए, क्या क्या देना है, वो लेना तो बहुत सब तो आजकल लेने के लिए चाहते हैं, लेकिन देना के ही नहीं चाहते। जब देंगे तो दाता बनेंगे, दात्री बनेंगे, देवता बनेंगे, लेना होगा तो चोरी जैसे, भाई भिखारी कौन लेते, भिखारी लोग लेते ना भाई, हम भिखारी क्यों बनेंगे, हमेशा देने का कोशिश करें। जैसे आंगनबाड़ी देते रहता है, देते रहता है, देते रहता है, पंजीरी मुरमुरा सब चीज़ देते हैं, लेकिन हमें सीखना है हमेशा देने के लिए कोशिश करेंगे, लेने के लिए कोशिश नहीं करेंगे। हम दाता बनेंगे और सभी राजा है, आत्मा सभी राजा है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय सीमा और बॉबी मैडम का साथ साथ जो भी साथी सब आज इतना सुंदर में प्रस्तुति किए, सही में तारीफ का काबिल है, एक इशारा से सबको बुला दिए तो बहुत बहुत धन्यवाद अपने के लिए, ताली बजा सभी। अच्छा सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन।

होंगे हम तो विघ्न हार जाएंगे, विघ्न हार जाएंगे। शिक्षा बनेगी बल, स्वस्थ होगा कल, सहयोग की ईंटों से सफलता।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, की केन हो, और सभी को एक एनर्जेटिक गुड इवनिंग। दोस्तों, आज है नया वीक, मंडे। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट केवल, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा शो खुशी के नगमे, दिल की बातें। हाँ जी, कुछ लोग मंडे को देखकर थोड़ा सा मंडे ब्लूज महसूस करते हैं, लेकिन हमारे रेडियो मधुबन के परिवार के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। सोमवार तो एक नया मौका है अपनी मंजिलों की तरफ एक और कदम बढ़ाने का, एक नई मुस्कान के साथ जिंदगी को गले लगाने का। तो बस अपने दिल के दरवाजे खोले लीजिए, क्योंकि अगले कुछ घंटे हम बांटने वाले हैं ढेर सारी खुशियां और करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ आपके दिल की बात। दोस्तों, आज जब सुबह सुबह मैं खिड़की के बाहर से देख रहा था अरावली की उन खूबसूरत पहाड़ियों को, तो प्रकृति हमें एक हर सुबह एक नया संदेश देती है कि हर नया दिन, हर नया हफ्ता एक नई शुरुआत है। किसी ने क्या खूब कहा है कि बीत गया सो बात गई, अब आगे की तकदीर सजानी है। अगर पिछला हफ्ता थोड़ा थका देने वाला था तो कोई बात नहीं, आज मंडे है, एक नया ब्लैंक पेज जिस पर आप अपनी खुशियों की नई ही कहानी लिख सकते हैं। आज अपने आसपास के लोगों को एक छोटी सी मुस्कान देकर यकीन मानिए उनका भी दिन बन जाएगा और आपका भी, है ना। वैसे आज सोमवार के इस खास मौके पर आपके दिल में क्या चल रहा है, आप अपना हफ्ता कैसे शुरू कर रहे हैं, हमें ज़रूर बताइए। चलिए, आपको ले चलते हैं संगीत के उस दौर में जहां हर लफ्ज दिल को छू ले जाता है। चलिए सुनते हैं ये लाजवाब सा नगमा सिर्फ रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

शिवराज सिंह चौहान हमारा देश और प्रदेश और दुनिया प्रगति और विकास की दौड़ में आगे बढ़ते जाए लेकिन मानवीय गुणों के साथ। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।

जा। दोस्तों जब बात दिल की बातों की हो तो भला थोड़ा बहुत प्यार, थोड़ी सी टकरार और प्यारी सी नोकझोंक के बिना वो बातें पूरी कैसे हो सकती है। कहते हैं ना कि जहाँ थोड़ा सा हक हो और बहुत सारा प्यार होता है वहीं थोड़ी सी नाराज़गी भी होती है। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म में जब हेमा मालिनी जी और ये जो गाना है हेमा मालिनी और देवानंद साहब पे फिल्माया गया है, तो जब हेमा मालिनी जी और देवानंद साहब इस पे हेमा मालिनी जी कह रही है कि देर से आई, दूर से आई, मजबूरी थी, फिर भी मैंने वादा तो निभाया, यानी कि शिकायत का मौका नहीं दे रही। लेकिन जब दूसरी तरफ देवानंद साहब को भी पता है कि ये क्या है, तो वो भी कहाँ कम रहने वाले थे, वो तुरंत अपनी चिर परिचित शरारती अंदाज में कहते हैं, समझ गया मैं, वही पुराना तेरा बहाना, देर से आना और ये कहना कि वादा तो निभाया। आजकल के इस डिजिटल दौर में जहाँ लोग मैसेजेस और कॉल्स का इंतज़ार करते हैं, वहीं गोल्डन एरा का यह इंतज़ार और यह खूबसूरत सा नोकझोंक सीधे दिल को छू लेती है। कसम से इस गाने में देवानंद साहब का वो बेफिक्र अंदाज और हेमा मालिनी जी का वो खूबसूरत अंदाज आज भी स्क्रीन पर जादू बिखेर देती है। कल्याण जी आनंद जी का संगीत और आनंद बख्शी साहब के लिखे ये बोल सदाबहार है। तो अगर आज आपका कोई अपना आपसे थोड़ा सा खफा है या फिर आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, तो ये खूबसूरत नगमा आप उनको सुना दीजिए। चलिए दोस्तों, वक्त है आज के दिन की पहली का। जी हाँ, आज की जो पहली है गोल्डन एरा के बहुत ही मशहूर डायलॉग के ऊपर है। मैं डायलॉग बोलूँगा लेकिन ट्विस्ट यह है कि उस डायलॉग को मैंने थोड़ा सा बदल दिया है, उसमें एक मंडे और रेडियो का तड़का लगा दिया है। यानी कि आज सोमवार है और सोमवार का और रेडियो का थोड़ा सा तड़का लगा है, मतलब थोड़ा सा उसको चेंज किया है, आगे के कुछ शब्द डायलॉग के कुछ शब्द पीछे के चेंज किए। आपको पहचानना है कि असली डायलॉग क्या था और वो किस फिल्म का है, यानी कि पूरा डायलॉग आपको बोलना है और किस फिल्म का है ये आपको हमें बताना है। तो डायलॉग सुनाता हूँ, गौर से सुनिए। आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है, है? तो दूसरी तरफ से मेरा आवाज़ है, मेरे पास मेरे शाम की इस शो में रेडियो मधुबन की ट्यूनिंग है। तो आप लोगों ने ये जो डायलॉग अभी सुना, आपको बताना है पूरा डायलॉग और इस फिल्म की, कौन सी फिल्म का ये डायलॉग है। वैसे बात तो सच है, जिसके पास ये सुरीली ट्यूनिंग है उसके पास सब कुछ है, पर आपको मुझे ये बताना है कि ये ब्लॉकबस्टर फिल्म का डायलॉग है, किस ब्लॉकबस्टर फिल्म का डायलॉग है और असली डायलॉग क्या था। चलिए जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए 9414151415 पे, यानी कि 9414151415 पे। चलिए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। आज सोमवार की शाम को थोड़ी सी मस्ती, थोड़े से पारंपरिक संगीत और ढेर सारे रंगों के साथ सुनते हैं शमशाद बेगम जी की आवाज़ में ये सदाबहार और जोशीला गीत।

0: हेलो,
1: नमस्कार जी। नमस्कार
0: नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: बहुत ही बढ़िया हूँ। गर्मी के मौसम के अंदर तो ऐसे ही होते हैं, ढीले ढीले।
0: अच्छा, तो अभी गर्मी ने आपको हल्का सा ढीला कर दिया है।
1: क्या करें, गर्मी मौसम भी ऐसा है।
0: हाँ, सही बात है, गर्मी के मौसम।
1: गाना है सर
0: जी,
1: राम राम राम तेरी गंगा मेरी।
0: हाँ हाँ,
1: राम तेरी गंगा मेली, पापियों का पाप हुई मेली।
0: क्या बात है, राम तेरी गंगा।
1: ये गाना हो जाएगा तो सभी के दिल के अंदर भी खुशियां आएगी और अपना मेल भी अंदर से निकल जाएगा।
0: बिल्कुल, जरूर से कोशिश।
1: गंगा नहा लेंगे अपन भी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, गंगा नहा लेंगे और राम तेरी गंगा मेली में हम सबके पाप भी धुल जाएंगे, है ना?
1: पाप धुलने के लिए ये गाना सुनना है हमारे को।
0: बिल्कुल, चलिए कोशिश करते हैं, आपका ये गाना आपके लिए प्ले कर देते हैं।
1: ठीक है, धन्यवाद सर, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार आपको भी सभी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे हमारे भूरीलाल जी, और आज इन्होंने क्या ही प्यारा गाना हमें फरमाइश में दिया है, राम तेरी गंगा मैली का। चलिए कोशिश करते हैं इनके लिए आज ये गाना प्ले करें। लेकिन बात तो सच है कि जिस गंगा की हम बात करते थे, जिसने सभी के पाप धोए, और आज उसे ही हमने मैला कर दिया है ना। चलिए दोस्तों, बात करेंगे उस गाने के बारे में अगले सेगमेंट में, लेकिन उससे पहले जब हम बात कर रहे थे इस गाने के बारे में, अभी अभी हमने जो गाना सुना है ना, कुछ दो बातें कहूँगा। गमों को भूलकर जिंदगी में नए नए रंग घोलते हैं, गमों को भूलकर जिंदगी में नए रंग घोलते हैं। चलो आज फिर से खुश

की जुबा बोलते हैं, जब बसती है कन्हाई की वो जादुई बांसुरी, जब बसती है कन्हाई की वो जादुई बांसुरी, तो तिरकते हैं पैर और दिल, होली आई रे बोलती है। दोस्तों जिंदगी में चाहे कितने भी भाग दौड़ हो, कोई भी दिन हो, कैसा भी दिन हो, पर जब संगीत का जादू बिखरता है ना, तो मन का आंगन अपने आप खिल उठता है। सच में जब कन्हाई की बांसुरी बजती है तो ये चंचल मन मोर बनकर नाचने लगता है। नौशद साहब का वो बेमिसाल संगीत, शकील बदायूनी साहब के लिखे ये रसीले बोल, और पर्दे पर सुनील दत्त साहब और नरगिस जी का वो कमाल का भी नहीं, इस गाने को भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ दी है। यह सिर्फ एक नगमा नहीं बल्कि जिंदगी को भरपूर तरीके से जीने और हर पल में रंग ढूंढने का नाम है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। अगला जो गाना है बहुत ही प्यारा है, क्योंकि जब जिंदगी लोगों को गले लगाती है ना, तो हर कोई यही चाहता है कि जिंदगी हमें गले लगा ले। चलिए ये एक बहुत ही बेहतरीन फरमाइश आई है हमारे खास दोस्त की तरफ से, सुनते ही ये अगला नगमा, ए जिंदगी गले लगा ले।

0: ओए रुकत, रुक।
1: हाँ कहिए।
0: अजी कहना सुनना, आपकी शादी में कर लेंगे, फिलहाल तो ये बताइए कि आपकी बेल्ट कहाँ है?
1: है तो ये देखिए।
0: ओए कमर की नहीं, मैं सीट बेल्ट की बात कर रहा हूँ। हवलदार कड़क से मजाक मत करो, बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ, और उससे ज्यादा महंगा पड़ेगा ये बिना सीट बेल्ट की गाड़ी का चलान। ओए जल्दी ऊपर जाने का बहुत शौक है, हैं? ओए छोटू फाइन काटो इनका, 1200 रुपए सीट बेल्ट नहीं पहनने का और 2400 रुपए हवलदार कड़क से मजाक करने का। और ये है मेरी सड़क, मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए, इससे आप बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: वेलकम बैक दोस्तों, अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मदन लाल जी, हमें कॉल किया है। मदन लाल जी कैसे हैं आप?
1: मैं बढ़िया हूँ सर, बस चल रहा हूँ टूनी सड़कों पे, और टूनी सड़कें तो नहीं है, सब चल रहे हैं अभी तो।
0: जी बिल्कुल,
1: मैं भी चल रहा हूँ और बीच में से हवा आ रही है ठंडी।
0: क्या बात
1: और
0: है,
1: बस चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना तो मैंने रेडियो को याद किया।
0: क्या बात है,
1: चलो आज जल्दी निकले हैं तो बराबर फोन लगा ही देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: फिर उसके बाद में हमारे दोस्त भी लगाएंगे और बराबर सबका हिसाब हो जाए।
0: जी,
1: इसलिए मैंने चलो लगा ही देते हैं। आपको नमस्कार करते हैं और खुशी के नगमे और दिल की बातों को, और हम सभी शो को दिल से नमस्कार करते हैं। एक एक आवाज, एक एक हमारे शो में जो भी बहन है, भाई है, सब बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं और वाचा कहते हैं कि आप सुन रहे रेडियो मधुबन और सुनते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।
0: बिल्कुल,
1: हम मुस्कुराते रहते हैं और बस, और भी बहुत सारी बातें हैं।
0: जी,
1: हमने कल प्रसिद्ध जी को सुना था
0: जी,
1: और उनकी पुत्री भी बोल रही थी कि हमारे जो पिताजी थे सभी संगीत कलाकार और सभी उनके पास आते थे, मगर वो उनके ढंग से ही काम करते थे।
0: अच्छा,
1: और चलना फिरना बिल्कुल सैंपल, और कहीं बुला दिया कि भाई यहाँ है आपको आना है, नहीं वो किसी ऑफिस में जाना या ज्यादा बैठना, अपने समय अनुसार ही चलते थे। और उनके बाद बड़े बड़े नेता जी भी आते थे और उनके बारे में भी वो कहते थे कि आपकी ये गलती है या कुछ भी है, तो वो भी समझते थे, वो भी मतलब एतबार नहीं लगा रहे थे। तो उनकी बात हमने सुनी थी और उनकी पुत्री कहती थी कि लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी आते थे और मैं छोटी थी और उनके पांव में पड़ते थे। तो ऐसी हस्तियों को हम सलाम करते हैं और ऐसी बहुत सी है और उनके गाने भी बहुत है। तो सुबह तो गाया था एक गाना और भी अच्छे गाने हैं
0: जी, बिल्कुल,
1: सभी माता का है, सभी माता सभी गाने हैं
0: जी।
1: टूट गई है माला, बिछड़ गए मोती, दूसरों के दुखड़े दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे भगवान।
0: क्या बात
1: तो
0: है।
1: तो अभी एक गाना गा रहा हूँ, एक जरा याद आ गया है
0: जी।
1: आने वाला पल जाने वाला है, मुझे तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है, एक बार यूं मिली मासूम सी कली,

खत्म वही है, गुंडा तो नहीं है, पर ये भी जाने वाला है। ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, जाने वाला है, उसके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पर ये जाने वाला है। इस बार वक्त से लम्बा

0: सफीरी नहीं, थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रुला के कभी ये भी जाने वाला है।
1: बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया मदन लाल जी। क्या है कि समय के मांग को देखते हुए मैं आपसे पूरा गाना नहीं सुन पाऊंगा, लेकिन आप चाहे तो मैं आपके लिए गाना प्ले कर सकता हूं। तो सॉरी आपको बीच में रोका मैंने, बिकॉज समय भी है, हमें और भी गाने सुनने, और भी लोग हमारे पास वेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मदन लाल जी। जी थैंक यू, ओम शांति। थैंक यू सो मच मदन लाल जी कॉल करने के लिए, आपका दिन शुभ रहे। तो ये थे हमारे मदन लाल जी, बहुत ही दिल से हम सभी को ये गाना सुनाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि इनका ये जो भी गाना हमारे लिए प्ले करते हैं हम वो प्ले करें, और ज़रूर से प्ले भी करेंगे। और बात करते हैं इस गाने के बारे में जो अभी अभी हमने सुना, ए जिंदगी गले लगा जे, इसके जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे यानी कि संगीतकार थे इलाया राजा। यह गाना मूल रूप से, चलिए फिर से एक बार हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो,
2: हाँ जी सर नमस्ते, सुरेश भाई बोलता हूँ, जैसा नाम है, कैसे हो सर?
1: नमस्कार सुरेश भाई, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ,
2: बस अच्छे हैं। मैं आधा घंटा लेट रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर था इसलिए।
1: कोई बात नहीं लेकिन आप आए हमें अच्छा लगा।
2: अभी अभी मदन लाल जी की बात हो रही थी, गाने गा रहे थे, आने जी वाला पल जाने वाला है, वो तो सही है, जाने वाला है।
1: जब तक ये पुराना नहीं जाएगा तब तक नया बिल प्ले करे,
2: समय मिले तब कर देना आपको।
1: बिल्कुल
2: कोई बात नहीं, क्योंकि 3 दिन तो हम आपके साथ ही है
1: जी।
2: तो मैं सुना दूं आपको गाना की वो
1: हाँ, बीच में कभी कुछ बात हो जाती तो वो दिमाग से निकल जाता है, सही बात है।
2: कश्मीर है गाना है, इसके आगे लाइन क्या है?
1: ये कश्मीर है।
2: लाइन आगे मैं भूल गया हूँ। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, वो गाना है सर।
1: बिल्कुल, चलिए कोशिश करते हैं आपका ये गाना हम आज प्ले करें, और हमारे पास नहीं होगा तो हम जरूर से इसे कल प्ले करेंगे। जी थैंक यू सुरेश जी। और आज की पहली, पता नहीं आपने सुनी कि नहीं सुनी। हेलो, कोई बात नहीं, शायद फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन हम फिर से दोहरा देते, सुरेश भाई अगर हमको सुन रहे हैं तो आज हमने एक पहली पूछी थी, यानी कि एक डायलॉग था जो कि ट्विस्टेड डायलॉग था। सुरेश भाई फिर से एक बार सुन ले ताकि उन्हें भी रहे कि हाँ ये डायलॉग था, और डायलॉग किया था कि आज मेरे पास सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट हमने डाला था कि वो ट्विस्ट क्या है वो आपको बताना है।

0: ट्विस्ट ये था कि मेरे पास मंडे है, रेडियो की ट्यून है, तो इसके बीच का जो असली डायलॉग था वो क्या है वो आपको बताना है, और कौन सी मूवी से है ये बताना है। आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? जो ट्विस्टेड है, जो आपको बताना है कि इसका पूरा फिल्म का पूरा डायलॉग क्या था, मेरे पास शाम के इस शो में रेडियो मधुबन की ट्यूनिंग है। तो इस गाने, इस डायलॉग को पूरा कंप्लीट करना है, आपको बताना है, फिर से कॉल कर सकते हैं 1419414151415 पे। जी हाँ दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे इस गाने के बारे में, ए जिंदगी गले लगा जा, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर इलिया राजा है। ये गाना मूल रूप से उन्हें तमिल फिल्म मुंडरम पिर्राई कुछ नाम से, ये मूवी है के गाने, मतलब ये जो गाना था कन्ने कल्ले मने, यानी कि जब उन्होंने तमिल में इसको गाया था, के लिए कंपोज किया था, जिसके लिए केजे युसदास ने गाया था। हिंदी में भी उन्हें इस धुन को जादुई बना दिया। इसके गीतकार गुलजार, उन्होंने ज़िंदगी को एक ऐसे दोस्त या महबूब की तरह पेश किया जिसे हम रूठते भी हैं और गले भी लगाना चाहते हैं। फिर से शायद हमारे सुरेश जी का कॉल है, चलिए सुनते हैं उनसे। हेलो,
1: हेलो जी सर, नमस्कार। सुरेश जी बोलता
0: हूँ। जी सुरेश जी नमस्कार
1: जी, आपने जो डायलॉग बताया सर, तो मैं बताऊँ तो वो है, फिल्म का नाम तो दीवार है
0: जी,
1: इसमें हमारा अमिताभ बच्चन जी और सबसे कपूर जी लड़ रहे हैं कि मेरे पास सब कुछ है, बैंक है, बैंक बैलेंस है, मोटर है, गाड़ी है, बंगला है
0: जी,
1: तो
0: तुम्हारे पास क्या है?
1: हाँ तुम्हारे पास क्या है, तो बोलता है कि मेरे पास माँ है।
0: बिल्कुल, मेरे पास माँ है,
1: माँ है।
0: तो यही सही डायलॉग है कि मेरे पास माँ है, और फिल्म भी सही आपने गेस की है कि दीवार मूवी का ये गाना है। इसमें जो किरदार थे, दोनों किरदारों के नाम भी बता दे तो हमारे श्रोता जो सुन रहे उन्हें भी फिर से एक बार याद आ जाए।
1: हाँ नाम तो है ना, वो शशि कपूर है, अमिताभ बच्चन है, हमारे दोनों
0: जी बिल्कुल, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर साहब के ऊपर ये फिल्म आई दीवार मूवी, बहुत ही ब्लॉकबस्टर मूवी थी उस समय की। थैंक यू, नमस्कार सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए और सही जवाब देने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। इस गाने के जो संगीतकार थे सुरेश वाडकर, उन्होंने उनकी जो आवाज़ दी है बिल्कुल ठहरी हुई सी। दोस्तों जिंदगी कभी धूप देती है तो कभी छाँव, कभी हंसना सिखाती है तो कभी पलकों पर आंसू छोड़ जाती है, लेकिन चाहे जैसा भी हो, जैसी भी हो, हमारी अपनी ज़िंदगी है। इस जिंदगी को एक शिकवा, एक लाड़ और एक बहुत ही खूबसूरत एहसास के साथ गले लगाना है। जब गुलजार साहब की कलम चलती है तो वो सीधे रूह में उतर जाती है। इस गाने में उन्होंने ज़िंदगी से इतनी मासूमियत से बात की है, ए जिंदगी, जो भी अपने भी गाना सुना, हमें भी तेरी तरह हर एक बात को माथे से यार लगाई है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले नगमे की ओर। तो अगला नगमा जो है हमारे सुरेश जी की तरफ से हमारे भूरीलाल जी की तरफ से आया था कि राम तेरी गंगा मैली के बारे में। चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा, फिर करते हैं और ढेर सारी बातें।

0: बाल संसार सुनिए हर शनिवार दोपहर 12:30 पर। कल्पना कीजिए एक ऐसा कार्यक्रम जहां बच्चे शिक्षक और माता पिता एक साथ जुड़कर सीखें और खेलें। जी हां, हम बात कर रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम बाल संसार की। तो फिर इंतजार किस बात का, हर शनिवार दोपहर 12।
1: दोस्तों, हम उस देश के वासी हैं जहां नदियों को सिर्फ पानी का स्रोत नहीं बल्कि माँ का दर्जा दिया गया है। एक ऐसी ही पावन नदी जो सदियों से हमारे पाप को धोती आ रही है, यह माँ गंगे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि सबके दुख हरने वाली गंगा के दिल पर क्या गुजरती होगी? साल 1985 में आई राज कपूर जी की फिल्म राम तेरी गंगा मैली का एक ऐसा गाना इस दर्द को बयां करता है, जहां रविंद्र जैन जी की लिखे बोल और लता मंगेशकर जी की आवाज इसे और भी बेहद ही खूबसूरत बना देती है। गूंजते हैं तो रूप कांप उठती है। गौर कीजिए कि इस गाने की शुरुआती बोल पर जो हमें संस्कृति और आज के दौर के बदलाव पर एक गहरा कटकश सुनाती है। कहते हैं बोल में कि सुनो तो गंगा ये क्या सुना है कि मेरे तट पर जो लोग आए जिन्होंने ऐसे नियम बनाए कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते। कितनी गहरी बात कही है गंगा, रो रो कर कह रही है कि वही धरती है जहां रघुकुल की रीत थी कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। लोग अपने वचन के लिए जान तक दांव पर लगा देते थे, लेकिन आज वही गंगा उन्हीं के वंशजों के बदले हुए रूप को देखकर रो रही है। आज इंसान के होठों पर सच्चाई नहीं, दिल साफ नहीं, हम गंगे की ही दुआई तो देते हैं पर अपने ही कचरे और पापों से उसे मैला कर देते हैं। दोस्तों, बातें तो बहुत सी है इस गाने के लोग कहने के लिए, लेकिन वक्त को हो चला है अगले नगमे की ओर बढ़ने के लिए। और हम सभी जानते हैं कि आज के समय पर इतना पाप जब हम दुनिया में देखते हैं बढ़ते हुए, तो उसे कैसे साफ कर सकते हैं? क्या कोई पानी से अपने पापों को धो सकते हैं? ये सोचने की बड़ी सी बात है, लेकिन चलिए इसी बात को सुनते हुए कि जो पल है आने वाले और वो जो जाने वाले, उसको आज सुनते हैं। हमारे मदन लाल जी जो इस गाने को सुन रहे थे या हमें सुना रहे थे, सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा आने वाला पल।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं। ठीक है, चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस, कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, दिस आर बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: वेलकम बैक दोस्तों, बहुत ही प्यारा नगमा अभी हमने सुना, आने वाला पल जो जाने वाला है। यहाँ दिलसो बिल्कुल से ये जो भी पल है ये हमें सिखाता है कि जिंदगी को कैसे जीना है, क्योंकि अभी ये जो पल है एक ना एक दिन जाना है और अगला नया पल जो है वो आने वाला है। तो आज का ये जो पल है उसे हम क्यों मिस करें दुखी हो करके, रो करके? तो बिल्कुल से अपनी ज़िंदगी को हम जी सकते हैं खुशियों के साथ, है ना। क्योंकि जब भी कभी हम किसी को भी देखते हैं तो खुश होते हैं तो हम भी खुश होते हैं, दुखी होते हैं तो दुख होते हैं, तो उसे भी हमें खुशियाँ बांटनी, खुद भी हमें खुश रहना है। फिल्म थी गोलमाल का ये गाना, म्यूजिक डायरेक्टर थे आरडी मर्मन साहब, इसे लिखा था गुलजार जी ने और संगीत में जो पिरोया था किशोर कुमार जी ने, यानी कि इसे जो गाया था किशोर कुमार जी ने इसे गाया था। और गोलमाल मूवी की जो खास गाना तक सभी के दिलों में उस वक्त बहुत ही खास दिलों में उतरा हुआ यह गाना था। तो दोस्तों वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, हम आप सभी को करते हैं गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे इसी समय ठीक 8 बजे। आप तब तक सुनते रहिए रेडियो मधुबन, बिकॉज जो अगला कार्यक्रम है वो है सेहत स्वास्थ्य, अपने स्वास्थ्य के बारे में सुनिए श्रीनिधि की तरफ से, आज श्रीनिधि जी की तरफ से। तो अगला ये जो गाना हम सुनेंगे अभी रेडियो पे वो अभी हमारे सुरेश जी की तरफ से है, सुरेश जी ने इसे बहुत ही प्यार से हमें ये जो कश्मीर के बारे में बताया, इस गाने के बारे में है। तो चलिए थैंक यू सो मच आप सभी का, आप हमें सुन रहे थे, चलिए गुड नाइट, शब खैर, सायोनारा।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ गार्डन, जीवन एक बहुत सुंदर बगीचा है। पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? एंजॉय द फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर्स। फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस मींस खुशबू, करेक्ट। अगर हमें जीवन को सचमुच एंजॉय करना है तो एक काम कर सकते हैं, गो वेरी क्लोज टू नेचर, प्रकृति के नजदीक आइए। प्रकृति के जितने नजदीक होते हैं तो उतना फील कर सकते हैं कि हमारा जीवन कितना वंडरफुल है और उसको आप एंजॉय कर सकते हो। तो आप ऐसा डिसाइड करना कि साल में एटलीस्ट 10-15 दिन आप अपने बिजी लाइफ को निकाल कर गो वेरी क्लोज टू नेचर, गो टू वेरी क्लोज टू माउंटेन्स, गो टू रिवर्स, है ना, नेचुरल फ्लोरा और फौना की तरफ जाइए। लिसन टू द चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स, जहाँ बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं है, और वहां जाकर अकेले में आप बैठिए एंड स्लोली इंट्रोस्पेक्ट, और वहां के साइलेंस को आप अनुभव करेंगे। बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, यू विल रियली एंजॉय इट, करेक्ट। अच्छा, नेचर का दो अर्थ होता है, एक होता है नेचर का अर्थ प्रकृति, उसी तरह दूसरा होता है नेचर मींस नेचर ऑफ पीपल। हमें यह समझना है कि जीवन एक बहुत सुंदर बगीचा है जिसमें अलग अलग प्रकार के लोग हैं जो अलग अलग फ्लावर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। गुलदस्ता की भी रौनक कब होती है? जब उसमें अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं। उसी तरह इस जीवन रूपी यात्रा में आपको अलग अलग प्रकार के लोग मिलेंगे जिनके अलग अलग नेचर होते हैं। कैन यू एक्सेप्ट देयर नेचर? और अगर आप उनको एंजॉय कर सकते हो, बिलीव मी, लाइफ वुड बिकम रियली वंडरफुल, रियली ग्रेट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम और ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री। दोस्तों, स्वास्थ्य को सहज बनाए रखने के लिए मनुष्य क्या सही अर्थों में प्रयास कर रहा है? हम में से बहुत सारे लोग, 100 में से लगभग 99 लोगों की अगर बात की जाए तो हम सब अपने भागती दौड़ती जिंदगी के पीछे लगे हुए हैं। हमारी नौकरी, हमारा बिजनेस, हमारा स्कूल, कॉलेज, जो भी चीजें हम कर रहे हैं, घर की महिलाएं अपने घर के काम के पीछे लगी पड़ी। क्या हम तनिक भी, एक दो मिनट भी रुक कर ये सोचते हैं कि क्या मैं अपने शरीर को ठीक रखने के लिए कुछ कर रहा हूं, स्वस्थ रहने के लिए कुछ कर रहा हूं? तो उत्तर हमेशा नकारात्मक भी मिलता है। कोशिश यही है कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जब तक जागरूक नहीं बनते, उसको स्वस्थ रखने के लिए कुछ नहीं करते, तो फिर वो स्वास्थ्य भी हमसे दूर होता चला जाता है। आज एक बहुत ही ऐसी ही अनूठी बात मैंने पढ़ी। एक जगह एक ईश्वरीय महावाक्य लिखा हुआ था जिसमें यह लिखा गया था कि फल खाओ, ताजी चीजें खाओ, जो चीज जैसी मिलती है, प्रकृति ने उसे जैसे बनाया है उसी रूप में उसे खाओ, उसे तल कर, भून कर, पका कर मत खाओ। अगर प्राकृतिक रूप में उसे खाएंगे तो आपका तंदुरुस्त रहेगा, मन दुरुस्त रहेगा, कोई भी प्रकार की व्याधि नहीं आएगी, खुशी मिलेगी। अब इस महावाक्य को पढ़ने पर मुझे लगा कि ये 1983 में कही गई एक बात है और इस बात पर कभी ध्यान से चिंतन ही नहीं किया गया हो तो फिर शायद इसके फायदे भी नहीं लिए जा सकते। आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं कि हमारा आहार कैसा होना चाहिए जो हमें तंदुरुस्त बना सके, मन दुरुस्त बना सके। आज हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी। डॉक्टर राहुल मोदी जी पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं। खिलाड़ियों के साथ उन्होंने उनके स्वास्थ्य को ठीक रखने में बड़ा योगदान किया है। साथ साथ भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं, भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जहाँ पर वो प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर साहब, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: सर्वप्रथम डॉक्टर साहब, ये बात समझी जाए कि आहार जो है वो एक व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। लोग तो कहते हैं, आजकल लोग अपने हेल्थ को ठीक रखने के लिए एक्सरसाइज की बात करते हैं, लोग अपने हेल्थ को ठीक रखने के लिए ये कहते हैं कि आपको पोल्यूशन वाली जगहों पर नहीं रहना चाहिए, पोल्यूशन फ्री स्पेसेस में रहने की कोशिश करनी चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइजेस के साथ लोग ये भी कहते हैं कि भाई आप अपने शरीर को ठीक रखने के लिए बहुत सारी थेरेपीज और बहुत सारे अलग अलग आयाम हैं, उन सारी चीजों पर भी फोकस करते हैं, तो आहार भी उनमें से एक आयाम गिना जाता है। आप आहार को किस तरीके से देखते हैं?
1: हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में तीन चीजों का सबसे बड़ा योगदान है हमारा शरीर, नंबर एक। दो, हम जो भोजन कर रहे हैं और या जो आहार हम ले रहे हैं, और तीन, उस भोजन को हम कैसे खर्च कर रहे हैं। अगर ये तीनों चीज में बैलेंस रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। इसको अगर सिंपल तरीके से समझा जाए, सोचिए कि हम और आप रेलवे स्टेशन पे चल रहे हैं और हमारे पास 5 किलो की एक अटैची है जो हमारे सर पे है, और दूसरा व्यक्ति है जिसके पास एक 50 किलो की अटैची उसके सर पे है। तो जिसके पास 5 किलो की अटैची है वो ज्यादा लंबा चल पाएगा, जिसके पास 50 किलो की अटैची है वो कम दूर तक चल पाएगा। तो इसको अगर हम अब कन्वर्ट करें कि जो ठीक ठाक भोजन, कम भोजन और बैलेंस भोजन करेगा वो ज्यादा लंबा जी पाएगा, ज्यादा लंबा स्वस्थ रह पाएगा, ज्यादा लंबा अच्छे से रह पाएगा, और जो बहुत अच्छा खाएगा, बहुत ज्यादा खाएगा, हर जगह से खाएगा, हर तरह की चीज खाएगा, वो कम दूरी तक चल पाएगा और जल्दी थक जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं और कब खा रहे हैं। ये तीनों चीज अगर हम ठीक से रखें तो हम लंबे समय तक रह पाएंगे। अभी कुछ किताबों में मैंने यहां तक पढ़ा कि अगर आपका भोजन ठीक रहा तो जो आपको जेनेटिक बीमारियां हो रही हैं या जो बीमारियां आपके परिवार में चलती आ रही हैं उसको भी आप ठीक कर सकते हैं। और भोजन का सबसे बड़ा रोल क्रॉनिक डिजीजेस में है या नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में है। और अगर इन बीमारियों से आपको बच के रहना है तो आपको अपने भोजन को संयमित रखना पड़ेगा।
0: संयमित भोजन की जब बात की जाती है तो संयमित भोजन के साथ साथ एक शब्द और जो सुनने को मिलता है, संयमित से ज्यादा जो आजकल सुनाई देता है या पढ़ने को लिखने को देखने को मिलता है, स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है, वो है संतुलित भोजन यानी बैलेंस डाइट। संयम की जब बात कही जाती है तो लोग कहते हैं कि भाई अगर कोई अच्छी चीज बनी है तो संयम का टूटना तो बनता ही है। लोग कह देते हैं कि भाई जलेबी बन रही है, आप कैसे कह सकते हैं कि संयम में खाया जाए, गुलाब जामुन पे कैसे रुका जाए, ये बात पूछते हैं लोग।
1: भैया जलेबी और गुलाब जामुन दोनों राजा हैं, आप पूरा भोजन कर लेंगे तब भी वो अपनी जगह बना लेंगे और तब भी वो आपके शरीर में चले जाएंगे, पर इसके बारे में 15 दिन महीने में एक बार उस संयम को तोड़ना चाहिए। हम रोज ही अगर अपना संयम तोड़ लेंगे और रोज ही जलेबी और गुलाब जामुन के पीछे भागेंगे तो हमारा शरीर बहुत कष्ट झेलेगा और हमारे शरीर को बहुत नुकसान होगा।
0: अब हम उसके दूसरे आयाम पे आते हैं, समझ में आता है कि संयम बहुत आवश्यक है दोस्तों। यानी आहार में आपको पसंद की चीजें बहुत कुछ हो सकती हैं, मगर संयमित रूप से आहार करना कि भाई जो चीज पसंद है उसको बहुत अधिक मात्रा में खाना नहीं है। कभी कभार आपको पसंद वाली चीज आप थोड़ा ज्यादा खा लें तो समझ में आता है, मगर हर दिन के लिए जीवन में आहार से संबंधित संयम भी स्थापित करना आवश्यक है। आहार से संबंधित भोजन ग्रहण करने में भी एक संयम क्या है, इस चीज को समझना जरूरी है। डॉक्टर साहब, हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संतुलित आहार की बातें करते हैं, बैलेंस डाइट की बात करते हैं। लोग कहते हैं कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, प्रोटीन्स होना चाहिए, आपको दाल खाने की जरूरत है, आपको चावल भी खाना है, रोटी भी खाना है, सब्जियां भी खानी है, फिर आवश्यक मिनरल्स और विटामिन्स चाहिए, इत्यादि इत्यादि अनेक चीजें बताई जाती हैं, फैट्स भी चाहिए, ये भी बताया जाता है। तो आप इस संतुलित आहार को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, प्रकृति चिकित्सा इस चीज को कैसे देखती है?
1: गुड हेल्थ इज आवर मोस्ट वैल्यूएबल कमोडिटी। फीलिंग फिट एंड वेल बोथ फिजिकली एंड मेंटली इज अ नेचुरल एंड इंस्टिंक्टिव पार्ट ऑफ आवर लाइफ। However, we rarely appreciate the true value of good health until we become ill. ये बात हमेशा भाई आप बोलते हैं कि हमको तब तक स्वास्थ्य के बारे में नहीं मालूम चलता है जब तक हम बीमार नहीं पड़ते। In other words, most of us take our health for granted. हम अपने स्वास्थ्य को granted ले लिए, इसीलिए हम उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो बैलेंस डाइट, जैसे हमने आपने बताया, संयम आहार और संतुलित आहार दोनों बहुत जरूरी है। संतुलित आहार में अगर ये देखा जाए तो हम इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन, फाइबर्स, इन सब को लेकर हम अपना जो संतुलित भोजन है वो बनाते हैं और ये सारी चीजें हमारे लिए जरूरी हैं। संतुलित भोजन जरूरी इसलिए है क्योंकि हमारा शरीर 24 घंटे रिपेयर और रिन्यूएबल में चलता रहता है कि वो हमेशा 24 घंटे रिपेयर हो रहा है, 24 घंटे जो हमारी कोशिकाएं हैं उनकी मृत्यु हो रही है, 24 घंटे नई कोशिकाएं बन रही हैं। इसको एक बड़ा सुंदर उदाहरण में समझिए, आपको हल्का सा हाथ कटता है, आप खुद देखते हैं कि वहां खून निकला, थोड़ी देर में खून बंद हो गया, 2-3 दिन में वहां पर आपको एक मार्क दिखाई देता है और 3-4 दिन बाद वो मार्क पूरी तरह गायब हो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: आप इमेजिन करिए कि आपके शरीर में जितनी बार आपको चोट लगी है उतने सारे मार्क अगर आपके शरीर पे दिखें तो हम लोग कितने बदसूरत दिखेंगे, चेहरे पे, हाथ पे, पैर पे, पीठ पे, और हम सबको आए दिन लगते रहते हैं। तो क्यों संतुलित भोजन चाहिए? क्योंकि वो हमारे शरीर को 24 घंटा जो रिपेयर का प्रोसेस है उसके लिए, 24 घंटे जो हमें शक्ति चाहिए काम करने के लिए। आपको लगता है आप सो रहे हैं तो आपको शक्ति नहीं चाहिए? जब आप सो रहे हैं तब भी आपका हृदय काम कर रहा है, तब भी आपके फेफड़े काम कर रहे हैं, तब भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका पाचन तंत्र काम कर रहा है, तब भी आपका यूरिन सिस्टम, किडनी जो है वो खून को साफ कर रहा है। तो हम चल रहे हैं तो हमारी मांसपेशियों को ताकत चाहिए, तो 24 घंटे हमें ताकत चाहिए और वो ताकत हमें भोजन से मिलेगी। भोजन का जो तीन सबसे इंपॉर्टेंट जो या थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड है वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में पैसे की तरह, जैसे हमें रोजमर्रा में काम करने के लिए पैसा चाहिए, वैसे ही हमारे शरीर को 24 घंटे काम करने के लिए कार्बोहाइड्रेट का जो मोस्ट कॉमन कंपोनेंट है ग्लूकोज चाहिए। और जो हमारे रक्त कोशिकाओं में, हमारे मांसपेशी में और हमारे लिवर में इसको हम स्टोर करके रखते हैं, तो ये हमारा रिकरिंग खर्चा है जो 24 घंटे हमारे शरीर को चलाता रहता है। और हम कुछ भी खाएं, मतलब हम प्रोटीन खा लें, हम फैट खा लें, ये कार्बोहाइड्रेट में ही कन्वर्ट होगा या उसी में बदला जाएगा। ये वो मुद्रा है, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज ही वो मुद्रा है जिसे हमारा शरीर पहचानता है। और यही हमारे शरीर में जब जलता है या जब इसका कंबस्शन होता है तो हमारे शरीर में एनर्जी मिलती है और हीट मिलती है, मतलब हमें ताकत मिलती है और गर्मी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट

0: कुछ भी चीज जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो हम वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं, शरीर कार्बोहाइड्रेट लेता है या ग्लूकोज लेता है, उस ग्लूकोज को जलाता है, एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड हम अपने नासिका के द्वारा वातावरण में छोड़ देते हैं।
1: ये बात समझ में आती है कि कार्बोहाइड्रेट एक बहुत ही आवश्यक सी चीज है। भले हम प्रोटीन भी खा रहे हैं, फैट भी खा रहे हैं, मगर जो मुद्रा है, जो शरीर को ताकत देने वाली चीज है, वो कार्बोहाइड्रेट है। हम अलग स्वरूपों में उन चीजों को खाएंगे तो भी शरीर उसे ग्लूकोज के रूप में ही बदल कर फिर उसको इस्तेमाल में लाता है, वही चीज हमको ताकत देने वाली चीज है। अब इस कार्बोहाइड्रेट को सही तरीके से समझा जाए, क्योंकि लोग कार्बोहाइड्रेट की जब बात की जाती है तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है, क्या चीजों को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, किन चीजों से ये हमारे भोजन में आता है, शरीर को मिलता है, क्या खाने से मिलता है।
0: कार्बोहाइड्रेट को अगर हम लोकल टर्म में एकदम बेसिक भाषा में बोले तो ये शुगर है, ये चीनी है। इसको केमिस्ट्री के उसमें इसको मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड में कन्वर्ट किया जाता है। और मोनोसेक्राइड सबसे बेसिक है, जो हमको हमारे सीरियल्स में मिलता है हमको, और जैसे और मोनोसेक्राइड के सबसे कॉमन एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज है। ग्लूकोज शुगर, फ्रक्टोज मतलब फ्रूट शुगर, और गैलेक्टोज तीसरा। डाइसेक्राइड में सुक्रोज आता है, लैक्टोज आता है और माल्टोज आता है। लैक्टोज मतलब मिल्क शुगर, माल्टोज मतलब माल्ट शुगर, और सुक्रोज मतलब केन शुगर। और लास्ट में भैया पॉलीसेक्राइड आता है, जिसमें सबसे कॉमन हम जिसमें हम सेल्युलोज को लेते हैं। ये चीनी का ही एक भाग है, मगर ये डाइजेस्ट हमारे शरीर में नहीं होता है, और ये फाइबर का पार्ट है जो हमें फल से, सब्जियों से मिलता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्लूकोज है। सबसे ज्यादा ग्लूकोज हमको जो है वो अनाजों में मिलता है, और जिसमें गेहूं और चावल है, बहुत सारे फलों में मिलता है, केला, सेब, संतरा, आम, पपीता, और हमें सब्जियों में मिलता है, जिसमें सबसे नंबर वन जो वेजिटेबल का नाम लिया जाता है वो है आलू, पटेटो, पटेटो स्वीट पटेटो, और जिसमें स्टार्च है जो सब्जी है उसमें मिलता है। हमारे शरीर के लिए ये तीनों चीज जरूरी है। बहुत से लोग बोलते हैं अरे चीनी मत खाओ, चीनी मत खाओ, अरे ग्लूकोज मत लो, ग्लूकोज वाले भोजन मत लो। हमारा शरीर सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज को समझता है, और वो किसी और चीज को नहीं समझता है। आप कुछ और चीज उसमें डालेंगे तो वो अपनी ताकत, शरीर अपनी अंदरूनी ताकत लगाकर उसको ग्लूकोज में ही कन्वर्ट करेगा।
1: डॉक्टर साहब, ये बात समझ में आती है कि शरीर ग्लूकोज की भाषा ही समझता है, यानी शरीर के लिए ग्लूकोज आवश्यक है, वही शरीर को बल देने वाला, शक्ति देने वाला जो अणु है वो चीज समझ में आती है। अन्न का जो पदार्थ हम देख रहे हैं, भले हम किसी भी अनाज से ले रहे हो, या जैसे आपने कहा कार्बोहाइड्रेट्स तो अनाजों में होता है, सब्जियों में, आलू में होता है, ये चीनी है, ये जो शर्करा की मात्रा है, ये चीज हम समझते हैं। अभी तक तो बहुत सारे लोगों के मन में यही चीज होती है कि शर्करा कहते ही हम उसे चीनी, वास्तविक रूप से जो शुगर केन होता है, जो गन्ना है, उससे जो चीनी मिलती है, उस चीज को हम समझते हैं। मगर ये बात समझ में आ रही है कि अनाजों के अंदर से ये चीनी मिल रही है, जो शरीर के लिए जो चीनी है, जो शक्ति देने वाला ये ग्लूकोज है, वो कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। अब जैसे ही चीनी की बात कही जाती है तो अक्सर लोग डायबिटीज से संबंधित एक बीमारियां जो बहुत ही भारत में बढ़ चुकी हैं, लोग कहते हैं कि भारत तो दुनिया का डायबिटीज कैपिटल बन चुका है, तो अब लगभग हर व्यक्ति ग्लूकोज के मामले में जागरूक है, हर व्यक्ति चीनी के प्रति सजग है। लोग अक्सर ये शब्द कहते हैं कि भाई इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स देखो पहले। ये शब्द प्रचलन में सुनने को मिलता है, ये ग्लाइसीमिक इंडेक्स क्या है, क्या हर चीज का ये होता है, क्या चीज हम खा रहे हैं उसमें हर एक का ग्लाइसीमिक इंडेक्स पता होना चाहिए, ये इन चीजों को समझा जाए।
0: भारत डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन गया है, और इसका सबसे बड़ा

0: कारण है हमारी 140 करोड़ की जनसंख्या, और हम जैसे ही बोलते हैं कि हमारा 10% जनसंख्या को डायबिटीज है तो पता चलता है कि वो नंबर 14 करोड़ हो गया। और मैं और आप जानते हैं कि यूरोप में 14 करोड़ में तो 3-4 कंट्रियों की पॉपुलेशन एक साथ आ जाएगी, तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमारे यहाँ उसका नंबर भी ज्यादा है बीमारी का। और ये हमारे देश की अच्छाई है, हमारे स्वास्थ्य कर्मियों की अच्छाई है कि वो हर केस को रिपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए हमको ये नंबर बहुत ज्यादा मिलता है। अब भैया आपने ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में बात किया, तो कॉमन भाषा में ये समझा जाए कि हम कोई भी चीज खाते हैं और हमारे शरीर में, हमारे रक्त में वो चीनी कितनी देर तक एकाएक बढ़ जाती है, उसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स मान लीजिए। इसमें साइंटिफिकली ये बोला जाता है कि ग्लूकोज रिस्पॉन्स कर्व कितना है, कि हमारे शरीर में शुगर कितनी बढ़ी और फिर कितनी देर में कम हुई 2 घंटे के अंदर, इसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स मानते हैं, या हमारे शरीर में कितनी जल्दी वो चीज एब्जॉर्ब हो गई। और जितनी जल्दी जो चीज एब्जॉर्ब होगी उतनी जल्दी वो ब्लड में पहुंचेगी, तो इसको एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोला गया। ग्लाइसेमिक इंडेक्स से हम नॉर्मली अपने सारे भोजन पदार्थों को इससे डिवाइड करते हैं, जैसे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स या हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड। हम सबको वेरी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, जिसमें सफेद चीनी, कॉर्नफ्लेक्स, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ब्रेड, टॉफी, ये सब वेरी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीजें हैं, तो हमको ये अवॉइड करना चाहिए। मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स में भैया चावल आता है, सुक्रोज आता है, आपकी पोटैटो आता है, और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में भैया सारी फ्रूट, वेजिटेबल्स, आपकी होल ग्रेन्स, बीन्स, लेंटिल्स, ये सब आते हैं। तो हमको ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे भोजन में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीजें कम हो या न हो, और हमारे भोजन में मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स या लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मतलब फल, सब्जी, चावल, दाल, ये सब चीजें ज्यादा हो। आप अगर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीजें खाएंगे तो आपके शरीर में बहुत जल्दी शुगर एब्जॉर्ब होगा, और टेक्निकली ये सारी चीजें चीनी से बनी हुई हैं, या भोजन जिसमें चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा है। कोल्ड ड्रिंक में चीनी ज्यादा क्यों डाली जाती है, या चाय में चीनी ज्यादा क्यों डाली जाती है, क्योंकि ठंडक से ब्लड का सर्कुलेशन कम होता है, तो जब एक ठंडी चीज और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है जो उसमें बबल का टेस्ट देती है, वो आप जैसे ही अपनी जीवा पे डालते हैं तो वो थोड़ी सी सुन्न होने लगती है, उसका टेस्ट नहीं आता है। तो एक ठंडी चीज और ऊपर से उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई, तो उस टेस्ट को आपकी जीवा पे मीठा लगाने के लिए आप वो बहुत ज्यादा चीनी डालनी पड़ती है उसमें। यही चीज आइसक्रीम के साथ है, एक तो ठंडी, दूसरा जीवा पे पड़ के वो सन्न कर देगी सारी नर्व्स को, तो मीठा कैसे लगेगा, तो इसीलिए उसमें चीनी ज्यादा डाल दी जाती है। बहुत गर्म भोजन में भी चीनी, जैसे आपने भैया एग्जांपल दिया जलेबी, वो गर्म निकलती है, जीवा पे पड़ती ऐसे आवाज हम निकालते हैं, अरे, तो उतनी देर में आपकी जीवा पे उसका स्वाद कैसे आएगा जब तक वो चीज ज्यादा नहीं डाली जाएगी। तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में टेक्निकली सारी मीठी चीजें हैं, और वो चीजें हैं जो नेचुरली मीठे नहीं है, मतलब जिसको हमने मीठा बनाया। कॉर्नफ्लेक्स, आप अगर कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं तो उसके ऊपर तक शुगर की कोटिंग है। मैं सबको एक राय देता हूं कि आप जो भी भोजन करिए एक बार पलट के उसको देख लीजिए कि उसमें एडेड शुगर कितना है, अगर उसकी मात्रा ज्यादा है तो प्लीज उस भोजन को अवॉइड करिए।
1: ये बात बहुत ही आंखें खोलने वाली हैं, क्योंकि आज तक हम तो ये सोच कर चल रहे थे कि भाई हाँ ये तो अच्छी चीजें हैं, इसको तो खा लेना चाहिए और ये रेडी टू ईट चीजें हैं और ये बाजार में मिल रही हैं, बस बोतल खोला, कोका कोला पी लिया या पेप्सी पी लिया, किसी भी प्रकार के सॉफ्ट ड्रिंक को पी लिया, ऐसी ही अनेकों चीजें जो बाजार में मिल रही हैं वो रेडी टू ईट हैं, उनको देख के लगता है कि ये इंस्टेंट एनर्जी दे रही हमको और इससे खा लेने की जरूरत है, मगर वास्तविकता में ये शरीर के लिए कितने हानिकारक हैं। और हमें जो आपने 3 ग्लाइसीमिक इंडेक्स बताए कि भाई वो चीजें जिसमें ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है, जो आपके रक्त के अंदर शर्करा को तुरंत खींच लेती हैं, उन चीजों से बचने की जरूरत है। मध्यम ग्लाइसीमिक इंडेक्स और एकदम कम ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाली चीजों का हमें उपयोग में लाना है, उन चीजों को खाने की आवश्यकता है। और भी प्रश्न है मगर समय कहता है कि यहाँ रुकना होगा। और जैसे ही आपने कॉर्नफ्लेक्स की बात की, मैं एक अपने कॉलेज की बात याद करता हूँ कि उस समय पर, क्योंकि कॉलेज जाने की जल्दी होती थी और सुबह कौन नाश्ते की तैयारी करे और लड़के आपस में मिलके रह रहे हैं तो ये सब कुछ करना मुश्किल लगता था, तो हम कॉर्नफ्लेक्स डालते थे एक बोल में और सीधे दूध मिला देते थे, खाते और सीधे भाग जाते थे। बट आज इस बात की समझ आती है कि ये कितनी अनहेल्दी सी चीजें हैं कि हम अज्ञानवश बिना देखे, बिना लेबल पढ़े, बिना इन चीजों की जानकारी रखे, स्वस्थ समझकर इन चीजों को खा लेते हैं। और भी इन चीजों पर बातचीत करेंगे दोस्तों। मैं समझता हूँ आज आपको भी बहुत सारी चीजों के ऊपर जो हमने खुद पर्दा डाल रखा था, अपनी आंखें मूंद रखी थी, उस पर नई जानकारियां मिली हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और आज के लिए सबसे बेहतरीन चीज जो आप सभी कर सकते हैं वो यही है कि आपके भोजन की मात्रा को संतुलित और संयमित करना सीखें। कोई चीज आपको अच्छी लगती है इसे ज्यादा मात्रा में ना खाएं, संतुलित आहार पर ध्यान दें। अगर चीनी सीधी मात्रा में अगर आप खा रहे हैं तो उन चीजों से बचें, फलों को खाना शुरू करें, सब्जियों को खाएं और अनाज जो घर में है, जो रोटी चावल बनता है, उस पर ध्यान दें। और ज्यादा मात्राओं में फलों और सब्जियों से अगर आप शुरुआत करते हैं तो ये बेहतर होगा। और भी कुछ विषयों पर चर्चा लेकर अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। आज इन सभी विषयों पर डॉक्टर राहुल मोदी जी ने जानकारी दी। आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से डॉक्टर साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज आप हमारे साथ जुड़े।
0: धन्यवाद। ओम शांति।
1: दोस्तों आज की बातचीत में बस इतना ही। कल फिर सहज स्वास्थ्य में मुलाकात होगी। अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए हम सब एक नए मुहिम पर हैं। अगर हम ये छोटी छोटी कोशिशें करेंगे तो सिर्फ हम अपने आप को स्वस्थ नहीं रखेंगे, हम अपने आने वाली पीढ़ियों और अपने भारत को और पूरे विश्व को एक स्वस्थ विश्व बना सकते हैं। आज की बातचीत में जो चीजें सीखी हैं वो सब आप आजमा कर देखेंगे, ऐसी शुभ आशाएं हैं। कल फिर मिलेंगे। रेडियो मधुबन पर कार्यक्रम जारी रहेंगे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM।
2: ये तंबाकू क्या होता है?
3: अरे तिकु नहीं पता क्या? इसमें पता है लोग धुएं में अपनी फिक्र उड़ा देते। अरे गाना नहीं सुना क्या तूने?
4: हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
2: अच्छा तो फिर मेरे नंबर कम आए तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ?
3: अरे कोई भी कर सकता है, तंबाकू तो बड़ा ही कूल होता है।
5: ऐसी बातें बचपन में होती हैं, युवावस्था में या और बड़े होने के बाद भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंबाकू या धूम्रपान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है? बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि के सेवन से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। धूम्रपान करने से धमनियां कमजोर होने लगती हैं और कोरोनरी हार्ट डिजीज या स्ट्रोक भी हो सकता है। सलाह लीजिए डॉक्टर की और हिम्मत बढ़ाइए अपनों की। रेडियो मधुबन द्वारा जानकारी जनहित में जारी।
6: हेलो बच्चों, 9:30 बज गए और आ गए हैं परी और मनी दीदी सपनों की सैर कार्यक्रम को लेकर के।
7: हाँ बच्चों, तो चलो चलो आपका फेवरेट प्रोग्राम शुरू होने वाला है। और पता है बच्चों, अभी हम आपके ही सवाल ला रहे हैं आपकी ही प्यारी प्यारी आवाजों में।
6: बच्चों प्रकाश ने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, तो सुनते हैं प्रकाश की आवाज में।
8: दीदी मुझे पढ़ाई बहुत

0: अच्छा, अरे प्यारे बच्चे, ये तो समस्या बहुत बच्चों को होती है। इसका पता है हल क्या है? इसका हल है पढ़ाई को खेल समझो। हर दिन थोड़ा थोड़ा दोहराओ और घर जाकर पहले मन पसंद विषय से शुरू करो
1: और 10 मिनट पढ़ो, फिर 5 मिनट आराम करो। रात को सोने से पहले एक बार रिवाइज कर लो। माँ को अपने डर बताओ, वो तुम्हारा साथ देगी। डांट नहीं, प्यार से बात करो, हल खुद आ जाएगा।
0: हाँ बच्चों, तो देखा परी ने कितना अच्छा जवाब दिया। तो ऐसे आपको अपनी बातें अपनी मम्मी से शेयर करनी है।
1: तो देखा, अब मम्मी भी नहीं डांटेगी और पढ़ाई भी खेल में मजा आ जाएगा।
0: तो ऐसे ही बच्चों, आपकी अगर कोई सवाल है तो आप अपने आवाज में रिकॉर्ड करके हमें भेजिए 9414141415 पर।
1: तो चलो बच्चों, आज तो ये हल मिल ही गया। अब दोबारा दूसरा कोई सवाल होगा तो हमें उसका जवाब हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब तो सुनेंगे ये प्यारा सा गाना।
0: सुनते रहो, मुस्कुराते रहो,
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM पर,
0: सपनों की सैर को।

0: नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं, याद रखिएगा।
1: आ जाओ बच्चों जल्दी से रेडियो के पास, गाना पूरा हो गया, अब बारी कहानी की शुरू हो गई है। बच्चों आज चूहा और बैल की कहानी सुनेंगे। बच्चों एक नन्हा सा चूहा था, वो अपने बिल से बाहर आया। उसने देखा एक बड़ा बैल पेड़ की छाया में सोया हुआ है। बैल जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। चूहा बैल की नाक के पास गया और मजा लेने के लिए उसने उसकी नाक में काट दिया। बैल तो हड़बड़ा कर जाग गया। दर्द के मारे वो जोर से डकारा। इससे घबराकर चूहा तो सरपट भागा। बैल ने पूरी ताकत से उसका पीछा किया। चूहा दौड़कर झटपट दीवार के छेद में घुस गया। अब वो बैल की पहुंच से बाहर था। बच्चों सोचो अब आगे क्या हुआ, बेचारा चूहा अभी तो बच गया। बच्चों बैल ने चूहे को सजा देने की तो ठान ली थी। उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, अबे चूहे, मैं तुझे एक ताकतवर बैल को काटने का मजा चखाऊंगा। बैल ताकतवर था। उसने अपने सिर से दीवार पर जोर से धक्का मारा। बच्चों दीवार तो बहुत मजबूत थी, उस पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि बैल के सिर में ही चोट लग गई। ये देखकर चूहे ने बैल को चिढ़ाते हुए कहा, अरे बिना मतलब अपना सिर क्यों फोड़ रहे हो? तुम कितने ही बलवान क्यों ना हो, तुम्हारे मन की तो हो नहीं सकती ना। बच्चों बैल तो अब चूहे को बिना दंड दिए छोड़ देने को तैयार ही नहीं था। चूहे जैसे एक तुच्छ प्राणी ने उसका अपमान किया था, इस समय वो बहुत क्रोध में था। बच्चों फिर क्या हुआ सोचो। धीरे धीरे उसका जोश कम हुआ, उसे चूहे की बात सही मालूम पड़ी, इसलिए बच्चों वो चुपचाप वहां से चला गया। चूहे के ये शब्द अब भी उसके कान में गूंज रहे थे कि तुम कितने भी बलवान क्यों ना हो, पर हमेशा तुम्हारे ही मन की नहीं हो सकती। तो देखा बच्चों, ये कहानी हमें क्या सीख देती है? बुद्धि शक्ति से बड़ी होती है ना बच्चों? बुद्धि बल काम करता है, कभी कभी बाहुबल भी काम नहीं आता। हमें बुद्धि से काम लेना होता है, तब हमारी विजय होती है। तो चलो बच्चों, अब क्या करना है? सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सपनों की।

0: नमस्ते, मैं हूँ हमसिका अय्यर और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो और मुस्कुराते रहो।
1: लो बच्चों, आ जाओ जल्दी से, तेनाली रामा की किताब पढ़ने का समय हो गया है और मनी दीदी आ गई है लेकर किताब तेनाली रामा की। तो बच्चों, पिछली कड़ी में हमने जो कहानी शुरू की थी उसका शीर्षक था स्वर्ण पिंड। तो चलो आगे पढ़ना मैं शुरू करती हूँ। महामंत्री के घर पोत्रा जन्मा तो उन्होंने सभी को आमंत्रित किया, सभी सभासदों को। और फिर उसी बीच तेनाली राम पहुंचे और तेनाली राम जब पालने पे झुककर बच्चे को देखने लगा तो पालने में सोया शिशु थोड़ा जागा, फिर अपने हाथ पैर उछाले। और फिर तेनाली राम ने महामंत्री से कहा, ये बालक तेजस्वी है और आगे चलकर यह अपनी तेजस्विता से नए कीर्तिमान स्थापित करेगा, इसकी कीर्ति की गूंज दूर दूर तक फैलेगी। फिर महामंत्री ने एक प्यार भरी दृष्टि उस शिशु पर डाली और फिर महाराज एवं सभासदों को विदा करने के लिए उनके साथ द्वार तक आए। महाराज और सभासद जब राजभवन की ओर चलने लगे तभी एक सभासद ने व्यंगात्मक स्वर में महाराज से कहा, देखा महाराज, तेनाली राम किस तरह महामंत्री को प्रभावित कर रहा था। आप ही सोचे महाराज की भला एक नवजात को देखकर यह कैसे कहा जा सकता है कि वह भविष्य में क्या करेगा। तेनाली राम ने तो महामंत्री जी के पोत्रा को ऐसा तेजस्वी बता दिया जिसकी कीर्ति की गूंज दूर दूर तक सुनी जाएगी। महाराज के कान तो खड़े हो गए उस सभासद की बात को सुनकर। महाराज भी सोचने लगे कि जरूर तेनाली राम ने महामंत्री को खुश करने के लिए ये बात कही है, तो क्या तेनाली राम महामंत्री के साथ साठ गांठ कर किसी कारनामे को अंजाम देने के चक्कर में है। क्या तेनाली राम कुछ ऐसा कर सकता है जिससे विजयनगर की सत्ता पर आ जाए। तो ऐसे ऐसे महाराज के मन में तरह तरह की आशंकाएं पैदा होने लगी। अब बच्चों आगे क्या होगा वो तो मैं आपको अगली कड़ी में बताऊंगी पढ़कर। चलो तब तक सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सपनों की सैर को।

0: नमस्ते, मैं हूँ किरण शूद्र की सांगली और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: बच्चों चलो चलो, हम आ गए हैं इस गाने के बाद और अब बारी है पहेली की। याद है ना, पिछली पहेली में परी ने पूछा था, बिना पैरों के चलता है, फुफकार कर सबको डराता है।
2: हाँ बच्चों, और इसका जवाब तो परी, हमारे बच्चे इतने ज्यादा अब स्मार्ट हो गए हैं कि कल से ही इसके जवाब आने शुरू हो गए। और सही जवाब है सांप। तो बच्चों अभी किस किस का नाम ले, आपने तो सभी ने सही सही जवाब भेजा है।
1: बिल्कुल मनी दीदी, बच्चों तो सही जवाब है सांप। और आज बच्चों नोट कर लो फिर से टंग ट्विस्टर। नानी ने नल से नींबू निचोड़ा, नींबू निचोड़ कर नींबू पानी पिया।
2: क्या क्या क्या, नानी ने नल से नींबू निचोड़ा और नींबू निचोड़ के नींबू पानी पिया, यही है ना?
1: हाँ मनी दीदी।
2: अच्छा, तो नानी ने अकेले अकेले नींबू निचोड़ के पानी पी लिया, मुझे भी पीना है।
1: तो मनी दीदी कार्यक्रम के बाद पी लेंगे।
2: ओके, तो चलो भाई बच्चों अपनी मीठी मीठी आवाज में फटाफट ये टंग ट्विस्टर फास्ट फास्ट बोल के 2-3 बार बोल के रिकॉर्ड करके भेजो।
1: हाँ, और नंबर तो आपको याद ही होगा, 94-14-15-14-15 पर हमको वॉइस नोट या मैसेज करके भेज दो।
2: तो बच्चों हमें आपके जवाब का आपकी सुरीली आवाज में सुनने का बहुत बहुत इंतजार रहेगा बच्चों।
1: बिल्कुल मनी दीदी, तो चलो अब करते हैं भगवान जी को गुड नाइट।
2: स्लीप टाइट, गुड नाइट।
1: सुनते रहो,
2: मुस्कुराते रहो,
1: रेडियो मधुबन
2: 107.8।

रेड लाइट होने पर हमेशा अपनी गाड़ी रोक लेना चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: रुको। हाँ जी, थोड़ा अपना प्यारा सा मुखला दिखाना शीशे के बाहर झांक के। हैं
1: जी, कहिए। अरे ये क्या कर रहे हो?
0: ओ मेरे भाई, और जिस चीज का कोई फायदा नहीं उसको रखने का फायदा क्या? तो तेरे पास चश्मा होते हुए तेरे को रेड लाइट नहीं दिखती, तो फायदा की?
1: पर रोड तो खाली थी, कोई था ही नहीं।
0: ये क्या बात हुई भाई? हैं? इसका मतलब तो ये है कि दुकान पर अगर मालिक नहीं होगा तो तुम बिना पूछे उसका सामान उठाओगे? बॉस नहीं होगा ऑफिस में तो तुम उसकी कुर्सी पे सो जाओगे? और रोड पे कोई हो न हो, सड़क के नियम कायदे कानून कभी नहीं टूटेंगे। और वैसे भी ये तो है मेरी सड़क, और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: रेड लाइट होने पर हमें अपनी गाड़ी रोक लेनी चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा न करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा अचानक के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणेशा। लाख कोशिश कर लो मृत्यु को कभी टाल नहीं सकते। कैसे जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, तरोई खाने से क्या फायदा मिलता है, इसके क्या क्या बेनिफिट है जरूर जानेंगे आप, और खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। तो आज मैं आपको रेसिपी में कुछ हटके सिखाने वाली हूँ, परंतु क्या वो आप आशियाना सुनिए जान जाएंगे। जी हाँ, आज का प्रश्न बड़ा ही सुंदर रहेगा, तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: पीछे पीछे पीछे चल भाई, स्टॉप लाइन के आगे कहाँ जा रहा है? लाल बत्ती दिखाई नहीं देती।
1: पर हवलदार साहब, जरा जल्दी निकलने के मूड में हूँ।
0: वो तो ठीक है, पर दूसरी तरफ हरी बत्ती है और उन लोगों का रुकने का मूड नहीं है। तो जब भी लाल बत्ती हो तेरी तरफ तो बोलो पहले आप।
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: गुड मॉर्निंग आशियाना में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार है, लाख कोशिश कर लो मृत्यु को कभी टाल नहीं सकते। कैसे? तो आइए आज के विचार का विस्तार एक दृष्टांत के साथ करना चाहूँगी। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु जी और योग माया गरुड़ जी पर बैठ कर कैलाश पर्वत पर गए। गरुड़ जी को द्वार पर छोड़कर श्री हरि विष्णु जी और योग माया शिव से मिलने अंदर चले गए। तब कैलाश की प्राकृतिक शोभा को देखकर गरुड़ जी बड़े ही मंत्रमुग्ध हो रहे थे कि तभी उनकी नज़र एक छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया इतनी सुंदर थी कि गरुड़ जी के सारे विचार उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। उसी समय कैलाश पर यमदेव पधारे और अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटे से पक्षी को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। गरुड़ जी समझ गए उस चिड़िया का अंत निकट है और यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। गरुड़ जी को दया आ गई, इतनी छोटी और सुंदर चिड़िया को मरता हुआ नहीं देख सकते थे। गरुड़ जी ने उसे अपने पंजों में दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर एक जंगल में एक चट्टान के ऊपर छोड़ दिया और स्वयं वापिस कैलाश पर आ गए। कुछ समय पश्चात जब यम बाहर आए तो गरुड़ जी ने पूछ ही लिया कि आपने उस चिड़िया को इतनी आश्चर्य भरी नजर से क्यों देखा था? यमदेव बोले, गरुड़ जी, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वो चिड़िया कुछ ही पल बाद यहाँ से हजारों कोस दूर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी। मैं सोच रहा था कि वो इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगी, पर अब जब वो यहाँ नहीं है तो निश्चित ही वो मर चुकी होगी। गरुड़ जी समझ गए, मृत्यु टाले नहीं टलती, चाहे कितनी भी चतुराई की जाए। इसलिए मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे पार्थ, करता तू वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूँ। कर तू वह जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहेगा। इसलिए कहा जाता है, मृत्यु को कभी भी टाले नहीं टाल सकते, चाहे लाख जतन कर लो। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार और आइए फिर से सुन लेते हैं एक बहुत ही सुंदर गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में अब आपको घरेलू उपाय बताने वाली हूँ। तरोई हमारे स्वास्थ्य के लिए किस तरह फायदा करती है, कौन सी बीमारियां ठीक करती है वो जानेंगे। तो देखिए, मधुर, स्निग्ध, पित्त शामक, कफ वात वर्धक, मृदु रेचक, कृमि नाशक, मूत्रल, ज्वर, रक्तपित और कुष्ठादि विकारों में पथ्यकर और उपयोगी है तरोई। उष्ण प्रकृति वालों को और पित्त जन्य व्याधियों में तथा श्वास, सुजाक, अर्श, रक्त मूत्र आदि में इसका साग विशेष पथ्यकर और हितकर है। मेरे प्यारे श्रोता बंधु, तो इसकी साग बना करके जरूर खाइएगा तरोई की। देखिए, तरोई के बीज पीस करके गरम करके तिल्ली के सूजन पर लेप करिए, इससे वह कम हो जाती है। तिल्ली अगर बढ़ जाती है तो तरोई के बीज पीसिए, गरम करके तिल्ली की सूजन पर लेप करिए, इससे वह कम हो जाती है। अगर अर्श है तो तरोई के ताज़ा पत्ते पीसकर लगाइएगा। अर्श है तो तरोई के ताज़ा पत्ते पीसकर लगाने से अर्श ठीक हो जाता है। पथरी की समस्या है तो तरोई की जड़ ठंडे पानी में पीस करके छानिए, सुबह ही सुबह 3-4 दिनों तक पी लीजिए इसका पानी, तो पथरी गल करके निकल जाएगी। पथरी की समस्या है तो तरोई की जड़ ठंडे पानी में पीस करके छानिए, प्रातःकाल आप सुबह ही सुबह 3-4 दिनों तक रोज पीजिएगा, इससे पथरी गल करके निकल जाएगी। आंखों में पुंसिया है, मतलब आंखों के ऊपर, नेत्र के ऊपर पुंसिया हो जाती है, कभी कभी बच्चों के नेत्रों पर पुंसिया हो जाती है, इसमें तरोई के पत्तों के रस

दो तीन बूंदे डालिए, ये फुंसिया ठीक हो जाएगी। ठीक है, कभी कभी क्या होता है बच्चों के आंखों पर फुंसिया हो जाती है, तो इसमें तुरई के पत्तों के रस के दो तीन बूंदे डालिए, इससे ये समस्या ठीक हो जाएगी। तरोई के सेवन से पेशाब की जलन दूर होती है और पेशाब खुल करके आता है। ठीक है, तरोई का सेवन से, तरोई खाने से पेशाब में जलन, जो पेशाब की वजह से जलन होती है वह दूर हो जाती है और पेशाब खुल करके आता है। तो देखा, तरोई के सब्जी के फायदे और फिर इसका बीज, इसकी जड़, सब कुछ फायदा करती है, कौन सी बीमारियां ठीक करती है वो आपने जाना है। अब आइए आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, हमारे हाथों की जो पांचों उंगलियां है उसका नाम आपको बताना है। हमारे हाथों की पांचों उंगलियों का नाम बताना है। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। अब यहीं पर फिर से एक अल्पविराम लेकर के पुनः रूबरू होंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में सुरेश भाई जोटाना से जुड़ चुके हैं। नमस्ते सुरेश भाई।
1: हाँ दीदी नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, कैसे हो?
0: हाँ जी वेरी गुड मॉर्निंग, हम बहुत अच्छे हैं, आप सुनाइए।
1: बस हम भी अच्छे हैं। और एक बात बताऊँ तो आज का दिन है तो सभी हमारे रेडियो मधुबन परिवार को, हमारे मित्रों को आपके दिन की मित्रता की शुभकामनाएं। सभी मित्र हमारे अच्छे रहे।
0: क्या है आज?
1: आज मित्रता दिन है, यानी कि मित्र दिन,
0: फ्रेंडशिप डे।
1: हाँ मित्रता तो कोई नाम है, मित्रता तो आज मित्रता दिन है।
0: अच्छा
1: बताए, मुझे तो नहीं पता था, लेकिन हमारे पवन भाई जी बता रहे थे, नई किरण ने।
0: अच्छा
1: हाँ सोमनाथ भाई बता रहे थे कि आज मित्रता दिन है तो सभी मित्रों को नमस्ते। मित्र, ये मित्र या मित्र ऐसा कोई नाम है, कोई मित्रता पर ही आता है।
0: चलिए देखते हैं क्या है आज का विषय है। केवल द्वार पर शुभ लाभ लिखने से कुछ नहीं होगा, शुभ विचार रखिए अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, तो ही लाभ ही लाभ होगा। क्या कहेंगे आप? और आज का प्रश्न भी साथ ही साथ फिर से पूछ रही हूँ। आज का प्रश्न है हमारे हाथों की पांचों उंगलियों का नाम बताना है। तो जी आप विषय को स्पष्ट कर सकते हैं।
1: जब तो मैंने दे दिया, लेकिन हाँ जी सही बात है दीदी। हम मंदिर जाते हैं, देखो चलो मंदिर जाते हैं, मंदिर जाके भगवान से प्रार्थना करते हैं और सब कुछ बोलते हैं, मंदिर में बोलते हैं, लेकिन बाहर हम किसी को ऐसा नहीं बोलते कि भाई कैसे हो, हम अच्छी तरह से रखिए, कैसे आप कैसे आपका हाल चाल कैसा है, सब कुछ अच्छी सोच रखनी है, अच्छा विचार रखना है, ऐसे नहीं करते। लेकिन हम मंदिर में बोलते हैं, लेकिन बाहर भी हमको दीदी ऐसा विचार रखना है सबके साथ, तो ही तो हम ये एक ऐसा भी विषय था, मैं थोड़ा भूल गया जो आपसे पूछा प्रश्न से।
0: जी मैं फिर से दोहरा देती हूँ कि केवल द्वार पर शुभ लाभ लिखने से कुछ नहीं होगा, शुभ विचार रखिए अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी।
1: जी जी बिल्कुल सही बात है। तो देखो दीदी आज सब पहले तो जैसा लिखते थे वही करते थे। देखो पहले सभी करते जो मिट्टी के मकान थे, मैं गांव की बात कर रहा हूँ, छोटे से गांव की, जब हम भी गांव में रहते थे छोटे से पहले, तो वो जो दीवार पर लिखते थे पल्ले बता रहे गुजराती में, या वेलकम जो लिखते थे, लिखते थे लाभ सब लिखते थे और सभी लिखते थे। लेकिन ऐसे जो लिखते थे वैसे ऐसे लोग ऐसे विचारते थे और ऐसे विचार रखते सबको, तो जब कोई आते थे तो आराम से ब्रांच से बुलाते थे, पर में बिठाते थे और चाय पानी पिलाते ही थे। वो चाय बोले मेहमान न होते थे, चाहे गाँव के कोई हो, चाहे अगर पड़ोस के गाँव के हो, रिश्तेदार न हो, फिर भी ऐसे ऐसे लोग इसी तरह से रहते थे। लेकिन आज ऐसे नहीं है, आज लिखते हैं, लेकिन लिखने से ऐसा लिखने से कहीं होता नहीं है। अब नहीं लिखो तो चलेगा, लेकिन ऐसा मन में विचार रखो कि हमारे घर पे कोई आए, हमारे कोई साथ में हो तो अच्छे विचार रखे, अच्छे विचारधारा बोले, इसकी अच्छी तरह से बुलाए और ऐसे ही रहे कि जैसे हम लाभ सब लिखे हैं ऐसे रहे।
0: जी
1: से तो कुछ नहीं होता है, जितने पर लिख लेते हैं, लेकिन ऐसे विचार रखते नहीं है। तो देखो कोई आता है तो मुंह बगाड़ते हैं और बोलते हैं ये जल्दी जाए तो अच्छा है।
0: जी
1: जैसे लोगों का मन ऐसा स्थिति होगा, ऐसा विचार रखते हैं, लेकिन मन में विचार ऐसे नहीं रखते, खाली बोलने की खातर बोलते हैं, लिखने की खातर लिखते हैं, लेकिन ऐसे विचारधारा आज नहीं है। लोगों का विचार बिल्कुल कम हो गया है, विचार लोगों का बदल गया है। पहले के जमाने में तो दीदी कोई आते थे जाते थे तो दो दो तीन दिन घर भी रुकते थे, क्योंकि इतने आदर भाव प्रेम थे, आज नहीं हो।
0: जी
1: तो बस हम तो दीदी ऐसे कहे जैसे नाम सब लिखते हैं द्वार पर, ऐसा विचार हमको रखना है, इसी तरह हमको रहना है, तो ही काम लिखने के बराबर है, वरना लिखना ही नहीं है।
0: जी
1: जी दीदी नमस्ते
0: जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से, आपने विषय को बहुत ही सुंदर स्पष्ट किया है। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अपनी बात को रखते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 94 14 15 14 15 आज का विषय बहुत ही सुंदर है, केवल द्वार पर शुभ लाभ लिखने से कुछ नहीं होगा। शुभ विचार रखिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, लाभ ही लाभ होगा। क्या कहेंगे आप? प्रैक्टिकल विषय है, आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है। हमारे हाथों के जो उंगलियां हैं, पांचों उंगलियों का नाम बताना है, अंगूठे का भी और चारों उंगलियों का भी, सभी का नाम आपको बताना है, क्या नाम है। तो कोशिश करिएगा जुड़ने की, क्या बात है, अभी तो बहुत ही गर्मी है, बाहर तो कहीं गए होंगे नहीं, ठीक है, जॉब पर जाना जरूरी है, काम पर भी जाना जरूरी है, लेकिन समय निकाल करके जुड़ने की कोशिश भी ज़रूर करिएगा। ये रेडियो को भी आप अपने जीवन का एक अंग बना लीजिए, क्योंकि इससे काफ़ी नॉलेज भी बढ़ता है और हमारे भी जो बोलने की कला है वो बढ़ती है। जैसे हमारे श्रोता बंधु कहते रहते हैं ना कि कभी वो नहीं बोल पाते थे, अभी रेडियो मधुबन सुन करके अच्छी तरह बोल लेते हैं, और काफ़ी परिवर्तन देखा भी है आप सभी के अंदर। कि फर्स्ट दिन याद करिए, जब शुरुआत थी उस समय को याद करिए कि हिचकिचाते हुए बोलते थे, और आज आप एकदम बिंदास होकर के बोलते हैं। तो यही तो कला है और यही तो और भी हमारी खिलती जाती है, बढ़ती जाती है जब हम बोलना शुरू करते हैं। तो आप अपनी राय व्यक्त ज़रूर करिएगा, और देखिए बहुत ही सुंदर विषय है। तो अक्सर घरों के बाहर आपने देखा होगा लाभ शुभ लिखे हुए, हर एक घर का बाहर शुभ और लाभ लिखते ही है। और मान लीजिए नॉर्मल दिनों में आपको दिखे नहीं दिखे, लेकिन नवरात्र में, दीपावली के दिनों में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा शुभ लाभ। तो अच्छी बात है, लिखना भी चाहिए, ठीक है, घरों के बाहर शुभ और लाभ लिखना भी चाहिए, लेकिन क्या हम सभी के प्रति शुभ विचार रखते हैं या नहीं रखते हैं? मायने तो ये रखता है ना, भले आप घरों के बाहर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। हम ये नहीं कहते कि आपने लिख रखा है तो आप हटा दो, नहीं, नहीं लिखा हो तो भी लिखिएगा, अच्छी बात है। इसके साथ ही साथ आज से ये ऐड कर लीजिए कि हमें सभी के प्रति शुभ विचार भी रखना है। घर के बाहर शुभ लाभ लिख रखा है, और घर के अंदर ही हर एक इंसान रहता है, और हमारे विचारों में खोट है, हमारे विचारों में मिलावट है, बाहर शुभ लिख रखा है और हम अशुभ सोचते हैं किसी के बारे में, उसका तो ये हो जाए, उसका तो बेड़ा घर को हो जाए, वो हो जाए, तो घर के बाहर जो शुभ लिख रखा है क्या वो सार्थक होगा, बताइए आप। हम तो आपके द्वारा जानना चाहते हैं कि क्या वो सार्थक होगा जो घर के दरवाजे पर हमने लिख रखा है शुभ लाभ, जबकि हमारे मन के विचार मेले है, हमारे मन के विचार गंदे है और अशुभ सोच रहे हैं किसी के प्रति, उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, उसका बिजनेस डाउन हो जाए, उसका दिवाला निकल जाए, उसका टांग टूट जाए, उसका वो, मतलब वगैरह वगैरह, बहुत तरह के नेगेटिव थॉट्स चलते हैं किसी के साथ, विशेष करके नहीं बनती है तब। तो फिर घर के दरवाजे के बाहर शुभ लिखा हुआ सार्थक कैसे हो सकता है, मेरे प्यारे श्रोता बंधु, थोड़ा तो सोचिए। सोचेंगे तो प्रश्न का जवाब अपने आप मिलेगा। खाली दिखाने के लिए तो हमने नहीं लिखा है ना कि लोग पढ़ेंगे शुभ और लाभ, हमने तो अपने लिए लिखा है ना। अच्छा ये बताइए, किसने दूसरों के लिए लिखा है, फोन करके जल्दी से बताइएगा कि दरवाजे पर शुभ और लाभ दूसरों के लिए किसने लिखा है, अपने लिए लिखा है या दूसरों के लिए लिखा है? जिसके भी लिए लिखा है आप फोन करके इतना तो बता ही सकते हैं। अपने लिए लिखा है तो फिर अशुभ क्यों चलाना, किसी के प्रति अशुभ संकल्प क्यों चलाना, अशुभ विचार क्यों रखने हैं? अशुभ रखेंगे तो फिर क्या शुभ हमारा हो पाएगा? अगर हम इतना भी ध्यान सोचे तो भी अपने जवाब मिल जाएगा, तो फिर हम क्यों दूसरों के प्रति अशुभ सोचते हैं, क्यों दूसरों के प्रति अशुभ सोचते हैं? कहते ना हमारी सोच अच्छी होगी तो कर्म भी अच्छा होगा, हमारी सोच अच्छी और सोच अगर खराब है, मिलावट वाली है, सोच में नकारात्मकता है तो शुभ हो ही नहीं सकता। तो पहले तो हम अपना ही अमंगल कर रहे हैं, दूसरों की तो छोड़िए, क्योंकि जैसा सोचते हैं वैसा होता है और जैसा हम करते हैं रिटर्न होता है, हमारे पास लौट के आता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर आएगा। पुण्य का खाता जब घटने लगेगा, कम होने लगेगा, तब इस तरह की बातें जब होगी तो हमारे पास ही लौट करके आएगी। इसलिए हमें सर्व के प्रति भावनाएं रखनी है, सर्व के प्रति शुभ विचार रखना है। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। तो सोच हमारी अच्छी होगी वैसा ही हम बनेंगे। चलिए इस विषय पर और भी हम बात करेंगे, लेकिन आप कोई जुड़ नहीं रहे हैं तो अब हम भी क्या कर सकते हैं, आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या बात है, अपने हाथों की उंगलियों के भी नाम नहीं आता है क्या? और आता है नहीं आता है आप जुड़ करके बताएंगे तो पता चलेगा ना। तो ज़रूर कोशिश करिएगा प्रश्न का जवाब देने की, विषय को स्पष्ट करने की। आइए यहाँ पर एक गीत सुनेंगे, उसके बाद पुनः रूबरू होंगे। तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है। कैसे हम छोटी छोटी बातों से दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं, और कैसे हम अगर इन छोटी बातों को जीवन से निकाल देते हैं तो हमारा जीवन खुशनुमा बन जाता है। जिसमें विषय रखा है खुशनुमा जीवन में, केवल द्वार पर शुभ लाभ लिखने से कुछ नहीं होगा। शुभ विचार रखिए अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, तो लाभ ही लाभ होगा। और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है। हमारे हाथों के पांचों उंगलियों का नाम आपको बताना है, तो आप विषय में भी जुड़ सकते हैं और आज के प्रश्न का जवाब भी दे सकते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और देखिए जो नुस्खे दिए हैं, किसी को बहुत पसंद आए तो जवाब आया, उनका फ़ोन भी आया था ओफेयर में। और कुछ लोग हमारे कन्फ्यूज भी हो रहे थे गुजरात से भाई बहने कि तरोई क्या चीज़ होती है, तो मैं बता देती हूँ आपको, गुजराती में उसको तुरिया कहते हैं। ठीक है, जो ये नुस्खे दिए हैं तुरिया के नुस्खे दिए हैं। तुरिया की साग बनाकर आप खाएंगे, उसके क्या फ़ायदा है, उसके जड़, उसका बीज कौन सी बीमारियों को ठीक करता है, ये घरेलू उपाय दिए। ठीक है, और विषय बहुत ही सुंदर है। हम तो चाहते हैं कि आप जुड़िएगा और अपनी राय व्यक्त करिएगा, बाकी हम तो बैठे ही है, काफ़ी कुछ स्पष्ट किया है। कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, द्वार पर आपको जो चाहे लिखिए, जो इच्छा वो लिखिए। ठीक है, शुभ लिखिए, लाभ लिखिए, लेकिन हमेशा शुभ विचार रखिए। शुभ विचार रखने से अपना भी भला होता है तो दूसरा का भी भला होता है, क्योंकि जब अच्छे संकल्प चलते हैं ना, उससे हमारा मन बड़ा खुश रहता है, और मन बड़ा खुश रहता है तो चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। एक तो आप नेगेटिव थॉट्स चलाकर देखिएगा, आपके चेहरे की उदासी, मतलब जो चेहरे की खुशी है वो गायब हो जाएगी और चेहरा उदास उदास दिखेगा। आप खुद ही गौर करके कभी अपने ऊपर ही आप ये आजमाइए कि नेगेटिव थॉट्स से आपके चेहरे की प्रतिक्रिया क्या होती है और पॉजिटिव थॉट्स से आपके चेहरे की प्रतिक्रिया किस तरह चेंज हो जाती है। आपको जवाब स्वयं ही मिल जाएगा। तो जब हम किसी के प्रति अशुभ विचार रखते हैं, नेगेटिव विचार रखते हैं, तो चेहरा उदास सामने वाला मिलता है तो क्या कहते हैं, अरे जब देखो तब इनका तो मुंह चढ़ा ही रहता है, कभी इनके चेहरे पर स्माइल तो रहती नहीं है, है ना। और उदास चेहरा किसको पसंद आएगा भला, किन्नी काट के वो साइड में से होके निकल जाएगा देखा अनदेखा करके कि अरे भाई जाने दो, इतना चेहरा चढ़ा हुआ है, इतना उदास दिख रहा है, पता नहीं क्या क्या बातें करेगा, इससे अच्छा है अपने आप चुपचाप निकल जाओ वहाँ से, तो बोलेंगे भी नहीं। और यही चेहरे की मुस्कुराहट देखेंगे, अगर पॉजिटिव सोच है हमारी तो चेहरे की मुस्कुराहट दिखाई देगी। तो कितने लोग साइड में से निकलने वाले होते हैं ना, वो भी आपसे मिलकर आपसे बात करके जाते हैं, अरे कैसे हो भाई, क्या है, कैसे क्या कर रहे हो आजकल, है ना, बात करने की कोशिश करेंगे कि इनको देखो जब देखो तब इनका चेहरा खिलखिला रहता है। तो खिलखिला चेहरा सभी को पसंद आता है, बस फर्क इतना ही है, हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम सोच किस तरह की रखते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। शुभ रखेंगे तो चेहरा खुशनुमा दिखाई देगा, अशुभ रखेंगे तो चेहरा उतरा हुआ दिखाई देगा। तो नुकसान सबसे पहले किसका हो रहा है, दूसरा का हो रहा है या अपना हो रहा है। बहुत सीधी और शॉर्ट बात है कि किसी के प्रति अगर हम अशुभ सोचते हैं तो नुकसान सबसे पहले अपना होता है। सामने वाले का तो होना होगा, तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, लेकिन अपना तो हो रहा है ना, कि चेहरा उदास, मन झुलझुलाहट से भरा हुआ। किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प चलाते हैं तो पहले तो मन ही ऐसा हो जाता है और उसकी प्रतिक्रिया पूरी बॉडी पर होती है। तो ऐसे क्यों संकल्प चलाने हैं जिसकी वजह से हम भी दुखी हो रहे हैं और फिर सामने वाले के प्रति सोच सोच करके उसको दुखी करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सामने वाले को पता ही नहीं कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, तो वो तो मस्त है, लेकिन दुखी हम ही हो रहे हैं। चले हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहेंगे। हेलो,
1: हाँ भूरा राम बोल रहे हो बहन जी।
0: भूरा राम जी, राम राम, कैसे हो आप?
1: राम बस आप बैठा हूँ, काल पे बैठा और आपके बातें सुन रहा हूँ, सब बातें सुन रहा हूँ
0: जी,
1: और सब मधुबन भाइयों को और सबको मेरी तरफ से राम राम है। और ये आज क्या मेरे को बराबर वो फोन में लगा था तो बराबर सुनने में नहीं आया था, क्या विषय है कुछ समझ नहीं आया।
0: अच्छा, विषय मैं सुना देती हूँ। केवल द्वार पर शुभ लाभ लिखने से कुछ नहीं होगा, शुभ विचार रखिए अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, तो लाभ ही लाभ होगा। क्या कहेंगे आप?
1: हाँ खैर ये तो शुभ लाभ तो एक शास्त्र से बनाया हुआ है, लेकिन अपनी भावना से होनी चाहिए शुभ लाभ। खैर ये तो शास्त्र के हिसाब से अपन होली दिवाली पर जो घर में प्रोग्राम होता है शुभ लाभ लिखते हैं, सब शुभ लाभ लिखते हैं, लेकिन वो शुभ लाभ अपने अंदर से शुभ भावना होनी चाहिए और शुभ विचार होना चाहिए और शुभ दूसरों के प्रति भी अपने को शुभ सोचना चाहिए, अशुभ नहीं सोचना चाहिए। तो शुभ और अशुभ इसमें बोले तो ये उसका दीपित शब्द है, अशुभ शुभ और अशुभ, मतलब अशुभ मतलब शुभ की जगह अशुभ किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, मेरा ये विचार है बहन जी, और तो क्या करूँ।
0: जी जी बहुत सुंदर विचार है। और आज के प्रश्न का जवाब देंगे,
1: क्या है प्रश्न देंगे?
0: आज का प्रश्न है हमारे हाथों की जो पांचों उंगलियां है उनका नाम बताइए।
1: इतना तो मेरे को भी ये सब पूरा पांचों का तो नाम नहीं आता, मैं उनको कुछ ऐसे बोलते प्रश्न नहीं है न बोलते, लेकिन मेरे को इतना ख्याल नहीं है।
0: अच्छा चलिए कोई बात नहीं, फिर भी आपने विषय को स्पष्ट करने की अच्छी कोशिश की है, बहुत बहुत आभार आपका। तबीयत अच्छी है आपकी?
1: बस दवा ले रहा और बैठा हूँ थोड़ा, ठीक है अभी तो थोड़ा वापस ताके वाके खुलवाए कल
0: जी
1: और बैठा आराम से।
0: अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खाने पीने का भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है?
1: ओके ओके धन्यवाद
0: जी, बहुत बहुत आभार। तो ये थे भूराराम जी ओर से, आपने भी विषय को स्पष्ट करने की बहुत ही अच्छी कोशिश की है। तो जैसा कि भूराराम जी बता रहे थे कि देखिए शुभ लाभ ये तो हमारे सब यंत्र मंत्र है जो शास्त्रों में लिखा है ऐसे लगाते हैं, लेकिन विचार तो अपने ही है ना, तो अपने विचार को शुभ रखिए, श्रेष्ठ रखिए, तो लाभ ही लाभ होगा। ठीक है, शुभ और लाभ लिखते हैं तो शुभ और लाभ तभी होगा, तभी मिलेगा हमें जब हम दूसरों के प्रति हमारे विचारों को शुभ रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, श्रेष्ठ रखेंगे, तो जीवन में शुभ ही शुभ होगा और लाभ ही लाभ मिलेगा। बस यही खुशनुमा जीवन का राज है। और आइए आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है हमारे हाथों की हथेलियों के हाथों के मतलब पांचों उंगलियों का नाम बताना है। तो पांचों उंगलियों का नाम बताने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के प्रश्न का जवाब आप दे सकते हैं। और आज मित्र डे नहीं है, वो अगस्त महीने में आता है फ्रेंडशिप डे, ठीक है? कोई दूसरा डे हो तो पता नहीं, शायद हो सकता है महाराष्ट्र में कुछ हो। तो आइए बस इस विषय को समाप्त करते, अगर आप जुड़ना चाहें तो आप अपनी बात को रख सकते हैं, बाकी इस विषय को यही समाप्त करते और सुनते एक अच्छा सा गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

शांति नमस्कार, मैं हूं नीलम कंबोज, करनाल हरियाणा से, और आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में जगदीश भाई भजपुरा से जुड़ चुके हैं। नमस्ते, राम राम जगदीश भाई।
1: राम राम जी जी, राम राम, नमस्ते। हाँ, क्या हो रहा है?
0: बस और तो बढ़िया, आप सुनाइए।
1: बस ठीक ठीक है जी जी।
0: अच्छा, आज के प्रश्न का आप जवाब देंगे?
1: बिल्कुल।
0: आज का प्रश्न है, हमारे हाथों के पांचों उंगलियों का नाम बताना है।
1: अंगुष्ठा, अंगूठे का नाम।
0: हाँ जी हाँ जी, मैं सुन रही हूँ।
1: मध्यम, अनामिका, कनिष्ठा।
0: चलिए बहुत अच्छा, कार्यक्रम के अंत में आपका जवाब सुनाएंगे, सही है गलत है। ठीक है, और अभी देखिए रेसिपी का नंबर आ गया है, आप कुछ सिखाना चाहेंगे?
1: नहीं, मैं तो नहीं सिखाऊंगा रेसिपी तो।
0: कभी आप भोजन बनाते हैं या नहीं बनाते, ये बताइए। कभी बना?
1: बनाता हूँ भोजन तो ये लेडीज कई बार अपने नहीं होती है, बना लेता हूँ भोजन वोजन तो सब।
0: अच्छा, फिर तो कोई भी सब्जी सिखा दीजिए।
1: कड़ी वड़ी और तो सब मैं पावरफुल हूँ मैडम।
0: अरे वाह, क्या बात है, कड़ी सिखा दीजिए फिर सभी को। कड़ी भी प्रॉपर हर किसी को नहीं आती बनाना।
1: नहीं नहीं, सब बनाते हैं कड़ी तो
0: जी, इसलिए आप सिखा दीजिए।
1: ओ मैं नहीं सीखूंगा जी जी, मैंने शर्म आ रही, कड़िया वड़िया में कोई खेवा गई वो रांडुलिया काम करे दी के।
0: अरे देखो, ये आपकी सोच को चेंज करिए। बड़े बड़े प्रतिभोज कौन बनाते हैं? बड़े बड़े प्रतिभोज में कौन बनाते हैं? होटलों में सेफ कौन है?
1: मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे को फिर बुलाएगी नहीं, वो बनाने लग जाएगी, कौन बुलाएगा मेरे को।
0: अच्छा
1: ठीक है जी,
0: ठीक है। हाँ चलिए, राम राम
1: राम राम।
0: तो देखिए, जो भी रेसिपी सिखाना चाहे सिखा सकते हैं, क्योंकि होटलों में सेफ कौन है, बड़े बड़े प्रतिभोज में कौन भोजन बनाता है वो आप सभी जानते हैं। हलवाई में कौन है? भाई लोग ही है ना, बहनें भी हेल्प करती है, लेकिन कैसे, जैसे पूरी बेलना है, साग भाजी साफ करना है, बड़े बड़े जो दो दो तीन तीन हजार का, चार चार पाँच पाँच हजार का जो भोजन बनता है, पंडाल में भोजन बनता है, कथा के उसमें भाई लोग ही बनाते हैं। तो ज़रूर आप जुड़िएगा, और जिसको भी शौक है वो सिखा सकते हैं रेसिपी। ठीक है, बाकी हमने सोचा है कि अभी हम आपको भरवा काचरी की सब्जी बनाना सिखा रहे हैं। काचरी जिसको चिबड़ा भी कहते हैं और काचरा भी कहते हैं, राजस्थानी में हम काचरी और काचरा दोनों ही कहते हैं। ठीक है, तो भरवा काचरी आपको सिखाने जा रहे हैं। इसका अचार भी बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, वो भी हम आपको कल सिखा देंगे। आज भरवा काचरी आपको सिखा रहे हैं, तो आप ले लीजिए काचरी, छोटी वाली लीजिएगा। ठीक है, और फिर आप लीजिएगा हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर, राई, जीरा, सौंफ और तेल, हींग, ये आपको लेना है मसाले में। फिर से दोहरा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, काचरी लेनी है छोटी वाली, फिर आप लीजिएगा राई, जीरा, सौंफ, हींग, धनिया पाउडर, हरी मिर्च, अदरक, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर और तेल। ये हो गई सामग्री। अब बनाने का तरीका भी आपको साथ ही साथ सिखा रही हूँ। आप क्या करेंगे, काचरी की धुलाई करिए। धुलाई करने के बाद इसके चीरा लगाइए, लंबा चीरा। भले तो आप लंबा चीरा लगाइए, भले ऊपर से आप डंठल की तरफ से चीरा करना चाहेंगे तो डंठल निकाल करके आप इस तरह आड़ा और तिरछा दो भाग काटिए, लेकिन नीचे से चिपका हुआ होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, और फिर आप थोड़ा सा बीज और उसका पल्प भी निकाल करके टेस्ट कर लीजिए कि कड़वी तो नहीं है काचरी। कड़वी होगी तो सब्जी पूरी फेंकनी पड़ेगी आपको, इसलिए ऐसे आपको भले आप खाली चीरा लगा रहे हैं तो भी आप थोड़ा सा पल्प और बीज निकाल करके ज़रूर देखिएगा कि कड़वी तो नहीं है। ठीक है, और इसके बीज सॉफ्ट होते हैं, इसलिए अगर कड़वी नहीं है तो रहने दीजिए, बीज नहीं निकालना है। ठीक है, अब आप इसके तो चीरा लगा दिया है, हरी मिर्च, अदरक ये ली है, इसके आप पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, पेस्ट करके इसी में ही आप धनिया पाउडर डाल दीजिए, नमक, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर भी इसी में डाल दीजिए, फिर सौंफ, जीरा, ये भी राई भी, इन सबको कूट करके ये मसाला सब अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए, ठीक है। हींग पाउडर भी इसी में डाल दीजिए, और थोड़ी सी डालनी है, हल्की सी, हल्की सी हम छोक में डालेंगे। तो ये सब डाल करके अच्छी तरह मिक्स करके, आवश्यकता पड़े तो ऊपर से पानी लीजिए, नहीं पड़े तो पानी मत लीजिए, क्योंकि अदरक हरी मिर्च वैसे ही गीली होती है ना। तो सब मिक्स करके फिर आप काचरी में भर दीजिए इस मसाले को, और जब ये सारी काचरी में आप मसाला भर दो, तो आप रखिए अब कढ़ाई गैस पर, गैस चालू करिए, तेल में, कढ़ाई में तेल डालिए, तेल गर्म हो जाए तो इसमें हल्की सी हींग डाल दीजिए, और फिर आप ये सारी काचरी डाल दीजिए जो हमने मसाले से भर के रख रखी है, ठीक है। और धीमी आंच कर दीजिए, एक बार हिला करके आप ढक्कन लगा दीजिए, फिर ढक्कन, और अब इसको गलने दीजिए 10-15 मिनट, बीच में आप एक आध बार और इसको हिलाते रहिए, और फिर आप 15 मिनट तो लगेंगे ये सब्जी बनने का, ठीक है। फिर आप ढक्कन हटा करके हल्का सा चाकू अंदर डाल करके देख लीजिए ये सब्जी गली कि नहीं गली, नहीं तो उंगली से भी आप दबा कर देख सकते हैं। सब्जी सीज गई हो तो गैस बंद कर दीजिए। ये बन गई भरवा काचरी की सब्जी, बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी। ये मक्के की रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं काचरी की सब्जी, बाजरे की रोटी के साथ भी टेस्टी लगेगी, गेहूं की रोटी के साथ तो वैसे ही अच्छी लगती है, ठीक है। तो इस तरह भरवा काचरी की सब्जी बन चुकी है। फिर से विधि दोहरा रही हूँ, काचरी की धुलाई करिए, और धुलाई करके इसके चीरा लगाइए। चीरा लगा करके आप ऐसा चीरा लगाइए कि काचरी के दो भाग नहीं होने चाहिए, ठीक है। फिर आप थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिए बीज और पल्प को कि ये काचरी आपकी कड़वी तो नहीं है, सारी काचरी का टेस्ट करना है। आप ठीक है, जो मीठी है अच्छी है रहने दीजिए। और अब आप हरी मिर्च अदरक की पेस्ट कर लीजिए, इसी पेस्ट में आप लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर डालिएगा, थोड़ी सी हींग भी डाल दीजिए, और सौंफ, राई, जीरा ये भी कूट करके इसी में डाल दीजिए सारे मसाले में, और सारे मसाले को अच्छी तरह मिक्स करके काचरी में भर दीजिए। भरने के बाद अब आप कढ़ाई रखिए गैस पर, तेल डालिए, तेल गर्म हो जाए तो आप हल्के से हींग डालिएगा, और ये सारी काचरी डाल करके फिर ढक्कन लगा दीजिए, और 10-15 मिनट में ये सब्जी सीज जाएगी। तो 5-7 मिनट के बाद ढक्कन हटा कर देखिएगा, बिल्कुल धीमी आंच पर रखना है ताकि सब्जी आपकी जले नहीं और सीज भी जाए। फिर आप देख लीजिए, अगर नहीं सीजी हो तो फिर से ढक्कन फिट बंद कर दीजिए, फिर आप बीच में देख लीजिए कि सब्जी गली कि नहीं गली, गल जाए तो गैस बंद कर दीजिए, बहुत नहीं गलानी है, थोड़ी सी, ठीक है। और बस ये काचरी तैयार हो चुकी है हमारी सब्जी, भरवा काचरी, और इसके साथ आप मक्के की रोटी बना करके भी खा सकते हैं, बाजरे की रोटी बना करके भी खा सकते हैं, गेहूं की चपाती बना करके भी खा सकते हैं। तो जो भी हम सात्विक चीज बनाते हैं अपने इष्ट देव को भोग जरूर लगाना है। तो लीजिए एक स्वच्छ थाली, थाली में आप जल के ग्लास भर के रखिए, तुलसी पत्र रखिए, और एक प्लेट में काचरी की सब्जी रखिए, चपाती जो भी बनाई है आपने, मक्की की रोटी वगैरह जो भी रखिएगा, ऊपर से स्वच्छ कवर ढक करके आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद ही भोग स्वीकार करिए, ठीक है। और आइए साथ ही साथ अब एक गीत भी सुन लेते हैं फिर से। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: बहू मुझे लड़का ही चाहिए।
1: तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
2: माँ अब तो बस करो।
0: बहू क्या सोच रही हो, घर चले? नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है ना।
3: को कवर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में लाए।
4: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में देखिए गर्मी की हम बात करेंगे कि गर्मी बहुत पड़ रही है। अभी कल किसी का फोन आया, तबीयत खराब हो गई थी, लूज मोशन शुरू हो गए थे और बॉडी पेन भी बहुत हो रहा था। तो बोले कि बहन जी क्या करें, ऐसी तबीयत है, उठने की ताकत ही नहीं है। तो अभी ये हालत हो रही है क्योंकि अभी गर्मी टू मच पड़ रही है ना, अति गर्मी है। ऐसी गर्मी में आप बच के रहिएगा, जितना हो सके आप छांव में काम करिए, बहुत ज़रूरी है तो आप धूप में निकलिए। हमने पहले भी कहा था कि आप धूप में निकलते हैं तो या तो छाता लेके निकलिए या दुपट्टा पहन के या टोपी चश्मा गॉगल्स आपको लगा के जाना है। इन बातों का तो ध्यान रखना ही है, ठीक है। और साथ ही साथ खाने पीने का ध्यान भी रखना है। आप तरल पदार्थ वाली चीज़ें ज़्यादा खाइए, रस्से वाली जिसको बोल सकते हैं हम, रस्से वाली चीज़ें ज़्यादा खाइए। आप सलाद खाते रहिए, आप तरबूज खरबूजा ये खाते रहिए क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छा है। पसीना होता है ना गर्मी में, पसीना होता है तो पानी की कमी होती है, लेकिन जब हम ये पानी वाले फल खाते हैं तो पानी की पूर्ति हो जाती है। नहीं तो भले पंखा चालू है फिर भी पसीना टपक रहा है, एसी चालू है फिर भी पसीना टपक रहा है, ऐसी हालत हो रही है लोगों की। इसलिए खाने पीने का पूरा ध्यान रखिएगा। और उसके बावजूद भी अगर इस तरह की बातें हो जाती है, इस तरह स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो आप एक तो देखिए लूज मोशन शुरू हो जाता है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स या ORS का घोल बना करके लेते रहिए, ये बहुत फायदा करेगा। कल वो बहन को बताया था तो वो बहन का तबीयत ठीक हो गई, शाम होते होते कहाँ वो 4-5 बार उनको शौचालय में जाना पड़ा और जब ये नुस्खे आजमाए तो एक भी बार नहीं गए। बोले कि मेरी पूरी रात भी अच्छी कटी और मुझे एक भी बार नहीं जाना पड़ा। तो या तो इलेक्ट्रॉनिक्स का घोल या ORS का घोल पीते रहिए बीच बीच में, और हो सके तो उस दिन आप अनाज से बचिए। लूज मोशन है तो अनाज मत खाइए, जैसे अनाज में भोजन मत करिए। आप फ्रूट खाइएगा तो तरबूज खा लीजिए, भले आप खरबूजा खाइए और एक आध बार नींबू शरबत भी आप बना के पी सकते हैं, वो भी आपके कैपेसिटी के अनुसार, क्योंकि तबीयत खराब होती है ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा खाइए।

प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही है, काफ़ी अच्छे रहे हैं। सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर करिएगा, और नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए हैं। तरोई के क्या फ़ायदा है, उसकी सब्जी, जड़, उसके बीज, सब कुछ फ़ायदा करता है, कौन सी बीमारियाँ ठीक करता है आप सभी ने जाना है। तरोई जिसको गुजराती में तुरिया कहते हैं, और खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई। तो आज की रेसिपी में आपको जो भरवा काचरी की सब्जी सिखाई है, ज़रूर बना करके खाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। और आज का प्रश्न बहुत ही अच्छा था, हमारे हाथों की पांचों उंगलियों का नाम बताना है। तो जवाब दिया है सुरेश भाई जोटाना से, आपने चार जवाब सही दिया है। अंगूठे का आपने नहीं बताया, अंगूठे का आपने अंगूठा ही बोला है, अंगुष्ट बोलते हैं, ठीक है। और दीपा सोमानी कपासन से, आपका एकदम सही जवाब है। संगीता जी आपने भी चार जवाब सही दिया है। निर्मला जी भिलवाड़ा से, आपका भी चार जवाब सही है। फिर भूरा राम जी ओर से, आपने विषय को स्पष्ट किया है। बाबूलाल खराड़ी, बाबूलाल भाई खराड़ी से, आपने भी चार जवाब सही दिया है, अंगूठे का नहीं दे पाए। जगदीश भाई भजपुरा से जुड़े हैं, आपने भी चार जवाब सही दिया है। मंजू जी बाड़मेर से, ललिता जी तलेटी आबू से, मदन भाई मेहसाना से, आप सभी का चार चार

जवाब सही है, अंगूठे का कोई नहीं दे पाए है। तो चलिए मैं नाम सुना देती हूँ। अंगूठे को अंगुष्ठ कहते हैं, अंगूठे के बाद पहली वाली उंगली को तर्जनी कहते हैं, और जो सबसे बड़ी उंगली है तर्जनी के पास उसको मध्यमिका कहते हैं। फिर जिसे हम तिलक लगाते हैं मध्यमिका के पास वाली सबसे लंबी उंगली के पास वाली, इसको अनामिका कहते हैं, और चिट्टी उंगली को कहते हैं अंगुष्ठा। अंगुष्ठा अंगूठे को, और कनिष्ठ इसको कनिष्ठ कहते हैं, सबसे छोटी वाली उंगली को कनिष्ठ कहते हैं। तो आप सभी के लिए ढेर सारी तालियां, आप सभी जुड़े और बहुत ही अच्छी कोशिश की आप सभी ने इसके लिए। फिर विषय में जुड़े हैं सुरेश भाई झोटाना से और भोरा राम जी और से, तो आप दोनों के लिए ढेर सारी तालियां। आज का मीठा मोती सुनाना चाहूंगी। जीवन में घटने वाली विषम परिस्थितियां हमें अपने अंदर परिवर्तन लाने का इशारा करती है। अब मैं आपको कृष्ण कन्हैया पर प्यारा सा भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

बीज रही सतरंगी चुनड़ी मोहन को पीतांबर, झूम झूम कर मचगी होली लाल हो गयो अंबर मारो प्यार।

राधा मोहन मोहन राधा जोड़ी प्यारी प्यारी, चरणा को चाकर में थारो जाऊं शरण बलिहारी का मणगा।

0: पर जादू कर गयो।
1: क्या आपका फोन चोरी हो गया है? क्या आप जानते हैं कि अपना

ओम शांति, मैं हूं विजय कुमार शर्मा और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम हिंसा को नो, आपका अपना सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। दोस्तों, हम हिंसा को नो कार्यक्रम में लगातार अलग अलग विषयों के बारे में जानकारी ले रहे हैं, लेकिन आज हम जानेंगे घरेलू हिंसा के प्रकार। दोस्तों, घरेलू हिंसा हम उसे कहते हैं जो घर परिवार वालों से, चाहे वो घर पर या अन्य किसी स्थान पर किए जाने वाले अत्याचार। घरेलू हिंसा चार प्रकार की होती है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और यौन हिंसा। ये चार प्रकार की हिंसा अक्सर हम घर परिवार में और समाज में देखते रहते हैं, लेकिन आज हम ऐसे परिवार में लेकर जाना चाहते हैं जहां पर कुछ बदलाव है, परिवार में आपसी प्यार है, विश्वास है, महिलाओं में हिम्मत है। तो चलिए चलते हैं आज के नाटक की ओर।
1: लंबी सफर है, ऊंची उड़ान, पढ़ लिख कर

0: सीमा, या घड़ी घड़ी डोरबेल क्यों बाज रही है? कौन है? अंजू की गांव बात कर रही है?
1: खुद ही पूछ लो।
2: पापा, यो पीयूष है। कदी समय पे नोट्स लिखे कोनी और पछे आ जावे नोट्स लेबा का वास्ते।
0: यो पीयूष कौन है बेटा?
2: मारो क्लास फेलो है पापा।
3: आपने अंजू समय पे काम करे तो चालो की केक तो काम आवे।
2: माँ, आप और पापा कतरा बढ़िया हो जो मारा पे कदी शक को नहीं करियो और हर प्रकार की छूट भी दे रखी। बाकी मारी सहेली सीता विको फ्रेंड रोहन का साथ में कोई बात कर ली थी परसों, विने खूब मारी विका मम्मी पापा खूब।
3: बेटा तू हर काम सोच समझ करे अनी वास्ते थारा पे विश्वास है और थारा करता भी मारी परोस पे मैंने पूरा विश्वास है।
4: साथी डारे छोरा छोरी जद देखू जद घर भरियो उमड़ियो गुमड़ियो रे ऊ मैं तो जद देखू जद घर सुनो अबे तो मैं भी गणो खुश हूँ मैं फुल राव हाल रियो।
5: कई बात है बेटा, आज तो थारा पग धरती पे कोनी टिकरिया।
6: हाँ माँ, बात ही एड़ी है तो दादी बनवा वाली है।
5: अरे वाह वाह बीनड़ी, ले बेटा यो मुख मीठो कर गुड़ खा। मने तो थे दो ही जना खुश कर दीदा। पर यो कई राजू, तू बीनड़ी ने कही क्यों जो बीनड़ी उदास लाग रही?
6: माँ, थारी बीनड़ी ने डिलीवरी री चिंता लाग रही है।
5: देख बीनड़ी, एड़ा टाइम पे थारे कई भी मानसिक चिंता कोनी करनी। तू खुश रह ताकि बालक पे भी आछो प्रभाव पड़े।
7: जी माँ जी, आप तो मने घना अच्छा राखो, पर
5: तू कई समझे मने थारा पियर की आर्थिक परिस्थिति को ठा कोनी। मैं सब समझू, डिलीवरी अपना घर में वे और थारी माँ ने भी बुला लेवा ताकि तू खुश रह सके। थारे कट्टे ही कोनी जानो समझी, और थारे जो भी इच्छा होवे बेधड़क माने केजे।
7: मैं कतरी भाग्यशाली हूँ कि मने माता पिता जेड़ा सास ससुर मिलिया और एक अच्छा दोस्त जेड़ा पति। अगर हर लड़की ने एड़ो ससुराल मिले तो किने पियर की याद कोनी आवे और हर बहु खुश रह सके।
5: कई सोच में पड़ गई बीनड़ी।
7: काई नहीं मम्मी जी, मैं घणी खुश हूँ, आप मारी सास कोनी माँ हो।
8: दिवाली में तो खूब मनावा सब मिलकर नाचागा। आयो त्योहार आचो आनंद हिर दाम समा।
7: पापा जी मम्मी जी, आप इतना जल्दी क्यों उठिया? और साफ सफाई आप रेवा दो, मैं हूँ ना, सब सफाई कर ले हूं। आप आराम करो।
0: यो बता बेटा कि दीपावली तो अकेली मनाई?
7: नहीं नहीं पापा जी, आपा सब साथ में मनावा।
9: तो साफ सफाई भी सब मिलन करा ताकि दिवाली रो आनंद सब मिलन ले सका। क्यों श्याम?
10: हाँ माँ, मैं तो सोच ली तो मैं दीपावली पे गुलाब जामुन बनाऊ।
3: हाँ भैया, आपने गुलाब जामुन बहुत बढ़िया आवे बनाता, और मैं बनाऊ मठड़ी।
0: मैं बनाऊ मोहन थाल।
7: जय श्री कृष्णा। हेलो माँ, बोलो।
1: बेटा थारे बड़ो परिवार है, दीपावली री साफ सफाई तो ध्यान सुकर जे। सुन, मिठाई तो अतरी बना कोनी सके तो मैं भेजू?
7: माँ, मैं थारे वीडियो कॉल करू।
1: यो कई बेटा, ब्यांजी सा ब्याईजी सा जमाई सा सब मालन साफ सफाई कर रहा घर की, मारा तो भाग्य खुल गया।
10: हाँ माँ, आप काई चिंता मत करो, मिठाई भी सब मिलन ही बनावा।
1: वाह, हावरो वे तो एड़ो। रखो बेटा फोन, मारे तो खुशी का आंसू आ गया।
9: बीनी, ले बेटा यो गले को हार, मारी शादी के बाद पहली दिवाली ही जद मारी सास मने दी दो और मैं थने देऊ, थारी भी पहली दिवाली है, आंसू यो थारो है।
0: बीनड़िया टू व्हीलर की चाबी, पहली दिवाली पे मारा तरफ किया छोटी सी भेंट, आज सो छोटो मोटो काम तो खुद ही कर सके कि पे डिपेंड नहीं रहे इन्हें वास्ते।
7: थैंक यू पापा जी, थैंक यू मम्मी जी।

0: ओए रुक रुक।
1: हाँ कहिए।
0: और जी कहना सुनना आपकी शादी में कर लेंगे, फिलहाल तो ये बताइए कि आपकी बेल्ट कहाँ है?
1: है तो ये देखिए।
0: ओए कमर की नहीं, मैं सीट बेल्ट की बात कर रहा हूँ। हवलदार कड़क से मजाक मत करो, बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ और उससे ज्यादा महंगा पड़ेगा ये बिना सीट बेल्ट की गाड़ी का चलान। ओए जल्दी ऊपर जाने का बहुत शौक है, हैं? ओ छोटू फाइन काटो इनका, 1200 रुपए सीट बेल्ट नहीं पहनने का और 2400 रुपए हवलदार कड़क से मजाक करने का। और ये है मेरी सड़क, मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए, इससे आप बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: மதுவன் 107.8 FM. सुनते रहो मुस्कुराते रहो.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मधुबन 107.8 FM पर. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं. और आज मुक्सीरा नक्षत्र है, इसके साथ ही महेश भूपति, ख्वाजा अहमद अब्बास, इन सभी का जन्मदिन है. और इसके साथ ही बीडी जत्ती, नटराज रामकृष्णन, इन सभी का पुण्य दिवस है. तो आइए आज के इस कार्यक्रम को यादगार बनाते हैं आप सभी के साथ मिलकर. और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारा सा विचार के साथ. और शाम के समय में 4:00 हो रहे हैं और आप हो मेरे साथ. और शाम के समय में चाय वाला टाइम पर मैं आपके साथ रहता हूँ. चाय के साथ आप कुछ नाश्ता पानी भी कर रहे होंगे, चलिए अच्छा है. बिस्कुट या फिर नमकीन खाते हुए कार्यक्रम का एंजॉय कीजिए. कभी कभी अच्छा लगता है शाम के समय में, है ना, थोड़ी सी चाय और थोड़ी सी नमकीन हो या कुछ ऐसी कुछ खाने के साथ खारी. मुझे याद है कि हम लोग बचपन में जो है माँ हमारी खारी वाली बहुत फिरते थे और टोस या फिर खारी जो है बॉक्स यानी डब्बे में भर के रखा करते थे. मैंने भी एक बार उसकी जो है लेकर रखते और फिर जब भी चाय का टाइम होता तो सभी एक एक टोस और खारी ज़रूर खाते थे. तो बड़ा मस्ती से खाते और बड़ा एंजॉय करते, तो मूड बिल्कुल आपका अच्छा हो जाता था हमारा. चलिए आप ऐसा अगर है तो अवेलेबल करिए, नहीं तो कोई बात नहीं. आप कार्यक्रम को सुनिए. आपकी मस्ती और खुशी बढ़ाने के लिए मैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाऊंगा. हाँ, लेकिन उसके पहले एक सुंदर विचार. कहते हैं तब तक पैसे कमाओ जब तक तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हारे फ़ोन नंबर की तरह ना दिखने लगे. है ना कमाल की बात. तब तक पैसे कमाओ जब तक तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हारे फ़ोन नंबर की तरह ना दिखने लगे, है ना. तो चलिए आशा करूँगा आपको ये बात, इसका मतलब ये नहीं कि बस सिर्फ पैसे कमाते रहें, जीवन में भी कुछ और चीज़ें हैं वो भी करते रहें, लोगों की सेवा करते रहें. जब पैसा आपके पास इतना हो कि जिससे आपको कहीं किसी से मांगना नहीं पड़े, है ना, किसी भी समय पे, ये ध्यान रखें. आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ले चलता हूँ एक बहुत ही प्यारा सा गीत. आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफर कार्यक्रम. सुनते रहो, मुस्कुराते रहो.

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए सफर कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और महेश भूपति के बारे में बात करते हैं, एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में बात करते हैं जी हाँ, जिनका जन्मदिन आज है और भारत के ये बहुत ही पॉपुलर खिलाड़ी है जिन्हें टेनिस में लेजेंडर प्रिंस के साथ युगल मुकाबले में शानदार सफलता मिली थी यानी अर्जित की थी। इनका पूरा नाम महेश श्रीनिवास भूपति है। भूपति को 1996 में अर्जुन पुरस्कार और 26 मार्च 2001 को लेजेंडर पेस के साथ भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान प्राप्त किया गया दिया गया। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं। आज जी के दिन यानी 7 जून 1974 को बेंगलुरु कर्नाटक में इनका जन्म हुआ। इनका नाम महेश श्रीनिवास भूपति और फिर भूपति ने टेनिस में लेजेंडर पेस के साथ युगल मुकाबला में शानदार सफलता अर्जित की। इनका पिता का नाम सीजी के भूपति और दाहिने हाथ के इस खिलाड़ी की लंबाई 6 फुट 2 इंच है और उसका निवास मस्कट ओमन तथा भारत में बेंगलुरु में है। टेनिस का खेल उनके परिवार के लिए कोई नया नहीं है। महेश के पिता भी टेनिस के खिलाड़ी थे और डेविस कप टीम के सदस्य रह चुके हैं। भूपति के कोच एनरिक पिपानो है। इनको बम्बैया फिल्में देखना बहुत पसंद है और फिल्मों की डीवीडी अपने साथ लेकर चलते रहते हैं। उनके रैंक युगल खेल में नंबर 1 है और उसके शौक नेट सर्फिंग और क्रिकेट खेलना है। 2002 में मॉडल श्रुता जयशंकर से इन्होंने विवाह किया और ये कहना गलत नहीं होगा कि कोलकाता की तेजी लेजेंडर पेस और बेंगलोर के महेश भूपति के मिलते हैं टेनिस की दुनिया में धमाल हो गया और जोड़ी ने 1999 में दुनिया की हर जोड़ी के चक्के छुड़ाए और 1996 में भूपति के साथ युगल वर्ग का ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने की भविष्यवाणी की थी। तब उनका अच्छा खासा मजाक बनाया गया और उन्हें छोटा मुंह बड़ी बात कहा गया क्योंकि उस समय उनकी जोड़ी विश्व क्रम में 80वें क्रम पर थी, परंतु दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और सफलता के शिकार पर ऐसे चढ़े कि बस आगे बढ़ते ही गए बढ़ते ही गए। भारतीय जोड़ी का 1-2 चक्र जीतना ही बहुत बड़ी बात समझी जाती थी, परंतु लेजेंडर प्रिंस और महेश भूपति की जोड़ी ने 8 अलग-अलग ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट को अपने हाथ किया और इसके बाद ये साबित करके दिखाया 1999 में फ्रेंच व विंबलडन खिला खिताब जीते और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ओपन में भी फाइनल में संघर्ष जारी रहा और महेश भूपति के बारे में कहा जाता है कि वो लेजेंडर पेस के विपरीत अंतर्मुखी व संवेदनशील इंसान है। उनमें जबरदस्त पेशेवर परिपक्वता है और इस तरह से 1996 में अर्जुन पुरस्कार और 26 में महेश भूपति को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री मिला। तो ये थी कुछ खास बातें महेश भूपति के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: ये हंसते हुए ये महका हुआ गुलशन, ये रंग में और नूर में डूबे हुए राहें, ये रंग में और

ये सादों पे तकरार, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है कहाँ है कहाँ है।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, लेट्स से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए बात करते हैं एक और शख्सियत के बारे में, ख्वाजा अहमद अब्बास के बारे में। जी हाँ, ये भी एक विशेष फिल्म निर्देशक, लेखक और उर्दू लेखक। वे उन कुछ गिने चुने लेखकों में याद किए जाते हैं जिन्हें मोहब्बत, शांति और मानवता का पैगाम लोगों को देना अच्छा लगता है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने अलीगढ़ ओपन यूनिवर्सिटी में अपना पढ़ाई पूरा करके बॉम्बे कार्निवल में लंबे समय तक बतौर संवाददाता और फिल्म समीक्षक के रूप में काम करते रहे और इनका स्तंभ द लास्ट पेज सबसे लंबा चलने वाला स्तंभों में गिना जाता है। और 1941 से लेकर 1986 तक चला अब्बास इप्टा के संस्थापक सदस्य थे। और अब्बास की बात करें तो 7 जून 1914 को हरियाणा राज्य के पानीपत में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। और वे 1857 के विद्रोह के शहीदों में एक थे। इनके दादा ख्वाजा गुलाम और ये उनके पोता अपने पिता गुलाम सिस्तेन थे जो उनके पवित्र कुरान पढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित करते थे, जबकि मशरू खातून उनकी माँ थी। और उनके खानदान का मकान अयूब अंसारी तक जाता है जो पैगंबर मोहम्मद के साथी थे। अपनी शुरुआती शिक्षा के लिए अब्बास हालांकि मुस्लिम हाई स्कूल से पढ़ाई पूरी की है और उसके बाद परदादा यानी प्रसिद्ध उर्दू शायर ख्वाजा हुसैन अली और मिर्जा गालिब के शागिर्द थे। इनके द्वारा स्थापित किया गया था और 7वीं कक्षा तक अध्ययन किया और 15 वर्ष की आयु में उन्होंने मैट्रिक समाप्त की और बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से आगे की पढ़ाई पूरी की और फिर LLB करके अपने जीवन का अधिकांश समय फिल्म लेखन में उन्होंने बिताया। इस तरह से कार्यक्षेत्र की बात करें तो अब्बास साहब ने जल्द ही पत्रकारिता में अपना जो है वर्चस्व बनाया और अलीगढ़ ओपन नाम की देश की पहली छात्र प्रकाशित पत्रिका इन्होंने शुरू की। इससे पहले उन्हें तुरंत अपने BA के बाद नेशनल कॉल नाम के अखबार में काम मिला था और वो अखबार का काम संभालते हुए आगे फिर बॉम्बे कार्निवल में शामिल हो गए और फिर जल्द ही फिल्म विभाग के संपादक भी बने और वहाँ के पत्रकार का रूप इन्होंने एक नया काम किया। और 47 तक काम करते हुए 36 में वे बॉम्बे टॉकीज के पार्ट टाइम पब्लिसिस्ट के रूप में काम करते रहे और जो हिमांशु राय और देविका रानी की प्रोडक्शन कंपनी थी उसमें ये काम करे और 1941 में अपनी पहली कहानी नया संसार भी इसी कंपनी को इन्होंने बेची। तो इस तरह से फिल्मी सफर इनका शुरू हो गया और फिल्मों का सफर करते हुए राही, नीचा नगर, अमर कहानी, ये फिल्में ख्वाजा अब्बास की एक कहानी एंड वन डिड नॉट कम बैक पर आधारित थी जिसे उन्होंने डॉक्टर द्वारकानाथ कोटिस के जीवन पर लिखा था। तो इस तरह से फिल्मों के लिए लिखना इनका बाएं हाथ का खेल था। तो आइए अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत, उसके बाद फिर आगे सुनेंगे।

के ख्वाजा अब्बास की कहानी, कैसे उनकी दोस्ती राज कपूर से हुई और फिर राज कपूर के जीवन में उनका कितना बड़ा अहम रोल है वो जानते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर सफर, इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए खाजा बस की आगे की कहानी सुनाते हैं और राज कपूर के साथ इनका कैसे जुड़ाव रहा। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफर कार्यक्रम को। राज कपूर के दोस्त बन गए और उनके लिए उन्होंने अपना साथ निभाया। आवारा, श्री 420, जागते रहो, मेरा नाम जोकर जैसी उनकी कई सफल फिल्में हैं और आरके बैनर की फिल्म हीना, जिसे रणधीर कपूर द्वारा पूरा किया गया। अब्बास साहब की एक कहानी पर आधारित थी। अब्बास साहब ने राज कपूर की फिल्म रात, राम तेरी गंगा मैली की शुरुआत और अंत भी किया। एक ऐसी बात है जिसे कम लोग जानते हैं, राज कपूर ख्वाजा साहब के करीबी थे और उन्हें मेरी आवाज़ बुलाया करते थे। उनके अपने जीवन पर बनी फिल्म मेरा नाम जोकर के बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाने के बाद राज कपूर संकट में फंसे। अब्बास साहब ने सिर्फ इस साधारण निर्देशक की मदद करने के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता किया। उन्होंने एक मसालेदार किशोरावस्था के रोमांस की फिल्म बॉबी लिखी। फिर ये सुपरहिट साबित हुई और राज कपूर फिर से सफलता की लहर पर सवार हो गए। लेकिन बॉबी में भी अब्बास साहब अपने समाजवादी दृष्टिकोण और अपने प्रगतिशील विचारों को स्थापित करने में सफल रहे। इसे फिल्म की विषय वस्तु में रोपित कर दिया था और अपने चमत्कार सतह से नीचे ये अमीर और गरीब के संघर्ष की कहानी कहती है। तो इस तरह से ये फिल्म राज कपूर को फिर से अपने फाइनेंस को मजबूत करने में सफलता हासिल कराए। इस तरह से अद्भुत कहानी धरती के लाल थे, बहुआयामी व्यक्ति थे, साथ हिंदुस्तानी फिल्म। तो इस तरह के नेहरू जी से इनके संबंध, अमिताभ बच्चन की नज़र से ख्वाजा अहमद अब्बास जब अपने जीवन के अंतिम दिनों में गंभीर रूप से बीमार थे और अर्थभाव से जूझ रहे थे, तब उन्होंने अपनी फिल्म सात हिंदुस्तानी के अधिकार उतनी ही राशि में बेचे थे जितनी राशि उनके इलाज के लिए जरूरी थी। हिंदी सिनेमा के मिलेनियर स्टार अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में अब्बास से जुड़ी यादों को ताज़ा करते हुए ये बताया था कि अब्बास सिद्धांतों पर विश्वास रखने वाले ऐसे ईमानदार व्यक्ति थे जिनके मन में व्यावसायिक अपनी जड़ नहीं जमा सकी। वो दूसरों के लिए जीने में विश्वास करते थे लेकिन किसी से अपेक्षा नहीं करते थे। उनका दिल बहुत बड़ा था। उन्होंने लिखा है कि अब्बास इतने स्वाभिमानी व्यक्ति थे कि जीवन के अंतिम समय में भी उन्हें किसी की सहायता लेना मंजूर नहीं था, और उनसे भी नहीं जिन्हें अब्बास ने ही खोजा था और एक पहचान दी थी। बिग बी के अनुसार गंभीर रूप से बीमार और अर्थभाव से जूझ रहे अब्बास ने तब सात हिंदुस्तानी के अधिकार सिर्फ उतने ही राशि में बेचे थे जो उनके इलाज के लिए जरूरी थी, जबकि उन्हें अच्छी खासी रकम मिल सकती थी। अमिताभ ने लिखा कि यह बात अब्बास ने किसी को नहीं बताई थी क्योंकि उन्हें डर था कि यह सुनकर लोग उनकी मदद करने के लिए आगे आएंगे, ये उनके सिद्धांतों के खिलाफ होता। वो केवल अपनी मेहनत की कमाई पर विश्वास करते थे। बिग बी पहली बार ख्वाजा अहमद अब्बास से तब मिले थे जब उन्हें अब्बास ने अपनी फिल्म सात हिंदुस्तानी में एक रोल के लिए बुलाया था। ये फिल्म पुर्तगालियों के कब्जे में गोवा को मुक्त कराने पर बनी थी और उन दिनों अमिताभ बच्चन फिल्म जगत में पैर जमाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो चलिए, ये थी कुछ खास बातें। और गोवा में पूरी यूनिट एक छोटे से सरकारी गेस्ट रूम पे गेस्ट में रुकी। ये सुविधाएं नहीं के बराबरी थी और रात को लालटेन का इस्तेमाल होता था क्योंकि वहाँ बिजली नहीं थी। लालटेन की रोशनी में ही अब्बास हाथों में कागज कलम लेकर रात भर कहानी और सीन की तैयारी करते और अगले दिन शूटिंग होती थी। तो है ना कमाल की बात। तो चलिए, ये थी कुछ खास बातें ख्वाजा अब्बास के बारे में। और आखिरी दिनों में उनकी एक फिल्म एक आदमी 1988 में काम हुआ इसमें, और ये फिल्म उनकी मृत्यु के बाद रिलीज हुआ, उनके लिखने के बाद। फिल्म किसी भी कीमत पर रुकनी नहीं चाहिए, ये उनका जो है मानना था, जो आज भी आली पीटर जॉन के दिल को खुरेदती है। ख्वाजा अहमद अब्बास 72 वर्ष की आयु में 1 जून 1967 को इनका निधन हुआ। अपने अंतिम दिनों तक लिखते रहे अब्बास साहब को भारत में समानांतर व न्यू रियलिस्टिक सिनेमा रहनुमा में गिना जाता है। तो ये थी कुछ खास बातें ख्वाजा अब्बास के बारे में, आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुनना है, सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

0: ओम शांति। नमस्कार, मैं आकाश मानिसार से नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉलंटियर मेंबर। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब हम लोग किसी की कहानी सुनते हैं तो हमारे जीवन में भी बड़ा मोटिवेशन मिल जाता है कि कैसे व्यक्ति जो है इतना सारा काम कर लेता है ना। और एक तरफ जो है व्यक्ति अपनी रोजी रोटी के लिए मशक्कत कर रहा है और एक तरफ लोग जो है पूरी समृद्धि के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं, है ना। तो ये जो गैप है, ये जो कहीं ना कहीं खाई है, इसको दूर करने के लिए शायद मुझे लगता है कि हम सभी को मिलकर काम करना होगा। और मिलकर काम करने के साथ साथ हर व्यक्ति को अपने ऊपर काम करना होगा। देखिए, थोड़ा सा अपनी आप को खोल के देखिए, मतलब अपने आप को देखिए कि आपके अंदर क्या हुनर है, क्या कला है, कैसे आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए और हर जगह जो है सीखने की ललक बना के रखिए और सीखते हुए थोड़ा सा मेहनत कीजिए। छोटा काम कोई भी छोटा नहीं होता अगर आप करते हैं तो, है ना। तो इसीलिए हर काम जो आपके हाथ में आता है उसे करिए पूरे ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ। फिर देखिए आप भी अपनी जो जीवन में जो गैप है वो भरने में कामयाब हो जाएंगे। तो चलिए इस कार्यक्रम में, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। और जाते जाते फिर से आपको ले चलता हूँ एक और सुंदर विचार के साथ जोड़ना चाहूँगा। तो मैं जिस तरह से बातें आपसे शेयर कर रहा था उसी से आधारित एक विचार सामने है मेरे। काम इतना शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे। काम इतना शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे। अब ये बातें जो है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इतना शांति से काम करते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, जो अनुसंधानकर्ता होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, उन सभी का शांति सबसे बड़ा प्रिय विषय है। और शांति में रहकर वो दुनिया से कट जाते हैं और अपने आप में खोकर एक नई चीज को इन्वेंट करने में समय लगाते हैं। उनके चिंतन, उनकी विचारधारा जो है एक दिन रंग लाती है और उनकी सफलता पूरी दुनिया में शोर मचा देती है, है ना, कमाल की बात। तो आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, यानी रेडियो मधुबन के साथ। सलाम, नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसे समुद्र मंथन से अमृत निकला, वैसे ही आत्म मंथन से शांति, सच्चाई और समाधान निकलते हैं। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: हल्की गुनगुनी सर्दी की दस्तक के साथ ही दीपावली के पहले सफाई अभियान हर बरस की कहानी होती। लगता कि दिवाली में घर का हर कोना सजा धजा लगे, फूलों सा महके और चांदनी सा चमके। पर साफ सफाई के साथ सुबह से ही किचन का रुख करना तो घर की लक्ष्मी का परम धर्म होता है ना। यानी पहले पेट पूजा, फिर कोई काम दूजा। त्योहारों में पति बच्चों की फरमाइशों की लंबी फेहरिस्त होना भी लाजमी होता। किसी को नमकीन तो किसी को मीठा पसंद। घर में आने जाने वालों के लिए भी अलग से नाश्ता तैयार रखना, उफ। उसके बाद समय निकालकर घर की साज संभाल, सफाई और पुराने बरसों से गंदे पड़े बेकार सामान को ठिकाने लगाना, हर साल की यही कवायद। खैर, जो भी हो, दिवाली पर तो घर का हर कोना जगमग होना ही चाहिए ना। क्यों ना हो, साफ सुथरे वातावरण से ही तो दिल और दिमाग खुशियों से दो चार हुआ करते हैं। खुद को ही समझाती निष्ठा, बच्चों को स्कूल कॉलेज के लिए रवाना कर, पति को ऑफिस जाने से पहले टांट पर रखे लकड़ी के बक्से को नीचे उतारने का हुक्म बजा कर उसके लिए टिफिन तैयार करने किचन की ओर जाती है। बेशक बिन घर परिवार के जीवन अधूरा है, पर दिन के 24 घंटों में से चंद पल खुद के लिए सहेजना, खुद से बातें करना, खुद की पसंद नापसंद को तवज्जो देना, कुछ बीती बातों को याद कर मुस्कुराना, तो कुछ भविष्य के ताने बाने गुन्ना भी एक स्त्री के लिए बेहद जरूरी होता है। चाय की शौकीन निष्ठा पति के ऑफिस के लिए निकलते ही एक कप गर्मा गर्म काली मिर्च और लौंग वाली चाय बनाकर बड़े से कप में लेकर ड्रॉइंग रूम में बिछी चटाई पर बैठ जाती है। भाई, गर्मा गर्म चाय के प्याले के साथ सुमधुर भूले बिसरे गीत हों तो सारी थकान चुटकियों में दूर हो जाती है और काम भी बड़ी स्फूर्ति से होता है। चाय की चुस्कियों के साथ ही निष्ठा ने पास रखे रेडियो को ऑन किया तो एफएम पर गाना बज रहा था, प्यार के धागे धागे तोड़े नहीं टूटे। सच, इन धागों से ही रिश्तों के ताने बाने बुने जाते रहे हैं। धागा यदि रेशम का हो तो सात समुंदर पार परदेश में बसा भाई भी लाडली बहना की प्रीत में बंधा अपने होम टाउन की ओर यानी गृहनगर की ओर दौड़ा चला आता है। और अगर सूत के धागे की बात हो तो बेशक हमारे जहन में परसों पुरानी यादें भी ताजा हो जाया करती हैं। गाना सुनते सुनते निष्ठा ने सामने रखी लकड़ी की पेटी पर पड़ी धूल एक कपड़े से झाड़कर उसका ढक्कन खोला तो उसकी आंखें विस्मित सी हो गईं। जिंदगी की आपाधापी, बच्चों की परवरिश और पति के बार बार ट्रांसफर के चलते शहर शहर घूमते रहे। पिछले कुछ वर्षों से हर दिवाली नए नए महंगे महंगे बंधनवार, सोफा टेबल कवर, चादरें खरीद खरीद कर घर को कुछ दिन सजा कर रखते, पर चंद दिनों बाद ही उन्हें देख देख जब बोरियत सी महसूस होती तो फिर या तो उन्हें उतार कर भविष्य में कभी उपयोग न करने के लिए पलंग के बॉक्स के हवाले करते या फिर घर में काम करने वाली मेहरी को दे दिए जाते। पर न जाने क्यों दादी माँ के साथ बिताई अविस्मरणीय यादों की एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी इन धागों की बनावट से निष्ठा का अलग ही अनुराग रहा है। तभी तो तकरीबन 30-35 साल पुरानी इन चीजों को कई बार घर में सजाकर वापस पॉलिथिन में पैक करके उसने दिलो जान से साथ संभाल कर रखा हुआ है। चाय की चुस्कियों के साथ ही उन बेशकीमती यादों को थामने वाली पैकिंग खोलकर प्यार से उन पर हाथ फेरा तो दादी के प्यार के कोमल स्पर्श से निष्ठा का बाल मन चिमकने सा लगा। बचपन की यादें होती भी तो अनमोल और अविस्मरणीय हैं। दादी माँ की बनाई क्रोशिए के तोरण, रंग बिरंगे फूलों से सजे तकिए के कवर, टेबल कवर और यहाँ तक कि दादी माँ ने निष्ठा के दुपट्टे में क्रोशिए के कंगूरे भी सजा रखे थे। मैचिंग हेयर बैंड्स के प्रति निष्ठा की दीवानगी के चलते उन्होंने पतली इलास्टिक पर क्रोशिए की फ्रिल वाली कारीगरी कर इतने शानदार फ्रिल वाले हेयर बैंड्स की डिजाइन इजाद की कि देखने वाले का दिल ही खुश हो गया। इन सारी वस्तुओं को देख निष्ठा तो जैसे वही पुरानी 6-8 साल की छोटी बच्ची ही बन गई थी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं अंजलि खेर जी की लिखी एक कहानी जो की टी टाइम सीरीज के अंडर है और कहानी का टाइटल है यादों का अनमोल खजाना। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले बस इतना सा कहूंगा कि चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो निष्ठा इन सारी वस्तुओं को देख जैसे वही पुरानी 6-8 साल की छोटी बच्ची ही बन गई थी। निष्ठा का बचपन दादी के इर्द गिर्द ही गुजरा। धागे की बुनावट के साथ रिश्तों को पिरोकर रखना भी तो दादी ने ही सिखाया था। दादी माँ सारा दिन जमीन पर बैठकर पैरों को मोड़ बड़ी बड़ी लच्छियां अपने घुटनों पर फंसाकर कभी रंग बिरंगे तो कभी सफेद धागों के गोले बनाया करती, फिर सुलझे धागों के गोलों को साफ सुथरी पन्नी में रखती जिससे यहां वहां जमीन पर लुढ़क कर धागे खराब ना हो। पन्नी में रखे धागों के गोलों का एक छोर बाहर निकला रहता जिसका एक सिरा बाएं हाथ की अनामिका में लपेट दाहिने हाथ में क्रोशिया पकड़ दादी माँ बड़े बड़े फूल धड़ाधड़ बनाया करती और बाद में उन सबको क्रोशिया से जोड़कर कभी बड़ा सा टेबल कवर तो कभी सोफा पेक बनाती। हाथ पर हाथ धरकर खाली बैठना या पड़ोसनों से बेमतलब की गप्पे लड़ाते बैठे रहना दादी माँ की आदत ही नहीं थी। क्रोशिये का एक आइटम बनता और दादी किसी को एक एक वस्तु गिफ्ट में दे देती या फिर इसी लकड़ी की पेटी में सज जाती और वापस दादी फिर कुछ नया बनाने लग जाया करती। आश्चर्य की बात होती कि उनकी बनाई क्रोशिये की हर वस्तु में कुछ न कुछ नई कलाकारी होती। रंगों का संयोजन तो इतना आकर्षक होता जैसे किसी सिद्ध हस्त की कुशल कारीगरी हो। घर में आने जाने वालों, मेहमानों, रिश्तेदारों में शायद ही ऐसा कोई होता जिनके घरों में दादी माँ के हाथ से बनी क्रोशिये की एक भी वस्तु ना हो। दादी जब भी कोई नई चीज बनाना शुरू करती निष्ठा पालथी मार उनके पास जाकर बैठ जाती और क्रोशिया चलाना सीखने की कोशिश करती। उनकी बनाई वस्तुओं की तारीफ होते देख निष्ठा ने भी जिद करके पापा से क्रोशिया मंगा ही लिया और लगी सिखाने की जिद करने दादी माँ से। दादी ने उसे क्रोशिये से चैन बनाना और फिर 3 से 2, 2 से 1 करके घर बनाकर क्रोशिये से सबसे पहले थैली बुनना सिखाया था। शुरुआत में कोई चैन छोटी तो कोई बड़ी बनती तो कई बार क्रोशिये से घर बनाते बनाते धागा खींचने से सारा कुछ उधड़ जाया करता तो निष्ठा रोने लग जाया करती, पर दादी माँ बहुत ही प्यार से समझा कर वापस बुनने की सलाह देती। फिर क्रोशिये का ऐसा जुनून निष्ठा पर हावी हुआ कि उसने कभी तिरंगा तो कभी सतरंगी छोटी बड़ी ढेर सी थैलियां बनाई, फिर तो छोटा मोटा सामान लाने के लिए उन्हीं थैलियों को ले जाया जाता। क्योंकि कुछ ना कुछ रचनात्मक करने की आदत विरासत में दादी माँ से ही मिली थी सो निष्ठा ने थैलियों की बुनावट में नवाचार लाने का प्रयास कर भोपाली बटुआ स्टाइल में बुनने का प्रयास किया। दादी माँ तो थी ही कलाकार, उन्होंने बटुए को बंद करने वाली डोरी के दोनों किनारों पर रंग बिरंगे कंगूरे बनाकर गोटा पट्टी लगा और भी आकर्षक बना दिया था। दादी माँ और निष्ठा की मिली जुली इस नई कलाकृति को जो भी देखता बस देखता ही रह जाता। कहते हैं ना, मूल से ज्यादा प्यारा सूद होता है, तो अपनी नातिन को मिली तारीफ से दादी माँ ने क्रोशिये की बुनावट को और भी रचनात्मकता प्रदान की क्योंकि वो निष्ठा को और भी अच्छी चीजें बनाना सिखाना चाहती थी। उनकी सोच में थोड़ा बहुत निष्ठा भी शिरकत करने लगती और जोड़ तोड़ कर दादी माँ हर बार कुछ ऐसा बनाती कि देखने वाले हैरान हो उठते कि ये हाथों का बनाया हुआ है या बाजार से खरीदी गई कारीगरी। चाय का प्याला आधा खाली हो चुका था और निष्ठा अभी भी दशकों पुराने यादों में खोई हुई थी। वहीं उसी कमरे में जिसमें रखी प्रत्येक वस्तु पर दादी माँ के हाथों के धागों से बुनी कारीगरी का कोई न कोई नमूना सजा था और कमरे की सुंदरता में 4 चांद लगा रहा था। एक बार दादी माँ ने घर के बड़े से टेबल के लिए टेबल कवर बनाने के लिए एक बहुत बड़ा और 7 छोटे-छोटे पंचकोण आकार के फूल बुनकर तैयार किए। दादी उन सभी फूलों को अपने बिस्तर पर फैलाकर उन्हें आपस में जोड़ने के लिए बार बार अलग अलग तरीके से सेट करके देख रही थी। निष्ठा उनके कमरे में पहुंची तो देखा नीले रंग की चादर पर सफेद रंग के क्रोशिये के वो फूल इतने खूबसूरत लग रहे थे कि बात मत पूछो। उसने दादी से कहा कि दादी क्या इन फूलों को ऐसे ही चादर पर नहीं टांगा जा सकता, देखो तो चादर पर ये फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। दादी माँ चादर पर फूलों को सेट कर खड़ी होकर निहारते हुए बोली, अरे वाह, तूने बात तो एकदम खरी कही है बिटिया, अब तो तेरा भी दिमाग इन सब में भला सा चलने लगा है। निष्ठा का आइडिया दादी माँ को इतना भाया कि वो आनन फानन बाजार में जाकर प्लेन मैरून चादर लेकर आई और साथ ही मोहल्ले में रहने वाले दर्जी को भी बुला लाई और उसे चादर पर फूलों को टांकने की समझाइश देने लगी। हालांकि दर्जी को फूल टांकने में थोड़ी कठिनाई जरूर हुई पर चादर तो क्या खूब बन पड़ी थी, जो देखता नजर ही नहीं हटती थी चादर पर से उस दिवाली तो हमारे घर दादी माँ की इस कृति को देखने मोहल्ले भर की भीड़ जम पड़ी थी। आज भले ही पेंच वर्क वाली चादर कॉमन है, पर 30 बरस पहले तो हमारी दादी माँ के हाथों बनी उन कृतियों ने ही धमाल मचा रखा था। पड़ोस वाली कार्तिका दी के घर जब चुनमुन आई तो दादी माँ ने उसके नामकरण पर क्रोशिये से क्या तो सुंदर गुलाबी रंग की ऊन की जैकेट क्रोशिये से बुनी थी। चुनमुन पर तो जैकेट पड़ी ही फब रही थी। फिर तो जिसने भी चुनमुन को वो जैकेट पहने देखा, दादी माँ के पास अपने अपने बच्चों के लिए बुकिंग कर दी। कुछ लोग तो नए साल, दिवाली या फिर दादी माँ के जन्मदिन पर सुंदर खिले रंगों वाली ऊन ही गिफ्ट करने लगे, जिससे दादी माँ उनके नन्हे बच्चों के लिए ऊन की क्रोशिये से बुन कभी जेब वाली जैकेट तो कभी घेर वाली नरम नरम फ्रॉक बुनकर गिफ्ट किया करे। एक बार निष्ठा ने दादी माँ से क्रोशिये का एक स्टोल बनाकर देने की डिमांड की। बस फिर क्या था, क्रोशिये से घर बनाने का गणित लगाकर धूप छांव वाले कलर का एक सुंदर सा स्टोल बनाकर दादी माँ ने बड़े ही प्रेम से निष्ठा के हाथों थमा दिया। उस स्टोल को कुर्ती के साथ गले में लपेट सके और ज्यादा ठंड में उसे कानों पर भी बांधा जा सकता था। जन्मदिन पर दादी माँ से मिला यह अनमोल उपहार आज भी निष्ठा की इस लकड़ी की पेटी में सुरक्षित है। दादी माँ और निष्ठा की घर में सबसे ज्यादा घुटती थी। निष्ठा की हर छोटी बड़ी फरमाइश को वो जरूर से पूरा किया करती। निष्ठा भी जानती थी कि वो दादी माँ से जो भी बुनने को कहेगी, दादी माँ 2 दिन में चट से बनाकर रख देंगी, क्योंकि क्रोशिये की बुनावट में कुछ नई चुनौती उन्हें हमेशा से भाया करती थी। चुनौती देने में निष्ठा सबसे आगे हुआ करती, और आए दिन कभी थर्मस के लिए क्रोशिये का कवर तो कभी कुर्ती के साथ पहनने के लिए जैकेट, और वो भी कॉलर वाली, और भी न जाने कैसी कैसी चीजें बनाने की मांग किया करती। निष्ठा की कल्पनाओं में सोची हुई वस्तु को दादी माँ यूं गढ़ जाती जैसे उनके पास अपनी नातिन के मन की बात पढ़ने के लिए कोई जादू की छड़ी ही हो। आज भले ही बाजार में सजावट के सामान और फैशनेबल कपड़ों की भारी भरमार है, पर जो प्यार की गर्माहट, यादों की चहचहाहट और अपनेपन की नरमाहट, दादी माँ के हाथों का गुलगुला प्यार भरे स्पर्श की अनुभूति इन सारी धागों की बुनावट में है। वो भला दुनिया की महंगी से महंगी रेडीमेड मशीन से बनी वस्तुओं में भी कहां। डोरबेल के बजते ही निष्ठा की तंद्रा टूटी और वो दरवाजा खोलने के लिए उठ गई। सामने कांता खड़ी थी, दिवाली की साफ सफाई के लिए मदद करने आई थी। बस इसी मोड़ पर हमें भी यादों की गलियों में बहुत गहरे ले जाकर छोड़ती हुई ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आप सुन रहे थे टी टाइम सीरीज में एक और कहानी, यादों का अनमोल खजाना, जिसे लिखा है अंजलि खेर जी ने। मैं समझता हूं कहीं ना कहीं बीच बीच में आपकी भी आंखें नम हुई होंगी इसे सुनते हुए। यादें होती ही कुछ इतनी मधुर हैं, पर वो जो नम हुई हैं उसमें प्रेम और स्नेह ही ज्यादा है ना। अगले पड़ाव पर एक नई लघु कथा, कहानी, नज्म, पोएम के साथ में फिर आपके बीच हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। अमित का बहुत बहुत नमस्कार और ढेर सारी शुभकामनाएं।

0: आप खबरे रिया रेडियो मधुबन 107.8 FM खबरता रेजियो ने मुस्कुराता रेजियो
1: गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

क्या आप जानते हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।

ओम शांति। आज 9 जून 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज के बाबा की मुरली में बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को बाप के पास जाना है तो अशरीरी होकर के ही जाना है, अशरीरीपन का अभ्यास करना है। कैसे अभ्यास करना होता है उसकी विधि बाबा ने आज बताई है कि जीते जी देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलना है, देह की पुरानी दुनिया को भूलना है। इतना ही नहीं, बाबा कहते जो कुछ भी तुम कहते हो ये मेरा मेरा है, ये मेरा पन भूलना है। तब अशरीरीपन का अभ्यास यथार्थ रूप में हो सकता है। फिर बाबा कहते हैं ये अभ्यास करना है कि मैं आत्मा परमधाम से आई हूं और वापस मुझे परमधाम जाना है। परमधाम कहाँ है? तो बाबा कहते हैं ये सूर्य चांद तारों से भी पार है, और एक सेकंड में आत्मा अपने घर में बाप के पास जाकर के पहुंच जाती है। आत्मा से तीखी चीज इस संसार में और कुछ भी नहीं है। कोई मनुष्य अगर रॉकेट बनाता भी है तो वह रॉकेट भी चांद तक जाता है, उससे आगे नहीं जा सकता है, सूर्य के समीप भी नहीं जा सकता है, तो परमधाम कैसे जाएंगे? कोई महात्मा गुरु आदि अगर कहता है अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात हम ब्रह्म में पहुंचे हुए हैं, बाबा कहते यहां बैठे हैं ब्रह्म में कैसे पहुंचेंगे, समझ नहीं है। तो बाबा कहे तुम बच्चों को अब यथार्थ रीति ये अभ्यास करना है, मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं और देह और देह की दुनिया से दूर परमधाम में जाना है। निराकारी होकर निराकारी दुनिया में निराकार बाप के पास जाकर बैठना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप के साथ उड़ने के लिए कंप्लीट प्योर बनो, संपूर्ण सरेंडर हो जाओ। ये देह मेरी नहीं है, बिल्कुल अशरीरी बनो। आज की मुरली से प्रश्न है, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए कौन सा डर निकल जाना चाहिए? उत्तर है, कई बच्चे माया के तूफानों से बहुत डरते हैं। कहते हैं बाबा तूफान बहुत हैरान करते हैं, इनको रोक लो। बाबा कहते बच्चे ये तो बॉक्सिंग है, उस बॉक्सिंग में भी ऐसा नहीं कि एक ही और से वार होता रहे। बाबा कहते उस बॉक्सिंग में भी ऐसा नहीं होता कि एक और से ही वार होता रहे। अगर एक 10 थप्पड़ मारता है तो दूसरा 5 जरूर मारेगा, इसलिए तुम्हें डरना नहीं है। महावीर बन विजयी बनना है तब ऊंची मंजिल पर पहुंच सकेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, दर पर आए हैं कसम लेके। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जरूर गीत में कोई रहस्य भरा हुआ है। जो रिकॉर्ड खरीद कर बाप बैठ इनका अर्थ समझाते हैं, इसको कहा जाता है जीते जी मरकर बाप का बनना। गीत में आगे की लाइनें जो आती है उसके मतलब को बाबा बताते हैं, अर्थ स्पष्ट करते हैं। उसका अर्थ है जीते जी मरकर बाप का बनना, बाप का बनने के बाद टीचर का बनना, टीचर के बाद फिर मेजॉरिटी गुरु करते हैं। क्रिश्चियन लोग को भी जब बच्चा पैदा होता है तो क्रिश्चियनाइज करते हैं, गुरु की गोद में जाकर देते हैं, फिर पादरी हो या कोई भी हो।
पादरी तो क्राइस्ट नहीं हुआ। क्रिश्चियनाइज करते हैं तो बाबा कहते पादरी तो क्राइस्ट नहीं हुआ, कहेंगे उनके नाम पर हम क्रिश्चियन बनते हैं। अभी तुम बच्चे पहले बाप के बनते हो, अशरीरी बनते हो। बाप के बनना माना महसूस करना कि मैं आत्मा अशरीरी हूं। हमारा तन मन धन जो कुछ है वह बाबा को अर्पण करते हैं। जीते जी मरते हैं, अर्थात हम आत्मा उनके बनते हैं, ये बुद्धि में रहना है। बाबा कहे हम आत्मा शिव बाबा के बनते हैं, ये बुद्धि में रहना है। जो भी मेरी वस्तु है, संपूर्ण सरेंडर किसको कहा जाता, तो बाबा कहे जो भी मेरी वस्तु है, मेरा शरीर है, मेरा धन दौलत संबंधी आदि जो कुछ है सबको भूलते हैं। छोड़ नहीं देना है लेकिन बुद्धि से भूलते हैं, उसको कहते हैं संपूर्ण सरेंडर। मरने बाद सब भूल जाता है ना, कितनी बड़ी मंजिल है। तो यहां भी जीते जी मरना है, अर्थात बुद्धि से सब कुछ भूलना है। हम अशरीरी आत्मा है ये पक्का करना है। ऐसे नहीं तुम शरीर छोड़ और मर पड़ते हो, नहीं, आत्मा कंप्लीट पवित्र थोड़ी बनी है जो शरीर छोड़ करके मरना है। पुरुषार्थ करना है पवित्र बनने का। बल बाप के बने हो परंतु बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा अपवित्र है, आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, अभी आत्मा उड़ नहीं सकेगी। तमो प्रधान होने कारण एक भी मनुष्य वापस जा नहीं सकते परमधाम। एक भी मनुष्य वापस नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि तमो प्रधान है, आत्मा उड़ ही नहीं सकती है। माया ने एकदम पंख तोड़ दिए हैं, इसलिए बाबा कहते हैं पवित्र बनो और अशरीरी होने का अभ्यास करो, तभी तो उड़ सकेंगे। बाबा ने समझाया है आत्मा सबसे तीखी जाती है, उनसे तीखी चीज कोई होती नहीं इस संसार में। आत्मा से कोई पहुंच नहीं सकता, आत्मा से तेज गति से कोई भी इस संसार की चीज पहुंच नहीं सकती। पिछाड़ी में मच्छर सदृश सब आत्माएं भागती है, कहां जाती है? बहुत दूर दूर सूर्य चांद से भी पार, वहां से फिर लौटना नहीं है। उन्होंने रॉकेट आदि तो जाकर फिर लौट आते हैं, सूर्य तक तो पहुंच ही नहीं सकते, खाली चांद तक जाकर लौट आते हैं। बाबा कहते सूर्य तक तो पहुंच नहीं सकते, तुमको तो उनसे भी बहुत दूर जाना है, सूक्ष्म वतन से भी ऊपर, मूल वतन में जाना है। आत्मा को पंख मिल जाते हैं, पवित्र बनने से आत्मा को पंख मिल जाते हैं, हिसाब किताब चुक तू कर आत्मा पवित्र बन जाती है। कयामत के समय की महिमा बहुत लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है कयामत के समय की महिमा? के सभी आत्माओं को हिसाब किताब चुक तू कर जाना है। अभी तो सब आत्माएं मैली पाप आत्माएं हैं, बल बड़े गुरु साधु सन्यासी आदि है, समझते हैं हम गुरु है, अहम ब्रह्म, हम ब्रह्म में पहुंचे हुए हैं, अब बैठे हुए हैं यहां, ब्रह्म में फिर कहां पहुंचे हुए हैं? अभी तुम जानते हो हम आत्माएं ब्रह्म में रहने वाली है, परंतु अभी वहां कोई भी जा नहीं सकता। ही नहीं जा सकते क्योंकि तमो प्रधान है, आत्मा उड़ ही नहीं सकती वहां तक। सब आत्माएं यहाँ पुनर्जन्म लेती है, ये बेहद का ड्रामा है। सब एक्टर्स को पार्ट बजाने वहां से आना जरूर है, सबकी आत्माएं स्टेज पर आई है। जब विनाश का समय होता है तो सब आ जाते हैं, वहां रहकर क्या करेंगे?
एक्टर बिगर पार्ट बजाए घर में थोड़ी बैठ जाएगा, नाटक में जरूर आना पड़ेगा। वहां से जब सब चले आते हैं तब फिर बाप सबको ले जाते हैं। जब सारी आत्माएं नीचे आ जाती है तब वापस जाने का गेट खुलता है, तो बाप सबको ले जाते हैं। बाप कहते मैं भल यहां हूं तो भी आत्माएं आती रहती है, वृद्धि को पाती रहती है नंबरवार, फिर तुम जाएंगे भी नंबरवार। सारा तुम्हारी अवस्था पर मदार है, इसलिए तुम्हें मर जीवा जरूर बनना है। अवस्था पर मदार है इसलिए बाबा कहे तुम्हें मर जीवा जरूर बनना है। हम आत्मा है निश्चय करना मेहनत है। बच्चे घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर भूल जाते हैं। देही अभिमानी तब रहेंगे जब कंप्लीट सरेंडर होंगे, तभी देही अभिमानी बनेंगे। बाबा ये सब आपका है, मैं भी आपका हूं। ये देह जैसे कि हमारी नहीं है, इनको मैं छोड़ देता हूं, बाबा मैं आपका हूं। इसको कहते संपूर्ण सरेंडर। आत्मा कहते बाबा मैं आपका हूं, तो बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं मेरा बन और सबसे ममत्व मिटा दो, अपनी देह से भी ममत्व मिटा दो। बाकी ऐसे नहीं कि यहां आकर बैठ जाना है। ममत्व मिटाने का मतलब ये नहीं कि घर बार छोड़ करके मधुबना करके बैठ जाना है। तुमको अपना धंधा धोरी करना है, घर संभालना है, बच्चे को कर्जा उतारना है मात पिता का। इतनी सुंदर बात बाबा ने कही, बच्चे को मात पिता का कर्जा उतारना है, उनकी सेवा कर उजुरा देना है, उनकी भी सोल सूक्ष्म दोनों रूप से सेवा करना है। माँ बाप की पालना का कर्ज चढ़ता है बच्चों पर। अब बाप तुम्हारी पालना कर रहे हैं। शुरू में जो भी आए थे सबने झट सरेंडर कर दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा, सरेंडर किया। उस धन से तुम बच्चे भारत को पावन बना रहे हो। भारत ही बिल्कुल पवित्र था, भारतवासियों जैसा पवित्र सुखी कोई हो नहीं सकता। भारत सबसे बड़ा तीर्थ है जहां पतित पावन बाप आकर सारे सृष्टि को, पतितों को भी पवित्र बनाते हैं। अभी ये तत्व आदि सब दुश्मन है, तत्व कितने हलचल में आ जाते हैं, तो बाबा कहे वो भी जैसे मनुष्य के दुश्मन बन पड़े हैं। अर्थक्वेक होगी, तूफान लगेंगे क्योंकि तमो प्रधान है, नेचुरल कैलेमिटीज आएगी, बहुत दुख देगी। ये पांचों तत्व बहुत दुख देगी। इस समय सब दुख की चीजें हैं, सत्युग में है सब सुख की चीजें, वहां ये तूफान व गर्म वायु आदि कुछ नहीं होता। तुम्हारे में भी ये बातें बहुत थोड़े ही समझते हैं। आज है कल नहीं है तो कहेंगे कुछ नहीं समझा। भल यहां आते हैं परंतु सब कायम थोड़ी रहते हैं। यहां से गए 10 दिन बाद समाचार लिखेंगे बाबा फलाने को माया।

कहते माया के तूफान बहुत आते हैं, तुम बाप के बने हो तूफान तो आएंगे। हम बाबा भी बच्चों को तैयार करते हैं कि तुम बाप के बने हो तो तूफान तो आएंगे। कहते बाबा हम आपके थे, आपसे वर्षा लिया था, फिर पुनर्जन्म लेते 84 जन्म पास किए, फिर आकर आपका बने हैं। मैं तो आपसे वर्षा लेकर छोड़ूंगा। बच्चा कहता है मैं तो आपसे वर्षा लेकर छोड़ूंगा। तो ऐसे बाप को इतना याद करना पड़े और आप समान बनाए फल देना पड़े। बाबा को इतना याद करना पड़े और आप समान बनाए फल भी देना पड़े, नहीं तो माला कैसे बनेगी, बाप का वारिस कैसे बनाएंगे। प्रजा भी चाहिए, वारिस भी चाहिए जो गद्दी पर बैठे। बाप के पास तो बहुत आते हैं, फिर फरकती दे देते हैं, बुद्धि का योग टूटा, खेल खत्म। कई बच्चे बाबा से आकर पूछते हैं बाबा अवस्था को कैसे जमाए। कई बच्चे आकर पूछते बाबा से बाबा अवस्था को कैसे जमाए तो कोई तूफान न लगे। तो बाबा क्या कहते, इसका रास्ता तो बताते ही रहते हैं, बाप को याद करो, तूफान तो लगेंगे। सावधान भी करते, तूफान तो लगेंगे। बॉक्सिंग में ऐसा कभी देखा जो कोई एक ही थप्पड़ खाता रहे, जरूर दोनों में हिम्मत होंगी ना। 5 थप्पड़ अगर एक लगाएगा तो 10 दूसरा लगाता होगा, यह भी बॉक्सिंग है। बाप को याद करते रहेंगे तो माया भागती जाएगी, परंतु फट से तो नहीं होगा, माया से कुश्ती लड़नी है। बाबा कहते माया से कुश्ती लड़नी है, ऐसे मत समझो माया थप्पड़ नहीं मारेगी, बल कोई भी हो बड़ी बॉक्सिंग है। बहुत डर जाते हैं, माया एकदम नाक में दम कर देती है। युद्ध स्थल है ना, बुद्धि योग लगाने में माया बड़े विघ्न डालती है। मेहनत सारी योग में है, बुद्धि योग लगाने में माया बड़े विघ्न डालती है, मेहनत सारी योग में है। बल बाबा कहते ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय है, परंतु ऐसे नहीं सिर्फ ज्ञान देने वाले प्रिय है, पहले तो योग पूरा चाहिए। बाप को याद करना है, माया के विघ्नों से डरना नहीं है। विश्व का मालिक बनते हो ना, सब बनेंगे। 16108 की माला तो बहुत बड़ी है, अंत में आकर पूरी होगी। त्रेता अंत तक कितने प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, त्रेता अंत तक कितने प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, कुछ तो निशानियां है ना। 8 की भी निशानी है, 108 की भी निशानी है, यह बिल्कुल राइट है। त्रेता अंत में इतने 16108 प्रिंस प्रिंसेस होते हैं। बाबा ने कितने गुह्य रहस्य की बात बताई, त्रेता अंत तक इतने 16108 प्रिंस प्रिंसेस होते हैं। शुरू में तो नहीं होंगे, पहले थोड़े होते फिर वृद्धि होती जाती है, बस सब बनते यहाँ है। 16108 प्रिंस प्रिंसेस भी यहाँ बनते हैं। चांस बहुत अच्छा है, परंतु मेहनत बहुत है। गीत में भी कहते हैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मर जाऊंगा। बाबा ये तन मन धन सब आपका है, हम अशरीरी बन आपको याद करते हैं, बुद्धि योग आपसे लगाएंगे। बाबा फिर कहते हैं ये सब तुम बच्चों के लिए ही है। बच्चे कहते हैं हमारा सब कुछ आपका है, कहते हैं ना ये सब भगवान ने दिया है। अब बाप कहते हैं ये सब खत्म हो जाना है, तुम्हारे पास क्या है, ये शरीर भी खत्म हो जाएगा। अब मैं फिर तुमको बदली कर देता हूं, सिर्फ एक्सचेंज करते हैं ना। तो बाप कहते बच्चे अशरीरी बनो, मुझे याद करो,

बुद्धि से सब कुछ सरेंडर करो, राजा हरिश्चंद्र की कथा है ना। बोला अमानत रख दो। बाप कहते हैं इन सभी शास्त्र आदि का सार तुमको समझाता हूं। मैंने तुम्हें ब्रह्मा मुख द्वारा राजा रानी बनाया था, फिर अब बनाता हूं। कभी भी मनुष्य मनुष्य को गीता सुनाए, राजयोग सिखलाए, राजा रानी बना न सके। हाँ, दुनिया में ये ताकत किसी के पास नहीं है। फिर गीता सुनने से फायदा क्या? बाप कहते मैं खुद कल्प कल्प आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। हमारे बनेंगे तब तो वारिस बनेंगे ना। तो जितना योग में रहेंगे उतना शुद्ध बनते जाएंगे, आत्मा पावन होती जाएंगी। बाबा ये सब आपका है, हम तो ट्रस्टी है। आपके हुक्म बिगर हम कुछ भी नहीं करेंगे। शरीर निर्वाह कैसे करना है वह भी मत लेते हैं, अक्सर करके गरीब ही पूरा पोता मिल देते हैं। शाहूकार दे न सके, सरेंडर हो नहीं सकते, कोई विरला निकलता है। जैसे एक जनक का नाम है, बाल बच्चे हैं, जॉइंट प्रॉपर्टी है, तो वह अलग कैसे हो? शाहूकार लोग अपनी प्रॉपर्टी निकाले कैसे जो सरेंडर हो? बाप है ही गरीब निवास, सबसे गरीब माताएं हैं, उनसे जास्ती कन्याएं गरीब है। कन्या को कभी वर्षे का नशा नहीं होगा, बच्चे को बाप की जागीर का नशा रहता है। तो वह सबको छोड़ फिर वैकुंठ का वर्षा लेना पड़े। दान हमेशा गरीब को ही दिया जाता है। भारत है सबसे गरीब। अमेरिका बहुत शाहूकार है, उनको वर्षा देते हैं क्या? भारत सबसे शाहूकार था और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ भारतवासी ही थे। एक भाषा थी, गॉड इज वन। मैं वन सोवेरनिटी, वन धर्म, वन भाषा स्थापन करता हूं। शिव बाबा क्या कहते हैं? गॉड इज वन कहते हैं, तो गॉड कहते मैं वन सोवेरनिटी, वन धर्म, वन भाषा स्थापन करता हूं। वन ऑलमाइटी, वन गवर्नमेंट स्थापन करता हूं। वन से फिर टू थ्री होंगे। अभी कितने धर्म है, जरूर वन धर्म आना चाहिए। ऑलमाइटी बाबा आकर के सिर्फ एक धर्म की स्थापना करते तो कितना पावरफुल वो धर्म होता जो आधा कल्प चलता है। उसके बाद टू थ्री शुरू होता है, यानी दूसरे धर्म आना शुरू होता है। 5000 वर्ष की बात है, वन धर्म था। विद्वानों ने सतयुग की आयु लाखों वर्ष लगा दी है। समझते नहीं सतयुग क्या होता है, समझते हैं स्वर्गवासी हुआ, शायद ऊपर चला गया। दिलवाड़ा मंदिर में भी स्वर्ग ऊपर छत में है, तो मनुष्य मूंझ जाते हैं। वास्तव में स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है। तुम अभी जानते हो, बाबा के पास जाकर फिर यहां ही आकर राज्य करेंगे। यह ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए जो कोई को समझा सको। कच्चे को तो माया चिड़िया खा जाएगी, कच्चे को तो माया चिड़िया खा जाएगी। इसलिए फोटो भी मंगाए जाते हैं, रजिस्टर रखा जाता है। बाबा के पास समाचार आता है, बाबा के पास समाचार आता है, फलाने ने एक ही ऐसा ज्ञान का तीर मारा जो मैं बाबा का बन गया। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, कुमारियों द्वारा बाण मरवाए। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, कुमारियों द्वारा बाण मरवाए। अरे बाप को क्यों भूले हो? इसको ज्ञान बाण कहा जाता है। सिर्फ बाप की याद दिलानी है, बाकी कोई हिंसक बाण की बात नहीं है। बाबा कहते मैं ब्रह्मा मुख से सब शास्त्रों का राज तुम्हें समझाता हूं। ब्रह्मा तो जरूर